ओम शांति। हम सभी को बाबा ने इस जीवन का महान लक्ष्य दिया है। जो मनुष्य अपने लक्ष्य को बहुत स्ट्रांगली अपना लेता है और जो मनुष्य अपने लक्ष्य को पाने के लिए संपूर्ण प्रयास करता है, वो अनेक तरह की व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाता है। लक्ष्य के अनुसार मनुष्य में लक्षण भी आने लगते हैं। लक्षणों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, परंतु लक्ष्य की दृढ़ता लक्षणों को जीवन में सहज लाने का साधन बन जाती है। परंतु यह भी सत्य है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसकी एक समुचित प्लानिंग भी परम आवश्यक है। बाबा ने हमें एक महान लक्ष्य दिया है कि तुम्हें अपनी स्थिति को विष्णु के समान अचल अडोल बनाना है। विष्णु स्वरूप देखें, विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए हैं, सांपों की छत्र छाया है, चारों ओर सागर में लहरें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही हैं, लेकिन विष्णु जी गीता ज्ञान में मग्न बिल्कुल अचल अडोल स्थिति में लेटे हुए हैं और वहीं से जैसे सारे संसार को दृष्टि दे रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी पालना कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति होने पर लक्ष्मी चरणों में आ गई है, अर्थात धन संपदा ऐसी स्थिति के बाद चरणों में आ जाती है। हम भी लक्ष्य बना लें कि हमें अपनी स्थिति को विष्णु जी के समान अचल अडोल बनाना है। पांचों विकार हमारी छत्र छाया बन जाएं। ये पांचों विकार ही बड़े नाग हैं, सर्प हैं, इनको अपने वश में कर लेने से ये हमारी छत्र छाया बन जाते हैं और हम इन पर आराम से विश्राम कर सकते हैं। सागर में चाहे कितने भी तूफान हो, अर्थात इस जीवन में चाहे कितने भी माया के तूफान हो, परिस्थिति और समस्याओं के तूफान हो, हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, ऐसा हमें संपूर्ण रूप से पुरुषार्थ करना है। इसके लिए ज्ञान की बातों को यूज करना है, बाबा की सहयोग को याद करना है, समर्पण भाव को प्रैक्टिस में लाना है। बाबा का हाथ हमारे सिर पर है, वो सदा हमारी छत्र छाया है, इसके सुंदर अनुभवों में विश्वास में रहना है और ड्रामा के ज्ञान को भी यूज करना है ताकि हमारी स्थिति बहुत अचल अडोल हो जाए। जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है और हम गीता ज्ञान में मग्न रहने लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम गीता ज्ञान को स्मरण करते हुए ज्ञान में मग्न रहने का अभ्यास करें, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहकर ज्ञान स्मरण, ज्ञान का चिंतन, मुरली पर बहुत अटेंशन, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो इस सत्य गीता ज्ञान में हम मग्न हो जाएंगे और ये आनंद भी कोई कम आनंद नहीं है। जैसे विष्णु जी जैसे कि शेष शैया पर निश्चिंत होकर लेटे हुए हैं, हम भी ज्ञान मनन से, योग शक्ति से निश्चिंत जीवन का अनुभव करेंगे और जब हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी तो सचमुच धन संपदा के पीछे हमें भागना नहीं पड़ेगा। वो तो हमारे चरणों की दासी बन जाएगी, वो हमारे चरणों में आ जाएगी, हम अथाह धन संपदा के स्वामी बन जाएंगे। तो आइए हम अटेंशन दें आज कि हमें अपनी स्थिति को विष्णु के समान बनाना है। अपना वो स्वरूप दिन में कई बार हम सामने लाएंगे। ये हमारा भविष्य का नशा भी है और हमारी वर्तमान की स्थिति भी है, हमारा वर्तमान का लक्ष्य भी है। आज सारे दिन में हर घंटे में एक बार हम अपने स्वरूप को सामने लाकर एक प्रेरणा लेंगे कि ये है मेरी सच्ची स्थिति, और फिर सारा दिन एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे कि स्वयं ज्ञान सूर्य परम धाम से नीचे उतर कर मेरी आंखों के सम्मुख आ गए हैं। देखें उनको, अपनी आंखों के सम्मुख,
और उनकी शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं, और मैं हूं मास्टर ज्ञान सूर्य। ये अभ्यास सारा दिन करते रहेंगे, हर घंटे में 2 बार अवश्य करेंगे। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सबका स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कहा जाता है, जिंदगी में कभी इन्हें टूटने न देना, क्योंकि इनके टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन आदमी ज़रूर टूट जाता है। कौन सी होगी वो चीज़ें? वो है हृदय, विश्वास, वचन और रिश्ते। इसलिए इनके बारे में सदा जागरूक रहिए। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं ज्ञानेश्वर जी, हम उनका स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम।
1: थैंक यू भक्ति जी, गुड मॉर्निंग टू यू और गुड मॉर्निंग रेडियो मधुबन के श्रोतागण को तहे दिल से शुभकामनाएं और सुप्रभात। भक्ति जी, आपने जो शेर पढ़ा वह बड़ा अच्छा था, टूटना नहीं चाहिए। क्या टूटना है? दिल, मन,
0: विश्वास और
1: विश्वास। ये दिल टूटता है तो भी गड़बड़ है, विश्वास टूटता है तो भी गड़बड़ है, और ये जब टूट जाता है तब फिर जुड़ नहीं जाता। जैसा उदाहरण देते हैं, आयना है, अगर आयना टूटता है तो फिर उसको जोड़ नहीं सकते। इसलिए हर चीज, ऐसी जो नाजुक चीजें हैं उनको बड़ा ख्याल रखना चाहिए, उन चीजों का
0: जी।
1: तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने ये कहा और हमारी जो चर्चा चल रही है रामायण के बारे में, अनेक चरित्रों के बारे में, रामायण में सिर्फ राम जी का चरित्र नहीं है, हमने लक्ष्मण जी के बारे में चर्चा की, हनुमान जी के बारे में चर्चा की, ऐसे बहुत महानुभाव है उनके बारे में चर्चा की।
0: बिल्कुल,
1: विश्वामित्र जी थे, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी और विश्वामित्र के बारे में काफी जानकारी भी ले ली हमने।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जब हम चर्चा करते हैं तब मुझे और एक चीज याद आती है कि विश्वामित्र जी जब तप कर रहे थे तब सब देवताएं जो है वो हमेशा की तरह चिंतित हो गए। मुझे हमेशा आश्चर्य लगता है कि जब भी कोई तप करने बैठ जाता है तब देवताओं से भी ज्यादा जो इंद्र है, जो देवताओं का राजा कहलाया जाता है, वो कथा में ऐसा कहते हैं कि इंद्र बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अभी ये तप करने के बाद मेरी कुर्सी वो ले। अभी ये जब मैं पढ़ता हूं तब मुझे मन में आता है कि यह सचमुच ये कुर्सी का खेल है जो हम आजकल देखते हैं।

0: जब विश्वामित्र जी उनकी कथा हमारे सभी श्रोतागण को मालूम होगी कि विश्वामित्र जी जो थे वो तप करने के लिए बैठ गए और फिर जो इंद्रदेव थे उन्होंने वहां जो मेनका जो स्त्री है उन्हें कहा कि आप जाओ और उनका तप भंग करो। अभी देखिए मेनका एक स्त्री है, बड़ी लावण्यवती स्त्री है और वो इंद्र जी मानते थे कि अगर ये विश्वामित्र तप करने के लिए बैठे हैं तो फिर ये मेनका जाके उनका तपस्या भंग करने की ताकत रखती है। ताकत दो प्रकार की होती है, एक तो तप करने की ताकत है और तप भंग करने की ताकत है। विश्वामित्र जी घोर तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने की जिद उनके मन में है, तपस्या करने का निश्चय उनके मन में है और फिर भी इंद्रदेव जो है, जो देवताओं के राजा कहलाए जाते हैं, इंद्रपद जिनके पास है और वो अपने राज्य में से बड़ी सुंदर स्त्री करके मान्यता है उसे भेज देते हैं। अभी उसके पीछे का जब राज मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये विश्वामित्र मेनका ये कहीं ना कहीं संकेत है हमें सीख देने के लिए जिंदगी में।
1: अच्छा
0: देखिए तपस्या, विश्वामित्र जो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या किस लिए कर रहे हैं? उन्हें ब्रह्मपद चाहिए, वो है क्षत्रिय कुल के और वो ब्रह्मपद ब्रह्मर्षि पद, सिर्फ ब्रह्मपद नहीं ब्रह्मर्षि पद पाने की इच्छा रखते थे। अभी वहां जब हम क्षत्रिय कुल ब्रह्मपद ब्रह्मर्षि पद इसके बारे में चर्चा करते हैं तो लगता है शायद ये वर्णाश्रम धर्म या वर्ण भेद उस समय भी था, ऐसी मन में आशंका पैदा होती है। और फिर ये वर्ण भेद जब मन में पैदा होता है तो बहुत बड़ी बहस हो जाती है, बतंगड़ हो जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। चातुर्वर्ण्य शायद उसी जमाने से शुरुआत है, लेकिन मुझे आपको भी और हमारे श्रोतागण को भी कहना है कि उसे थोड़ा सा अलग नजर से हम देखेंगे।
1: बिल्कुल
0: अलग नजर से इसलिए देखेंगे क्योंकि ये चातुर्वर्ण वर्ण जो है, अभी हम कहते हैं कि चातुर्वर्ण में वर्ण तो चार है ही और हमारे हिंदू धर्म में ही अनेक प्रकार की जातियां हैं, जाति है प्रजाति है और फिर ये जाति प्रजाति को पकड़ के हम बैठते हैं और आपस में लड़ते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और इसलिए शायद किसी को ऐसी भूल हो सकती है कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय का विवाद है। जो विश्वामित्र की कहानी है, इंद्रदेव जो है वो क्षत्रिय तपस्या करने के लिए बैठा है ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए, उनकी तपस्या भंग करने के लिए षड्यंत्र रचा है, ऐसी कुछ भावना हो सकती है।
1: एक्चुअली शास्त्रों में इसी प्रकार का वर्णन है और इसीलिए कई बार शास्त्रों की कथा सुनने के बाद हमारा विश्वास उड़ जाता है।
0: बिल्कुल सही, और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए अगर उसमें से कुछ संदेश लेना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान कुछ मोटिव लेके जिंदगी में कुछ उद्देश्य लेके अगर कुछ हासिल करना चाहता है और उसके लिए वो प्रयत्न करता है तो ये मेनका एक रूपक है, मेनका एक उदाहरण है कि मेनका के रूप में ऐसी बहुत सारी मोह और माया जो है वो हमारे प्रयासों में विघ्न डाल सकती है
1: जी।
0: और अगर उसके हम बलि हो जाते हैं तो फिर हमारा लक्ष्य जो है वो हासिल नहीं हो पाता। इसलिए कहानी ऐसी है कि विश्वामित्र जी तपस्या करते हैं, मेनका पृथ्वी पर आ जाती है और फिर विश्वामित्र उनके बलि हो जाते हैं, विश्वामित्र
1: उनमें
0: फंस जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं और फिर उनके साथ संबंध जो होता है उससे एक बेटी पैदा होती है और वो है शकुंतला। अभी यह शकुंतला जब बेटी है और फिर क्या होता है, विश्वामित्र की आंखें खुल जाती है, विश्वामित्र को पता चलता है कि ये कोई चाल थी और मुझे फंसाया गया और फिर वो मेनका को छोड़ देता है, मेनका को छोड़ देता है, फिर वो बच्ची का क्या करे? और ये बच्ची वो कण्व ऋषि के आश्रम में पलती है और उसका नाम है शकुंतला। शकुंतला जो बेटी है बहुत सुंदर रहती है, बहुत गुणवान होती है और

0: फिर वो शकुंतला की शादी राजा दुष्यंत से होती है और उनका जो पुत्र है उसका नाम भारत है।
1: अच्छा।
0: और ये भारत देश का नाम ऐसे कहते हैं कि वो भारत के ऊपर आया है।
1: फैंटास्टिक।
0: अभी देखिए ये भारत देश जो है उनका नाम आया। अभी इसमें मुझे और एक कहना है कि जब ये विश्वामित्र की जब आंखें खुल गई, उन्हें पता चला कि ये मेनका जो है वो एक साजिश थी मेरी तपस्या भंग करने के लिए, और फिर उससे वो संभल गए। और गिरना और संभलना ये मेरे ख्याल से जिंदगी का मकसद है।
1: गिरना और संभलना ये जिंदगी में बहुत स्वाभाविक है, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि जब हम गिरते हैं तब हम इन मिसालों को सिर्फ याद रखें या बार बार गिरे। लेकिन ये निश्चित है कि जब हम कोई मंजिल को पाने के लिए प्रयास करते हैं तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कई प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आती है, और उस समय केवल हम उन बाधाओं को पकड़ ले या निराश हो जाए, मायूस हो जाए, उदास हो जाए, उस समय हम अगर ऐसे उदाहरणों को देखेंगे और फिर से अपने लक्ष्य की ओर दुगने उत्साह से बढ़ेंगे तो निश्चित है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दोस्तों अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत है सबका अमृत धारा प्रोग्राम में। कहा जाता है कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। तो ये विकार जिनको कहते हैं षड रिपु, शत्रु है माया मोह, तो ये शत्रु जब आते हैं तो शायद हम ज्यादा कामयाब होते हैं ऐसा लगता है। ज्ञानेश्वर जी, आपका क्या विचार है?
1: ये विकार और षड रिपु, इसके बारे में जो आपने कहा है, यही जो अध्यात्म में या भक्ति मार्ग में बहुत सारे संत सज्जन जो है वो हमेशा हमें सावधान करते हैं कि ये विकार उनसे मुक्त रहे या विकार उनसे बच के रहे। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये आशंका पैदा होती है कि विकार तो है ही, मन में विकार होना ये स्वाभाविक है, और फिर उससे बचेंगे कैसे। और ये हमारी जो सीख है, चाहे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, महर्षि वाल्मीकि जी हो, या वेद व्यास हो, या और कोई संत सज्जन हो, मीराबाई हो, या और कोई संत हो, हर संत ने, हर महात्माओं ने यही सीख दी है कि हमें विकारों से बचना है, क्योंकि ये विकार जो है वो हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मिसाल अभी आपने बताया, वो भी संसार में रहते हुए ही विकारों से बचकर उन्होंने अपना जीवन बनाया।
1: बिल्कुल सही कहा। और बहुत सारे ऐसे संत हैं जो संसार करते हैं, घर गृहस्थी करते हैं, लेकिन फिर भी विकारों से बचे हुए हैं। तो ये विकार जो है वो हम कहते हैं पतित, हम कहते हैं ना, हम आत्मा पतित है और पावन परमात्मा को हम कहते हैं पतित पावन, और उसे बुलाते रहते हैं। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि हम समझते हैं हम पतित हैं। अभी हम पतित हैं ये तो पक्का है, मन में निश्चय है, और इसलिए पतित पावन आ जाओ, पतित पावन आ जाओ ऐसी गुहार लगाते हैं। और फिर अगर किसी ने कहा आप पतित हो तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम पतित है ये हमारा और ईश्वर के बीच का पर्सनल मामला है। अगर दूसरा कोई कहे कि आप पतित हो तो फिर बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये ड्यूअल स्टैंडर्ड है, और ठीक तरह से मेरे ख्याल से हम उसे समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए सही क्या है गलत क्या है ये भ्रमित अवस्था हो जाती है, और फिर बहुत सारे भेद खुलते नहीं है। और फिर ये शास्त्रों में जो कथाएं हैं वो ऐसी लगती है, एक तो वो विचित्र लगती है, असंभव लगती है, या फिर उससे कई हम निगेटिव भाव लेते हैं। जैसे हमने कहा मनुस्मृति, मनुस्मृति कहते हैं तो सब लोग टूट पड़ जाएंगे कि उनके मन में आएगा कि यही है वो चातुर्वर्ण का पुरस्कर्ता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मुझे ये लगता है हमारा देखने का नजरिया, देखने का एंगल, दृष्टि अगर हमारी बदल गई तो उससे कुछ अच्छी चीजें भी हम निकाल सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि हम जो कहानी सुनते हैं त्रिशंकु की, क्योंकि अगर हमारे पास गुण है, शक्ति है, लेकिन उसका हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और हम विकारों में फंस गए तो फिर हम गिरना शुरू हो जाते हैं, उसको कहते हैं पतन
0: जी।
1: और फिर से हम तपस्या जब करते हैं तब उसे उत्थान कहते हैं। हम विश्वामित्र ऋषि की जो कहानी सुनते हैं वो पतन और उत्थान की है। वो तपस्या करने के लिए जिद है उनकी, उनका निश्चय है, उन्होंने ठान ली है कि कैसे भी करके हम ब्रह्मर्षि पद पाएंगे, और इसलिए तपस्या करते हैं, प्रयास करते हैं, बीच में मोहवश हो जाते हैं, चाहे वो मेनका हो या और कोई हो।
0: लेकिन यहाँ एक बात होती है ज्ञानेश्वर जी, कि विश्वामित्र के सामने मेनका आई, एक स्त्री आई, और इसीलिए मैं समझती हूँ कि तब से लेकर समाज ने स्त्री को दोषी ठहराया है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? सचमुच स्त्री दोषी है या फिर विश्वामित्र की नजर का वो दोष है?
1: देखिए, यहाँ मेनका जो, जैसे हमने कहा कि मेनका जो है वो एक सिंबॉलिक है, संकेत रूप से है, वहां मुझे ये नहीं लगता कि तपस्या विश्वामित्र बैठे हैं, घनघोर तपस्या कर रहे और मेनका आके डांस कर रही है और फिर वो फंस गए। यहां मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि महर्षि वाल्मीकि को ये दिखाना था कि हमें कैसे संभल के रहना है। जिंदगी में अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हम कैसे संभले। और फिर ये कहानी है, आप जो बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये कहानी से स्त्री जाति का अपमान भी हो जाता है और स्त्री जाति बदनाम भी हो जाती। हम कहते हैं कि स्त्री जाति से हम संभल के रहना है, लेकिन वही स्त्री है जब देवी बन जाती है, महिषासुर मर्दिनी बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, अन्नपूर्णा बन जाती है, लक्ष्मी बन जाती है या सरस्वती बन जाती है, उनके दर्शन के लिए रीघ लग जाती है, उनके दर्शन के लंबी कतार क्यों खड़ी हो जाती है। तो हम कैसे देखें, इसके हिसाब से हमारी नजरिया बदली होनी चाहिए, हमारा दृष्टिकोण बदल होना चाहिए। वो अगर बदल गया तो फिर वो स्त्री स्त्री नहीं रहती, वो स्त्री अबला नहीं होती, स्त्री सबला हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज तक जैसे कि आपने मनुस्मृति की बात कही और स्त्री पर इसीलिए दोषी उसको ठहराया जाता या इसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते, क्योंकि आदि काल से लेकर एडम और ईव जो बोलते हैं, तो ईव जो है उसने एडम को फल खाने के लिए कहा, या ऐसी ऐसी कुछ कथाएं हैं जिसके कारण आज भी समाज में ऐसे कई जगह है कि जहां स्त्री को इस प्रकार से देखा जाता है जैसे कि जुत्ती के रूप में। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने ये भी सुना हुआ है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी सुना हुआ है कि ब्रह्मा कुमारी जो एक संस्था है, जिस संस्था की जो मुख्य संचालिका है दादी जान की, उनके 100 साल अभी अभी पूरे हुए और ये संस्था की जो पहचान है वो ये है ब्रह्मा कुमारीज नाम से ही, कि यह संस्था देश तथा विदेश में महिलाओं की एक ऐसी शक्ति है, एक नारी शक्ति का बहुत सुंदर उदाहरण है जो आपस में बहुत समन्वय से अपना कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपने कार्य को सफल रीति से किया है। तो इसीलिए जब ये शास्त्रों की कहानियाँ सुनते हैं, वो कहानियाँ सुनना और उसका मिसाल, उसका दृष्टांत के रूप में अर्थ समझना, ये बड़ा स्वाभाविक और जरूरी भी होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, आपने जो बहुत अच्छी बात निकाली है कि स्त्री को सम्मान कैसे दिया जाए, और जैसे हमने कहा कि जितनी स्त्रियां हैं वो देवियों के रूप में भी उनका पूजन होता है। और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो लक्ष्मी और नारायण की चित्र अगर हम सामने लाए, तो लक्ष्मी और नारायण का जब चित्र सामने लाते हैं तो हमेशा हमारे नजर के सामने चित्र आता है, नारायण शेष शैया पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी उनके पाँव दबा रही है। अभी देखिए, ये चित्र जो है उसमें ये दिखाना है कि लक्ष्मी दासी है। लक्ष्मी दासी है उसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी सचमुच पाँव दबा रही है, लेकिन यहां ये दिखाना है नारायण और लक्ष्मी जो है उनमें कोई कुछ अंतर है। लेकिन अभी दूसरी तरफ से देखेंगे तब जब हम लक्ष्मी को बुलाते हैं, और लक्ष्मी को मेरे ख्याल से सिर्फ दिवाली में लक्ष्मी पूजन होता है, लेकिन लक्ष्मी का वैसे पूजन तो रोज होता है। हर एक चाहता है कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, हर एक चाहता है कि मेरे ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न रहे। और अगर लक्ष्मी, हंसी की बात बताता हूं, अगर वो पाव दबाने से फ्री जब तक नहीं होगी तब तक आपके पास कैसी आएगी, आपको प्रसन्न कैसी होगी
0: जी।
1: तो ये सब कहानियां जो है, लक्ष्मी हो या सरस्वती हो, और भी और एक चीज है कि यहां देखिए विष्णु का जो दर्शन है, नारायण तो सोए हुए है उस समय उनके चित्र है, लेकिन विष्णु का जब दर्शन हो जाता है तब वो चतुर्भुज दिखाए जाते हैं
0: जी।
1: और वो चतुर्भुज जो है मुझे लगता है लक्ष्मी और नारायण उनका जो कंबाइंड स्वरूप है वो है चतुर्भुज विष्णु। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं अगर किसी की शादी होती है तो हम क्या कहते हैं, उसके दो हाथ थे अभी उसके चार हाथ हो गए, और किसी को हथकड़ी डाल देते हैं तो भी कहते हैं वो चतुर्भुज हो गया
0: जी।
1: तो ये शादी होने के बाद चतुर्भुज कहते हैं, क्योंकि दो हाथ पति के, दो हाथ पत्नी के हैं, लेकिन चेहरा एक है। दो चेहरे नहीं है, एक ही मुख से अगर वो पति कुछ कहे तो पत्नी हाँ बोलती है, पत्नी कुछ कहे तो पति हाँ बोलता है, तो वो आदर्श स्थिति है। और मुझे लगता है विष्णु जो कंबाइंड स्वरूप है, वो युगल अगर कोई है तो उनका आदर्श स्वरूप जो है वो विष्णु है।
0: बहुत सुंदर बात आपने कही, जो सचमुच ही धारण करने योग्य है, असल में ऐसे होता है या नहीं होता वो तो बात सोचने की है, लेकिन जो भी ऐसे पति पत्नी हो जो एक मुख से अपने निर्णय, एक ने निर्णय लिया और दूसरे ने स्वीकार किया, तो ये सबसे आदर्श उदाहरण जो है वो विष्णु जी का है। ये बहुत एक सुंदर विचार है, उस रीति से हम देखेंगे तो सचमुच है वो जो कपल है, वो जो युगल है, वो आदर्श रूप में विष्णु के रूप में दिखाए हैं। दोस्तों, हमें ऐसे ही आदर्श बनना है और यही हमारे जीवन का मकसद है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब समय है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रहे हैं।
1: देखिए भक्ति जी, जब हम विश्वामित्र जी की बात कहते हैं, विश्वामित्र के बारे में, कथा के बारे में जब विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, और ये भी देखते हैं कि वो ब्रह्मपद पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अभी यहाँ मुझे ये लगता है कि ब्रह्मर्षि पद पाना एक डिग्री पाने जैसा है। अगर कोई डिग्री हासिल करनी है, अगर कोई MBBS बनता है, कोई IAS ऑफिसर बनता है, कोई IIT की एग्जाम देता है, वो तो बहुत कठिन परीक्षा है
0: जी,
1: छोटी मोटी परीक्षा नहीं है। अगर 10वीं की परीक्षा है, वो भी मैं ये नहीं कहता कि ये छोटी है, लेकिन अगर उसकी भेंट में IIT या MBBS या इंजीनियरिंग की भेंट में 10वीं की परीक्षा कंपैरेटिवली सिंपल है, आसान है, तो ये ब्रह्म पद या ब्रह्मर्षि पद जो पाना है, वो मुझे लगता है कि कुछ डिग्री हासिल करने लायक है। और ये अगर उसमें कोई बाधा आती है, विघ्न आते हैं, जैसे विकार है, विकार मीन्स क्या है, माया है, मोह है, अगर हम कहीं मोहवश हो जाते, अगर कोई विद्यार्थी है वो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और अगर उसका कोई मित्र आता है, दोस्त आता है या सहेली आती है, और वो कहीं उनको पिक्चर फिल्म दिखाने के लिए चले गए, घूमने फिरने के लिए चले गए, और फिर क्या होगा, वो ठीक तरह से परीक्षा पास नहीं हो पाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा और फेल्योर आएगा। अगर इसी फेल्योर को लेके अगर कोई दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है और फिर कहीं सुसाइड कर बैठता है, तो उनके लिए मुझे मेरा ये संदेश है कि हम विश्वामित्र को आदर्श माने।
0: अच्छा,
1: एक्चुअली ये विश्वामित्र के पतन की कहानी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विश्वामित्र को आदर्श माने किस हिसाब से, कि कितना भी फेल्योर आ जाए, तो इस विषय में मुझे लगता है कि विश्वामित्र जी आदर्श है, क्योंकि वो निराश नहीं हुए, वो हताश नहीं हो गए, उनकी तपस्या भंग हो गई, लेकिन उन्होंने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा और वो तपस्या करते रहे, करते रहे, करते रहे, और आखिर उन्होंने ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति की। तो ये मुझे लगता है कि एक हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए एक संदेश है कि कोई भी कार्य, कोई भी अगर हमें टास्क मिला है, प्रोजेक्ट में मिला है, सिर्फ विद्यार्थी नहीं है, हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते होंगे, कुछ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते होंगे, उनके लिए भी ये कठिन टास्क रहता है, और कभी कभी व्यक्ति निराश हो जाती है, फिर मोहवश हो जाती है, वहां तो मेनका है, यहाँ मेनका भी भले नहीं आए, लेकिन मेनका के रूप में बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं, बहुत सारे मोह आ सकते हैं, और वहां अगर हम फंस जाते हैं तो फिर हमारे लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो मुझे इसलिए ये लगता है कि जब हम फंसते हैं, विकारों में फंस जाते, मोह में फंस जाते हैं, तो फिर कहते हैं ना इधर का ना उधर का,
0: न घर का न घाट का।
1: बिल्कुल सही। और ये जब ना घर का ना घाट का, ये इसके बारे में जब हम सोचते हैं, तब हमें त्रिशंकु की याद आती है।
0: अच्छा,
1: हम बहुत बार कहते हैं उसकी तो अवस्था त्रिशंकु जैसे है। त्रिशंकु जैसे क्यों? वो ना नीचे आ सकता है ना ऊपर जा सकता है। और ये त्रिशंकु की अवस्था जो है वो संभ्रमित अवस्था है। और बहुत बार हमारे में से कई लोग, या हम ही कई बार हमारे जिंदगी में ऐसी अवस्था में पाते हैं कि वहां हम त्रिशंकु जैसे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता नीचे उतरू या ऊपर।
0: या कहो कि जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तभी भी हमारी कभी कभी दोलायमान स्थिति होती है, और उस अवस्था को भी हम त्रिशंकु कह सकते हैं।
1: बिल्कुल। और उसी अवस्था का वर्णन करते समय मुझे लगता है यह त्रिशंकु की कथा भी यहाँ शास्त्रों में लिखी गई होगी।
0: बहुत अच्छा, ये तो बहुत आपने अलग भाव से कहा, और कई बार हमने ये महसूस किया है कि हमारी ऐसी अवस्था होती है, तो उस पर कैसे हल निकाला जाए, किस प्रकार से उस अवस्था से हम फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, ये सुनना मैं समझती हूँ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद हम उत्सुक हैं ज्ञानेश्वर जी से कि त्रिशंकु अवस्था जब हमारी होती है या त्रिशंकु जो शब्द है वो क्या बतलाता है, और सचमुच ही ये कहानी जो है जो विश्वामित्र की कहानी से बिल्कुल ही नजदीक का रिश्ता रखती है वो सच्चाई क्या है।
1: देखिए, त्रिशंकु की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये कहा कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश का है। त्रिशंकु जो है वो इक्ष्वाकु वंश का है, और इक्ष्वाकु वंश मीन्स रघुवंश कहते हैं, या कहे सूर्यवंशी कहे
0: जी।
1: और वो जो इक्ष्वाकु वंश का जो त्रिशंकु जो राजा है, वो राजा बड़ा उदार था, बड़ा दानी था, बड़ा अच्छा था। ऐसे नहीं कि राजा दुष्ट था या कपटी था, लेकिन उसके मन में एक इच्छा पैदा हो गई। दिखने में बड़ा सुंदर था, शरीर भी सुंदर था, और ये शरीर के ऊपर उसका बड़ा मोह था, और उसे ये लगता था कि ये शरीर छोड़ के अगर मैं स्वर्ग में जाऊं तो फिर उसका क्या फायदा है। मेरा इतना अच्छा शरीर है, सुंदर शरीर है, और ये शरीर को त्यागना और फिर स्वर्ग में जाना, ये कल्पना उसे डाइजेस्ट नहीं होती थी।
0: अच्छा।
1: और इसलिए वो बड़ा चिंतित था, और उसे लगता था कि कहीं ना कहीं ऐसी तरकीब निकाले कि ये शरीर के साथ मैं स्वर्ग में चला जाऊं। तो ये कामना रखते हुए वो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं, और फिर उन्हें कहते हैं कि देखिए, मैं ये शरीर लेके स्वर्ग में जाना चाहता हूं। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी जो है उन्हें समझाते हैं कि राजन, ऐसे आज तक कोई नहीं हुआ कि जो शरीर के साथ स्वर्ग में गया है। आपको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना है मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा, लेकिन शरीर के साथ जाना असंभव है। तो फिर उसने माना नहीं, और ऐसे कहते हैं कि वशिष्ठ जी जो है उनके भी कुछ पुत्र थे, और ये पुत्र जो थे उनके पास जब वशिष्ठ जी ने माना नहीं तो वो पुत्रों के पास गया। वो भी तपस्या कर रहे थे, और वो तपस्या करते हुए उन्हों रिक्वेस्ट लेके गया, अर्जी लेके गया कि मुझे कैसे भी करके शरीर के साथ स्वर्ग में भेज दो। तो वशिष्ठ के पुत्रों ने तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि ये वशिष्ठ जी ऋषि जो है, उन्होंने उसके मना करने के बावजूद वो हमारे पास आया है। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये राजन, आप हमारे पिताश्री के पास गए थे, उन्होंने आपको मना किया था, और फिर भी आप हमारे पास आए,
0: ये तो जैसे उनका अपमान हो गया।
1: बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि आपने हमारे पिताश्री का अपमान किया है, और मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि ये संभव नहीं है। एक बार हमारे पिताजी ने कह दिया असंभव है तो असंभव है।
0: जो काम पिताजी नहीं कर पाए वो पुत्र क्या कर पाएंगे, इस प्रकार से शायद उन्होंने समझाया हो।
1: बिल्कुल। तो फिर भी वो माना नहीं और जिद पे खड़ा था, और फिर वो अपशब्द बोलने लगा। वो वशिष्ठ मुनि को अपशब्द बोलने लगा, उनके पुत्रों को अपशब्द बोलने लगा, और फिर इतना होने के बाद ये वशिष्ठ के जो पुत्र थे उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि आप चंडाल बन जाओगे, और चंडाल बन जाओगे ऐसा जैसे श्राप दे दिया। तो फिर ऐसे कहते हैं कि उनका शरीर काला हो गया, उनके बाल छोटे हो गए, उनके गले में हड्डियों की माला आ गई, वगैरह वगैरह जो वर्णन करते हैं वो निगेटिव वर्णन है। मीन्स वो निगेटिव वर्णन इतना दर्दनाक था, भयानक था, और वो शरीर उनका जब शरीर था, इतना सुंदर शरीर था, वो काला पड़ गया, वो कुरूप हो गए। और फिर जैसे अपने राज्य में वापस आए तब वो मंत्री थे, प्रधान थे, उनकी प्रजा थी, उन्होंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया, और फिर उन्हें अपना राज्य भाग्य छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं था।
0: लेकिन ये कहानी जो है जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बिल्कुल मन में डर पैदा होता है, और ऐसे लगता है कि जब कोई तप करता है और उसे श्राप मिलता है तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। ये क्या कहानी बताती है, क्योंकि कई हमारे श्रोता ऐसे होंगे जिनके मन में यह सब सुनने के बाद भगवान के प्रति विश्वास कम हुआ होगा या फिर डर ज्यादा पैदा हुआ होगा, ना तो भगवान के प्रति, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप उस पर भी प्रकाश डालिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि ये देखिए, ये भगवान के प्रति डर तो है, हम बार बार कहते हैं कि बहुत बार हमारी जो भक्ति है वो नॉट बिकॉज ऑफ लव, हम डर के मारे भक्ति करते हैं, हम गॉड फियरिंग पीपल बन जाते हैं, गॉड लविंग पीपल नहीं बनते। और ऐसे ही साधु संन्यासी जो है उनसे हमें कुछ सीख लेनी है, उनसे हमें कुछ आशीर्वाद लेने हैं, उनसे हमें कुछ प्रेरणा लेनी है, उसके बजाय अगर हम मंत्र तंत्र में पड़ जाते हैं तब कभी कभी ये नौबत खड़ी हो जाती है। शायद मुझे लगता है कि यही सीख उसमें मिल सकती है कि अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं है, हमारा अगर उद्देश्य सही नहीं है, हमारा उद्देश्य अगर विकारी है, हमें अगर स्वार्थ मन में पैदा होता है तो वो हमारे लिए सही नहीं है।
0: अभी जैसे कि ये त्रिशंकु ने कहा कि मुझे देह सहित स्वर्ग में जाना है, तो ये देह सहित स्वर्ग में जाना है, यह शब्दों का राज क्या है?
1: देखिए, स्वर्ग में जाना है, जब तक ऐसे कहते हैं जब तक आप खुद नहीं मरोगे आप स्वर्ग में नहीं जा पाते, ऐसी कहावत है। तो यह स्वर्ग में जाना और देह के साथ जाना और देह रहित जाना, देह सहित और देह रहित, उसमें बड़ा रहस्य है। क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति, जो स्वर्ग सुख है, सुख का परमोच्च अवस्था है स्वर्ग, उसे प्राप्त करने के लिए अगर आप शरीर के मोह में फंसे हो, बॉडी कॉन्शियस हो, तो आप स्वर्ग प्राप्ति नहीं कर सकते। उसकी अगर आध्यात्मिक परिभाषा में अगर हम उसको देखें तो मुझे ये लगता है कि जब तक आप बॉडी कॉन्शियस हो, आप शरीर से प्यार रखते हो, शरीर से लगाव रखते हो, तब आपकी अवस्था उन्नत अवस्था नहीं हो सकती, तरल अवस्था नहीं हो सकती, और आप हल्के नहीं बन सकते, आप भारी बन सकते हो।
0: अर्थात मुझे लगता है कि मैंपन को छोड़ना, जब तक हम इस मैंपन को नहीं छोड़ते तब तक हम अपने ही इन उलझे हुए बातों में रहते हैं और तब तक हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, वो सुख नहीं मिल सकता।
1: बिल्कुल, यही मेरे ख्याल से लगता है कि एक कहीं ना कहीं संदेश अगर हम लेना चाहे तो ये ले सकते हैं त्रिशंकु की कथा से। और फिर ऐसे होता है कि ये त्रिशंकु जब कुरूप काला शरीर है, कुरूप अवस्था है, और ऐसे करके वो विश्वामित्र जी के पास जाता है। विश्वामित्र जी तपस्या करते बैठे हैं और ये विश्वामित्र के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे शरीर के साथ स्वर्ग में जाना है। देखिए, इतना कुरूप हो गया, इतना झेल लिया, फिर भी वो शरीर का मोह नहीं टूटा उनका, और फिर शरीर के साथ वो कहते हैं कि मुझे स्वर्ग में जाना है। और फिर विश्वामित्र कहते हैं कि आप वशिष्ठ जी के पास गए थे, फिर क्या हो गया, उन्होंने मना किया आपको? तो वो रोते रोते कहते हैं कि दया करो, उन्होंने मना किया और मेरी अवस्था ऐसी कि आप जैसे तपस्वी हो, आप जैसे महानुभाव हो, आप बहुत महान तपस्वी हो, आप मेरी मदद कर सकते हो। और फिर विश्वामित्र जी जो है वो खुश हो गए, क्योंकि उनकी सराहना की, उनके कीर्ति का गायन किया, तो वो खुश हो गए और वो मदद करने के लिए तैयार हो गए।
0: बहुत अच्छा। और ये कहानी जो है, उस कहानी को सुनने में हमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये कहानी हमें कुछ और संदेश देती है जो हमारे जीवन के लिए, आज के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, समय है वाणी को विराम देने का। फिर से आपके साथ मिलते रहेंगे। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, लक्ष्य की चर्चा हो रही है। लक्ष्य कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, और जहां लक्ष्य है वहीं सफलता है,

0: बिना लक्ष्य के संसार के किसी भी क्षेत्र में उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं किया जा सकता जिन ऊंचाइयों पर आज इंसान मौजूद है। यदि हम भी नए नए स्थानों पर पहुंचना चाहते हैं, उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, और खास करके युवा वर्ग, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो लक्ष्य पर बहुत गहराई से विचार करें, अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि लक्ष्य क्यों नहीं बनाता युवा, कई कारण इसके हो सकते हैं, और भ्राता जी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे थे। हम चाहेंगे कि वहीं से हम पुनः शुरुआत करें, लेकिन आइए हम सब इससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। भ्राता जी, पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे युवा स्वप्न तो देखते हैं लेकिन उन्हें लक्ष्य में परिणत नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है कि युवा लक्ष्य नहीं बनाते? आप एक अच्छी बात कर रहे थे जहां मैं आपको ले आता कि बहुत सारे युवा जो हैं नेगेटिव कमेंट्स सुन करके कि शायद तुम नहीं कर पाओगे, बहुत सारे लोग हैं जो इस मार्ग में हैं तो तुम इस चीज को छोड़ दो, तो ये जो नेगेटिव बात अपने अंदर वो ले लेता है, उस कारण वो नहीं बना पाता। तो एक बात ही आपने कही थी, इसके अलावा
1: देखिए यही जैसा मैं कह रहा था कि हम एक बच्चा बहुत होशियार है
0: जी,
1: वो IAS कर सकता है, IPS बन सकता है, लेकिन उसके साथियों ने उसे मिसगाइड कर दिया है, उसकी उमंग उत्साह को नष्ट कर दिया है, उसे मजाक करने लगे हैं, चला है SP बनने, हाँ तुम बनेगा कलेक्टर, और उसके मन में ऐसी धारणा बन गई है कि लाखों कैंडिडेट्स बैठेंगे एग्जाम में, अब उसमें से 250 का सिलेक्शन होगा, भला मेरा कहाँ नंबर आएगा, मैं तो गरीब हूँ, मेरी कोई अप्रोच भी नहीं, कोई MBA भी मुझे नहीं जानता है। लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ ये भर दें कि मुझे IAS बनना है या मुझे IPS बनना है या मुझे ये बनना है, और लक्ष्य रख लें IAS के लिए ही कि भले लाखों स्टूडेंट्स कंपटीशन दे रहे हैं लेकिन उसमें 100 के अंदर मेरा भी नाम होगा, ऐसी पहले से ही दृढ़ता।
0: तो बेहतर जी, एक बात आपने बहुत सुंदर कही कि हम दूसरों की नेगेटिव बातों को ध्यान ना दें और साथ ही उन बातों पे आ करके अपने लक्ष्य को ना छोड़ दें। और क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण वो लक्ष्य नहीं बना?
1: देखिए, पहले से ही जैसा मैंने कहा, युवक 10वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं जी, वो इतने मैच्योर नहीं है, उनके विचार इतने मैच्योर नहीं होते कि वो अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोच सके। ये भी एक कारण होता है कि वो कुछ दृढ़ लक्ष्य अपना बना नहीं पाते, फिर आगे चल के कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी कॉमर्स लेते हैं तो फिर आर्ट्स ले लेते हैं, फिर उन्हें दिखता है कि दूसरे लोगों ने साइंस लेके बहुत अच्छा कर लिया, फिर साइंस की ओर बढ़ते हैं, तो कहीं भी वो टिकते नहीं, इसलिए कहीं भी सफल पूरी तरह नहीं हो पाते। तो ये कहीं ना कहीं मैं तो ऐसा समझता हूं कि हमारी एजुकेशन में 10th क्लास में ये बात ऊपर की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, टीचर्स की ओर से, ये भी एक पीरियड हो जाना चाहिए कभी कभी, लक्ष्य क्या होता है, क्या क्या संसार में स्कोप्स हैं, क्या क्या मनुष्य बन सकता है। बहुत गांव से आने वाले

0: व्यवस्था है
1: जी
0: ये तो प्रशंसनीय है। और इससे क्या है, बच्चों को छोटी आयु में ही एक मैच्योर थॉट्स प्रारंभ हो जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: उन्हें पता होगा कि ये फील्ड है तुम्हारे लिए और तुम इसके कैपेबल हो और तुम तेजी से चलोगे तो इस पर आगे बढ़ोगे।
1: और वो कैरियर काउंसलर या उनके टीचर्स या पेरेंट्स भी इसमें उनकी मदद करें,
0: मदद
1: उनकी
0: करें।
1: योग्यताओं को, क्षमताओं को
0: हाँ
1: देखते हुए, पारिवारिक बैकग्राउंड को देखते हुए कि ये कहाँ तक पहुंच सकता है।
0: हाँ
1: और ये
0: इसमें काउंसलिंग करने वालों को, उनके पेरेंट्स को भी साथ ले लेना चाहिए
1: जी
0: और शिक्षकों को भी, और तब जो वो निर्णय करेंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन
1: जी
0: दूसरी बातें भी हम देख सकते हैं। मान लो उनके घर में एक अच्छा बिजनेस चल रहा है
1: जी
0: और उसमें बहुत अच्छी कमाई हो रही है और शुरू से ही वो सुनते आते रहे नौकरियों में क्या मिलना है, 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा, दूसरों की दासता में भी रहना पड़ेगा,
1: जी
0: टेंशन भी बहुत है, अपना बिजनेस ही अच्छा है ना, तो उनकी न पढ़ाई में बहुत रुचि होती है न वो किसी और लक्ष्य के बारे में सोचते, उन्हें तो है हमारा जो बिजनेस है वही चलता रहेगा, उसी
1: जी
0: में हम इन्वॉल्व होंगे। तो एक दृढ़ इच्छा की कमी, एक क्लियर जो रास्ता है उसकी अवेयरनेस की कमी भी लक्ष्य बनाने के मार्ग में बाधक हो जाती है।
1: जी, मतलब एक इच्छा शक्ति भी अवश्य होनी चाहिए कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है,
0: करना है।
1: कुछ बनना है।
0: हाँ
1: जैसे युवाओं के लिए कहा ही जाता है कि उनके अंदर तो एक जोश होता है,
0: हाँ
1: एक ऊर्जा होती है, वो कुछ कर गुजरना चाहता
0: हाँ
1: है।
0: कहीं भी जीवन में, चाहे इस सब्जेक्ट के लिए चाहे फ्यूचर वो बड़े हों, कहीं भी
1: जी
0: असफलता का भय उनके कहीं भी सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ नहीं होना चाहिए।
1: जी
0: 10 लोग असफल हुए हैं, 20 लोग असफल हुए हैं, तो क्या हम भी असफल हो जाएंगे क्या? ऐसा तो कहीं होता ही नहीं कि किसी मार्ग पर कोई भी सफल ना होता। कठिन से कठिन मार्ग एवरेस्ट पे चढ़ना था
1: जी
0: तो भी लोग सफल हुए थे, और
1: बिल्कुल
0: अब तो बहुत सफल हो, लंगड़े भी चढ़ गए हैं। मृत्यु का कितना भय रहता है, लोगों ने निर्भयता अपने में लाई।
1: जी
0: तो असफलता का भय भी लक्ष्य निर्धारण करने में बहुत बाधक होता है,
1: जी
0: इसको भी हमें अपने अंदर बिल्कुल नहीं आने देना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: प्रताप जी, कई बार ये बात भी आ जाती है कईयों का, मुझे लगता है प्रताप जी कि लक्ष्य कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, या लक्ष्य कैसे बनाया जाए, मे बी ये भी एक फैक्टर हो सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर फैक्टर है ये, बहुत
1: जी
0: आवश्यक फैक्टर है। देखिए, लक्ष्य के बिना जब विद्यार्थी चल रहे हैं
1: जी
0: तो उनकी एनर्जी उस ओर लग ही नहीं रही है, वो दिशाविहीन हो गए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं इसका उन्हें पता नहीं। और
1: जी
0: जब मनुष्य लक्ष्य बनाता है तो उसकी संपूर्ण शक्तियां उधर लग जाती है। मान लो एक छोटी सी बात है,
1: जी
0: कोई एग्जाम हो रहा है, हाई स्कूल का एग्जाम हो रहा है, और एक बच्चे को लक्ष्य है मुझे 90% लाने हैं, दूसरे को लक्ष्य है मुझे 95% लाने। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं, जितने भी आने होंगे ठीक होंगे, यार क्या हमें तो पास होने से मतलब। तो क्या है, जिनका एक बहुत हाईएस्ट लक्ष्य है, उनकी संपूर्ण एनर्जी, एनर्जी का अर्थ है उनका समय,
1: जी
0: उनका श्वास, उनके संकल्प, ये सब उस लक्ष्य को पाने में एकाग्र हो जाते हैं। इससे वो दिशा विहीन नहीं होता।
1: जी
0: और ये सत्य है कि जब संपूर्ण मनुष्य की शक्तियां, ये शक्तियां हैं, समय बहुत बड़ी शक्ति है,
1: जी
0: मनुष्य के अपने विचार संकल्प उसकी बहुत बड़ी शक्ति है, मनुष्य की अपनी बुद्धि बहुत बड़ी शक्ति है,
1: जी
0: ये उमंग उत्साह ये भी बहुत बड़ी शक्ति है, उसके उसके अंदर के प्योर विचार, शुद्ध विचार उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये
1: जी
0: समस्त शक्तियां उस व्यक्ति को उस लक्ष्य तक पहुंचाने में लग जाएंगी। और
1: बिल्कुल
0: अगर लक्ष्य नहीं है तो ये शक्तियां बिखर जाएंगी, वो समय नष्ट करेगा, वो खेले कूदेगा, पिक्चर देखेगा, उसके विचार कैसे भी दूषित होते रहेंगे, उसकी बौद्धिक विकास कि जो बात है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ना
1: बिल्कुल
0: माँ बाप उस पर अटेंशन देंगे, ना वो अपनी पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर अटेंशन देंगे। तो लक्ष्य विहीन जीवन तो सचमुच ऐसा जीवन है कि कोई व्यक्ति ने ट्रेन पकड़ ली, उसे पता नहीं उसे मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, उसे
1: जी
0: कहाँ उतरना है, अब कहीं भी
1: बिल्कुल
0: जाके गाड़ी खड़ी हो गई, अब वो उतर गया,
1: जी
0: आगे कहाँ जाना है,
1: बिल्कुल
0: तो इसका कोई महत्व तो नहीं रहेगा, वो व्यक्ति सुखी भी नहीं होगा।
1: जी
0: मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है लक्ष्य को निर्धारित करना।
1: तो लक्ष्य से हमारी पूरी ऊर्जा एकाग्र हो जाती है, हम कहीं भी इधर उधर भटकते नहीं हैं, वरन हम अपने जो भी लक्ष्य हमने बनाया है उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि हमें लक्ष्य बनाना ही चाहिए।
0: मैं इसमें और भी जोड़ दूं, जैसे हम ये शक्तियों को एकाग्र करने की

0: बात कर रहे हैं
1: जी
0: ये एक ऐसी टेंडेंसी है कि अगर हमारे अंदर
1: जी
0: समय जो शक्ति है मैंने कहा इस शक्ति को नष्ट करने की आदत पड़ गई तो भविष्य में हम सदा ही नष्ट किया करेंगे और एक छोटा मोटा लक्ष्य भी हम पा नहीं पाएंगे, बड़े लक्ष्य की तो बात छोड़ो। ऐसे ही संकल्प की एनर्जी को हमने कहीं फोकस नहीं किया, लोग इस बारे में बहुत कम जानते, विद्यार्थी तो बिल्कुल नहीं जानते कि मनुष्य के मन की संकल्पों की एनर्जी इज द बिगेस्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड, और इसको अगर वेस्ट करने की आदत हो गई, लक्ष्य नहीं है तो वेस्ट होगा, तो जीवन में सदा ही हम इसके बारे में अवेयर होंगे नहीं, इसको वेस्ट करते रहेंगे और ये हमारे जीवन में कहीं भी सफलता पाने के लिए बहुत बड़ी बाधक चीज हो जाएगी। इसलिए ये आवश्यक है पहले से ही हम अपनी इन सभी एनर्जीज को एकाग्र करने की अपने अंदर आदत डालने।
1: बिल्कुल, तो वेस्ट करने की आदत हमारी ना हो। तो माता जी बहुत सुंदर बातों पे आपने प्रकाश डाला है कि क्यों कोई भी युवा अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बनाता है, चाहे वो डरता है असफलता का डर हो, चाहे उसे लक्ष्य की महत्ता का पता ना हो या लक्ष्य बनाने में कोई मददगार सामने ना आ रहा हो तो वो खुद कंफ्यूज रहता है। माता जी चलिए ये बातें हो गई कि वो क्यों नहीं बना पाता, लेकिन यदि वो अब बनाना चाहता है, मान लीजिए कि मैं अपने जीवन का लक्ष्य बनाऊं, तो लक्ष्य बनाते समय वो किन बातों का ध्यान रखे?
0: इसमें देखिए उसकी अपनी रुचि क्या है
1: जी,
0: वो किस चीज की ओर सफलता पूर्वक आगे बढ़ सकता है। एक शब्द हम ले सकते हैं स्मार्ट इसमें
1: जी,
0: और इसके जो 5 लेटर्स हैं उसकी व्याख्या करके हम ये समझ सकते हैं कि बच्चों को अपना लक्ष्य इस तरह निर्धारित करना चाहिए
1: जी।
0: एस से स्पेसिफिक, एक विशेष लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य का, एक छोटा मोटा नहीं, जैसे जिस मार्ग पे सब चल रहे उसी मार्ग पे चल पड़े, भले ही उस पे कहीं चलना पड़े, फिर भी एक स्पेसिफिक चीज, एक विशेष चीज, सबसे हट कर एक चीज मनुष्य को अपने मन में रखनी चाहिए, मिजरेबल, जिसको हम नाप सके, सेकेंड लेटर है एम, जिसको हम नाप सके, तीसरा लेटर है ए, अटेनेबल, जिसको प्राप्त किया जा सके
1: जी।
0: कभी कभी लोग ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं, बच्चे भी ऐसा लक्ष्य बना सकते हैं जो उनकी पहुंच से बहुत दूर है, अब उसमें मेहनत करना और न पहुंचना ये होगा अपनी शक्तियों को नष्ट करना और निराशा करना। तो जो अटेनेबल हो, प्राप्त करने योग्य हो, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और अगला शब्द है इसमें रियलिस्टिक, ये वही स्वप्न वाली बात नहीं
1: जी,
0: रियल, जो बिल्कुल रियल हो, जो ग्राउंड लेवल पे हो, जो हमें सामने दिखता हो, और आखिरी शब्द है टी, टाइम बाउंड, एक समय भी, ये नहीं कि वो 25 साल में मिल जाएगा हमें, ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एक समय भी हमारे सामने होना चाहिए, इसी समय के अंदर हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने, तभी हमारी अपनी सारी शक्तियों को हम एकाग्र करेंगे। अगर टाइम बाउंड नहीं है हमारा लक्ष्य तो हम अपनी शक्तियों को एकाग्र भी नहीं करेंगे और वो चीज लंबी खींचती जाएगी।
1: इनके अलावा ब्राता जी कुछ और चीजें हो सकती हैं जिनका वो ध्यान रखे?
0: मैं एक चीज सबकॉन्शियस माइंड की सभी स्टूडेंट्स को और जो भी लक्ष्य बनाते हैं वो बता देना चाहता हूँ, ये जानकारी बहुत आवश्यक है, इन चीजों की जानकारी हमारे स्कूल कॉलेजों में या और भी जो फील्ड है उनमें दी नहीं जाती, और अगर दी भी जाती है तो थोड़ा लैंग्वेज ऐसी होती है कि बच्चे उन चीजों को कितना ग्रहण करते हैं, उनके अंदर चला जाए, तो वो ये है कि मान लो उन्हें एक डॉक्टर बनना है, तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको ऐसा भर दें कि जैसे वो डॉक्टर बन गए हैं, अपने को डॉक्टर की सीट पे बैठा देखें
1: जी,
0: वो जो उसको गले में पड़ा है वो
1: जी,
0: देखें
1: जी,
0: लोगों को चेक कर रहे हैं, इसमें ध्यान ये रखना उसका ईगो ना आ जाए। वो बहुत हंसी की बात हमें सुनाते थे बच्चे कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं ना तो पहले साल में तो ऐसा समझते हैं हम चीफ इंजीनियर बन गए हैं
1: जी,
0: और दूसरे साल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और तीसरे साल में जब फाइनल होता है तो जूनियर इंजीनियर रह जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ईगो ना आ जाए, एंजॉय करें, तो जिस चीज को हम एंजॉय करेंगे और सबकॉन्शियस माइंड जिसे एक्सेप्ट कर लेगा, उधर उतर जाना बिल्कुल सहज हो जाएगा।
1: मैं इसमें थोड़ा सा और स्पष्टीकरण चाहूंगा, जैसे जीना शुरू कर दें या उसे देखना शुरू कर दें, तो आपने कहा कि एक तो ईगो ना आ जाए, दूसरी बात एक व्रता जी ज्यादातर इसमें आती है जो मैंने अब तक समझा है कि कई बार उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता जो यूथ है कि भाई मैंने वो देख तो लिया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, तो इससे भी डिफरेंस तो पैदा होगा।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाएगा क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तभी उन चीजों पे काम करता है जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो हम विजन बना रहे हों, चाहे वो हमने पावरफुल थॉट रख लिया हो, हमें उसे एक्सेप्ट तो करना ही होगा। एक्सेप्टेंस तब नहीं होती जब हम कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पे लक्ष्य बना लेते हैं कि चलो उसने बनाया हम भी बना के देख लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना ही प्रथम कदम है सफलता का।
1: बिल्कुल व्रता जी, एक्सेप्ट तो वो कर लें, कई बार ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है कि मान लीजिए मेरी वो क्षमता नहीं है, मेरी वो योग्यता नहीं है, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड वैसा नहीं है, और कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे अंदर आत्मविश्वास को थोड़ा सा हिला देती हैं जब मैं ये बनाता हूं, तो ऐसे में क्या करें?
0: तब एक्सेप्टेंस थोड़ा कठिन अवश्य हो जाता है। मान लो पैसा ही नहीं है और या हमारी योग्यता वैसी नहीं है, मान लो मेडिकल में जाने के लिए हमें 85% मार्क्स की जरूरत है लेकिन हमारे तो 60 आते हैं और फिर भी हम चाह रहे हैं एक डॉक्टर बनना, तो कहीं ना कहीं ये निराशा थोड़ी सी आएगी अवश्य, और सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल पावरफुली वो थॉट देने में भी मनुष्य के अंदर कमी रह जाएगी। लेकिन अगर हम और चीजों को छोड़कर केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर इस कार्य को करना प्रारंभ करें, सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करा दें कि मेरे 85% आएंगे भी और मुझे डॉक्टर बनना भी है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि परिवार वालों का भी सहयोग मिल जाएगा, धन की भी व्यवस्था हो जाएगी और हमारे मार्क्स भी बढ़ जाएंगे।
1: बहुत सुंदर व्रता जी, चूंकि युवाओं की हम चर्चा कर रहे हैं और जब मैं आपका बायोडाटा देख रहा था तो मैंने ये देखा कि आप भी अपने युवा काल में ही एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के साथ जुड़ गए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ। तो युवा काल में जब आप जुड़े, आपने भी इसे एक लक्ष्य के रूप में लिया होगा कि जैसे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, मुझे स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ना है। अब आपने एक लंबी यात्रा तय की है इसमें, तो आपको जब आपने लक्ष्य बनाया तो किस प्रकार से बनाया, और ये जो लंबी यात्रा आपने तय की तो आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई होंगी, आपने कैसे जीता?
0: हाँ देखिए, स्पिरिचुअलिटी तो ऐसी चीज है जो बहुत सूक्ष्म है और बहुतों से होती नहीं है
1: जी।
0: और मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और तब कुछ कुछ ड्रीम्स देखा करते थे, ये बनेंगे ये बनेंगे, लेकिन फाइनली जब स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हुआ तो समझ में आ गया कि स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट, तो इसी में हमें एक टॉप मोस्ट स्थिति पर पहुंचना है। तो मेरे अपने जीवन में बचपन से ही, चाहे पढ़ते हुए भी, ये संकल्प रहता था कि जो जो सब्जेक्ट हैं उन सब में मोर देन डिस्टिंक्शन मार्क्स होने चाहिए, सब में होने चाहिए। ये नहीं मैथमेटिक्स में आ गए या फिजिक्स में आ गए, हिंदी में नहीं आए, इंग्लिश में नहीं आए, सब में हमें बहुत होशियार होना चाहिए। एक बात, तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आया, ये 1964 और तब मैं पढ़ता ही था, तो मुझे स्पिरिचुअलिटी बहुत अट्रैक्ट करने लगी। उसमें राजयोग का मार्ग था और राजयोग में मेरी एकाग्रता बहुत अच्छी हो गई क्योंकि पढ़ाई में भी एकाग्रता बहुत सुंदर थी, उसकी मदद मिली। 68 में जब मैं यहाँ आ गया माउंट आबू में और मैंने अपने लाइफ को डेडिकेट कर दिया, तो मेरा लक्ष्य था हाईएस्ट राजयोग की ऊंची स्थिति पर पहुंचना। राजयोग एक बहुत डीप विद्या है जिसमें परमात्म स्वरूप पर हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं और हम परफेक्शन की ओर चलते हैं। तो मैंने एक टारगेट ले लिया कि स्पिरिचुअलिटी का जो हाईएस्ट लेवल है, पीक जिसको कहते हैं, सर्वोच्च शिखर, वहां तक मुझे पहुंचना है। तो राजयोग का मार्ग सूक्ष्म है और उसमें बाधाएं अनेक आती हैं, लेकिन मैंने देखा जब लक्ष्य दृढ़ है तो बाधाएं ढीली पड़ जाती हैं। ये बहुत अच्छा जीवन का अनुभव है।
1: युवाओं में तो बहुत सारे आकर्षण होते हैं, संसार में इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, आकर्षण है, तो निश्चित रूप से वो सब चीजें भी तो आकर्षित करती
0: हैं। वो सब चीजें भी हमारे सामने थी, लेकिन वही बात, जब लक्ष्य ये था तो बाकी ये सब चीजें आप ही छूटने लगी, उनमें नीरसता आने लगी, उनका आकर्षण ढीला होने लगा। यही मैं युवकों को भी कह रहा हूँ कि जब लक्ष्य एक तरफ हो जाता है हमारा, तो दूसरी तरफ की जो सभी आकर्षण है वो स्वतः ही फीके पड़ जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। यही हमारे साथ भी हुआ और बाधाएं सहज पार होती गई।
1: जी जी जी जी, तो लक्ष्य को, इस लक्ष्य को बनाने के साथ साथ आपने इस जीवन का भरपूर फिर आनंद भी लिया।
0: राजयोग की विद्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है लाइफ का, इसमें मन बहुत श्रेष्ठ और आनंदित स्थिति में रहता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे अंदर छुपे हुए जो टैलेंट्स हैं वो जागृत हो जाते हैं, तो बहुत सारे टैलेंट्स जागृत होने लगे। और हंसी की बात सुनाओ, पहला मेरा टैलेंट जागृत हुआ था कवित्व का।
1: जी।
0: मैं कविताएं लिखने लगा, गीत लिखने लगा। तब हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गीत आदि लिखने वाले कोई नहीं थे, तो बहुत फायदा हुआ। तो इस तरह लाइफ की जो पूरी यात्रा थी ये एंजॉयमेंट से भरपूर हो गई।
1: बहुत सुंदर दत्ता जी, ये तो आपका बहुत प्यारा अनुभव रहा। और आज जो भी लक्ष्य के विषय में हम लोगों ने चर्चा की है, मुझे लगता है आपने जो प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से लक्ष्य के मार्ग में बाधाएं आती हैं, लक्ष्य बना नहीं पाते हैं युवा, या फिर किस प्रकार से बनाए, ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपका अनुभव जो आपने अंत में शेयर किया, वो भी उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, बनाने में मदद करेगा कि एक लक्ष्य बना के निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ें। तथा जी, आज आपने जो भी हम सब युवाओं के सम्मुख अपनी बातें रखी हैं, मैं भी एक युवा हूं तो आपकी बातों से मैं भी बहुत ज्यादा प्रेरित हो रहा हूं, हमारे सभी युवा साथी प्रेरित हो रहे होंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथियों, आपने देखा कि अनेक कारण हो सकते हैं जिनके कारण से हम लक्ष्य नहीं बनाते, चाहे वह असफलता का भय हो सकता है, चाहे फिर लक्ष्य का संपूर्ण रूप से ज्ञान का अभाव हो सकता है। लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, लक्ष्य सचमुच जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य के साथ ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो यदि अब तक आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य न बनाया हो, तो आज ही एकांत में बैठें और विचार करें कि मुझे ईश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया है, तो मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं और क्या नहीं करना चाहता। जब मैं इस संसार से जाऊं तो मुझे भी लोग आदर के साथ, सम्मान के साथ याद करें। लेकिन ये तब होगा मित्रों जब हमारे साथ एक सुंदर लक्ष्य होगा। तो आज ही अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। इस सुंदर विषय को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन घड़ी की सुइयां आज इतना इजाजत दे रही है, मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ सॉन्ग, जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदायी हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है। सभी बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है,

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार। अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना है कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसके क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने मन की कमजोरियों को देखना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है, यही साहस आपको मजबूत बनाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भक्ति काल की अद्भुत कवित्री थी मीरा, कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा, जिसका दर्द कोई न जान सका। अपार सौंदर्य की स्वामिनी कवित्री मीरा, जो अपने भजन अपने ही कोकिल कंठ से गाकर अपने सांवरिया को रिझाती रही। लोक लाज खोकर और कुल मर्यादा को भुलाकर भक्तों के साथ झूम झूम कर नाचती रही। पग घुंघरू बांध और ताली बजा बजा कर वे अपने जोगी को बुलाती रहीं।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

सचमुच मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी। मीरा ने स्वयं को कृष्ण की दासी के रूप में साकार कर लिया। प्रभु चरणों के निकट वे भाव विभोर होकर नाचती थी। माया मोह नाते रिश्तों से दूर वे कृष्णमय हो गई थी। उनके तो सिर्फ गिरधर गोपाल थे, दूसरा कोई नहीं था। अपार सौंदर्य की धनी और सुख वैभव में रही मीरा ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। न जाने कितने कष्ट और अत्याचार सहकर भी वे गोविंद के गुण गाती रहीं।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: लोक कहे मीरा भई बावरी, भ्रम दूनी ने खाग्यो, कोई कहे रंग लाग्यो। लोग कहते थे कि मीरा पागल हो गई थी, यही भ्रम दुनिया को खा गया। कोई कहता है ये तो प्रेम लग गया है, अर्थात मीरा का भक्ति भाव कृष्ण में आत्मसात हो गया। आकाश हो या धरती, फूल हो या पत्ते, या फिर हो बादल, हर जगह हर शय में मीरा को सिर्फ कृष्ण ही नजर आते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायिका थी वीनस तरकसवार। संगीतकार थे उमेश वीनस। आलेख और उद्घोषणा सुधानुपम। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम वतन का राग, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल 462002। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं swaraj@gmail.com पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swarajsansthan.org।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियाँ अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला। देशबंधु की सुर्खी है, गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

आशियाना में आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे और घरेलू नुस्खे भला कैसे भूल सकते हैं जरूर देंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नए नए व्यंजन जरूर सिखाएंगे। पेन और डायरी लेकर के तैयार रहिएगा, सामान्य जानकारी भी देंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे, और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे। और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, और आज का विचार इस प्रकार है, अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपभोग करिए। अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपभोग करिए। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार है, जैसे मिलावट करने से सोना खोटा हो जाता है, उसी प्रकार बेईमानी भ्रष्ट आचरण की मिलावट से व्यक्ति भी खोटा हो जाता है। खरा वही है जो अंतरात्मा की आवाज पर ईमानदारी की कमाई से संतुष्ट है। किसी का छीन कर झपट कर नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपयोग करिए। किसी के धन को लालची दृष्टि से मत निहारिए। किसी को महल में रहने की इच्छा हो, ये बुरी बात नहीं है, परंतु वह आज से ही महल खड़ा करने का कार्य आरंभ कर दे। दूसरे के बने बनाए महल को लोभ की दृष्टि से न देखे, यही त्याग का भाग्य जमा होता है। और अपनी संपत्ति का भी अगर हम त्याग करके उपभोग करते हैं तो वो संपत्ति भी जैसे एक रुपया है, फिर भी उससे हमारा गुजारा चल सकता है, चल जाता है, और सदैव हम संतुष्ट रहते हैं। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा, और जितनी हमारी आमदनी है उससे हमेशा संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। और एक गीत अब आपको सुनाएंगे, फिर आगे चलेंगे आशियाना के कार्यक्रम का और भी आगे बढ़ाएंगे एक गीत के बाद। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में रोगों का प्रभाव पड़ता ही रहता है। हम छोटी मोटी बीमारियों का इलाज स्वयं कर सकते हैं, पर थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे देने जा रही हूँ। दम्मे के रोगियों के लिए आप क्या करेंगे, तुलसी की 10 पत्तियों के साथ वासा बोले तो अड़ूसा के भी आप 10 पत्ते ले लीजिए और 10 पत्ते ही तुलसी के। फिर आप 250 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए और इसका काढ़ा तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर ये काढ़ा 21 दिन तक सुबह सुबह खाली पेट पीना है। इससे दम्मा में काफी राहत मिलेगी, ठीक हो जाएगा दम्मा। पुनः दोहरा रही हूँ, इस नुस्खे को ध्यान से सुनिएगा। दम्मे के रोगियों के लिए है तुलसी की 10 पत्तियां और वासा अड़ूसा के भी 10 पत्ते। इन दोनों को 250 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए। उबाल करके इसका काढ़ा बना दीजिए। फिर इस काढ़े को छान करके सुबह सुबह खाली पेट पीना है 21 दिन लगातार। इससे दमा ठीक हो जाएगा। अब अगला नुस्खा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। मौसम के अनुसार खांसी होती है ना, उसके लिए तो मौसम के अनुसार खांसी होती है, उसके लिए आप लीजिए सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम की डली, ठीक है। इसको आप चिमटे से पकड़िए और चिमटे से पकड़ करके आप गैस पर या तवे पर गरम कर लीजिए। जैसे हम पापड़ी सेकते ना चिमटे से पकड़ के, पापड़ी, इसी तरह आप सेंधा नमक की डली को सेकिए और जब ये डली लाल हो जाए ना, तो गरम गरम डली को तुरंत आप आधा कप पानी में डुबो दीजिए। डुबा करके फिर से तुरंत निकाल दीजिए, ठीक है। ये नमकीन गरम पानी को एक ही बार में पी जाइए, एक ही घुट में। ऐसा नमकीन पानी सोते समय लगातार 2-3 दिन पीने से खांसी, विशेष करके जो बलगम वाली होती है ना, उसमें काफी आराम मिलेगा। फिर आप नमक की डली को सुखा करके रख लीजिए और फिर अगले प्रयोग में आप इस तरह यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल है ना नुस्खा। पुनः दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मौसम के अनुसार खांसी होती हो तो आप सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम की डली को चिमटे में पकड़ करके आग पर आप सेकिए या फिर तवे पर भी आप सेक सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए डली एकदम लाल हो जानी चाहिए। फिर इतनी गर्म डली को आधा कप पानी में तुरंत डालिए और डालते ही निकाल दीजिए। और इस गर्म पानी को, नमक वाले पानी को, आप एक ही घूट में पी जाइए। इससे ये पानी आपको 2-3 दिन रात को सोते समय पीना है। इससे विशेष करके जो बलगम वाली खांसी होगी उसमें तो राहत मिलेगी ही, साथ ही साथ मौसम के अनुसार होने वाली खांसी पर भी कंट्रोल हो जाएगा और खांसी की तकलीफ ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर इस नमक को आपको सूखा देना है, अगले प्रयोग में फिर से इस नमक को आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनिएगा। गला बैठ जाता है कितनी ही बार, है ना, तो गला बैठ जाता है तो इस कंडीशन में आप मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाइए। इससे बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या फिर आप सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रख करके देर तक चबाते रहे और वैसे ही मुंह में रख करके सो जाइए, ठीक है। सुबह ही सुबह आप देखेंगे कि गला साफ हो जाएगा, गले का दर्द, अगर सूजन भी होगा तो उसमें भी आराम मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ध्यान से सुनिएगा। पुनः दोहरा रही हूँ, बार बार गला बैठ जाता है तो आप मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाइए। इससे बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या फिर आप सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रख करके कुछ देर हल्के हल्के चबाते रहिए, फिर वैसे ही चबाते चबाते सो जाइए, ठीक है। सुबह सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, गला तो साफ हो गया, गले का दर्द भी ठीक हो गया, जो सूजन थी वो भी ठीक हो गई। तो इस तरह ये नुस्खे बहुत ही लाजवाब है और आप आजमा सकते हैं और महंगे भी नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना, और साइड इफेक्ट भी नहीं होते इसके। तो चलिए, ये तो हुए घरेलू नुस्खे। अब फिर से सुना देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: ख्वाहिशों से नहीं घिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं घिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए खुशनुमा जीवन की बातें करते हैं।

0: सविता जी हमारे साथ बने हुए हैं। सविता जी आपका अपने घर में स्वागत है।
1: उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, रेडियो मधुबन का भी थैंक्स, और बहुत अच्छी बातें आप कह रही थी, कविता बहुत सुंदर लगी मुझे, जरा एक बार फिर से दोहराइए।
0: थी कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा
1: जी,
0: कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को
1: जी,
0: अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा।
1: देखिए बात अभी आपने जो की कि अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ेगा, तो इस पर एक कहावत मुझे भी याद आ गई
0: जी, बिल्कुल।
1: पुराने जमाने में कहते थे खुद ही मरने से स्वर्ग प्राप्त होगा, किसी और के मरने से हमको स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा, यदि हमें स्वर्ग प्राप्त करना है तो खुद ही मरना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, अगर अपने रास्ते में हमें उजाले करने हैं, अपने लक्ष्य तक हमको पहुंचना है, तो ये जान लीजिए कि हमको खुद ही मेहनत करनी होगी।
0: तो मरने के नाम से मरने के नाम से दो लाइनें फिर से मुझे याद आ रही है सविता जी,
1: फरमाइए।
0: देखिए नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती,
1: वाह,
0: नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता।
1: वाह वाह, देखिए जिसे तैरना आता है वो सागर को पार कर लेगा
0: जी, और ठीक उसी तरह परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती
1: जी,
0: परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है सविता जी जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता।
1: हाँ, उसका रास्ता ही नहीं मालूम होता है कि हम कैसे निपटें, तब हमें लगता है कि रुई भी जैसे लगता है राय भी पहाड़ बन गई है
0: जी, बिल्कुल।
1: और कुछ लोग ऐसे होते हैं आप देखिए बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में पहाड़ को
0: राय बना देते हैं।
1: हाँ, तो ये सब जो बातें हैं कहने का तात्पर्य इन तीनों चारों जो अभी हम लोगों ने बातें की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबसे यही निकलता है कि बिना मेहनत के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सविता जी,
1: कई बार लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे भाग्य खराब है, या कर्म को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं, लेकिन अपने कर्मों की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसे कहा गया कर्म प्रधान है और कर्म ही पूजा है। पूजा हम कर रहे हैं, कई बार देखिए होता है हमारे जीवन में हम बोलते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, ये किया, या पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, तो उससे हमें भगवान दे देगा लेकिन कहा गया कि कर्म करना, जो हम कर्म करेंगे वही वास्तविक पूजा होती है और उसी से ही हमको फल की प्राप्ति होती है। जीवन में कितने भी अंधेरे क्यों ना आ जाए, दीपक सच में हमें ही जलाना पड़ेगा। जैसे घर में अगर लाइट नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, हर कमरे को रोशन करने के लिए मोमबत्ती खुद ही जलाएंगे
0: जी।
1: अब कमरे तो अपने आप रोशनी करेंगे नहीं, उसे हमें ही करना पड़ता है। तो उषा जी बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये बात कि हाँ मेहनत हमें करना पड़ेगा और जीवन के अंधेरों से घबराना नहीं है बल्कि उससे लड़ना पड़ेगा।
0: लेकिन सविता जी आजकल हम देखते हैं कि लोग बाग मेहनत से कतराते हैं और देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि राम नाम जपना पराया माल अपना,
1: जी
0: ये वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं।
1: हाँ, क्योंकि उनके मन में ये है ना कि रोशनी तो हमें पूरी चाहिए
0: जी,
1: पर दीपक जलाना भी ना पड़े और दीपक बन के जलना भी ना पड़े। देखिए दीपक में कितना परिश्रम करता है, दीपक खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है।
0: बिल्कुल
1: ना, तो दूसरों की खुशी के लिए हमें अपनी खुशी की कई बार कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, तब जाकर हम दूसरों के लिए भी दीपक बन पाते
0: जी।
1: और हमारी जो सोच है, समझ है, या हमारे जो कर्म है वो संसार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। और जब हम स्वयं ही कहते हैं कि कई बार कहते घर का दीपक घर में ही आग लगा दे,
0: हमारे हम अक्सर देखते हैं अपने इन्हीं आंखों से कि ऐसा भी हो रहा है समाज में।
1: क्या है, हम सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ले और उसमें हमारा फायदा तो होता है, ये सत्य है, लेकिन जो हमारे चारों तरफ का माहौल होता है, हमारे आसपास के लोग होते हैं, चाहे फैमिली में हो या हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हो या पास पड़ोस में, उनको नुकसान पहुँचाते रहते हैं
0: जी।
1: मैंने देखा है कई बार कई लोगों को बहुत अच्छे होते हैं, समझदार होते, बुद्धिमान होते, उन्हें दुनिया की नॉलेज होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, सारी नॉलेज सिर्फ अपने तक ही रखते हैं, मतलब अपने लिए ही उसका उपयोग है और दूसरों को मिसगाइड करते रहते हैं, है ना। और कई बार देखिए घर में ही घर का नुकसान ही कर डालते हैं कई लोग, तो घर के दीपक से घर का ही नुकसान हो जाता है। और कई बार देखिए आप कि जो दीपक होते हैं घर में भी उजाला करते हैं और बाहर भी उजाला करते हैं
0: जी।
1: तो वैसा ही दीपक बनना है हमें।
0: बिल्कुल सविता जी, बाकी कहते हैं कि हम दूसरों को ठगते हैं लेकिन घर में ही हम ठगे जाते हैं
1: कई बार होता है। हाँ,
0: होता है, हमारे बच्चे ही हमें धोखा देते हैं फिर।
1: और दीपक भी उषा जी कई तरीके के बताए गए हैं दुनिया में, जैसे कुल दीपक कहा गया जो कुल के नाम को रोशन करे, कई होते हैं दीपक आशाओं के दीपक, जो हमारे मन में इच्छा है, संकल्प है, भाई हमारी ये इच्छा पूरी हो। दुनिया में न जाने कितने लोग कितने प्रकार की आशाओं के दीपक जगा के बैठे हुए हैं। तो यदि हमारी इच्छाओं के दीपक, आशाओं के दीपक अच्छे से जल रहे हैं तो हमें भी खुशी होती है और उससे दूसरों को भी प्रकाश मिलता है और कई बार हमारे द्वारा दूसरों की इच्छाएं पूरी होती है, आशाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार का दीपक जलाया जाता है ना। आशाओं के दीपक है, देखिए कुल दीपक है, उम्मीदों के दीपक है, ऐसे सब जलाते रहते हैं। और इसी दीपक की बात से याद आ रही उषा जी कि हमारे देश भारतवर्ष में बहुत बड़ा त्यौहार दिवाली मनाई जाती है
0: जी,
1: है ना। तो ये इसी का मतलब इसी का एक प्रतीक है
0: जी,
1: कि खुशियों के दीपक जलाना, उम्मीदों के दीपक जलाना, सफलता के दीपक जलाना। तो ये दीपक के रूप में जो कहा गया है कि हाँ भाई दीपक बहुत सुंदर, देखने में भी बहुत सुंदर प्रतीत होता है, तो उसकी जो रोशनी होती है वो बहुत आकर्षण मूर्त होती है, आकर्षित करती है दुनिया को।
0: बिल्कुल सविता जी, पर बात चल रही थी कर्म की, कि कर्म किए बिना, कहते हैं कि भोजन भी हमारे सामने आता है लेकिन हाथ से कोए को तो तोड़ना ही पड़ेगा,
1: तोड़ना ही पड़ेगा,
0: तभी मुंह में रखेंगे और मुंह में जाएगा। बाकी भोजन आ गया सीधा बना बनाया और हम मेहनत ना करें तो थाली भी चली जाएगी,
1: चली जाएगी। तो वही हाल है ना, दीपक तो जला लिया लेकिन उसमें तेल ही नहीं डाला हमने तो वो बुझ जाएगा, कर्म ही नहीं किया, एक बार तो जला लिया। और जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो जीवन में कर्म करना अति आवश्यक है और कर्म ऐसा होना चाहिए उषा जी जो कि महानता, महान बन जाए, पूजनीय बन जाए, गायन योग्य बन जाए। कर्म तो दुनिया में तमाम लोग करते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, कुछ विकर्म करते हैं, कुछ सुकर्म करते हैं, है ना
0: जी।
1: लेकिन जो कर्मों का महत्व है, बहुत श्रेष्ठ कर्म हमें करने चाहिए,
0: कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस तरह के कर्म करने हैं जिससे हम भी खुश रहे और हमारे जो आस पास है, हमारे जो संपर्क में आते हैं वो भी सदैव खुश रहे। तो कर्म हमेशा अच्छे ही करने हैं, अच्छे कर्मों के द्वारा स्वयं भी खुश रहेंगे, औरों को भी खुश रख सकेंगे। बाकी तो दुखों का तो कहते हैं कि विस्तार बहुत है, लेकिन कर्म सदैव श्रेष्ठ करने हैं और कर्म करना ही है, कर्म से भागना नहीं है। तो चलिए सविता जी और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुना देते हैं एक गीत, सुनते रहिए।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। गांव में रहोगे तो माता पिता के नाम से जाने जाओगे, और शहर में रहोगे तो मकान नंबर से पहचाने जाओगे। तो ये थोड़ी सी सविता जी मेरे को याद आ गई थी, ऐसे ही कॉमेडी शायरी तो मैंने सुना दी।
1: बहुत अच्छी बात कही,
0: क्योंकि अपने सविता जी अपने क्या टॉपिक का नाम ही है खुशनुमा जीवन। कोई भी बात कहो लेकिन खुशी वाली होनी चाहिए,
1: खुशी से
0: और उससे खुश, हाँ उससे खुश रहने चाहिए सुनने वाले भी और हम बोलने वाले भी।
1: और जो अभी आपने सुनाई ये बात हमारी पीछे वाली बात से मिलती जुलती है,
0: बिल्कुल मिलती जुलती है।
1: जैसे उन्होंने क्या कहा कि अगर हम गांव में रहेंगे तो माता पिता के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि माता पिता का नाम होता है वहाँ पे, उनकी जन्मभूमि होती है, उनके कर्म होते हैं, जिस वजह से हमारी भी पहचान बनती है।
0: जी बिल्कुल।
1: और शहर में हमारी पहचान तो होती नहीं, हम क्या हो जाते, मकान नंबर से जाने जाते। और दूसरा, जब हम कर्म ऐसे करेंगे तो शहर में भी हमारा नाम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ये है कि कर्म का महत्व गांव में भी बताया गया है, और शहर में आके व्यक्ति वो इतने अच्छे नहीं कर पाता, क्योंकि जीवन ऐसा बन जाता है भाग दौड़ का, एक मशीनी जीवन हो जाता है उषा जी, और पत्थर जैसा हो जाता है। कई बार आप देखो एक अपार्टमेंट में रहने वाले अगल बगल क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता, लेकिन गांव में ऐसा होता है उषा बन,
0: नहीं पूरे गांव का पता होगा कि फलानी जगह कौन रहते हैं, अरे वो रहते हैं, और यहाँ अपने बाजू में कौन रहता है वो भी नहीं पता,
1: पता
0: शहरों में
1: जीवन में क्या बीत रहा है ये भी नहीं पता होता है।
0: जी बिल्कुल।
1: और गांव में आप देखो कई पीढ़ियों तक की बातें लोग एक दूसरे को बताते हैं कि उनके परिवार के लोग ये थे वो थे ऐसे थे वैसे थे, या आते जाते दरवाजे से भी गुजरते हैं तो दुआ सलाम होती रहती है, राम राम होती रहती है,
0: बिल्कुल होती है।
1: लेकिन यहाँ तो कोई किसी की शक्ल ही नहीं देख पाता,
0: यहाँ पर तो ऐसा होता है सविता जी के साथ में भी, वो भी अपने घर से बाहर निकले, हम भी हमारे घर से बाहर निकले, लेकिन नजरे मिल गई तो भी ऐसा लग जाता है कि अरे नजरे क्यों मिली, चलो अपने रास्ते, इस तरह का माहौल भी है शहरों
1: मतलब
0: में।
1: वो चीजें खत्म हो रही हैं शहर से, और इतनी भागम भाग और सुख शांति, और आप देखो क्या कहते हैं कि मतलब बिल्कुल अजीब सा माहौल। मुझे गांव बहुत पसंद है उषा जी, बचपन से।
0: चलिए सविता जी, गांव पसंद है तो क्यों ना अपन आबू के आसपास बहुत सारे गांव है, आपको मैं जरूर घुमा के लाऊंगी।
1: नहीं घुमा है मैंने थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कभी मुझे, मैं आपको दिल की बात बताती हूँ, सच बात, आप रेडियो में मेरे दिल की भावना जो एकदम सच्चाई से कह रही हूँ। एक बार मैं इधर गई थी गाँव की तरफ ऐसे किसी काम से, तो मैंने देखा वहाँ पे कि जो गांव के लोग थे, आदिवासी बच्चे थे उषा बहन, वो इतना अच्छा खेल कूद रहे थे पूरे, मतलब खेतों में इधर उधर अपने जानवरों को भी चरा रहे थे और बड़े मजे से खेल रहे थे
0: जी।
1: तो और कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बना रखी थी, और मतलब कहीं पहाड़ पर थोड़ा ऊंचाई होती ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, थोड़े थोड़े ऊंचे पहाड़ रहते वहां पर, एक नीचे कोई कहीं कोई कहा, और अलग अलग झोपड़ी पास पास में सटके नहीं बनी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जानते हैं क्यों अच्छी लगी, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब हम शहर में जमीन खरीदने जाते हैं तो कितना नाप जो कितना सारा पैसा देकर हम लोग छोटे छोटे से फ्लैट खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं, और उसी में ना एकदम दड़बे में कबूतर खाने में सब रहते हैं, कई बार तो एक परिवार में कई लोगों को रहना पड़ता है ना उषा जी। और आप ये देखेंगे कि वहां पे मैंने देखा कि कोई नाप जोक नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक है ऐसा लग रहा था, और प्रकृति का पूरा सुख उठा रहे थे, हवा भी अच्छी धूप भी अच्छी, बच्चे खुलकर खेल रहे थे, उन्हें कहीं किसी गार्डन की जरूरत नहीं, किसी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं कि हम बच्चों को कहाँ खेलने भेजे, और आराम से एक झोपड़ी के बगल दूसरी झोपड़ी नहीं थी, आराम से फैल फैल के मजे से रह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
0: बिल्कुल सविता जी,
1: देखो इनको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते और कितने आराम से प्रकृति का पांचों सुख ले रहे हैं।
0: जी,
1: प्रकृति के पांचों तत्वों का सुख मिल रहा है।
0: शहरों में कितने भी भाग दौड़ करो फिर भी आधी ही मिलती है, और गांव में आप थोड़ा सा भी भाग दौड़ करोगे मेहनत करोगे आपको पूरी मिल जाएगी।
1: हाँ।
0: क्योंकि प्रकृति तो नेचुरल वहाँ होती ही है, और शहरों में तो हम देखते हैं कि फ्लैट लेते हैं तो नीचे व्यवस्था देखते हैं, अच्छा यहाँ पर झूला है कि नहीं है, अच्छा यहाँ पर रोशनी किधर से आएगी, यहाँ पे बगीचा है कि नहीं है, वो कितना देखना पड़ता है, और हर चीज की कीमत चुकाई जाती है,
1: मिलती ही नहीं है। मैंने देखा कई बार जिनके पास बहुत पैसा हो भले थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, ऐसी जगह अपना घर बना ले, लेकिन ज्यादातर लोगों को आप देखो खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं वो इतनी चीजें नहीं उनको मिल पाती, धूप के लिए तरसना होता है, बच्चे छोटे छोटे से कमरों में बालकनी में ऐसे खेलते रहते, उनको जगह नहीं मिल पाती। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यही सोचती थी कि वास्तव में गांव बहुत अच्छी चीज होती है,
0: गांव का अलहड़ जीवन, बच्चों का शारीरिक विकास, ये सब बहुत होता है, क्योंकि खुले मैदान में आप जितना चाहो दौड़ो भागो गाओ नाचो कोई भी खेल खेलो आप
1: जीवन में,
0: बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं,
1: देखने में अच्छा लगता है, बच्चे उनके साथ खेलते रहते दौड़ते रहते, मुझे अच्छे लगते हैं जानवर।
0: लेकिन सविता जी हम बात कर रहे थे कर्म की जी कि कर्म करने से लोग आजकल क्या थोड़े से कतराते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी मेहनत में काफी कुछ मिल जाए, इसके लिए फिर हाँ। लोग भी कर्म करना शुरू कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म तो बल्कि पहले से ज्यादा ही हो रहे हैं आप देखिए, और कई तरीके से लोग कर रहे हैं लेकिन प्राप्तियां नहीं हो पा रही, जितना हम प्राप्ति चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रही। इसी बात को तो मैंने कहा कि देखिए वो जो गांव में रहने वाले लोग वो इतना दिमाग नहीं लगाते, इतना कर्म दुनियावी तौर पे नहीं करते, लेकिन आप देखिए उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही, शांति भी मिल रही, हाँ दिखावा नहीं होता उनके पास
0: जी।
1: कम कपड़ों में, कम खाना पीने में, कम मतलब भौतिक चीजें नहीं है उनके पास, ज्यादा विलासपूर्ण चीजें जिसे कहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा बहुत सुख शांति लगी।
0: कहते हैं कि हम अच्छा शहरों में भले कितनी मेहनत करके, कितने पैसा खर्च करके सारी सुविधाओं को खरीद लेते हैं, फिर भी गांव में जाकर के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम खाली है।
1: हाँ बहुत, हाँ उनके सामने लगता है। और देखिए हम जो बाहर बहुत कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ टेंशन भी आ रहा है, तनाव भी हम लेके आ रहे हैं अपने जेब में, तनाव भी, और पैसे के लिए तो बहुत ज्यादा ही मतलब संसार जैसे एकदम कहाँ से कहाँ जा रहा हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो संसार में के दुख को, वो कर्म जो है वो दुख को कम नहीं कर पा रहे बल्कि आप देखिए दुख को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए कर्म के भी दो प्रकार हैं, कर्म करना है हमें तो विकर्म करें या सुकर्म करें, तो अगर आप सुकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आप देखिए आपको सुख की प्राप्ति होगी, और अच्छे कर्म का फल आप जानते हैं क्या होता है, और बुरे कर्म का फल भी, रामायण और महाभारत उदाहरण है हमारे सामने।
0: तो सविता जी कहने का भाव यही है कि कर्म करेंगे तो ही फल की प्राप्ति होगी
1: जी।
0: कर्म नहीं करेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए कर्म करिए, लेकिन कहते हैं कि कर्म करने के बाद फल ऊपर वाले पर छोड़ देना है, क्योंकि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो हमको मिलना ही है, उसके फल की प्राप्ति तो होनी ही है। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई हमने 2 घंटे मेहनत की और हमको 8 घंटे के पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जितना समय आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा, बाकी ज्यादा कमाने के चक्कर में कोई भी विकर्म नहीं करना है, नहीं तो कहते हैं कि वो हिसाब किताब की लिस्ट में चला जाता है, फिर थोड़े समय हम पूर्व जन्मों के पुण्य के खाते की वजह से या पुण्य कर्मों की वजह से हम खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर जब हम विकर्म करते हैं वो भी तो जमा होता है और इसकी भोगना फिर भोगनी पड़ती है, तब काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख होता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करिए और जितना मिले उससे खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, और ऐसी ही आदत डालिए कि भाई हम इतने कैपेबल हैं और इस अनुसार हम रह सकते हैं, बाकी योग्यता कम है और हम ज़्यादा की इच्छा रखते हैं तो फिर दुखी होंगे। तो सविता जी समय हो रहा है फिर से एक ब्रेक लेने का
1: जी,
0: तो ले लेते हैं एक अल्पविराम, सुनते रहिए
1: मुस्कुराते रहिए
0: रेडियो मधुबन

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में आप सभी पधारिए। आज बनाएंगे आशियाना के किचन में बेसन का केक। ठीक है, केक कितने ही तरह के बनाए जाते हैं और बहुत सारे तरीके के आपको सिखा चुके हैं। आज आपको सिखाएंगे बेसन का केक। इसके लिए सामग्री लिखवा रही हूँ। पेन और डायरी तो आप ले ही लीजिए और लिखिएगा एक कटोरी बेसन। ठीक है, फिर लीजिएगा आप एक कटोरी मैदा। अब लीजिए सूजी आधी कटोरी। एक कटोरी नारियल का बुरादा लेना है, मतलब कसा हुआ नारियल। फिर लीजिए एक चौथाई चम्मच वनीला एसेंस, दो चम्मच शहद ले लीजिए, एक चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है और कुछ कटे हुए मेवे लेने हैं आपको, एक कटोरी शक्कर ले लीजिए और एक कटोरी ही मलाई लीजिएगा। तो ये हो गई बेसन के केक की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूं। एक नजर डाल दीजिएगा। बेसन कितने बोली थी मैं, एक कटोरी। फिर मैदा, ये भी एक कटोरी। सूजी आधी कटोरी। एक कटोरी नारियल कसा हुआ, जिसको हम नारियल का बुरादा भी कह सकते हैं। फिर आप लीजिए एक चौथाई चम्मच वनीला एसेंस, दो चम्मच शहद, बेकिंग पाउडर लीजिए एक चम्मच, कुछ कटे हुए मेवे ले लीजिए आवश्यकता के अनुसार और एक कटोरी शक्कर लीजिएगा। एक कटोरी ही लेनी है मलाई की। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए। तब तक के लिए आपको एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद बेसन का केक कैसे बनाया जाता है वो भी जरूर सिखाएंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।
2: अभी बजे हैं सुबह के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा है बेसन का केक। बेसन का केक की सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, फिर भी एक नजर डाल दीजिएगा, कहीं छूट गया हो तो आप नोट कर लीजिए। बेसन, मैदा, सूजी, कसा हुआ नारियल, वनीला एसेंस, शहद, बेकिंग पाउडर, कटे हुए मेवे, चीनी और मलाई। आइए अब बनाने का तरीका भी आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, शक्कर को पीस लीजिए और फिर मलाई को अच्छी तरह फेंटिए। अब आप मलाई और शक्कर जो पीसी हुई है ना, इन दोनों को मिला करके हल्के हल्के हाथों से फिर से फेंटिए। अब आप मैदा, बेसन और सोडा तीनों को छलनी से छान लीजिए और अब इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए। बेसन, मैदा, सूजी में एसेंस का मिश्रण डाल करके अच्छी तरह से फेंटिए। इसके अंदर आप कटे हुए मेवे मिला दीजिए, केक पार्ट पर चिकनाई लगा दीजिए और मैदा छिड़क करके मिश्रण डालिए और सारा मिश्रण डाल करके फिर 45 मिनट तक बेक करिए। तो इस तरह बेसन का केक हमारा तैयार हो चुका है। पुनः विधि को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केक बाहर से हम लाते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं और कहते हैं कि भाई हर महंगी चीज हर एक के बजट में संभव नहीं होती। और इच्छाएं तो सभी रखते हैं, बच्चे की बर्थडे आती है, घर में माता पिता की बर्थडे या किसी का भी जन्मदिन आता है तो ऐसी इच्छा होती है कि भाई केक काटे, केक लावे, बच्चों को केक खिलाए। लेकिन क्या करें, बजट से बाहर है हमारे सारा खर्चा। तो फिर करना भी है, शौक भी पूरा करना है, बजट भी देखना है। तो फिर यही अच्छा तरीका है कि आप घर पर ही केक बनाइए, ताकि बजट में भी रहेगा और अपने शौक को भी पूरा कर सकेंगे और बच्चे, बुजुर्ग इन सभी को भी आप खुश रख सकेंगे, है ना। तो इस तरह आप केक बना सकते हैं, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। पुनः मैं विधि को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुन।

लीजिएगा और अच्छी तरह बनाइएगा। शक्कर को आप पीस लीजिए, ठीक है, या फिर पीसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं। अब आप मलाई को फेंटिए, ठीक है, मलाई को फेंट ली। अब इसमें पीसी हुई शक्कर मिला दीजिए और फिर दोनों को मिला करके फिर से हल्के हाथों से फेंटिए। फेंटने के बाद अब आप मैदा, बेसन और सोडा, इन सभी को आप साथ में ही मिक्स करके छलनी में छान लीजिए। एक एक का नंबर लीजिए ताकि तीनों ही अपने आप मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए। किस में छाना आपने, जो हमने बेकिंग पाउडर और शक्कर ये सब मिक्स किया ना, इसी के अंदर मलाई फेटी थी ना, मलाई के अंदर शक्कर पीसी हुई डाली, इसी के अंदर आपको सोडा, बेसन और मैदा छानना है, ठीक है, ताकि मैं अच्छी तरह बता दूं आप लोगों की भूल ना पड़े। फिर इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए, ठीक है। बेसन, मैदा, सूजी में एसेंस का मिश्रण डाल दिया। अब आप फिर से अच्छी तरह फेंटिए इन सभी को और फिर लास्ट में कटे हुए मेवे मिला दीजिए। इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब केक पार्ट पर आप चिकनाई लगाइए तेल या घी की, और उस पर आप थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए, और फिर जो मिश्रण तैयार किया है इसको डालिए और डाल करके 45 मिनट तक बेक करिए। तो ये बेसन का केक तैयार हो चुका है, ठीक है। पर भाई जिसका केक का वो कहते हैं ना ओवन हो, वो ही केक बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। बहुत सारी चीज़ें तो क्या बाटी के कुकर में आपको सिखा देती हूँ, लेकिन केक को आप बाटी के कुकर में नहीं बना सकते। इसलिए अगर ओवन है तो आप ज़रूर बनाइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको और भी तरीका बताएंगे हम, बहुत सारे तरीके बताते रहते हैं केक बनाने के, तो कोई अलग तरीका बताएंगे जिससे आप बिना ओवन के भी केक बना सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने तरीका सिखाया है वो ओवन होगा तो ही बना सकेंगे। तो चलिए बेसन का केक तैयार हो चुका है। अब आप लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप केक रखिए और पूरी सब्जी जो भी बनाई है वो भी रख दीजिएगा थाली में, तुलसी पत्र और जल के स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए। ऊपर से स्वच्छ कपड़े को ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित आनंद लीजिएगा बेसन के केक का और साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। देखिए, खूबसूरती निखारती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब जो भी खूबसूरत होना चाहते हैं एक्सरसाइज जरूर करिएगा। और हर कोई यही चाहता है कि भाई मैं अच्छी दिखूं, सुंदर दिखूं, तो बस थोड़े से आलस्य को त्याग करके एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आप फिट एंड फाइन रहेंगे। पर आपको एक्सरसाइज ऐसे नहीं कि एक दिन किया, दो दिन किया, चार दिन छोड़ दिया, वो नहीं, आपको रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर रेगुलर आप करते हैं तब तो आप अच्छी बात है। बाकी आप कहेंगे उषा जी ने बोला एक्सरसाइज करेंगे तो सुंदर हो जाएंगे, चार दिन, दस दिन या एक महीना तो हमने किया, कोई सुंदर ही नहीं हुए तो फिर से हमने तो छोड़ दी। तो भाई ये आप करोगे तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेती हूँ, ठीक है ना। आप रेगुलर करेंगे, रोज करेंगे, तो आप सचमुच स्वस्थ भी रहेंगे और स्फूर्तिवान भी बने रहेंगे, ठीक है ना। और कहते हैं कि सबसे बड़ी खुशी जब मिलती है तब हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें बहुत जनों की भी राय है, जैसे कि शोधकर्ताओं ने भी एक्सरसाइज करने और न करने वाली महिलाओं के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि एक्सरसाइज करने वाली महिलाएं शेप में रहने के साथ साथ ही ज्यादा मजबूत खुद को महसूस करती है। फिर दूसरी ओर देखा, एक्सरसाइज न करने वाली महिलाएं अपनी बॉडी शेप और लुक को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं रहती। दोनों ही तरह की सोच का असर महिलाओं के मूड और चेहरे की निखार पर पड़ता है। मेरी प्यारी बहनों, एक्सरसाइज करने वाली बहनें ज्यादा सकारात्मक और खुश होती है। रोजाना ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग से त्वचा की रंगत बढ़ती है, ठीक है ना। क्या क्या फायदे है वो मैं आपको बता रही हूँ। दरअसल इस दौरान क्या होता है, दिल तेजी से पंप करता है और रक्त संचार बढ़ता है। ऐसे में त्वचा तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है जो शरीर के लिए काफी फायदा करता है, मददगार होता है। तो एक्सरसाइज करते समय जो पंपिंग होती है, जो शरीर में उस समय जो एक्सरसाइज होती है अंदर से हमारे शरीर की, सचमुच बहुत ही फायदेमंद है। जरूर आप करिएगा। और एक्सरसाइज के अलावा अन्य गतिविधियां जिससे रक्त संचार बढ़ता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में फायदेमंद होती है, वो भी आपको मैं बता रही हूँ। एक्सरसाइज से तो फायदा है ही, लेकिन साथ ही साथ किन किन चीजों से फायदे हैं वो भी आप जानेंगे। अच्छी नींद, देखिए अच्छी त्वचा के लिए पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से नींद भी अच्छी आती है। नींद के दौरान शरीर कुछ ऐसे हार्मोन का स्त्राव करता है जो उत्तकों को सुधारने या फिर उन्हें फिर से बनाने का काम करता है। और भी आप जानेंगे एलोवेरा, एलोवेरा जेल त्वचा को साफ करने के साथ ही पोषण भी देता है। रात में सोने से पहले ये जेल लगाइए और सुबह उठ करके धो लीजिए इस, और ये आप जाइयों पर भी लगा सकते हैं, तो इससे भी चेहरा चमक उठेगा और फायदा ही फायदा। एक्सरसाइज के साथ साथ ये भी आप कर सकते हैं। फिर आप देखिए आलू, विटामिन सी से भरपूर आलू प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है। आलू को पीस करके पेस्ट बनाइए और पूरे चेहरे पर लगा करके 30 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, यह सूर्य की रोशनी से भी राहत देता है, ठीक है ना। तो कितने सारे फायदे हैं एक्सरसाइज के साथ साथ, एक्सरसाइज करते हैं साथ ही साथ ये भी नुस्खे आजमाते हैं तो सचमुच सुंदरता भी बढ़ती है स्किन की, और स्फूर्ति भी आती है, स्वस्थ भी रहते हैं, फिट भी रहते हैं, फायदे ही फायदे हैं। तो जरूर आप एक्सरसाइज करिए। तो ये आपको सामान्य जानकारी दी गई है, ध्यान रखिएगा। और अब आपको फिर से सुना देते हैं गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे दिए हैं, जरूर आप ध्यान रखिएगा। और अगर इस तरह की बीमारियां हैं तो इन नुस्खों को जरूर आजमाइएगा। खुशनुमा जीवन में सविता जी के साथ बहुत ही अच्छी बातें हुई है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे और तो प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी, और कर्म तो करने ही है, इसलिए हमेशा कर्म प्रधान बने रहिएगा और कर्म करते रहिए, फल ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। और नए नए व्यंजन में आपको बेसन का केक बनाना सिखाया है तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और सामान्य जानकारी भी बहुत ही अच्छी मिली है आप सभी को, एक्सरसाइज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे और खूबसूरती भी निखरेगी। और जानने योग्य बात आपको बता रही हूँ, तन और मन में संतुलन बना सकता है योग। योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन अर्थात योग बनाना है। योग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुद्रा, ध्यान और श्वसन संबंधी अभ्यास की आवश्यकता होती है। योग की क्रियाओं में जब तन, मन और आत्मा के बीच योग बनता है तब आत्मिक संतुष्टि, शांति और चेतना का अनुभव होता है। इसके अलावा योग शारीरिक और मानसिक रूप से भी फायदेमंद है। आज के अनमोल वचन इस प्रकार है, सर्व का सहयोग लेने के लिए पहले स्वयं सहयोगी बनना पड़ता है। अब मैं आपको होली पर एक प्यारा सा गीत सुनाऊंगी, आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खमा सा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: 5 YouTube वीडियो को लाइक शॉट भेजने से करें
1: लगता है ये जेन्यून है।
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने, ला। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों

0: जी।
1: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, शनिवार की सुप्रभातम। सभी श्रोताओं को प्रभा पंडिताइन का नमस्कार और स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम पंडिताइन में। शुरू करते हैं एक बहुत सुंदर सी कहानी से। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता रहा। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वो पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया और प्रतिमा निर्माण का कार्य। अब महामंत्री जी मूर्तिकार के पास देते हुए भगवान करना चाहते हैं, 7 दिन के भी उनकी प्रतिमा हल पहुंचा देना, मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुई गवा और महामंत्री के जाए के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़े के लिए उस पर हथौड़े से वार करे लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर वार किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब का टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गए और उसे ही कह कर वापस कराया कि पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना रहा, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने

दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो क्या करिएगा, हार मत मानिएगा। किसी काम में मेहनत करते हैं, आधे में मत छोड़िएगा। क्या पता अगला कदम पे ही आपको सफलता मिल जाए। यानी छोटी छोटी बात में निराश हो गए कि नहीं भाई, हमने तो बहुत प्रयत्न कर लिया, अब तो हम थक गए हैं, ऐसा मत करिए। नहीं तो भाग्य आपके दरवाजे पे ठक ठक करके चला जाएगा और दूसरे के दरवाजे पर एक हथौड़े मारने से उनका जैसे पत्थर टूट गया, उनका भाग्य बन गया, वैसे उनका बन जाएगा, आप वंचित रह जाएंगे। कहे का मतलब, अपने तरफ से पूरा प्रयास करें, छोटी छोटी बातों में हार ना माने। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। और मौन रहना एक साधना है, सोच समझकर बोलना एक कला है। ये कला हर किसी को नहीं आती। कई लोग बड़बड़ सारा दिन बड़बड़ क्या करते हैं और उनकी बातों पे कौन ध्यान नहीं देता। ये भी एक कला है, कहाँ बोलना, कितना बोलना है, कैसे बोलना, बोलना जरूरी भी है या नहीं, किसी ने आपसे पूछा नहीं और आप अपनी राय देने लगे, आपकी राय कोई नहीं सुनेगा कि बीच में काहे टपक पड़ा। यानी हमें मालूम होना चाहिए अपने बोल का वजन कहाँ है। अगर आप बहुत खुश रहना चाहते हैं तो अपने आसपास होने वाली हर बात को व्यक्तिगत रूप से ना ले, इस बात का ध्यान रखें। कोनो दो व्यक्ति बात कर रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, वो देख कहीं और रहा है, आपको लग रहा है आपकी तरफ देख रहा है और आपकी बुराई कर रहा है, बस आपके मन में वो कीड़ा शंका का आ जाएगा और बस आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर खुश रहना तो ये बात भी ध्यान रखिए। पुराने जमाने में इंसान झूठ बोलने से डरता रहा कि गुनाह होगा, और आज के जमाने में इंसान सच बोलने से डरता है कि नुकसान होगा। अरे थोड़े समय का नुकसान होगा, लेकिन अगर सत्य बोलेंगे तो खुश रहेंगे अंदर से। हर बार सोचना नहीं पड़ेगा कि वहाँ का बोले रहे, वहाँ का बोले रहे। झूठ बोलेगा तो सोचेगा ना, और सच है तो नींद में से भी उठा के पूछेंगे तो वो उसके मुँह से वही निकलेगा। जीवन में झुकना भी आवश्यक है, लेकिन केवल वहीं तक जहाँ तक आपका आत्मसम्मान और संबंधों का मान बना रहे। झुकना अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं हम काहे झुके, हम कायर थोड़ी है, कायर की निशानी नहीं है, लेकिन उतना ही झुके कि आपका आत्मसम्मान बना रहे। क्योंकि आत्मसम्मान बना है तो आप कहीं ना कहीं मन में परेशान नहीं होंगे कि उनने हमको गलत कह दिया और हम कुछ भी नहीं बोले, या हम काहे झुक गए, तो वो भी ना हो, लेकिन अभिमान भी नजर ना आए। सबको पार लगाने वाली नाव नदी में ही रह जाती है, उसका कोनो ठिकाना नहीं होता। इसे सीख लीजिएगा। कई लोग दूसरों को बहुत मदद करते हैं, पार भी लगा देते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यही वो साधन है जो आपको खुद पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। वही फिर आपके अंदर कितना कंट्रोलिंग पावर है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। अपने संघर्ष से मत घबराओ। यदि वो कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है, यही वो कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। संघर्ष करोगे, सफलता पाओगे, फिर लोग पूछेंगे कैसे पाई, तो आप बताएंगे ये बात आई, संघर्ष आया, लेकिन भगवान की मदद मिली, हमारा आत्मविश्वास बना रहा, इसके लिए हम पार हो गए। लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना, प्रशंसा कौनो मायने नहीं रखती। हमारा लक्ष्य सबसे ऊपर है, हमने जो सोचा है वो करके रहेंगे, फिर ये सब बातें तो रास्ते में आएंगी, लोग बोलेंगे, टोकेंगे,
तोड़ने की कोशिश करेंगे,

लेकिन कई लोग मस्काबाजी भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे। इन सब से उपराम होकर अपने लक्ष्य को ध्यान देंगे। जीवन के अंतिम पलों में जीवन का एक एक कर्म फिल्म की तरह आंखों के सामने झलकेगा। कोशिश करें कि अपनी फिल्म देखने लायक हो, यानी हमने जीवन भर कौन से कर्म किए हैं, उसका फल हमें जब मिलेगा, यानी साक्षात्कार परमात्मा जी कराएंगे, तो ऐसा ना हो कि बाद में पश्चाताप करना पड़े, और पश्चाताप करके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कहे कि अब तो चिड़िया चुग गई खेत। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। अरे भाई अभी जरा अच्छा नहीं, समय नहीं चल रहा। अरे भाई अभी हमारा भाग्य ठीक नहीं चल रहा। अरे भाई अभी 7:30 चल रही है। अरे भाई अभी राहु की दशा चल रही। नहीं, ये सब फीके पड़ जाते हैं जब आपका प्रयास, आपका पुरुषार्थ तीव्र होता है। आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए ई बात पे एक गीत सुन लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पे। सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनिएगा गीत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुना रहे हैं, छोटी सी है, डिलीवर बॉयफ्रेंड की जुबानी। एक डिलीवरी बॉयफ्रेंड अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, ज़्यादातर शाम की शिफ्ट में काम करता हूँ। उस दिन रात करीब 9 बजे आखिरी ऑर्डर उठाया, रेस्टोरेंट से पैकेट लिया तो देखा ऑर्डर छोटा था, बस एक सादा खिचड़ी, दही और 2 केले। पता शहर के पुराने हिस्से का रहा, एक जर्जर सी बिल्डिंग, ऊपर 3री मंजिल। डोरबेल दबाई, दरवाज़ा एक बूढ़ी अम्मा ने खोला, सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, आंखों पर मोटा चश्मा, चेहरे पर थकान रही लेकिन आवाज़ में मिठास रही। बेटा जरा अंदर रख दो, हाथ कांपते हैं। मैं खाना टेबल पर रखकर मुड़ा ही था कि उन्होंने पूछा, 2 मिनट बैठोगे? अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने घड़ी देखी, शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ा थका था लेकिन पता नहीं क्यों मैं बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था, दीवार पर पुरानी घड़ी टिक टिक टिक टिक कर रही थी। एक कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर और सामने दीवार पर दर्जनों फोटो। उन्होंने थाली खोली, धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगी। हर 2 कौर के बाद मेरी तरफ देख मुस्कुरा देती, फिर बोली, जानते हो बेटा, मैं रोज़ बाहर से खाना नहीं मंगाती, आज बस मन किया किसी इंसान की आवाज़ सुनने का। मैं चुप रहा। उन्होंने सामने लगी तस्वीर की ओर इशारा किया, ये मेरे पति हैं, रेलवे में रहे, 5 साल पहले चले गए। फिर दूसरी तस्वीर, ये बेटा है, कनाडा में रहता है, बहुत अच्छा है, हर महीने पैसे भेजता है। फिर थोड़ी चुप रही, मुस्कराई मगर इस बार आंखें भीग गई, बस समय नहीं भेज पाता। कमरे में अचानक घड़ी की टिक टिक टिक बहुत तेज सुनाई देने लगी। उन्होंने 1 कौर और खाया, ये बेटी है बंगलुरु में, अपनी दुनिया में खुश है, होना भी चाहिए, बच्चे अगर उड़े नहीं तो माँ बाप ने पाला ही का। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर्रा गई, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस खालीपन था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ है? मैंने कहा, हाँ। फ़ोन करते हो रोज? मैं चुप हो गया। सच ये था कि मैं भी कई कई दिन घर फ़ोन नहीं करता था, थकान, काम, भाग दौड़, हर बार यही सोचकर टाल देता था कि कल कर लूँगा। उन्होंने मेरी चुप्पी पढ़ ली, हल्के से बोली, माँ बाप पैसे नहीं गिनते बेटा, आवाज़ गिनते हैं। मेरे भीतर कुछ चुपचाप टूट गया। खाना खत्म हुआ, उन्होंने पानी पिया, फिर पर्स से 500 रुपये निकाल कर मेरी ओर बढ़ाए। ये टिप नहीं है, ये उस आधे घंटे की कीमत है जिसमें तुमने मुझे अकेले नहीं खाने दिया। मैंने तुरंत मना किया, नहीं अम्मा, ये नहीं ले सकता। वे मुस्कराए, ले लो, तुमने खाना नहीं पहुंचाया, आज तुमने 7 पहुंचाया है। मैंने पैसे ले लिए लेकिन जेब में नहीं रखे, हाथ में ही पकड़े रहा। जाते जाते उन्होंने कहा, और हाँ, आज घर जाकर माँ को फ़ोन ज़रूर करना। उस रात मैंने बिल्डिंग के नीचे बाइक स्टार्ट नहीं की, पहले माँ को फ़ोन लगाया। उधर से आवाज़ आई, आज अचानक, सब ठीक है ना? बस इतना सुनते ही गला भर आया। मैंने कहा, हाँ माँ, बस आपकी आवाज़ सुननी थी। उधर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर माँ बोली, खाना खाया? मैं सड़क किनारे खड़ा रो पड़ा। उस रात के बाद मैं रोज़ माँ को फ़ोन करने लगा, और सिर्फ माँ को नहीं, हर डिलीवरी अब मेरे लिए सिर्फ ऑर्डर नहीं रही, किसी घर में दवा जाती है
किसी घर में अकेलापन, किसी घर में इंतजार, किसी घर में बस एक आवाज की जरूरत होती है। मैं अब दरवाजा खुलने पर जल्दी नहीं करता, चेहरा देखता हूँ, आवाज़ सुनता हूँ, कभी पूछ लेता हूँ और सब ठीक। और ज़्यादातर लोग बस हाँ कहते हैं। कुछ लोग मुस्करा देते हैं और कुछ के चेहरे बता देते हैं कि उन्होंने पूरे दिन किसी से बात नहीं की। 2 महीने बाद उसी पते पर फिर ऑर्डर आया। मैं भाग कर गया, दरवाज़ा किसी और ने खोला, पड़ोस वाली आंटी थी। धीरे से बोली, अम्मा पिछले हफ्ते चली गई। कुछ सेकंड तक मैं दरवाजे पर खड़ा रहा, हाथ खाली थे लेकिन भीतर कुछ भारी गिर चुका था। उन्होंने अंदर से एक छोटा लिफाफा लाकर दिया, तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। हाथ कांपते हुए खोला, अंदर 500 रुपये थे और एक छोटी सी पर्ची। उस पर लिखा था, बेटा अगर ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुकी हूँ, धन्यवाद उस रात मेरे साथ खाना खाने के लिए, तुमने मुझे खाना नहीं सम्मान दिया, और हाँ माँ को फ़ोन करते रहना, अम्मा। आज भी वो 500 रुपये मेरे बैग की अंदर वाली जेब में रखे हैं, खर्च नहीं किए, क्योंकि उस रात पहली बार समझ आया हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता, कभी एक माँ होती है, कभी एक इंतज़ार, कभी एक आखिरी बातचीत। हम सब अपनी अपनी भूख लेकर जी रहे हैं, किसी को रोटी चाहिए, किसी को दवा और किसी को बस 2 मिनट का साथ। इंसान को हमेशा पैसे की नहीं, कभी कभी बस मौजूदगी की डिलीवरी चाहिए। सही में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश में भी 70% बुज़ुर्ग बस यही चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए साथ कोई हमारा है। और आज हम जैसे देख रहे हैं, हर कोई आज़ाद, हर कोई उड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारे दादा दादी, जिन्होंने हमें बड़ा किया, पाला पोसा, इस लायक बनाया, उनको भी हमारी ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज ही अपनी माँ को, नानी को, दादी को, पिताजी को, जो बुज़ुर्ग घर के हैं उनको फ़ोन नहीं करते, एक बार 24 घंटे में ज़रूर करिएगा। अनमोल विचार ये है कि अपने दिमाग में 2 चीज़ें हमेशा रखो। एक, जब आप अकेले हो तो अपने विचारों पर ध्यान रखो, और दूसरा, जब आप औरों के साथ हो तो अपने शब्दों पर हमेशा ध्यान रखो। गुलाब की सुरक्षा कांटों के बीच होती है, उसी तरह कठिन दुखमय परिस्थिति के बीच ईश्वर के याद आने से जीवन सुरक्षित होता है। जीवन में समस्या आने पर उसके समाधान की खोज करना ही आगे बढ़ने का साधन है। कुछ चीज़ों को थोड़ा धैर्य रखकर देखिए, इसमें बहुत आसानी से समाधान मिल जाएंगे। आज इंसान के पास सब कुछ है, धैर्यता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, थोड़ा ठहराव नहीं है, थोड़ी गंभीरता नहीं, हर चीज़ जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, हर चीज़ इंस्टेंट, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफ़ी, हर चीज़। लेकिन शांति इंस्टेंट नहीं मिलती, उसके लिए धैर्यता रखनी होती है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार, बाकी जो बचा वो तो दुनिया सिखा देगी। भगवान कभी गलत नहीं करते, उनकी हर परीक्षा के पीछे भलाई छुपी होती है। चलिए इस बात पर एक गीत और सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे बताएंगे। सुनिएगा ये मीठा सा गीतवा।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: जब सब खत्म लगे तभी शुरू होता है असली साहस। एक समय की बात है, एक पराक्रमी राजा अपने न्याय और दया के लिए दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध रहा। एक दिन उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक संत ने उसे एक ताबीज भेंट किया। ताबीज देते हुए संत ने गंभीर स्वर में कहा, राजन इसे अपने गले में धारण करो, लेकिन इसे खोलना तभी जब जीवन में ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि अब सब समाप्त हो गया है, कोई आशा शेष नहीं है। राजा ने उस ताबीज को आदर पूर्वक स्वीकार किया और हमेशा अपने पास रखने लगा। समय बीतता गया और राजा अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। जंगल बहुत घना और खतरनाक रहा। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने साथियों से बिछड़ गया और अनजाने में दुश्मन राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। सांझ ढलने लगी थी, अंधेरा बढ़ रहा था और तभी उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। दुश्मन सैनिक उसकी ओर बढ़ रहे थे। घबराकर राजे ने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया, परंतु थकान और भूख प्यास के कारण उसकी गति धीमी पड़ने लगी। भागते भागते उसे पेड़ों के बीच एक छोटी सी गुफा दिखाई दी और उसने तुरंत वहां शरण ली और खुद को छिपा लिया। उसका दिल बहुत तेजी से ठक ठक ठक ठक धड़क रहा था, सांसें थम सी गई रही। दुश्मन सैनिकों की आवाजें पास आती जा रही थी। उस क्षण राजा को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। निराशा और भय ने उसको पूरी तरह घेर लिया। उसे अपनी हार और मृत्यु साफ दिखाई देने लगी। तभी अचानक उसका हाथ अपने गले में पड़ी ताबीज पर गया। उसे संत की बात याद आई। कांपते हाथों से उसने ताबीज खोला और उसमें रखा छोटा सा कागज निकाला। जब उसे उसे पढ़ा तो उस पर लिखा था, ये भी कट जाएगा। इन चार शब्दों ने जैसे उसके भीतर नई ऊर्जा भर दी। उसके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगा और उसको लगा कि कठिन समय भी स्थायी नहीं ना है, ये भी बीत जाएगा। उसके भीतर एक अद्भुत शांति और विश्वास जाग उठा। वो स्थिर होकर बैठ गया और अपने मन को संभाल लिया। कुछ देर बाद घोड़ों की टापों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। दुश्मन सैनिक बिना उसे देखे आगे निकल गए। रात गहराने के बाद राजा गुफा से बाहर निकला और सावधानी पूर्वक रास्ता तय करते हुए अपने राज्य लौट आया। इस घटना ने उसके जीवन की सोच को बदल दिया। अब वो हर कठिन परिस्थिति में घबराए के बजाय धैर्य और विश्वास बनाए रखता था। एक कहानी केवल उस राजा की नहीं बल्कि हम सभी की है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब समस्याएं हमें चारों ओर से घेर लेती है। हमें लगता है कि अब कोनो रास्ता नहीं बचा, सब खत्म हो गवा। लेकिन सच ही है कि कोनी भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे दुख हो या सुख, हर दौर गुजर जाता है। जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए, बस कुछ पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये भी कट जाएगा। यही विचार आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और कठिन समय से बाहर निकालने की शक्ति देगा। याद रखिए, जो आज असंभव लगता है वही कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। हर चीज से, हर घटना से आप कुछ ना कुछ पाठ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मन में शांति है, धैर्यता है और आप भी ऐसे ही सोच लेंगे कि ये समय भी कट जाएगा, तो जरूर वो समय कट जाएगा। एक समझदार व्यक्ति को उम्र भर केवल एक ही बात से ठगा जाता है, तुम तो समझदार हो, तुम्हें समझना चाहिए। लोग कह देते हैं, अरे तुम तो बड़े हो, तुम तो समझदार हो, तुम काहे को परेशान होते हो भाई। जिंदगी में सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हेलो हेलो हेलो, जिंदगी में सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी न टूटे। कर्म करने पड़ते हैं दोस्त, यूँ रोज रोज देवताओं के स्टेटस लगाने से चरित्र साफ नहीं होता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे का बहस तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी बोलिए। नमस्कार रेडियो मधुबन। हेलो, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।
2: क्या
1: जी, अब ठीक आ रही है आवाज?
2: क्या
1: बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने। आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। असली बात ये नहीं है कि हम क्या करते हैं। असली बात ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने फैसलों पर कितना भरोसा करते हैं। कहे कि जिंदगी किसी घटना पर नहीं, बल्कि उसके बाद हमारे अंदर मौजूद ऊर्जा पर निर्भर करती है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए और वो हर परिस्थिति में आपको सामना करने की शक्ति देगी। और आप तो सब जानते हैं कि अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ती है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, जब हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं। परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर फ्लो करने लगती है और हमारे अंदर की नकारात्मकता निकलती जाती है और हमारा आत्म मंथन कहिए, आत्मशक्ति कहिए, विल पावर कहिए, वो हमारा बढ़ते जाता है। तो आशा करते हैं आप अच्छी अच्छी बातें सुनने के साथ साथ परमात्मा को जरूर याद करते होंगे और वही एक ऐसा सहारा है जो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता। चलिए भाई एक गीत और सुनते हैं, फिर आपसे बताते हैं। सुनिएगा मीठा सा गीत, तो बहन जी को निक्वा सा गीत सुनवा दीजिए। तो

सच्ची मानवता। भाई, मैंने कल तुम्हें सुबह जो थैलियाँ दी थी वो, हाँ हाँ बाबा, सिलाई कर दी मैंने जैसे आपने कहा था, रुकिए देता हूँ, कहकर मोहन दर्जी जो सड़क किनारे एक खाली जगह पर छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर कपड़े सिलकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, बोला, वाह बहुत सुंदर सिला है बेटा, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मोहन बोला, बाबूजी एक बात पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछो बेटा, आप इतने बड़े घर में रहते हैं, मैं आपके बच्चों को भी जानता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप ये किस लिए सिलवाया है, ये थैलियाँ तो आटे की है, आपके कहने पर मैंने मजबूत भी सिल दी, मगर समझ नहीं आया आपके घर में इसका क्या उपयोग होगा। बेटा, वो जो वहाँ फुटपाथ पर वृद्ध बैठती है ना, ये उनके लिए है, मुझे उन्हें देनी है। दरअसल बेटा, बाहर इतनी गर्मी और धूप पड़ती है और उनका भी कोई नहीं है, वो वहाँ बैठकर मेहनत करते हुए किसी रेहड़ी वाले के फल आदि बेचती है ताकि उनके दिन रात खाने का प्रबंध हो सके। मैंने उन्हें कितनी ही बार कहा कि आप किसी आश्रम में चले जाओ, इस उम्र में ये सब। बेटा बड़ी खुददार है, बोली, अभी कमा कर पेट भर सकती हूँ तो क्यों आश्रम जाऊँ। आते जाते मैंने ध्यान किया कि वो गर्मी से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है, मैं और अधिक तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए घर आई ये आटे की थैलियों को इकट्ठा किया और एक चादर की तरह बनवा लिया, अब वहाँ चार बांस के सहारे लगवाने में मदद कर दूंगा ताकि वो बहन गर्मी से बच जाए। वृद्ध है तो वो बीमार भी नहीं पड़ेगी, कहते हुए उन वृद्ध ने मोहन की ओर सिलाई के पैसे बढ़ा दिए। पैसे पकड़ते वक्त मोहन की आंखें भीगी हुई थी, अचानक उसने जानबूझकर कुछ पैसे नीचे की ओर गिरा दिए। पैसे उठाते हुए उसने उन वृद्ध बाबा के चरणों को स्पर्श किया और मन ही मन बुदबुदाने लगा, लोग दिखावा करके मददगार बनने का ढोंग करते हैं बस, मगर जो दूसरों के दर्द को बिना कहे समझे और निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करे, ऐसे देव दूतों को मेरा प्रणाम, ईश्वर ऐसे ही व्यक्तियों में बसता है। आजकल आप सब जानते हैं बहुत गर्मी चल रही है, हर साल हम ये बात बोलते हैं, लेकिन अगर सच्ची मानवता है तो जरूरी नहीं कि मनुष्यों को, मनुष्य को तो भूख लगेगी तो भी बोल देगा, प्यास लगेगी तो भी बोल देगा, लेकिन मूक प्राणी तो कुछ नहीं बोल सकते, अगर इंसान की भी मदद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम पक्षियों के लिए दाना पानी तो ज़रूर आप रखें, मैं समझती हूँ इतना करेंगे वो भगवान भी खुश होगा, दिखावा नहीं, हमारे अंदर उनके प्रति भी सम्मान होना चाहिए। तो आशा करते हैं आप इस बात को मानिएगा, उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जे कि दिल में सबके लिए प्रेम स्नेह और सम्मान की भावना हो, चाहे वो इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। आँख एक ही भाषा समझती है, प्रेम की, मिले तो भी झलकती है ना मिले तो भी, बहुत कोई प्रेम करे तो आँख में आंसू आ जाते ना, और दुख में तो ऐबे करते हैं, तो एक आँख ही है जो समझती है प्रेम भी, और बाकी तो आप सब जानते हैं। श्रद्धा मस्तिष्क का विषय है, भक्ति हृदय का विषय है, और ध्यान दोनों को जोड़ता है। दिल और फूल दोनों खूबसूरत होते हैं, दिल और फूल दोनों खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल फूल से भी, कुछ लोगों के दिल फूल से भी खूबसूरत होते हैं, जैसे आप हमारे सभी श्रोता लोग। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही सबसे बड़ा धन है।
बाकी सब तो जिसने चोंच दिया वो दाना देगा। इंसान कुछ ना कुछ करके तो पेट भर ही लेता है, लेकिन प्रेम और सम्मान हर कोई चाहता है। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए अच्छे विचार बो, अच्छे कर्म करो और अच्छे परिणाम पाओ। प्रकृति का नियम है, मेहनत हमेशा रंग लाती है, धैर्य और विश्वास से ही सफलता की राह बनती है। आशा करते हैं इन बातों को जीवन में आप उतारेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। क्या खूब लिखा है, परखो तो कोई अपना नहीं, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं, चेहरे की हंसी से गम को फुला दो, चेहरे की हंसी से गम को फुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो, जियो और जीना सिखा दो। अंत में यही कहेंगे, उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम स्नेह और सम्मान की भावना हो। चलिए भाई, 12 बजे वाले हैं, आप सबसे छुट्टी लेते हैं, कल 11 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।

0: राम राम भाई, राम राम।
1: अरे राम राम, राम राम भाई। कंचन आओ भाई आओ।
0: हाँ भाई रतन, काई रोंगटा खड़ा कर देने वाली गीत सुन रही आज तू।
1: अरे भाई कंचन, यो भी को राज है।
0: हाँ।
1: जो जरूर बताऊं मैं थाने।
0: हाँ।
1: पर आपा स्वागत करा हा अपना श्रोता बंधुओं गावरी बातें कार्यक्रम में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो गावरी बातें कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधु जुड़ गया है। और कंचन, मैं अबे थाने बताऊं कि मैं यो गीत क्यों सुन रही हूँ।
0: वो गीत भी भाई काई गीत है, पर चल तू बता।
1: देख मैं एक बेनू के कौन बात कर रही हूँ, जाने ही अपने रेडियो मधुबन री टीम तो गांव गांव में जाती।
0: गांव गांव में जावे। हाँ।
1: तो एक गांव में कटी गया हा बटे वह बेन जी वहां का टाबर का साथ में अकेली रह रही।
0: टाबर के साथ?
1: हाँ। पति हूँ अलग, ससुराल वालों अलग।
0: ओ
1: तो वहां ने पूछो भाई कई व्यो कई नहीं व्यो, तो वे बता रहे हा वहां की 14 साल की उम्र में ब्याह हो गयो।
0: 14 साल की उम्र में पढ़ना दी।
1: हाँ। और घर वालों हो 17 साल को।
0: ओ हो हो।
1: तो दो ही टाबर
0: जब तो समझ भी नहीं हो है।
1: समझ ही नहीं हो। 17 साल का छोरा ने कई ठा पड़े और 14 साल की छोरी ने कई ठा पड़े।
0: सही बात
1: भाई, बचपन रा दिन है, खावा खेलवा का और पढ़वा की उम्र है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आनी उम्र में गृहस्थी को बोझ दे दो तो वो तो संभालता संभालता वो कहे परिपक्व उम्र में जदि अक्कल आवे।
0: जदि अक्कल आवे, अनुभव ही तो सिखावा।
1: हाँ, अनुभव सिखावे। अबे माँ बाप तो अच्छी शिक्षा ही देवे पर एक उम्र भी गणो मायनो रखे।
0: सही बात है ना। तो टाबर शारीरिक रूप से पूरा विकसित हुआ है और न ही मानसिक रूप से।
1: बिल्कुल। तो कंचन वे बता रहे हा कि 14 साल की उम्र में प्रण आया। सासू ससरा थोड़ा समझदार होना चाहिए वही टाइम पे, पर वे कहिए कि बस घर को काम को बहुत सब बाका ऊपर सौंप दी दो।
0: ओहो,
1: यो भी करनो वो भी करनो, सुबह भेगो उठनो रातें मोड़ो सुनो, दिन में रेस्ट कोनी करनी और घर को काम करनो।
0: यानी पूरी की पूरी गृहस्थी को बाहर ई उम्र में।
1: हाँ। और पियर में तो काम की दो कोनी।
0: सही बात है।
1: तो भाई कभी भी बनाई तो एकदम परफेक्ट तो कोनी बनी।
0: हाँ, वो तो अनुभव से धीरे धीरे देख ज्ञान मान कि आपा भी तो अभ्य तक सीख रहा है।
1: वो सीखो कह के जन्म लेवे वध्यू इंसान अनी
0: मृत्यु तक।
1: हाँ,
0: सीखे
1: मृत्यु तक वो सीखे ही करे।
0: हाँ,
1: सीखे ही करे तो भी यूं नहीं कह सका मैं परफेक्ट हूँ।
0: मैं परफेक्ट हूँ क्योंकि कही है लर्निंग इज टोटल लाइफ ऑफ ए पार्ट।
1: हाँ, एक आरती बता दे अपना श्रोता बंधु।
0: हाँ, भाई ये वही है, जीवन को एक पर्याय है।
1: बिल्कुल। तो कंचन अबे वह सब काम वकापू कराता।
0: हाँ।
1: अबे वही टाबरी जी तो काम आछो कोनी हो तो सासू जी लड़ लड़ करता, ससुरा जी गालिया देता, पाचे नाना अंदर देवर ये है वे भी माँ बाप का लारे लागन माने भाभी ने सुनाता कई
0: बता का बता। यानी ज्ञान मान ले कि भी पुराना जमाना में लगभग ज्यादातर ज्ञान की तो केस होता।
1: हाँ, ये केस ज्यादा ही होता।
0: हाँ।
1: बाकी भावना नहीं समझता। आज अपना ही बच्चा है उम्र में वे तो आपा माने कतरो काम भरावा, प्यार तो देवा नहीं देवा।
0: प्यार तो देवा
1: कि कोई प्यार नहीं मिलतो।
0: हाँ।
1: पति देव 17 साल की उम्र में।
0: तो देख भाई दूसरो परिवेश, दूसरो गाँव, दूसरे।
1: हाँ?
0: लोग या मैं बेचारी ने ज्ञान देख ले कि भी कतरो एक
1: एडजस्ट बेता भी टाइम लागे।
0: टाइम लाग गए
1: और 17 साल का पति की उम्र अब वो भी कहीं समझतो को नहीं।
0: हाँ,
1: तो पढ़ते हो।
0: सही है।
1: तो बाहर भी पढ़ रहे हो, पचे बेटा ने तो भेज दी दो कॉलेज में पढ़वा का लिए बाने।
0: हाँ।
1: पियर वाला क्यों कि भाई माई माँ की बेटी ने ले जावा।
0: हाँ।
1: के जदि बेटा होशियार वेन आ जाए।
0: हाँ,
1: जत्र माँ की छोरी मोटी हो जाए पचे भेजा।
0: हाँ।
1: तो नहीं इन्हें कटे ले जाओ।
0: अच्छा।
1: इन्हें तो कोनी भेजा। इन्हें भेजे कोनी क्योंकि भाई अबे बिना पैसा की नौकरा नहीं मिल गई।
0: हाँ।
1: तो सब काम कराता विकापो
0: सब भाई कदे कदे तो घणो ही शोषण होते। और पुराना जमाना की तो बात ही अलग होती है।
1: सही बात
0: एक
1: है।
0: तो देख कम उम्र में पढ़ना देता है, कम उम्र में पढ़ना देता और वही वाली बात की आपा कहता तो चोखा कोनी लागे कि भाई यहाँ बिना पिया की नौकरानी मिल गई। पर कहिए कि एक मानसिकता तो ज्ञान की होती घना लोग।
1: मानसिकता होती कि चलो यार यही घर में तो काम करी
0: तो काम करी।
1: हाँ। तो वो कह जत्र आपा काम ने छोड़ता जावा आलस से अपना ऊपर चढ़तो जावे।
0: हाँ।
1: और पचे अपना लिए पानी के गिलास भरता भी जोरावा लाग
0: जोर आवा लाग जाए। तो बैठे तो कहिए सास तो भाई ज्ञान आराम से कि भाई चल अब तो बहु आ गई।
1: हाँ,
0: मैं कई काम करूं, मैं काम करती चौकी को नहीं लागू। तरह तरह की मानसिकता हुआ।
1: तरह तरह की मानसिकता हो तो आसान
0: धीरे
1: सब काम करा था। और चे बीचे यदि छुट्टी वेती जो हस्बैंड भी आते हो।
0: हाँ।
1: तो भी 16 साल की उम्र में तो एक टाबरी होगी। हर प्रकार को शोषण विकास तो ही हो पचे तो मारपीट भी करवा लागी सा
0: यान मान ले भी आपा फिजिकली मानसिक और इमोशनली सभी तरह से
1: इमोशनली शारीरिक हर ऋतु शोषण
0: तो
1: और हस्बैंड तो उम्र परिपक्व नहीं ही तो वो भी नहीं सुनतो
0: वो भी ना समझी हो
1: ना समझ हो और पचे माँ बाप भाई कहीं भी कहता या आसी है थू परो जावे कॉलेज या आसी है या वसी है
0: यानी तो, के मान ले कि रोज को कले को वातावरण ही बन जाता
1: हाँ
0: और पूरी गृहस्थी खराब
1: अभी
0: यान देख ले ई वास्ते ही तो ई दर्द ने वो कही है कि टाबर अपने घर में अपनी माँ के लारे होते देखा है तो टाबर भी चोखो को नहीं हुआ है बापे भी इफेक्ट पड़े
1: अरे बच्चों भी हर पल दरब तो रहे भयभीत रहे
0: भयभीत रहे
1: वे नहीं वो डर लागे मारी माँ ने कटी मारी नहीं और फिर बेटी होगी तो और सब नाराज अगर है तो बेटी ने जन्म दी दो
0: सही बात है
1: दो साल की बेटी हुई पाचो दूसरो बेटो हो गयो और विकास साथ में व्यवहार बच्चों को बच्चों बनो रही हो
0: ये वास्ते तू कही है आज यान को गीत लगान सुन रही है मैंने अब समझ में आयो है
1: अबे मैं काले ही विकी

0: भी कोनी जावा देता। माँ बाप कहता माँ की छोरी आल तक नानी है तेरी उम्र कोई नहीं कदी तो भेजो ही ना
1: कदी तो भेजो
0: भेजे दो दिन में पाचा बुला लेता।
1: अरे घना जना तो कपड़ा भी कोनी देवे।
0: हाँ
1: देखो खुद तो देवे नहीं पैरवा के वास्ते भी। हाँ। एक उम्र हो भी पहनवा करवा को चाव हो
0: यही उम्र हो जो खावा पीवा की पैरवा ओढ़वा की।
1: हाँ और जचे भी
0: जचे भी सही बात है।
1: और भाई देखो रवे तो टाबर भी कही है सोसाइटी में ई वास्ते वा की इच्छा भी वो एक दूसरे ने देख
0: बिल्कुल तो भी नहीं देता कोनी तो
1: देवे कोनी और पियर जावा कोनी। हाँ, देवे
0: अनपियर भी नहीं जावा देवे तो बच्चे कई करे दो दिन जावा दे नहीं भाई बस।
1: हाँ
0: घरे काम है अबे नहीं रेवा दाका की अबे बने तो सबने आलस आ गयो अबे काम कौन करे
1: काम कौन
0: या है जो कर रही है सीधो काम मल रो है। और इंसान ढलतो ढलतो ढल जावे और काम भी सीख जावे पर एक टाइम तो लागे ना
1: टाइम तो
0: हर घर को सिस्टम अलग है।
1: बस
0: तो 9 साल बाद सेन की दो और पछे भी के कोई सखी सहेलिया वे का पियर का रिश्तेदार विना सपोर्ट की दो के तू कतराक दन सेन करी।
1: हाँ भी मरो तो नहीं जावे नहीं।
0: हाँ,
1: सेन तो करनो आछो है थोड़ो सहन करो थोड़ो सो एडजस्ट करो वो सब तो ठीक है पर कहीं अति तो बुरी हुआ है
0: अति हो जावे विको अंत हो भी होवे।
1: बस
0: अब दो टाबर हो गया दो टाबर के खावा पिया का ठिकाना नहीं विके कपड़ा का ठिकाना नहीं आदमी ने भी ऐसे मुट्ठी में कर दी दो तो वो वकी सुनी कोई नहीं
1: सुनी को
0: बच्चा
1: नहीं।
0: पे भी जीव को नहीं तो बच्चे सबके ऊपर यूं थोड़ी जिंदगी चाले और दिखवा में खूब रूपाली।
1: हाँ तो और ज्ञान की भी होवे भाई और रंग रूप का ही है भगवान बनाए रो है।
0: हाँ वो सही है। अब 14 साल की उम्र में विके शादी वेगी तो वह 5वीं 6वीं भाणन बस
1: सही बात है।
0: ज्यादा पढ़े भी कोई नहीं क्योंकि माँ बाप की परिस्थिति एड़ी ही कोनी।
1: हाँ। हाँ।
0: और आछो घर मल रहे हो पैसा वालो तो पढ़ना दीदी
1: बस कदे कदे वो भी तो लालच मार जावे कि अच्छो घर है पर अच्छो घर पाछे कई नाच न चावे वो तो पाछे पत्तो लाग गए
0: पाछे खबर पड़े तो भाई कई होशियार हो गयो भाई अच्छी नौकरी लाग गयो।
1: हाँ।
0: भाई डिसीजन लीदो क्योंकि कतरी बार भाई देखो विका सामने भी बेन ने अशांति ससुराल में मारनो कुटनो।
1: हाँ।
0: भाई की भी वे शरम नहीं राखी।
1: हाँ।
0: जदि पचे भाई क्यों माँ बाप ने भाई अभी बेन ने आपने नहीं भेजने नहीं तो ये पाचे भाणेजा भाणेजी की जिंदगी खराब हो जाए याने भी नहीं पढ़ाई या का ऊपर खर्चो नहीं और वह भी सोचो कि आदमी भी अपनो नहीं है तो घर में रेवा को कोई
1: रेवा
0: मतलब
1: को
0: नहीं है।
1: मतलब
0: तो पचे बात छोड़ दी दो और बड़ी मुश्किल हुई छोड़ो भी सरल नहीं हो वे।
1: हाँ भाई कतो इमोशनली अटैचमेंट हो जावे। हाँ,
0: अटैचमेंट हो गए और ससुराल वाला ऐसे छोड़े थोड़
1: यहाँ छोड़े नहीं और देख एक महिला ने तो कतरी इज्जत बेइज्जती को कतरो कतरो सोचा है
0: घनो सोचनो पड़े।
1: हाँ, कि भी लोग यहाँ कही वो तो आपने ऊपर लेन देखा बेचारी।
0: हाँ,
1: कि भी लोग मन ही ओछी नीची बोली है मारे लिए यहाँ की खबर दे ही
0: मारा छोटा भाई बहन का कई हो या कोई बेटी दे ही नहीं गई मारे बहन को ब्याह वेक नहीं वेक कतरो ही सोचे
1: कतरो ही सोचे पियर को ससुराल को अड़ोस पड़ोस को समाज को। नारी की तो बहन ज्ञान कहूँ कि धन्य जो एडजस्ट कर जावे।
0: सही बात है। तो भाई भी परन गयो बहन भी परन गई दो बहना ने एक भाई है।
1: हाँ।
0: पचे डिसीजन ले दो पचे सब क्यों अबे तू घबरा मत माँ थारो सपोर्ट करा।
1: हाँ।
0: और तू छोड़ दे।
1: हाँ।
0: तो चल कंचन टेम हो गयो है एक गीत सुनवा को पचे आपा बात करा पचे आगे कई हुए।
1: हाँ भाई बिल्कुल सही
0: तो यो ही गीत सुना था छोटी सी उम्र परना यो बाबू सा
1: बहुत अच्छो गीत है सही
0: तो सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: वीरा लाड लड़ाई बाली उम्र में परनाई मने दूर परनाई ओ वीरा लाड कला वीरा लाड लड़ाई बाली उम्र में परनाई।

0: भाई वाह वाह, बिल्कुल सही बात है। साथ साथ लारे लारे बहन भाई देखो क्यान खेले हैं टाबर, और पछे पढ़ना देवे दूर।
1: सही बात है,
0: तो
1: दूर पढ़ना देवे, फिर बाली उम्र में पढ़ना में, छोटी उम्र में पढ़ना।
0: हाँ, बाली उम्र तो ज्ञान की होवे। चल एक खेल खिलौना ज्ञान
1: हाँ, गुड्डा गुड्डी को खेल वे जो वही टाइम पे तो यू ही लागे
0: बस। और वो आकर्षण कतरे दिन रहे,
1: वो तो जदि हाँ। जमीन पे उतरा एक वो क्या चार दिन की चांदनी पछे अंधारी
0: हाँ।
1: रात।
0: तो पछे पता लग गए कि भाई, और देखो ससुराल वाला या भी तो सुनवा के लिए तैयार नहीं हुआ है कि मैंने याद आ रही है।
1: हाँ अरे भाई क्यों अटे काम करना पड़ रहे जो पियर की याद आ रही।
0: काई बात बताऊं कि भी निजी भी अनुभव बताऊं तो मैं देखे, वो बात तो बिल्कुल सही है कि ससुराल वाला कोई भी यो नहीं मानना चाहे कि भी मैंने आज याद आ रही।
1: हाँ
0: या पियर की याद आ रही है, या हमारे कतरी बार तो ज्ञान को हुआ है कि पियर को नाम लेते भड़क जावे।
1: सही कंचन, बिल्कुल एडो ही होवे है पियर को नाम तो भाई जानी घर में जन्म लिदो जटा मोटा हुआ बटा की याद नहीं आई,
0: बैठे की याद नहीं आई। और वो अनुभव मैं एक मारी टीचर को भी बता रही हूँ कि भाई हाँ, वो बतावा है कि भी मारे तो ससुराल में काई है एक दो बार की भी पियर को नाम ले दी दो तो बस मारे सास ससुर तो बात को तिल को ताड़ बना लियो। और जदे पाछे मैं भी कसम खाली सोगंद खाली कि कद्दे भी जाके आगे ना तो मैं बात करूं और न ही कोई वाकू नाम लू
1: चर्चा ले
0: चर्चा करूं।
1: सही बात
0: देखो
1: है,
0: भाई कतरो मन मारनो पड़े,
1: घणो मन मारनो पड़े भाई।
0: और वो
1: तो
0: तो शिक्षित नारी कह रही है।
1: हाँ जो शिक्षित नारी तो अनपढ़ को बच्चे कई
0: तो
1: कहना,
0: अनपढ़ को तो
1: तो
0: कई
1: वाणी बेन का तो मना आश्चर्य होवे केड़ कम पड़ोड़ी है तो विकल आ रहे हालत खराब ही और
0: हाँ
1: विक भी पियर थोड़ो दूरी हो।
0: हाँ
1: हाँ पढ़ना
0: हाँ
1: ही छेटी ही पैसा
0: हाँ
1: वाला देकन पढ़ना दीदी छोरी आराम करी बड़े वो दूर वो भाई छेटी वेन छोरी सुखी वेती वे तो आपने कही है तो छेटी भी दे
0: हाँ
1: दी दो तो घड़ी घड़ी कोई आ नहीं सके,
0: आ नहीं
1: पर
0: सका
1: अड़ोस पड़ोस का द्वारा रिश्तेदारी का द्वारा ठा पड़ जावे कि माँ की छोरी सुखी कोनी
0: सुखी कोनी है।
1: तो पहली तो वह केती भी कोनी अच्छे केवा लागी भाई घणो ही होवे तो केणो ही पड़े।
0: सही बात
1: और
0: है
1: जदि भाई की माँ बाप की वे लोग शरम भूल गया
0: हाँ
1: पछे माँ बाप की ओक नहीं अपनी शरम नहीं है तो अबे आपने छोड़ो तो घनी मुश्किल वाणी बेटी ने तलाक दी दो क्योंकि वे देवा ही तैयार नहीं भरण पोषण को कहीं भी कोनी दी दो,
0: बताओ।
1: भरण पोषण को कहीं नहीं दी दो, जदि वे ने जावा दी दो और दो टाबर ने क्या ले जाओ अटे नहीं राखनो।
0: हाँ
1: वे तो वहां के छोरा के यूं है एक दूसरी पढ़ना देवा पर या छोरी नटगी मारे कटे नहीं परन्नो और भाई अबे ज्यादा पढ़ोड़ी कोई ना। पचे विने पियर लाया विने पार्लर को काम सिखायो और सिलाई सिखाई
0: सिलाई
1: तो तू
0: सिखाई
1: 6 महीना भूल जा कहीं नहीं माँ कह रहा खर्चो, तू
0: हाँ
1: 6 महीना थारा काम पे ध्यान दे।
0: हाँ
1: टाबर ही थोड़ा थोड़ा मोटा हो गया और वे क्यों टाबर पे भी माँ ध्यान देवा, तू आछो पार्लर को कोर्स कर ले और सिलाई सीख ले
0: सिलाई सीख ले
1: जो थाना आछो आ जाए वही करवा लाग जा जे।
0: बहुत
1: और पार्लर
0: बढ़िया
1: को काम सीखो तो पचे कंचन पार्लर में तो चांदी चांदी
0: हाँ।
1: आपने काम आ जाए
0: आजकल तो घणो ही
1: छावे।
0: चल रही हो
1: हाँ और ज्यादा पडोड़ी कोने पर देखो नाम हाम सब आवे और वह तो पार्लर को करे
0: हाँ
1: तो पार्लर भी के
0: देखो
1: बढ़िया चालवा लागू धीरे धीरे धीरे। पहले आईब्रो चालू की दी, आईब्रो तो आजकल हर कोई करावे है 20-20, 30-30
0: गांव
1: रुपया
0: गांव में
1: लेवे।
0: कूणा कूणा पे
1: हाँ
0: खुल गया
1: और
0: हाँ
1: पचे बिना बाने भी जावा की छूट दे दी थी थाने जट्टू ऑर्डर आवे बटे जाओ और काम
0: बैठे
1: करो
0: सही,
1: तो अबे वा वी के पार्लर को काम बढ़िया वी के
0: यानी
1: चाल गयो
0: अपने पैर पे खड़ी होगी।
1: खड़ी होगी।
0: देखो भाई नहीं तो अतरी कम उम्र के मायने पढ़ना देवे तो कतरो को टाबर को अभी तो इमोशंस कतरे हुआ अपने परिवार के प्रति और वाके प्रति, और ससुराल वाला सुने नहीं ज्ञान का अत्याचार हुआ है तो कतरो मुश्किल हुआ है।
1: खतरों मुश्किल
0: पण
1: हुए
0: देख भाई अबे तो कही बाल विवाह हो गया पूरी तरह से लगभग खत्म।
1: आज भी कंचन कटे कटे छाने छाने वेरिया।
0: हाँ वो तो हो रहा है
1: हाँ अबे इको भी किदो बाल विवाह तो ठानी पड़वा दीदी यह भी घनी
0: अच्छा
1: मोटी कोई ने उम्र में आज 50-55 साल की है। हाँ
0: हाँ
1: तो खानगी में किदो क्योंकि
0: सही
1: कटे
0: बात
1: सरकार ने खबर पड़ जाए तो
0: हाँ
1: माँ बाप अनि लालचू कर दी दो छोरी अच्छा घर में जा रही और ये भी खूब प्रलोभन दी दो ताकि छोरी ने यूं रहा का
0: न्यू
1: ताकि
0: रखा
1: छोरी
0: न्यू
1: ने यूं
0: रखा
1: रहा का
0: हाँ। कबा में तो
1: तो
0: काई है
1: हाँ तो असान ब्याह भी हो तो वे बेन जी रोता जा रहे कहीं भी देखो आज सुखी वे जाओ पर पहला दुख का दिन कदी कोई भूले को नहीं
0: कोई भूले को नहीं सही बात है।
1: तो वे रोता जा रहे सब बात बताई मारे साथ में एडो एडो हुआ। अब आज ये मस्त है पूरी रीतु तलाक हो गयो के भरण पोषण के 1 रुपये नहीं दे दो तो मान गया भाई मत दो शांति छावे
0: आपनी मतलब मेहनत बहुत रंग लावे
1: रंग लावे तो पचे भी ने लाग्यो कि मैं पार्लर को कैच कर सकू तो महीना 2 महीना सिलाई सीखन बंद कर दी दो
0: अच्छा
1: पूरो फोकस पार्लर पे ध्यान दी दो और अच्छो सीख गई और वी के बढ़िया चालवा भी लाग्यो और थोड़े है होशियारी है तो बोलता करता सब आ गयो।
0: सब आ गयो।
1: बोलू की पैसा वाला घर में ब्याह हो तो वाकई थोड़ी लैंग्वेज तो हाउज वे बहू ने भले गाली गलोच करी लोगा का सामने तो अच्छा बोली।
0: सही बात है, ओ बिल्कुल सही कही तू कि वाको का ये है कि जो पिया वाला है वाको रहन सहन माँ बाप भी का ही देखे रहन सहन देख ले वे और तो का ही है कि भैया रहन सहन तो बनावटी आजकल सभी कन ऊंचाई रखवा की कोशिश कर
1: बस वो दिखावो ज्यादा हो
0: दिखावो ज्यादा हुआ है। तो वास्ते का ही है कि घनी बार तो पहचान में भी नहीं आवा कि मनख के मायने का ही है।
1: हाँ,
0: है पहले तो कम से कम है जो यान मान ले कि भी छोटा तबका का मान लो कि ये होता तो कम से कम वो दिखता कि भी हाँ एक करेक्टर का भी ज्ञान हुई।
1: हाँ हाँ जो इंसान पहली कही है जो महीने हो वही बाने हो
0: बस
1: आज तो महीने कही अलग बाने कही अलग
0: माने कुछ अलग। हाँ
1: तो अबे वाके रिक मैं अबे आराम में हूँ और पियर का बड़े घर ले ली दो किराया पे।
0: हाँ,
1: कनी पाच भाई भाभी है भतीजा भतीजी है काले मन मुटाव है रिश्तो टूटे इका पेली वो कह पानी आवा के पेली पाल बांध दो बढ़िया
0: पाल बांध दो।
1: हाँ
0: बिल्कुल सही करो भैया
1: तो समझदारी हूँ चाली।
0: हाँ हाँ तो ये बात निभी गई
1: निभी गई और आज माँ बाप भाई बहन आवे सब राजी है बहन कछोरी मेहनत की दी और मेहनत तो ऊंची आ रही है और स्वाभिमानु जीवन जी रही है
0: स्वाभिमानु जीवन। हाँ
1: टाबर को खर्चो गामड़ा में रहवे अनि वास्ते ज्यादा खर्चो कोई नहीं पास पास में ऑर्डर आवे बाने परी जावे आ जावे छोरा छोरी ने तो माँ बाप ही हाँ चब लेवे भाई सपोर्ट तो करे जदी बच्ची कहीं भी कर सके
0: बस
1: ना?
0: वो तो है ही भाई माँ बाप जान की कोई चीज नहीं हुए।
1: हाँ
0: तो जो दुख दर्द वाने महसूस हुए नहीं वो ओने नहीं हुए
1: नहीं होवे क्योंकि माँ पापनी में तो ही अपनी वे
0: अपनी
1: जो कहावत है पापनी नहीं वे पर फिर भी दुनिया में केवे पापनी में तो ही अपनी वे
0: तो ही अपनी हुए।
1: हाँ
0: अब देख लो भाई कोई बाहर के लोगों के वास्ते कोई कितनी सख्त हो कुछ भी हो पर माँ की ममता तो हुए ही हुए।
1: अरे हुए ही है नारियल की नियान वे
0: वास्ते।
1: हाँ नारियल की नियान वे ऊपर कड़क वे पर अंदर सॉफ्ट वे
0: सॉफ्ट हुए
1: तो वहां कह रही कि मैं अच्छो कमा भी लू बानू भी ऑर्डर ले लू और टाबर ने भी अच्छो पढ़ा रही
0: हूँ।
1: तो देखो भाई जीवन में कई भी तकलीफ आवे मान लो ये तो कम उम्र में पढ़ना ही और तकलीफ आई घना जना ने परिपक्व उम्र में पढ़ना आवे तो भी तकलीफ आवे
0: घनी बार आवे। अठे तो और थोड़ी सी एक यो समस्या है कि छोटो पौधो लगावा आपा तो कहिए कि जमीन में थोड़ो सो एडजस्ट हो जावे बढ़ जावे।
1: हाँ
0: एक यानी मैं बाल विवाह की बात को नहीं कर रही अठे
1: हाँ, हाँ,
0: पर एक लगभग होती भी उम्र पढ़ना है तो है ना।
1: हाँ
0: पर कहिए आजकल और ट्रेंड चाल गयो भाई कोई 30 की होगी कोई 32 की होगी
1: ओवर एज वेगी
0: वो ओवर एज होगी और वठे एडजस्टमेंट को कहिए कि बड़ो वृक्ष ले जान कठे प्रत्यारोपित करे नहीं लगावा आपा तो भूमि में एडजस्ट हुआ में थोड़ी सी मुश्किल हो जावे।
1: हाँ सही
0: तो बात है। अबे कि वाको नेचर वाको स्वभाव वाका विचार वो मुख्य हो जावे।
1: वो कहवे के काचा हांडा पे घर छेटे पाका पे नहीं छेटे।
0: हाँ,
1: एक परिपक्व उम्र हो जावे तो वह वणी माहौल में ढल जावे तो पछे भाई एडजस्ट और खुद में बदलाव करवा को वे भी नहीं भी में
0: मतलब अति परिपक्व भी नहीं होने आप यानी कह रहे कि बाल विवाह को मतलब भाई वो ही है कि भाई आप 20-22 ने भी बाल विवाह कह रहे हैं वो नहीं है।
1: हाँ
0: बाल विवाह की जो आयु है वहां से नीचे नहीं होनी चाहिए।
1: हाँ नीचे नहीं होनी चाहिए और घनी ओवर एज भी नहीं होनी चाहिए। 24-25 साल की उम्र में छोरिया ने पढ़ना दो जत्र छोरिया भण भी काटे और नौकरी भी लाग जाए।
0: सही बात है और
1: जो
0: वो
1: भी
0: तो...
1: कर वो छावे वो कर सके।
0: हाँ
1: तो चाल भाई कंचन अनिवास में गीत सुन रही ही मार्मिक गीत तो पर अबे जावा को टाइम हो गया है।
0: तो गीत घणो चोखो लाग्यो भाई। वो मैं भी सोची कि पहले इन्हें सुन लियो इको आनंद ले लूं पर कहिए मैं तो धूजनी चढ़ गई आज वो गीत
1: गीत एड़ो है ना। पर चलो कंचन क्योंकि आपने लड़वा वाला कोई को नहीं पर जिम्मेदारी आपने आपा समझ सका।
0: सही बात है जिम्मेदारी समझा जदे ही तो मैं आठा आ सका।
1: हाँ तो टाइम पे आवा और टाइम पे जावा ताकि घर वाला ही राजी और सब राजी
0: सब
1: श्रोता बंधु भी राजी
0: बिल्कुल ताकि आपा मिलता रहा
1: मिलता रहा। तो आप जे भाई राम राम
0: राम राम भाई राम राम।
1: आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।

0: तो ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्ची की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य

0: स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम बाल संसार में। आज हम एक महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, बचपन की निष्पक्षता में मन, बुद्धि एवं संस्कार का विकास। बचपन जीवन का वह चरण है जब बच्चों का मन निष्पक्ष और ग्रहणशील होता है। यह समय उनके कौतूहल, रचनात्मकता, सहानुभूति, करुणा, नैतिकता और मूल्यों के विकास का होता है। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे बचपन की निष्पक्षता बच्चों के मन, बुद्धि और संस्कार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु कौतूहल और जिज्ञासा, बच्चों की जन्मजात जिज्ञासा और नई चीजों को जानने की उत्सुकता। रचनात्मकता और कल्पना, बच्चों की रचनात्मक सोच और नई चीजों का निर्माण करने की क्षमता। सहानुभूति और करुणा, दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे सहानुभूति रखने की क्षमता। नैतिकता और मूल्य, नैतिकता और मूल्यों का विकास जो सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। संस्कार, परिवार, समाज और शिक्षा के माध्यम से बच्चों में संस्कारों का विकास। विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ विशेषज्ञ और शिक्षाविद जो बच्चों के मनोविज्ञान और विकास पर अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम सभी मिलकर बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करें जो उनकी जिज्ञासा, रचनात्मकता, सहानुभूति और नैतिकता को प्रोत्साहित करे। तो श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे हम अपने बच्चों के मन, बुद्धि और संस्कार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बचपन की निष्पक्षता जो मन, बुद्धि और संस्कार से जुड़ा हुआ है। इस विषय को लेकर, इस पाठ्यक्रम को लेकर हम बातें करने वाले हैं। और पिछले कुछ एपिसोड में हमने सार्थकता पर, नवीनता पर बातें की, तो आज मन, बुद्धि और संस्कार, बच्चों का निश्चल मन को लेकर काम करेंगे। तो आइए, हमेशा की तरह अजय सर हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, जिनसे हम लोग इस विषय को लेकर बाल मनोविज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं बाल संसार इस कार्यक्रम में। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: बाल संसार। बहुत आनंद में, बहुत अच्छा लग रहा है। बाल संसार एक नए आयाम को स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ रहा है और बहुत ही महीन बातों को, बहुत ही सूक्ष्म बातों को आपने प्रश्न के माध्यम से उठाते भी हैं और उसके समाधान के लिए हम लोग मिलकर चर्चा करते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है।
1: तो आइए आज हम लोग बचपन की निष्पक्षता और निर्मलता, मन, बुद्धि और संस्कार, इस विषय को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहला एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि बचपन की निष्पक्षता बच्चों के मन, बुद्धि और संस्कार के विकास में कैसे मदद करती हैं, इस विषय पर कुछ बातें बताइए।
2: बहुत सूक्ष्म बात को लेकर आपने आज का मुद्दा उठाया है और निश्चित तौर पर जब बच्चों को निष्पक्ष स्थिति में हम देखते हैं तो उनकी निष्पक्षता को अलग अलग तरीके से जीवन में हम अनुभव भी करते हैं। एक उदाहरण में लेता हूँ कि एक पेपर उन्होंने अपनी कॉपी में से निकाल के और इसकी उसकी बॉल बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब

0: हमारे मन में लगता है कि बॉल का मतलब है कि जो प्लास्टिक की बॉल है या रबड़ की बॉल है, भले वो खेलने में बच्चे यूज करते हों, लेकिन वो बच्चे के पास में रबड़ या प्लास्टिक की बॉल नहीं है, तो उसने कागज की एक बॉल बना के दिया। अब यहाँ पर एक उसके मन में अपेक्षा है कि मुझे फीडबैक अच्छा मिले। अब हमारे हमारे साथ क्या है कि हम लोग मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, और हम तुरंत बोलने वाले हैं कि अभी ये भी कोई बॉल है क्या, और ऐसे बॉल बनती है क्या। मतलब अगर रबर या प्लास्टिक की बच्चा बॉल नहीं बना सकता, लेकिन वो उस पेपर से बॉल के समकक्ष या समतुल्य या उसको एक शेप देने का प्रयास कर रहा है कि पेपर हमारा चौकोर है, चौकोर को वो गोल करता है या कुछ विधि से, और नहीं हो पाता है तो लास्ट में वो दोनों हाथों में उसको मूव करते हुए छोटी सी बॉल बना के देता है। तो हम उस स्थिति में उसको एक निराशाजनक जवाब देने की स्थिति में रहते हैं, और लगता है कि अरे भाई ये थोड़ी ना तुम्हारी, ये कोई सोच है क्या, ऐसा होना चाहिए क्या। एक तो तुमने पेपर कॉपी का निकाल के उसको वेस्ट कर दिया, ऊपर से ये छोटी सी बॉल, ये बॉल ले गया, इसको बॉल स्वीकार नहीं कर, जाओ तुम एक अच्छी बॉल बना के लाओ। अब इस पूरी परिस्थिति का अवलोकन आप करें तो आप पाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं एक छोटा सा उदाहरण केवल बॉल को लेके बोल रहा हूँ, उदाहरण के लिए उसने एक बोट बनाया, तो क्या उस बोट को हम स्वीकार कर लेंगे। अब वो नाव अगर बनाता है पेपर की, तो आप तैयार हैं इस बात के लिए कि एक बड़े से पात्र में आप जल लेंगे और बहुत खुश होंगे कि चलो पूरे घर के परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, टेबल पर इस पात्र को रखते हैं, इस नाव को हम चलाने का प्रयास करते हैं। अब वहाँ भी हमारा जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, हम उसको तुरंत बहुत बड़ा मान के चल रहे हैं कि नहीं, नाव का मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक, जैसी नाव होती है वैसी होना चाहिए, वैसा ही तुमको बनाना चाहिए, और तुम बना नहीं पाते हो, उसके बाद भी हमारा टाइम तुम वेस्ट करते हो, दिखाते हो। कुल मिला के ये सारी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन वो क्या चाहता है। फिर मैं एक प्रश्न आपके सामने छोड़ता हूँ, एक और तीसरी बात रखना है कि प्रयास करता हूँ कि बच्चे अक्सर स्कूल के अंदर छोटा सा एयरक्राफ्ट बनाने का प्रयास करते हैं। अब उसने कुछ बनाया और वो रॉकेट के मूड में है या फ्लाइंग करने के मूड में, अब वो उसको भी क्लास में वो फूंकता है, बनाता है, उसको डांट पड़ती है, टीचर के पास जाता है, कान पकड़ते हैं टीचर, फिर वो घर आता है, फिर एक बार ट्राई करता है कि मैं बनाऊँ, फिर वो आपको दिखाता है। हम क्या कर रहे हैं, पिछली बातों में गए, अभी तुमने बॉल बनाई उसमें तुम असफल हो गए, एक नाव बनाई कागज से उसमें तुम असफल हो गए, अब तुम चले हो हवाई जहाज बनाने, ये उड़ेगा क्या। अब ना बॉल उसको खेलने के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, ना उस नाव से उसको मोटिवेट कर रहे हैं, और ना ही वो कागज के जहाज से जिसको वो फूंक के उड़ा रहा है उससे आप उसको मोटिवेट कर पा रहे हैं। तीनों ही चीज आपके रिजेक्शन जोन में चली गई और डांट डपट के आपने चीजों को एक तरफ कर दिया। अब ये उदाहरण मैंने क्यों लिया, ये इसलिए लिया कि हम सब बचपन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोसेस को करते थे, लेकिन रेयर के इसमें टेक्निकल नो हाउ वेल नोन होने पर जो पेपर की फोल्डिंग है वो बिल्कुल आप सिस्टमेटिक करेंगे, जरा से उसमें फूंक देंगे तो बॉल बिल्कुल खिल जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि वो बॉल बनाने में भी आपको कई साल लगे, वो नाव बनाने में भी आपको कई साल लगे, वो बिल्कुल नोक उसकी बराबर हो हवाई जहाज की और उसको आप बना लें और बिल्कुल आप टारगेट ओरिएंटेड प्रोसेस में लेके जाएं, टारगेट अचीवमेंट के लिए निशाने लगाने की आप बात करें, तो ये सारा चीज भी आपने एक लंबे समय तक किया है, उसमें जूझे हैं। लेकिन जब उसका कोई निष्कर्ष उस समय आपने क्या निकाला था मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय वो बच्चा, तीन शब्दों को मैं यहाँ दे रहा हूँ कि उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो संस्कार है, वो है तो एक आत्मा ना, और ये आत्मा के कंपोनेंट है, लेकिन उस बच्चे की निश्चलता को जब वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता है तो उसमें मन, बुद्धि और संस्कार तीनों का समावेश रहता है, और उस समावेश में उसकी जो अपेक्षा है वो भावना के बदले कुछ आपसे चाह रहा है, इमोशंस के बदले कुछ फीडबैक चाह रहा है, एक्सपेक्टेशंस है उसके मन में, उसके बदले वो कुछ फीडबैक चाह रहा है, लेकिन हम निरंतर उसको कुठाराघात कर रहे हैं। कुठाराघात इससे मतलब है कि हम बार बार उसको दबा रहे हैं, डोंट माइंड कर दे रहे हैं, डोंट केयर कर दे रहे हैं, और वो आपकी एक मैच्योर सिस्टम के अंदर वो चीज़ कहीं फिट नहीं बैठ रही है। अब बच्चों को जन्म तो दे दिया हमने, लेकिन उसके साथ जो भाई जी ने कई बार प्रश्न भी करते हैं कि खेलना कूदना, और वो सारा कुछ खेलना कूदना इसलिए नहीं कि वो ऑफिस का टाइम लेना चाह रहा है या आपका कुछ एकेडमिक लाइफ में कुछ बैरियर, वो आपकी जो स्पीड है, जो वर्किंग कल्चर अभी क्रिएट हो गया है और जो कार्य का दबाव है, चाहे आप मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हों या किसी स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उस कल्चर के कारण जो प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं, जिस स्ट्रेस के साथ आप जी रहे हैं, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने का आपके घर में एक रिसोर्स है, लेकिन उसके प्रति हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है। यही किसी दूसरे परिवार में आप जाएंगे और वो बच्चा कुछ बोलना चाहेगा तो वहाँ आप एंजॉय कर रहे हैं, नहीं नहीं बहुत अच्छा बेटा तुमने, बड़ा रिस्पेक्ट किया मेरा और इतनी चीज बनाई, क्योंकि वहाँ आपकी मजबूरी है कि किसी दूसरे के घर में उस बच्चे को मोटिवेट करना है, उसके लिए सारा फीडबैक आपने दे दिया, वो बच्चा आपका देख भी रहा है कि जब यहाँ किसी और की बारी है तो अपनी इमेज बिल्डिंग के चक्कर में हमने सारा बिहेवियर बिल्कुल मैच्योर फॉर्म में और उसको मैनेज कर लिया कुल मिला के कहें, लेकिन जब वो हमारा बच्चा ही हमसे बातचीत करना चाह रहा है तो हम उसे जुड़ के अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते थे, इन्जॉयमेंट कर सकते थे। आपको अलग से अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में कन्वर्ट करने के लिए जाना नहीं था, कुछ पैसा नहीं खर्च होना था, लेकिन फ्री के संसाधन होने के बावजूद भी हम ना अपना भला कर पाए और ना बच्चों का भला कर पाए, और परिवार में वो बच्चा लास्ट में कहूँगा कि निश्चल मन से आया था, वो मन महसूस के कोने में बैठ गया और ये उसने मान लिया कि अपन पैदा तो हो गए लेकिन अपन ठीक नहीं है कुल मिला के, और वो फिर एक नई स्थिति में अर्थात निराशा में डिप्रेशन में जा सकता है। वहाँ पर कुछ बच्चे हो सकते हैं कि मैनेज करके और थोड़ा सा बाहर आ जाएं, ठीक है आपने बोल दिया भोजन कर लो, चलो बेटा बात जो हो गई सो डोंट माइंड कर दो, लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कॉन्शियस माइंड से जो बच्चा देख रहा है, हमें परसीव कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, जी रहा है, ये कॉन्शियस माइंड से फिल्टर होके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद वही बच्चा जब वो अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करेगा तो माता पिता से कट ऑफ होगा, फ्रेंड सर्कल में वो शेयर करेगा, तो एक दिन आपको लगेगा मेरा बच्चा मेरे से ही क्यों नहीं बात कर रहा है। तो बात करने की जितने उम्मीद थी, जितने भी एनवायरमेंटल लेवल पर क्रिएशन हुआ, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हमने ये शेयरिंग प्रोसेस को नहीं ध्यान दिया तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो दूरी बढ़ती जाएगी और जो बाल मन की निश्चलता है वो धीरे धीरे धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि वो चालाकी में कन्वर्ट होगी, वो मैनेज करेगा, वो इस बात को ध्यान देगा कि इनको आखिर क्या तरीका है इनको खुश रखने का, तो उन तरीकों पर जाएगा, तो फिर आपके मन में एक दर्द होगा कि यार इतना अच्छा बच्चा है, निश्चल मन था, अभी ये चालाकी ओरिएंटेड कैसे हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न भविष्य में भी पैदा होने वाले हैं। जी
1: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। और जहाँ पर बाल मन की बातें चल रही हैं, मन बुद्धि और संस्कार की बातें हो रही हैं, तो बच्चों का मन जो है जिज्ञासा व्रत कुछ ना कुछ बनाते रहता है और उसे पूरा ज्ञान भी नहीं रहता है, तो वो जो भी करता है शायद हो सकता है उसमें वो सफल ना हो, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा मोटिवेशन देने का अगर आपने मन बना लेते हैं बच्चों के लिए तो शायद बच्चा जो है विकसित हो पाता या उसे सफलता मिल जा रहा। तो अब बच्चों से हम सफलता पहले से ही अगर अपेक्षा करते हैं तो शायद वो चीज़ें जो है नहीं होता, फिर उसका मन जो है हम खुद ही उसको चालाक बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और आगे बढ़ते हैं। एक और बात मेरे मन में आ रहा है कि जीवन के इस आपाधापे में काफ़ी चीज़ें जो हैं माता पिता और भाई बहन या जो भी रहते हैं कहीं ना कहीं हमारी जो मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास के जो फैमिलीज होते हैं और वहाँ पर जो है ना एक रोजी रोटी ब्रेड एंड बटर की बड़ी समस्या
0: जी,
1: होती
0: जी,
1: है। अब वो खुद उस समस्या में जूझ रहे हैं तो वो समाधान की तरफ तो बढ़ ही नहीं सकते ना
0: जी, जी,
1: तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीटनेस को नहीं प्राप्त करते हैं। उनको लगता है कि हमारा अपना जीवन जीने में संघर्ष इतना ज़्यादा है तो बच्चे की तरफ वो शायद ही नहीं ध्यान देते हैं और बच्चा उनके लिए एक टूल बन जाता है कि अपना डिप्रेशन भी उनके ऊपर वो निकाल दे।
0: जी जी बिल्कुल सही।
1: तो यहाँ कैसे उसको उन चीज़ों को मैनेज किया जाए?
0: अच्छी बात है। देखिए जीवन को हम ये मान के चलें कि जीवन एक संघर्ष है और जीवन संघर्ष में ये जो हमारी अपेक्षाएं हैं परिवार को ठीक ठाक रखने की और रोजी रोटी कमाने की, इसको बैलेंस करने की, कई बार आप ओवरनाइट वर्क भी करते हैं, ये सारी बातें मान रहा हूँ। अच्छा आप बताइए कि आप जो कुछ भी कमा के ला रहे हैं माता पिता के रूप में, जो भी बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसका फीडबैक चाहते हैं कि नहीं? अगर हम उसका फीडबैक चाहते हैं और वो बच्चा आपके ऑफिस से आने के बाद में वार्म वेलकम नहीं करे आपको, वो कोने में जाके छिप जाए और आपको ढूंढ के निकालना पड़े जैसे कोई सामान निकालना पड़ रहा हो, तो आपको क्या फील होगा कि आप 5:30 या 6 बजे या 7 बजे अगर मेट्रो है तो 1-2 घंटा ट्रेवलिंग में आपका लग रहा है, तो वो बच्चा अगर आपके बेल बजाते ही और बिल्कुल वार्म वेलकम करता है, आप उसको गोद में उठा लेते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि 8 घंटे का स्ट्रेस रिड्यूस हुआ और आपसे वो डर के भाग के कहीं और चले जाए, पड़ोस के यहाँ चले जाए और रात को 10 बजे आए जब आप सोने लगें, देन वॉट टू डू? उस समय आपको कैसा लगेगा? उस समय फील होगा ना। इसी प्रकार से जब आप ऑफिस जा रहे होते हैं और बच्चे की माँ ने आपको गुड विशेस नहीं दिया, ऑल द बेस्ट नहीं बोला, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके वो गेट तक आपको छोड़ने नहीं आई, तो आप बताइए आप रोबोट हैं ये मनुष्य हैं। जब आप भी चाह रहे हैं कि आपको वार्म वेलकम भी हो, सेवा भी बहुत अच्छे से किया जाए, आपकी केयरिंग किया जाए, आपका बच्चा दौड़ के आपको आपका बैग दे दे, आपका लैपटॉप दे दे, आपकी एसेसरीज दे दे, आपका जो रूटीन में हम चीज़ें सपोर्ट में चाहते हैं, क्योंकि वो भी कह सकता है कि आप मेरे पिता हैं, मनुष्य हैं, और अपनी चीज़ों को ठीक से रख लो और लेके चले जाओ, बात खत्म हो गई। आप अपना ऑफिस से आओ और काम करो और आप पैसा कमा रहे हो, आप महान हो, मैं आपकी आरती उतरता हूँ। तो प्रश्न की इस प्रकार से समाधान नहीं होने वाला है। देखिए, अगर घर में आने के बाद एक कप चाय नहीं मिली आपको, तो चाय तो बाहर भी मिलती है, लेकिन उस चाय के प्रति जो हमारा नज़रिया है, हमारी सोच है कि ठीक है, जब आप गृहस्थ आश्रम में जुड़े थे तो बहुत स्नेह से प्यार से चाय दी जाती थी, लेकिन जब दूरी बढ़ेगी ना तो चाय बना के रख दी जाएगी, चाय आपको खुद ही पीना पड़ेगा। फिर ये कहा जाएगा कि अभी चाय पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, अवॉइड किया जाएगा, दूध नहीं है। आप तीनों की व्यवस्था भी कर देंगे तो सामने वाला ये भी बोल देगा कि बनाने की इच्छा भी नहीं है, आप बना लो और पी लो। तो आप अपने रिलेशनशिप को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो हुआ क्या है कि हमने क्या किया कि छोटी छोटी बातों को अवॉइड किया, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने की बजाय हमने दुख को ढूंढा। और जब ब्रह्मांड में ये मैसेज गया कि ये जो प्राणी है ना, ये केवल दुख पैदा करना और दुख ढूंढना, और किन चीज़ों से दुख हो सकता है उसके प्रति अवेयर है, तो रिफ्लेक्शन में आपके पास में क्या आएगा?
1: बिल्कुल।
0: मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ कि जो हम देंगे वही रिटर्न में आएगा। तो जब आपने बच्चे से, अपने घर में अन्य सदस्यों से, सब में कमी कमजोरी, दुख परेशानी पीड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे प्रभु, तूने ये मनुष्य जीवन दिया है इतना शानदार जीने के लिए, अब मैं देख तेरी ही छोटी सी इस दुनिया में सब कुछ दुख ढूंढ के तेरे को बताता हूँ। तो ऐसी स्थिति में ना आप उसको चैलेंज गलत तरीके से कर रहे हैं, और अगर आपने इसको सही तरीके से किया तो आप देखेंगे कि हर पल हर क्षण आप अपने जीवन को जी सकते हैं। और एक छोटा सा मेरे को सॉन्ग याद आता है, उसमें ये बात आई है, पूरा गीत मुझे याद नहीं है, उसकी लाइन है, आज मेरे संग हंस लो, आज मेरे संग लो। तो ये जीवन का पर्याय होना चाहिए, ना कि बाकी शेष चीजें। जी
1: जी, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफी अच्छी बात आपने बताया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आशा करूँगा हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, अभिभावक सुन रहे होंगे, तो दोनों के लिए ये कार्यक्रम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों तरफ जो है चीज़ें संवरना और समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोग जो है बाल मन इस विषय को बड़ों से भी जोड़ रहे हैं, ताकि बड़े उनके अभिभावक हैं तो उनको भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो दोनों अगर बातों को समझ ले तो वो दोनों मिलकर अपने जीवन को, अपने छोटी छोटी खुशियों को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर बातें होगी। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग बच्चों की बातें करते हैं तो डॉक्टर अजय शुक्ला जी उसे विस्तार से आपको बताते रहते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है थोड़ा सा उस पैराग्राफ को चेंज करते हैं, अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए माता पिता और शिक्षकों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए।
1: जी देखिए, बच्चों को उमंग उत्साह दिलाना उतना ही आवश्यक है जितना कि एक इंसान के लिए खुशी में रहना और खुशी के पलों को ढूंढना, आनंद की स्थितियों में स्वयं को लेके जाना। कुल मिला के आप मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते आप जितना एनवायरमेंटल रूप से अपने अंदर खुशी के थॉट्स, उमंग के थॉट्स या अपनी जो पास्ट लाइफ है उसमें से जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को निकालते हैं, जब आपने किसी की मदद की, जब आपने किसी को कुछ देने का प्रयास किया, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखा, ब्लेसिंग देने का प्रयास किया, मनी मन कह दिया मे गॉड हेल्प यू, तो उस समय आप देखेंगे जो फीडबैक का इन्वायरमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। कुल मिला के आपसे देने की क्रिया वहाँ संपन्न होती है और कोई स्थूल चीज़ के लिए बहुत अधिक आप खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कुराहट और एक छोटा सा फूल किसी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन ये जब हम शब्दों के संसार में बात करते हैं ना, तो फूल भी दुनिया में बहुत हैं और मुस्कुराहट भी हमारे अंदर बहुत है, लेकिन इन दोनों के ऊपर गम के बादल को लेके हम बैठना चाहते हैं और हम गम के बादशाह बन के जीना चाहते हैं। हम लोगों को चैलेंज करते हैं कि ये सब चीज़ हमसे नहीं होगा, हम कुछ और करेंगे। ये जब कुछ और करेंगे सिचुएशन क्रिएट होती है ना, वही हमारे दुख का कारण होता है और हम अपने आप को कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे हैं। देखिए, बाह्य तनाव कार्य और कार्य से जुड़े हुए विभिन्न परिस्थिति के जो आपकी अंडर में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वहाँ से तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन जो आपके कंट्रोल से चार दीवारी हमने बनाई, एक छोटा सा आपने घरौंदा बनाया, उस घरौंदे में इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर की एक्सटर्नल प्रॉब्लम को हम बहिर्मुखी होकर लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस आत्म जगत के अंतर स्वरूप को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये द्वंद्व बढ़ता जाएगा और किसी मार्ग पर जहाँ हम जाना चाहते हैं, जो भाई जी पूछ रहे हैं कि आखिर इन सब चीज़ों से मुक्त होके इस ओर हम कैसे अपने कदम को बढ़ाएं, तो कई बार समस्या के स्रोत को हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसका आखिर रूट कहाँ है और रूट अगर मिल गया तो उसका कॉज कहाँ है, हम समाधान कैसे ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा फर्ज बनता है कि देखिए, मैं अगर अपने आसपास के परिवेश को खुश रखने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये किसी बनावटी प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बने हैं, दार्शनिक हमारे सिद्धांत बने हैं, उन सबके पीछे एक बहुत गहरा मनस्थिति का राज छिपा हुआ है, मानवीय चिंतन के पक्ष छिपे हुए हैं और कुल मिला के मानवता के कल्याण या मंगलकारी उसके स्वरूप को कहीं ना कहीं देखा गया है, स्वप्न बुना गया है और साकार होने की प्रक्रिया में उस ओर कदम उठाए गए हैं। तो आखिर वो कदम क्या है? तो जब मैं डिलीवरेशन दे रहा हूँ या अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं स्वयं को कैसे आनंद में लेके आऊं। अब मुस्कुराहट या प्रसन्नता उसके छोटे छोटे रूप हो सकते हैं, लेकिन अगर मुस्कुराते हैं हम या प्रसन्न रहते हैं या अपने आप को खुश रखने के प्रयास करते हैं, तो ये तीनों ही चीज मिलके हमें स्थायी आनंद की ओर ले जाने की स्थिति में होंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वयं को प्रसन्न रखने, आनंद में रखने या खुश रहने के उपायों से अलग लेके अगर चलते हैं तो उस स्थिति में अपने बच्चों के प्रति जो उमंग उत्साह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास में है या अकाउंटेबिलिटी है, तो उसे हम अगर केवल काउंसलर की एडवाइस तक सीमित रखेंगे कि नहीं अभी आफत आएगी, परेशानी आएगी और बच्चे के मनोबल जब क्षतिग्रस्त होगा उस समय हम इसको उठाएंगे, तो उस समय बहुत देर हो जाएगी और उस समय आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसका हम अभ्यास डाल लें, देखिए ये बात सही है कि हमारा व्यक्तित्व रातों रात नहीं बदलता है और इसको नाटकीय तौर पर भी हम नहीं अभिव्यक्त कर सकते हैं, कुछ समय के लिए ड्रामा आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत किसी सच्चाई और अच्छाई को बनाए रखने के लिए हम अगर अभ्यास करते हैं, भले ही वो मेडिटेशन के थ्रू हो, अच्छे साहित्य को हम पढ़ने का प्रयास करें, हम किसी अच्छे डिस्कोर्स में भाग लें या जहाँ पर जीवन को परिष्कृत करने की, ऊँचाई पर ले जाने की बातचीत हो रही हो, उस वातावरण में भी अगर बच्चों को ले कर जाने का प्रयास करते हैं हैं तो आप देखेंगे कि आप तो मोटिवेट होते ही हैं और बच्चों के अंदर भी ये खुशी बिखरती है और इस वास्तविक बिखराव के प्रति जैसे जैसे आप गतिशील होंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन संसार या बाल संसार बहुत सुखमय हो गया और जिस उम्मीद के साथ आप इस जीवन को जी रहे थे निश्चित तौर पर वो जीवन बहुत खुशनुमा बन गया और आनंद के साथ आप अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं जीने की नई स्थितियों की खोज में आगे बढ़ रहे हैं। जी
0: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया है। तो चलिए इसी के साथ एक और प्रश्न का मैं आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन वो प्रश्न आप अगले एपिसोड में ही लेंगे क्योंकि समय और इजाज़त नहीं देता। तो मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जो है वो आप क्या बताना चाहेंगे।
1: बहुत अच्छी बात है, आज संपूर्ण चर्चा हमारी जो हुई है उसमें सार यही निकलता है भाई जी कि बच्चों की जो निष्पक्षता है और उस निष्पक्षता के प्रतिफल को हम बहुत सीरियसली ना लेते हुए उसके आगे के एपिसोड पर फोकस करें और उसकी अच्छी शुरुआत को हम एक लाइन से जरूर सम अप करें, वेल डन बाय यू, और यही एक मोटिवेशन की लाइन उसके सामने जब प्रेजेंट हम करेंगे तो बॉडी लैंग्वेज में एक कहीं ना कहीं नयापन हो और एक उत्साहजनक हमारा फेस हो, क्योंकि दुनिया में कहा गया है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो ऐसी स्थिति में हम उसके बच्चे के कंधे पर हाथ रखें और इस बात की उम्मीद जताएं कि भविष्य में आपसे जो कुछ भी अभी आप प्रस्तुत कर रहे हो उससे बहुत अच्छा होने वाला है। और एक अच्छे लक्षण मुझे अपने बच्चों के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार के स्टेटमेंट अगर हम देते हैं या कुल मिला के कहें तो आप अगर बहुत गर्व और गौरव से बोलें, मॉर्निंग सोज द डे, अर्थात सुबह होने से दिन का पता चल जाता है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये सारी इस प्रकार के मुहावरे या कहावतें अगर हम प्रयोग करते हैं अपने मन में और बच्चों के सामने तो निश्चित रूप से एक उम्मीद की किरण जगती है और बच्चे अपने निश्चल मन के द्वारा मन बुद्धि और संस्कार के प्रति कॉन्शियस होते हैं और उनसे सब कुछ अच्छा हो इसके लिए वो प्रयत्नशील हो जाते हैं। जी
0: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए इस विषय पर। और आज के इस एपिसोड में जिस तरह से हम बच्चों की जिज्ञासा, बच्चों की जो मन बुद्धि और संस्कार इस विषय को लेकर बातें की, उनकी रचनात्मक कल्पनाशीलता को हमने देखा, तो चलिए आगे हम लोग और बातें करेंगे, सहानुभूति और करुणा, नैतिक मूल्य, संस्कार, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं इस पर बातें करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, आप सुनाए हैं बाल संसार, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: निष्कर्ष, बचपन की निष्पक्षता बच्चों के मन बुद्धि और संस्कार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समय उनके कौतूहल, रचनात्मकता, सहानुभूति, करुणा, नैतिकता और मूल्यों के विकास का होता है। बच्चों का निर्मल मन उन्हें नई चीजें सीखने, समझने और आत्मसात करने में मदद करता है। हमें बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जो उनकी जिज्ञासा, रचनात्मकता, सहानुभूति और नैतिकता को प्रोत्साहित करे, ताकि वे एक सशक्त और संवेदनशील व्यक्ति बन सकें। धन्यवाद।

0: अरे राजू भाई दो चाय लाना।
1: अरे छोटू दो चाय देना भैया को।
2: हाँ सब हेलो भैया।
0: ये क्या तूने मेरे शर्ट पे चाय गिरा दी?
2: गलती होगी भैया, माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा भैया।
1: ना छोटू तू हर टाइम ऐसा करते रहता है, कितने बार समझाएगा सही से चाय दिया कर।
2: नहीं सब वो इस बार हाथ फिसल गया साहब।
1: हर टाइम हाथ फिसल जाता है?
2: नहीं साहब।
1: ठीक है अगली बार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना?
2: हाँ सब।
3: क्या यार मेरी जिंदगी भी कैसी है, काश मेरे भी पापा पैसे वाले होते, मैं भी और बच्चों की तरह स्कूल जाता, पढ़ाई करता, मैं भी खेलता, काश ऐसा होता।
4: क्या बात है सैंडी, आकाश, पंकज, भुवना, आज तुम लोग बड़े उदास लग रहे हो।
5: दीदी आपको पता है आज हमने एक टी शॉप में देखा कि एक बच्चा काम कर रहा है।
4: एक बच्चे को काम करते देखा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना?
0: हाँ, और वो दुकान वाले भैया उसे डांट भी रहे थे।
4: क्या देखा आज आपने, चलो भुवना बताओ।
5: दीदी हमें बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था और उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन वो काम कर रहा है और वो काम कर रहा है लेकिन बाय मिस्टेक वो फिसल गया उनके हाथ से। फिर भी वो ओनर इतना डांटा, बहुत बुरा लग गया होगा।
4: आप ही के उम्र के बच्चे जो काम करते हैं कोई चाय की दुकान पर या कहीं भी, उसे पता है क्या कहते हैं?
0: चाइल्ड लेबर,
6: बाल श्रम।
4: हाँ उसे बाल श्रम या चाइल्ड लेबर कहते हैं। बच्चों की जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है, कई बार पारिवारिक सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो काम करने पर विवश हो जाते हैं। तो बच्चों चलो आज हम चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के बारे में ही बात करेंगे।
5: ठीक है
0: दीदी।
4: तो आकाश आप बताओ चाइल्ड लेबर से आप क्या समझते हो?
2: दीदी मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे उन बच्चों के मम्मी डैडी को ये सब काम नहीं करवाना चाहिए। ये उम्र उनकी खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है। हाथ में आने वाले पेन की जगह वो चाय की कटोरियाँ पकड़ा देते हैं, पीठ में लदे हुए बैग की जगह वो बोरियाँ पकड़ा देते हैं। ये बहुत गलत बात है।
4: बात तो आपने बहुत सही कही। और सैंडी आप बताओ।
6: दीदी मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्ड लेबर एक जुर्म है, और जो लोग 14 वर्ष से कम उम्र में बच्चों को अपने दुकान पर रखते हैं या करवाते हैं, अगर चाइल्ड लेबर हमारे भारत में विश्व में कहीं भी फैलता गया तो हमारे देश का हमारे विश्व का क्या होगा? बच्चों को शिक्षा मिलेगी नहीं तो हमारा देश हमारा विश्व हर चीज़ में पीछे हो जाएगा। तो ये चाइल्ड लेबर होना नहीं चाहिए
4: क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं।
6: हाँ जी।
4: और अगर वो ही नहीं पढ़े लिखेंगे तो फिर हमारे भारत का भविष्य क्या होगा?
6: ये हमारी नीवी कमजोर होगी तो फिर कैसे होगा?
4: बिल्कुल सही सैंडी। और भुवना आप क्या कहना चाहते हो?
5: अब हमारी इंडिया सब देशों ने डेवलप्ड कंट्रीज है, लेकिन हमारी इंडिया डेवलपिंग, स्टिल डेवलपिंग। इस बात का एक वन रीजन है चाइल्ड लेबर। ऐसा बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे अननेसेसरी ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, और इस चाइल्ड लेबर को हम स्टॉप करना चाहिए। एक क्राइम है, ये सिर्फ इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि इसको स्टॉप करना चाहिए और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ वाइटल स्टेप्स लेना चाहिए।
4: बिल्कुल सही, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट कुछ काम इस पर कर भी रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हो पंकज?
0: चाइल्ड लेबर को देख के मुझे ऐसा लगता है हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता। आजकल छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है, लेकिन वो किसी कारण होटलों में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी कर रहे हैं, पीठ पे बोरियां लाद रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश का भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे कि दूसरे देश अपने डेवलप्ड होकर और भविष्य में हम देखेंगे कि वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी और हमारा देश धरती पे ही रह जाएगा।
4: बात तो आपने पंकज बिल्कुल सही कही। हम आगे तभी बढ़ते हैं जब देश का भविष्य यानी बच्चे सुरक्षित हो, देश के साथ साथ उनका भविष्य भी हम बाल श्रम द्वारा बिगाड़ देते हैं। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अक्सर बाहर जाते हो, कभी घूमने के लिए, कभी किसी काम से, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी बच्चे को बाल श्रम करते हुए या कोई काम करते हुए देखा है? और देखा है तो तुम्हें कैसा लगा है?
6: हाँ दीदी मैंने बहुत बार देखा। कभी कभी हम लोग कहीं बाहर जाते घूमने के लिए, किसी होटल पे गए तो वहाँ कोई बच्चा कोई चाय लेके आ रहा है तो कुछ नाश्ता लेके आ रहा है, ऐसे कुछ काम करते हैं, और ये मुझे देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मुझसे भी छोटे होते हैं। जिनको खेलने कूदने की उम्र होती है, जिनको अपनी मम्मी पापा से प्यार मिलना चाहिए, वो होटलों पे काम करती है और ये मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा नहीं हुआ, मेरे मम्मी पापा मुझे साथ देते हैं। और ये बात देखकर मुझे रोना भी आता है, थोड़ी खुशी भी होती है, पर खुशी तो उतनी नहीं होती, रोना बहुत आता है क्योंकि जो बच्चे जिनके छोटे छोटे हाथ हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं।
4: बात तो आपने सही कही, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बहुत बड़े बड़े काम करने पर विवश हो जाते हैं, लेकिन उनके घर के जो पारिवारिक कंडीशंस हैं वो इस प्रकार की नहीं होती जैसी हमें मिली है। और जैसा कि आपने कहा कि इस मामले में हम कितने लकी हैं कि हमारे परिवार से ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि हमें सब कुछ मिला और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, पर सभी हमारी तरह लकी नहीं होते। हाँ आकाश बताओ।
2: हाँ दीदी, मैं जब छोटा था तब मेरा एक दोस्त था, उसका नाम पोखराज है। वो बचपन में मेरे साथ खेलता था, वो सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, पहले तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, उसके बाद उसको गवर्नमेंट स्कूल से निकाल दिया, फिर वो अब वो 14 साल का है और हमारे पड़ोस की दुकान में ही वो काम कर रहा है। उसको देख के बहुत बुरा लगता है। उसकी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक लम्हा लारी पे सब्जी बेचती है और उसके पापा उन्हीं पैसों से ना घर चलने देते, सिर्फ अपने ही खुशियों के लिए पैसे खरीदते हैं।
6: हाँ दीदी, जैसे आकाश ने बताया ऐसे ही मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे रहते हैं, उनकी मम्मी तो चलो ठीक है पर उनके पापा शायद नशा वशा करते हैं और बच्चे टैलेंट बहुत है उनमें, उनकी कैचे बच्चा है, अगर कुछ समझाए तो जल्दी समझ जाते, वो पढ़ना चाहते पर पापा उनके काम करने के लिए फोर्स करते तो वो कचड़े बीनते और ये सब करते और वो स्कूल तो जाना जाते हैं। पर मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं कभी कभी मेरी कोई पुरानी बुक्स मेरी जो चीज़ होती है और कुछ दे देता हूँ उनको, तो वो थोड़ा वो अच्छा लगता है।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी, क्योंकि अगर हम अपना छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए तो उन बच्चों को कितना अच्छा महसूस होता है।
6: हाँ दीदी,
4: है ना। भुवना, कभी आपने ऐसा कुछ देखा है?
5: दीदी, हमारी घर में रोज एवरी संडे या सैटरडे जी है चमसी लोग आते हैं डस्टबिन लेने के लिए, तो जब वो आते हैं उनके साथ उनके बच्चे भी, वो ड्राइनेज में बैठते हैं, वही रहते हैं, लेकिन वो खुश

0: हमारे स्कूल के पीछे छोटे छोटे बच्चों को पीठ पे बोरियां लाद कर और प्लास्टिक की बोतलें बीनते हुए या कांच की बोतलें बीनते हुए वो मतलब वो प्लास्टिक की बोरियों में भंगार इकट्ठे करते हैं और उसे बेच के दो चार पैसे कमाते हैं। लेकिन वो पैसे जो कमाते हैं वो उनके भी यूज़ में नहीं आते, उनके मम्मी पापा उनसे पैसे ले लेते हैं और अपने शौक़ पूरे करते हैं।
1: उनके मम्मी पापा उनसे वो पैसे भी ले लेते हैं जो वो मेहनत करके कमाते हैं।
0: हाँ दीदी,
1: बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मेरे ख्याल से हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसी चीजें होते हुए देखी हैं।
0: हाँ दीदी,
1: और हमें बहुत बुरा भी लगता है। हम बच्चे और क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। रेडियो मधुबन पर बच्चों की दुनिया सुनते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर हम वापस आ गए हैं लेकर बच्चों की दुनिया। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो है बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर। सैंडी, आप आज सुबह क्रिकेट खेलने गए तो आपने क्या देखा?
1: दीदी, मैंने देखा कि दो बच्चे थे जो बहुत छोटे थे, और मैं बैट और बॉल लेके जा रहा था तो बोल रहे थे भैया मुझे कुछ रुपये दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उन्हें देखकर मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा, और मैंने, मेरे जेब में जूते भी थे, 20-30 रुपये उन्हें दे दिया।
0: हमें बुरा तो लगता है जब कोई ऐसे, स्पेशली जब कोई बच्चा आके हमसे ऐसा कुछ कहता है। तो ऐसे में एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि अगर किसी को भूख लगी है या कोई ऐसा हमारे सामने आता है और हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ खरीद कर या कुछ ला कर उसको दे दें। क्योंकि कभी कभी हमारे दिए हुए पैसे वो ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे या फिर कोई उनसे ले भी सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आए तो आप कुछ ला कर, जिससे उनकी जो भूख है वो शांत हो सके, ऐसा कुछ लाकर आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है सैंडी?
1: ओके दीदी।
0: और वैसे तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते रहते हैं, अब आप लोग ये बताओ, जब आप लोग देखते हो आपको बुरा तो लगता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो आप अपनी तरफ से उनके लिए कर सकते हो? भुवना,
2: पहले हम उनके माँ बाप को इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि बिना माँ बाप के कहने से बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो हम उन माँ बाप को इंस्पायर करना कि आपके बच्चा ये कर सकता है, तो वो बच्चे को ऑलरेडी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो बच्चा है ना। जब हम इंस्पायर करेंगे, बुक्स देंगे, वो अच्छे से पढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ उनके माँ बाप की फोर्स की वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। तो जब हम उनके इंटरेस्ट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, माँ बाप काम करेंगे और पढ़ेंगे, फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
0: बात तो आपकी बिल्कुल सही है। स्पेशली जो हमारे आसपास के लोग काम करने आते हैं हमारे घर पे, या जैसे भुवना आपने बताया कि कूड़ा बीनने या फिर ऐसा कुछ है जिनके माँ बाप हमारे घर पे काम करते हैं, आसपास आते हैं, तो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, है ना? और आकाश, आप क्या सोचते हो?
3: दीदी, मेरा ये मानना है कि उनके मम्मी पापा को हमें बताना तो चाहिए, लेकिन मैंने भी कई बार कोशिश करी है, लेकिन उनके दिल से चाह नहीं होती कि हमारे बच्चों को भेजें। वो कहते ही हैं, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, बड़े होके कमाना ही तो है, वो भेज देते हैं, अभी से कमाएगा तो बड़े होके और पैसे लाएगा। ये बात उनके दिमाग में रहती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो उसी जगह पे स्थित हो जाते हैं।
0: मतलब हम समझाते हैं तब भी वो नहीं समझ पाते उस बात को। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो हमारी बात को नहीं समझेंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें और एक चेंज भी हम ला पाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ दीदी,
0: है ना? तो इसलिए हमें कोशिश, आकाश, जरूर करते रहनी चाहिए।
3: हाँ दीदी,
0: है ना? और सैंडी, आप क्या सोचते हो?
1: दीदी, ऐसा आकाश ने और भुवना ने बताया कि हमें लोगों को समझाना चाहिए, ये बात तो सही है, पर मैं तो जहाँ तक होता है समझाता ही हूँ कि मुझे कुछ बच्चे मिलते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ। फिर एक बच्चे को मैंने बोला भी था तो वो बोलते कि मम्मी पापा ना बोलते, तो मैंने उन्हें बोला भी था, उनके मम्मी पापा को मैंने समझाया था, तो उन्होंने मुझे डांट भी दिया था कि तुम अपना काम करो, हमारे फैमिली से तुम्हें क्या मतलब। तो मुझे बुरा नहीं लगा, पर मेरी अभी भी कोशिश जारी है, मैं होता तो समझा देता हूँ, और मेरे पास जो भी कुछ होता है कि हाँ कुछ बुक्स हुआ, कुछ हुआ, अगर उनको अच्छा लगे तो मैं दे देता हूँ, मेरी कोशिश अभी भी जारी है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो होता है, अगर उन चीज़ों से भी हम उनकी मदद कर पाएं तो उनको अच्छा भी लगता है, और थोड़ा बहुत तो उनकी मदद हम कर ही सकते हैं, है ना? तो ये सैंडी बहुत अच्छी बात है। पंकज, आप बताओ।
4: दीदी, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो काम करते हैं लेकिन उनमें इच्छा होती है पढ़ने लिखने की, कि हम इनकी तरह बन सकते हैं, इनकी तरह हमारी लाइफ हो सकती है, हम पढ़ सकते हैं और पढ़ लिख के हम अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी बना सकते हैं या खुद की भी ज़िंदगी बना सकते हैं। तो उनकी मदद हमें करनी चाहिए, जैसे कि अगर वो पढ़ना ही चाहते हैं तो उनको अपने पुराने बुक्स

0: दे सकते हैं उन्हें जाकर उन बुक्स के बारे में, या अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो उनके लिए कुछ टाइम निकाल कर उन्हें कुछ बता सकते हैं कि पढ़ाई क्या होती है और पढ़ाई का महत्व क्या होता है।
1: अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल पाएं तो हम जाके उन्हें कुछ नहीं तो एटलीस्ट बेसिक पढ़ना लिखना तो सिखा ही सकते हैं, ताकि जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो हिसाब किताब सीख पाए। और थोड़ा लिखना पढ़ना सीखने से कोई उनके साथ बेईमानी या गलत भी ना कर पाए।
0: हाँ दीदी।
1: भुवना आप बताओ।
2: आजकल स्कूल्स में इतनी सुविधाएं हैं कि बहुत सारे पैसे उनमें ही यूज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा पैसे भी बहुत सारे अननेसेसरी थिंग्स पे यूज कर रहे हैं। इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स हम कुछ खाना एक एक हमने क्या किया इस बार स्कूल पे, मेरे हमारे स्कूल में एक एक क्लास एक एक थिंग ऑर्फनेज के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए, जैसे 4th क्लास लोगों छोटे छोटे बच्चे के लिए डायपर्स लेकर आए, एटलीस्ट 3-3 डायपर्स फुल क्लास 3-3 डायपर्स तो ठीक है, तो हम फ्रूट्स देंगे। पर दीदी हम कभी भी पैसे नहीं देना चाहिए, कुछ ये देना चाहिए ताकि वो इजीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम क्लोथ्स दे सकते हैं, डायपर्स, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको डायपर्स चाहिए, वो खरीद नहीं सकते। इसके बारे में हम स्कूल्स को भी ये कर सकते हैं, और हम घर में भी थोड़ी थोड़ी हमारी पुरानी बुक्स होते हैं, पुराने कपड़े, वो सब लोगों आते हैं उनको इंस्पायर करना चाहिए कि ये देखो इतना अच्छा बुक है, तुम पढ़ो, तुम पढ़ लिख सकते हो, फ्यूचर में तुम ये बन सकते हो, वो बन सकते हो, ऐसे करेंगे तो वो सच में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, और हमारे देश में कभी चाइल्ड लेबर नहीं होगा ये कंटिन्यू होगा तो।
1: ये तो आपके स्कूल का भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आपने भी बहुत अच्छी बात सोची कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी उनके लिए करें तो उनकी बहुत मदद हो सकती है। आकाश।
3: दीदी मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने, हमारा एक डोनेशन बॉक्स होता है जो हम हर ईयर पे खोलते हैं, मतलब जैसे इस महीने की हमारी हमको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से कम 10 रुपया भी बच जाता है तो हम उस डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं, और ऐसे करके हमारी 1 ईयर में डोनेशन बॉक्स जब फुल हो जाता है तब हम न्यू ईयर पे सब बच्चों को चिप्स बांटते हैं, कुरकुरेस बांटते हैं, उनके खाने की चीज़ें देते हैं, कम से कम हमारे पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो आराम से खा पी सकते हैं।
1: बिल्कुल सही, हमें पॉकेट मनी मिलती है उसको भी अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सेव करें, और जैसे कि सब लोग मिलकर करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम अलग से भी अगर कुछ करें तो भी हम इस प्रकार से उनकी छोटी बड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। ऐसा ही एक इनिशिएटिव रेडियो मधुबन के यूथ जंक्शन के आरजे विनोद और उषा जी ने मिलकर रेडियो मधुबन के बिहाफ से किया। उन्होंने जाकर जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, उन बच्चों को इकट्ठा किया, उनके पेरेंट्स से बातचीत की और करीबन 20 बच्चों को रेगुलर रोज जाकर पढ़ाया, उनका एडमिशन पास के स्कूल में कराया ताकि वो बच्चे पढ़ भी सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। इससे और कुछ मिले ना मिले, उन बच्चों की कितनी सारी दुआएं भी हमें मिलती हैं, है ना?
0: हाँ दीदी।
1: तो आप लोगों के पास ये जितने भी आइडियाज हैं, इनको आप एक्शन में ला सकते हो, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, हमेशा कभी भूलना नहीं इस चीज को, जो आपकी भावनाएं हैं उन्हें बना कर रखना, और कभी आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको कुछ बड़ा करना चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल में अपने टीचर से, और बड़े लोग जो हैं उनसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हो, ताकि कुछ करने की आपको भी मदद मिल पाए और उनके पास भी आपके सजेशंस पहुंच पाए। ठीक है बच्चों?
4: हाँ दीदी।
1: तो अगली बार हम सब फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी विषय पर। आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सिर पर मुकुट और मुकुट में खौसी हुई आम की मंजरी, कानों में सजे हुए कर्णिकाट, हाथों में चंपे के फूल, बदन पर महकते वस्त्र, बालों में गुथे हुए अशोक और नवमल्लिका के पुष्प, ये कौन है? ये महाकवि कालिदास का बसंत है। बसंत सिर्फ लाल और पीले फूलों का नाम नहीं, बसंत जीवन की एक परिभाषा है। बसंत मौसम में नहीं आता, बसंत जीवन में आता है। बसंत बागों में नहीं बगरता, बसंत हर सांस में बगरता है। पतझड़ स्वयं ही बसंत के आने का ऐलान करता है। जब भी कभी सामाजिक परिस्थितियां त्रास देने लगती हैं, तब कवियों की कलम बसंत से आने की गुहार लगाती है। आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा का बसंत रजनी से क्षितिज पर उतरने का विनम्र आग्रह।

क्रांति वीरों के वसंत में व्यक्तिगत प्रेम लीला नहीं बल्कि मातृभूमि के प्रति प्रेम बरसता था। वे जीवन में एक ऐसे वसंत की कामना करते थे जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार को भस्म कर सके। बलिदान के लिए मन, प्राण और आत्मा को तैयार करते हुए वे कहते थे, माई रंग दे बसंती चोला। बसंत उनके लिए युद्ध की तैयारी थी। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्रांति का लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति और एक ऐसे समाज का निर्माण जो जाति, वर्ण और धर्म के भेद से परे मानव समानता के सिद्धांत पर आधारित हो। उनका साहित्य संघर्ष का पुनर्सृजन है जो उनके जीवन संघर्ष से उपजा है। यथार्थवाद और छायावाद दोनों की भूमि पर मजबूती से डटी निराला की कविताएं नए तेवर, विषयों की विविधता और स्वाभाविक अंतर्विरोध के कारण स्वतः ही स्थापित हो गईं। उनके शब्दों में बसंत कुछ इस तरह से उतरा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे सोनाली दुबे, दीपाली दुबे, निखिल तिवारी, विकास, उमेश और वीनस। संगीतकार थे उमेश वीनस। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है यशस्वी भारत। दोस्तों, भारत के कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने न सिर्फ समाज कल्याण में, भारत की उन्नति में, भारत के कल्चर में अपना योगदान दिया, साथ साथ भारत का नाम विश्व में भी ऊंचा किया। दोस्तों, कई ऐसी आर्ट फॉर्म्स हैं जिनके बारे में ये तो बात होती है कि उन्हें भूलते जा रहे हैं, कहीं हम वेस्ट की तरफ आगे तो नहीं बढ़ते जा रहे, क्या हम भारत की संस्कृति को संभाल के रख पा रहे हैं। परंतु इसके उत्तर खोजने जाएं तो सच में कभी कभी लगता है कि हम अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे, क्योंकि हम ही उनके बारे में जानते नहीं। लेकिन कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, मैं जिनसे आपकी मुलाकात आज कराने वाली हूँ, उनकी कहानी सुन के आप जरूर इंस्पायर होंगे, क्योंकि पूरा भारत उनसे इंस्पायर हुआ है। वे पद्मश्री अवार्डी हैं और वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर परशुराम खुने जी। सर, सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते सर। सर, एक बहुत ही बड़ा सम्मान, और हम सभी जानते हैं आपका कंट्रीब्यूशन 50 सालों से भी अधिक रहा है जाड़ीपट्टी थिएटर में, और आपने बहुत से युवाओं को रिहैबिलिटेट किया है, उनका पुनर्स्थापना उनको एक कराई है, चाहे वो एडिक्शन से निकाल कर हो या फिर वहाँ की और भी कई कुरीतियों से छुड़ा कर हो, और इसमें आर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो सर, पहले तो आपकी जुबानी ही कुछ आपकी कहानी जानना चाहेंगे।
1: मैं महाराष्ट्र के पूर्व विदर्भ चंद्रपुर गढ़चिरौली भंडारा से एक पूर्व विदर्भ हमारा एरिया है
0: जी,
1: और मैं 50 साल से मैं वहां कार्यरत हूँ एक आर्टिस्ट करके
0: जी।
1: लेकिन ये झाड़ीपट्टी रंगभूमि को एक अलग परंपरा है, अलग पहचान है। वो इसलिए कि वो जो पट्टा है पूरा जंगल व्याप्त है।
0: ओके।
1: वहां किसान है, आदिवासी का एक अलग कल्चर है वहां, और 150 साल से उसकी पुरानी कहानी है। जो प्रथम अवस्था में था नाटक, वो दंडार करके, दंडार यानी कोई तभी 5-6 आदमी एक दंडा लेके एक गीत बोल के, इस वाक्य बोल के, वो एक रामायण महाभारत इतिहासकालीन पर एक स्टोरी बताते हैं
0: जी।
1: लेकिन जैसे समाज परिवर्तनशील है, फिर उन्होंने हमारे पूरे एरिया में, वो पूरे विदर्भ में ये चलता था दंडार, अभी भी चाहे चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने नागपुर आकर, ये बड़े बड़े कंपनी थी, उनका नाटक जो संगीतमय नाटक देखा उसने,
0: अच्छा,
1: तो उनको लगा कि ये तो अपन यही पेश करते हैं, यही अपन, लेकिन इनका जरा सही संगीत का ढांचा अलग है, हारमोनियम है, तबला है, संगीतमय है। तो उन्होंने वो ढंग से, जो उसके विद्वान थे अपने घर को लेके, उनने उसे पूरा उसका पढ़ाई किया
0: जी।
1: तो वो फिर एक नाटक के माध्यम से चल रहा है। लेकिन झाड़ीपट्टी रंगभूमि क्या है, ये नामकरण किसने दिया है
0: जी?
1: तो झाड़ीपट्टी रंगभूमि का मतलब ये है कि वो झाड़ी से व्याप्त है,
0: अच्छा,
1: पेड़ से व्याप्त है, जुड़पो से व्याप्त है, और जहां गाओ वहां नाटक,
0: अच्छा,
1: ऐसी परंपरा अभी भी चल रही है
0: जी।
1: तो एक, और वहां का नाटक चलता है पूरे रात भर चलता है, 10 बजे अगर चालू हुआ तो सबरे तक। उसकी वजह ये है, कारण ये है कि अगर वो गांव में जब मेहमान आते, उनकी एक संस्कृति भी है, उसके पीछे एक ऐतिहासिक, जो आदिवासी लोग हो गए हमारे कुछ इधर भी जमात के होंगे, तो वो बहाने से गांव में एक कष्टकारी पीड़ित लोग, उनके एक बार कुछ मनोरंजन होना, इसलिए गांव के माध्यम से वो दिन जहाँ जी नाटक रहता है, उसके माध्यम से जो कोई नई लड़कियाँ शादी होकर जाती है वो आती है, नवीन दामाद आते हैं, नई लड़कियाँ देखने आते हैं, उससे लगने कुछ तगाई जुड़ती भी है
0: जी।
1: और सबरे उनकी विदाई होती है उनके साथ, तो वो एक अलग परंपरा है कि तो वो झाड़ी का नाटक, झाड़ी का पट्टे का नाटक, इसलिए वो झाड़ी पट्टी रंगभूमि। दूसरी वो बात यह कि ये इसके अलगपन क्या है, तो अलगपन ये है कि वहाँ का नाटक 10 बजे चालू होता है, 11 बजे तो सबरे तक चलना, 5 बजे तक चलते हो। इसका कारण ये है कि जो बहुत दूर से लोग आते हैं
0: जी,
1: तो उनको खाने का इंतजाम हो जाता है, लेकिन सोने का इंतजाम नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर तीन चार बजे नाटक खत्म हो गया तो उतने रात जाएंगे कहाँ,
0: जाएंगे कहाँ,
1: क्योंकि वो पूरे जंगल का एरिया, कई पशु पक्षी उपाग्रह सब की भीती रहती है, इसलिए वो एक परंपरा है, अभी भी चल रही है, वो हर गांव में नाटक चलता है। और वो आप बोलेंगे इतनी बड़ी स्क्रिप्ट रही थी क्या, तो नहीं रही थी। बात यह है कि जो नाटक करते हैं गांव में, अभी तो थोड़ा परिवर्तन हो गया। हमारे जब मैंने तीस साल काम किया, एक गांव के हौसले लोग बिता के हमारे जैसे दो एक दो कॉमेडियन एक दो लेडीज को बुलाते थे, और हर गांव में जब तो उधर एक ऐसी अभी प्रथा है कि उधर एक सम्मान पत्र सबको दिया जाता है, मान पत्र, हमारे नाटक देखने आओ
0: जी।
1: फिर खासदार रहे, आमदार रहे, जिला जो जो के बड़े बड़े नेताजी है, लीडर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो आते हैं। और उनका वो तो मैं कहता हूँ ये एटीएम कार्ड है वो मंडल का, क्योंकि आधे आधे जो बख्शीश का जो वितरण होता है वो स्टेज पर हो जाता है।
0: अच्छा।
1: हर नाटक को 40-50-60-70 हजार खर्चा है, और वहाँ का जो प्रेक्षक है वो बहुत बड़ा दिलदार है, वो टिकट निकाल कर ही अंदर आता है और पूरे रात भर नाटक देखता है। लेकिन ये जो मेहमान आते हैं
0: जी,
1: ये भी उनके बाद उनको कोई 10 हजार कोई 5 हजार, इसलिए उसमें फायदा ये है कि चलो भाई वो गांव में नाटक होता है, जो कलाकार आता है बाहर उसका भी पेट भरता है। और दूसरी बात ये है इसके पीछे कि हमारे झाड़ी पट्टी रंगभूमि में हर साल 70-80 करोड़ की उलाढ़ाल होती, इतनी बड़ी एक भी नहीं है।
0: अच्छा।
1: 170 कंपनियां हमारे आज भी है, पर ही चालू होते तो होली तक चलते रहते प्रोग्राम।
0: अच्छा।
1: उसमें से फायदा ये होगा कि जो एक बेकार युवक था, जो मेरे जमाने में ऐसे भी कुछ डर था कि ये लोग कोई भटक न जाए, कहीं इनका इन जाए नक्सलाइट के प्रभाव से कहीं अगर इन हो जाए, तो हमने ऐसे लोगों को ये प्रभाव में ले नाटक के अभिनय का चगाता है तो गाओ, है ना। कोई खाली जिसको अभिनय तो वही नहीं, उसके पीछे जो नेपथ्य वाला है, पर्दे खींचने वाला है, स्पीकर वाला है, ऐसे 40 लोगों का एक 50 लोगों का ये सब समूह रहता है। जीव वाले, दो ट्रक वाले, नेपथ्य वाले, वो तंबू लगता हमारा वो गांव में जाके।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे 40-50 लोगों का पेट एक कंपनी में उसके ऊपर चलता है, एक रोजगार मिल गया ना उनको।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऐसे ऐसे 100-150 कंपनी आज भी है जो निरंतर नाटक कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: दूसरी बात, अगर जहां तंबू लगता गांव में
0: जी,
1: वो तंबू के सब होता 40-50 दुकान लगते है, चाय टपरी वाला, पान ठेले वाला, चने वाला
0: जी,
1: उनका भी निवरा उसी ऊपर चलता है। जब अंक खत्म होता है बाहर आके सब चाय पीते पान खाते, तो वो भी बेचारे उद्योग कर रहे हैं उनका, इसलिए वो एक बड़ी इंडस्ट्री का ये है, इसलिए उनको एक रोजगार मिल गया।
0: जी जी बिल्कुल।
1: इसलिए और हर बात और दूसरी, अभी तो जब मैं बात कर रहा हूँ अभी तो अभी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी मुंबई के हमारे कलाकार मराठी कलाकार वो हमारे झाड़ी पट्टी में आके काम करते हुए हमारे साथ में, तो एक बड़ी उपलब्धि हुई है इससे, एक जो भाई का युवक है वो। लेकिन क्या है

0: गाने में अच्छा लगता है, मैं हमारे मानता हूँ भारत सरकार की एक झाड़ी पट्टी के एक कलाकार को जो देहात में रहता है आदिवासी इलाज में रहता है, मेरे परिश्रम का एक चीज बोल के मेरे को 2023 में
1: जी
0: कला के माध्यम से मेरे को पद्मश्री बहाल किया
1: जी। तो 50 साल बहुत लंबा समय होता है और आपने एक आर्ट फॉर्म को डेडिकेट कर दी अपनी लाइफ पूरी तरीके से, तो मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी क्या इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ा जब आप इस कला से जुड़े और इतना समय।
0: वो क्या है दीदी, मैं हूँ होम्योपैथी डॉक्टर
1: जी
0: और मैं हूँ किसान का बेटा। जब मैंने अपना देह रखा कि मेरे को कोई पढ़कर को ऑफिसर बनना नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ जमींदार थे, 100 एकड़ जमीन थी, तो मेरे को ऐसा कोई बिजनेस होना कि जो मैं खेती कर भी कर सकता होती है, वैद्य की पेशा है, डॉक्टर की है, इसलिए मैं उधर गया। लेकिन मेरे घर में जब मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के पिताजी दंडार करते थे, मेरे पिताजी मेरे गांव में एक मंडल करके वो नाटक ये करते थे, तो वो बचपन से मेरे ऊपर वो प्रभाव हुआ। और मैं मेरा असली जो क्या बोलते उसको जो उसके ऊपर संस्कार बोलती है वो नोरगांव में हुई, चंद्रपुर जिले में जो बालाजी पटेल मेरे मामू थे वहाँ मेरे प्राइमरी शिक्षण से मैं वहाँ गया, तो 5-6 साल बड़े बड़े बॉम्बे से इधर, और वहाँ से मेरे को एक प्रति एक भाव आ गया
1: जी।
0: मेरे में कुछ है, जब मैं कॉलेज पढ़ने नापको रहा उसमें भी मैंने क्या मेरे को मेरे दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ मैं गया मेरे को अच्छे लोग कलाकार मिलते गए
1: जी।
0: और मैं जब इसमें एक ढंग से मैंने डॉक्टर की नहीं किया फिर भी एक सेवा भाव, चलो क्या भगवान को सब कुछ कला नहीं देता, कलाकार ये नहीं देता, ये माध्यम से एक समाज प्रबोधन कि जो इलाका मेरा पूरा आदिवासी पूरा जंगल इन बहाने से सब पे नहीं, और मनोरंजन का साधन कुछ नहीं था उसमें, तो इससे भी नाटक से माध्यम से कुछ ऐसे रामायण है महाभारत है ऐसे संस्कार में नाटक देने का हमने
1: प्रयास
0: किया। जैसे कोई अभी तुम्हारे ब्रह्म कुमारी का जैसे इनके काम चल रहे तो उनके ऊपर एक समाज को ऐसे चेतना देना नहीं कुछ माध्यम होना चाहिए
1: जी।
0: और आज तो इतनी जरूरत है, मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि हर आदमी ने ये जो चल रहा जो माहौल आज के दिन में जो मन शांति नहीं है
1: जी,
0: जो भटका हुआ है आज का युवक
1: जी,
0: कोई इसकी प्रवृत्ति नहीं अच्छे भाव
1: जी,
0: इसके लिए मैं तो कहता हूँ हमारी तरफ इन्होंने जो काम किया है
1: जी,
0: ये जुड़े हम कुंदा दीदी ने
1: जी,
0: तो ये हर गांव में हर वहां तक पहुंच गए, जो जो हमारा जिला कहा से कहा है वहां उधर सब आदिवासी इसमें आज वो बहुत बदल जो हुआ है
1: जी जी,
0: तो दीदी के वजह से हुआ है, ब्रह्म कुमारी के माध्यम से हुआ है
1: जी। सर जैसे आपने बताया तो गढ़चिरौली की बात करें तो बहुत नक्सलाइट एरिया है जितना हमने पढ़ा जितना जाना, तो उसमें से क्या युवाओं को आपको एंगेज करना क्या चैलेंजिंग होता था?
0: नहीं अभी क्या है जब मैं बोल रहा हूँ कि जब ये जो युवक है
1: जी
0: तो जो नक्सलाइट का जो प्रभाव था पहले एक डर था मन में बहुत
1: जी,
0: यानी वो गांव वाले में भी था क्योंकि अगर वो गांव में घुसे तो जिसके आगे पुलिस उसको भी दंडा मारते थे, अगर पुलिस के नाम बताए तो वो दंडे मारते थे, वो बेचारा जो युवक था उसके सोचने की मैंने दोनों तरफ से उनको बड़ा ये था,
1: दोनों तरफ से डर था
0: कि अगर वो नहीं बताया तो पुलिस का मार पड़ता था, अगर पुलिस वाले को बताया तो ये नक्सलाइट, इसमें से एक बड़ा द्विंदे मनस्थिति में उसकी एक सोच थी ना, तो इसमें अगर बाहर कैसा निकलना चाहिए इसको, और हर आदमी तो नक्सली नहीं बन सकता उनका दिए, लेकिन जब वो युवक ना भटक जाए ऐसे कोई गए भी तो वो अभी तो आत्मसमर्पण कर लिया और एक माध्यम मिल गई है, अगर तू खाली रहता है कुछ खाली माइंड तो शैतान का ही रहता ना
1: जी,
0: अगर तेरे को कुछ रोजगार मिलता अच्छे संस्कार होते तो ऐसे एक निडर भी बन गया ऐसे नहीं। अभी तो मैं तो कहता हूँ कि दावे से कि अभी तो हमारे यहाँ में जो कुछ नक्सलाइट था बहुत सही 90% चला गया, अभी जो कोई बाकी वो शरणागति पद कर ले, ये जो बदल है ना ये पहले एक दिन से भी नहीं होने वाला था, लेकिन हमने जो शुरुआत की
1: जी
0: इस माध्यम से नाटक के माध्यम से एक जो संपर्क वहां आया हमारे बातचीत हुई है तो उसे वो फायदा अभी मिल रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है। उसका बड़ा फायदा ये है कि हमने पहले से ट्राई किया, पहले से उनको एक युवक को ऐसी दिशा दी और उनको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी खेड़े बाड़ी में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जा गया हमारे ब्रह्म कुमारी इसके माध्यम से हमारे जहाँ वहाँ है तो उधर एक संस्कार में एक वहाँ एक वातावरण, इन लोग

0: मन, बाकी तो मेरे को नहीं दिखा, लेकिन ये जो दृष्टिकोण हम जुड़ गए, मैं भी बहुत 5-6 साल पहले आया था यहाँ
1: जी। अच्छा
0: आया था मैं, लेकिन 2 दिन रह के चला गया था
1: जी।
0: लेकिन दीदी के माध्यम से, आज खुन्ना दीदी के माध्यम से मेरे को व्यस्त उम्र को बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आया
1: जी।
0: और दीदी के बारे में क्या बात, उनका कार्य तो बड़ा है, तो मैं आने का श्रेय भी उनकी वजह से, मैं आता का नहीं, आज नहीं आ रहा था
1: जी।
0: तो ये दृष्टिकोण से आज ये जो परिवर्तन, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। और आज के जमाने में जो मुझे बात की नहीं, घर घर में जो ये मोबाइल जो को, ये भले मोबाइल से वो आने के लिए वो अपनी फैमिली से बहुत दूर होते जा रहा
1: है जी। ये तो बात है,
0: कभी बात नहीं करते हमारे सबके, इससे अगर रोकना है
1: जी,
0: इसको देना है
1: जी,
0: तो अपनी को ऐसे कोई आध्यात्मिक जैसे ब्रह्मा कुमार या ऐसे लोगों की आज जरूरत है, और आश्रम होना चाहिए,
1: होना चाहिए।
0: नहीं तो ये आने वाली जो जनरेशन है जी, वो बहुत मैंने चिंता का विषय, चिंता का विषय।
1: सही कह रहे हैं, और बहुत इस दुनिया ने हमको इतना ज्यादा अपने में ले लिया है कि बाहर की दुनिया तो
0: कुछ भी नहीं, वो अपने इसमें रहता है, कोई करने की जरूरत ही नहीं
1: जी।
0: वो सोचता ही नहीं, घर में घुसा था ना, बाप से बात करता ना भाई से बात करता, वो घर में भी अकल भी दूर रहता है
1: जी।
0: अब मोबाइल दूर से बात करने के ठीक है, लेकिन घर से इतना दूर हो गया कि वो सब भूल गया
1: जी।
0: कई कई तो हमारे तरफ सुसाइड कर दिया।
1: अच्छा,
0: सुसाइड कर दिया अगर मोबाइल नहीं लेके दिया।
1: हाँ जी, इस तरह की घटना,
0: इससे अगर निकलना है ये नई जनरेशन को, तो उसमें ऐसे एक आध्यात्मिक
1: संस्थान की जरूरत है,
0: वातावरण
1: की जरूरत,
0: आज उसकी आवश्यकता है
1: जी,
0: पूरा बदल गया।
1: सर मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे झाड़ी पट्टी के बारे में आपने बताया इतना पुराना आर्ट फॉर्म है, ऐसे भारत में बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, लेकिन अब क्योंकि हम इंटरनेट देखते हैं, टीवी देखते हैं, इसी में सब कुछ आता है, तो ये आर्ट फॉर्म्स का क्या रोल है हमारे जीवन में, और क्या हमको उनसे जुड़ना, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, क्या आवश्यकता है?
0: मैं तो बोलता हूँ आर्ट कोई भी, मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, एक जीवन का एक हमने सीखा है ब्रह्म कुमार आध्यात्मिक विषय में, हमें सनातन धर्म से
1: जी,
0: आदमी को हंसना बोले तो एक टानिक है, आधा माइंड उसका मेडिटेशन के लिए भी। तो हमारे क्या है, अब जो क्रियाशील है, जो संतोष में पैदा हुआ है, जो हर दिन खेत में काम करता है, कोई भी यानी वो कहीं का भी रहे, लेकिन उसको कोई संतोष की बात, अगर उसे कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जिसे बोलते अपन, वो मन में लाना चाहिए। तो वो जीवन तो हर दिन जगना है, लेकिन वो जीवन जगने का तरीका क्या है, अपना जन्म किसके लिए है, वो जब तक उसको ये नहीं है, अब तो जीतो तो सब है
1: जी,
0: लेकिन जो जीवन की फिलॉसफी है
1: जी,
0: ये जैसे ब्रह्म कुमारी है हमारे नाटक से अच्छे आदमी माध्यम से
1: जी,
0: अगर ये दिया तो आने वाले जो जनरेशन बोल लो, आने जो पीढ़ी है, वो बहुत सुखी रहेंगे। ना तो बहुत तई क्या बोलते टेंशन में आजकल
1: जी,
0: इससे बाहर निकलना जरूरी है,
1: इससे बाहर निकलना,
0: उसमें कला संगीत
1: जी,
0: जैसे कला से संगीत में जैसे हास्य कला है, तो उससे भी आदमी को टेंशन आधा हो जाता, कम हो जाता। आध्यात्मिक दृष्टि से मेडिटेशन करना है
1: जी,
0: प्राणायाम करना है, जो कोई योगा है
1: जी,
0: तो ये आज के अगर इन माध्यम से जुड़ रहे, जो नया नए जो अच्छे अच्छे घर के लोग है
1: जी,
0: ये इस माध्यम से जुड़ रहे और कर रहे, कि उनको भी मालूम है मेरे आने वाली जो पीढ़ी है क्या क्या करेगी। हर के मन में आ रहा है, मुझे बताया जैसे मोबाइल लूंगा, तो जो हम पिताजी है कोई लड़का अगर जा रहा है, तो उनमें से उनको भी लगता है मैं बाहर निकलना चाहिए, तो उसमें माध्यम क्या है, एक तो उसको परिवर्तन से कोई आनंद दे
1: जी,
0: कुछ मेडिटेशन दे,
1: कहीं ऐसे जुड़े,
0: कहीं ना कहीं उसको यहाँ से निकलने के लिए दो ही तरीके, वो आदमी वहां से बाहर
1: निकले,
0: दो ही वजह निकलेगी इसमें गरज, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम तो क्या हम, लेकिन जिन लोग ये काम कर रहे हैं, जो गांव में बोलो आसन में बोलो, कुमार के माध्यम से जो लोग जुड़ेंगे ना, तो तरीका वो ये माध्यम है बस,
1: बदलाव के लिए, और बदलाव बहुत जरूरी
0: है
1: जी। सर अगर थोड़ा और हम झाड़ी पट्टी की बात करें, तो कैसे, मतलब क्या होता है, जैसे आपने बताया रामायण भी महाभारत भी, तो जो एक्टिंग आप करते हैं उस समय क्या उसकी प्रिपरेशन पीछे क्या होती है, तैयारी कितने समय की होती है?
0: मैं अभी जो बात किया आपसे, मैं जिस जनरेशन, मैं 70 की बात कर रहा हूँ
1: जी,
0: 70 की काल की बात करूँ, तो 70-80-90 तक
1: जी
0: मैं इंडिविजुअल तारक, मैंने इंडिविजुअल एक्टर था मैं, जैसे एक गांव में वो गांव के होशियार लड़के एक नाटक की तालीम लेके करते थे, तो बाहर से मैं कॉमेडी करता था, हंसने वाले कम थे, कॉमेडी करता था मैं
1: जी जी।
0: दादा कुंड के जमाने में हम दादा कुंड के करीब फैशन था, और एक दो लेडीज वो हमारे तब जो मैंने रामायण बोला महाभारत के बोला वो 80 तक था।
1: अच्छा,
0: उसके बाद में जब दादा कुंड के आ गए लावणी, महाराष्ट्र लावणी आ गई, यू नो महाराष्ट्र लावणी, लावणी हर घर में घुसी है, जब वो पिक्चर आती थी वही लावणी होती थी, तो वो ढंग से फिर नाटक आने लगे।
1: अच्छा,
0: और एक बात दूसरी और बात, जी झाड़ी पट्टी का मैंने आपको पूर्व विदर किया, तो वहां ही एक गांव गांव में लेखक राइटर पैदा हुए। अच्छा। आज भी
1: जी
0: उन्हें लिखा हुआ नाटक, वही लावणी का नाटक लिखने सब मैंने जो, अब उसने क्या किया है, मेरा भांजा है
1: जी
0: सदानंद बोरकर, उसे गांव में एक सत्य घटना होती थी, देखो वो जो मेरा एरिया है ना
1: जी,
0: ये अंधश्रद्धा की बहुत बहुत अंधश्रद्धा थी उसमें। एक सुशिक्षित भाई ने अपने ये बुआ बाजी के उसमें जाके उसको 2 दिन भूखे रखे बांध के धूप में, वो भी क्वालिफाइड लड़का था, इंजीनियर था, वो भी उसकी बीबी टीचर थी, लेकिन उसको कोई स्किनो भेजा था पहले उसको, तो उसको उन्होंने वो बुआ बाजी में गई तो उसमें वो मर गया धूप से। उसने एक नाटक लिखा माझ कुंकुम पुसल मराठी, तो ऐसे बहुत जो किसान की आत्महत्या हो, कोई अपने कौटुंबिक समस्या हो, एड्स हो, ऐसे ऊपर अभी बहुत नाटक हमारे तरफ आई और चल रही, अभी भी चल रही, तो पैटर्न बदल गया, अभी वो धार्मिक पौराणिक नाटक चले गए, अभी ये ढंग से जो समाज परिवर्तनशील नाटक बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, और 100 कंपनियां भी है और हजारों कलाकार पेट भर उसके ऊपर, राइटर को जो लिखता है उसको भी रॉयल्टी मिलती है, तो ये ढंग से हमारे तरफ से अभी मैं ये जमाने में मैं कोई जैसे पुराना था उसमें नहीं, जैसा समाज का है तो वैसे मैं भी बदलता रहेगा, वैसे मैं पहले अभी कैरेक्टर रोल करता मैं।
1: अच्छा।
0: जो कॉमेडी करता जो रोल है मैं करता हूँ
1: जी। आपका फेवरेट रोल कौन सा है?
0: मेरा फेवरेट रोल है मैं जो एक मैं बोला ना कि हमारे ऊपर वो जो नशा बंदी है
1: जी,
0: एकच प्याला।
1: ओके।
0: एक नाटक है मैं अभी करता हूँ, मेरा फेमस है वो नाटक, बहुत हर साल मैं उसके ऊपर बड़ी डिमांड रहती है, वो एक नशाबाज बेवड़ा रहता है और दूसरे का संसार कैसा है, उसमें दारू का वो अपने परिसर में ये मत लोगों को बता दे दारू से कैसे अच्छी चीज होती है।
1: अच्छा।
0: इस ढंग से यानी वो वैसा ही रहता है वो, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम होते हैं जो संसार बर्बाद होता है, तो उससे संदेश जाता कि भाई ये नशा करना दारू वाला पीना कितना घातक है, तो वो बहुत बड़ा संदेश होते जाता है। तो मैं रोल हर साल एक तलीराम करके बाप एक रोल है
1: जी।
0: मैं जब से ज्यादा वही कर रहा हूँ, लोगों ने मेरे को उससे ढंग बहुत पसंद किया।
1: अच्छा।
0: मैं जब 22 साल का था तब से अभी तक वो रोल मेरे लिए मायना रखता है, मैंने एक उससे बहुत पब्लिसिटी वो रोल ने मेरे को दी है। और वो नाटक संगीत में नाटक है, कथानक अच्छा है।
1: अच्छा।
0: और वो मेरा जो दारू का जो मैं जो बात करता हूँ ढंग से
1: जी।
0: वो उसमें मराठी में आया हमारा वो।
1: अच्छा। तो मराठी में गीत के माध्यम से
0: मराठी बोलो।
1: हाँ बोलिए कुछ, अगर एक कोई डायलॉग या कुछ ऐसा।
0: हाँ, वही ना।
1: हाँ, जी,
0: मराठी में चलेगा
1: जी जी जी।
0: ये जो नाटक है राम गणेश गडकरी बड़े साहित्यिक थे हमारे महाराष्ट्र में, और ये नाटक संगीत एक इसको 100 साल पुराना नाटक है, आज भी चल रहा
1: जी,
0: संगीतमय है। तो उसमें एक अच्छा बैरिस्टर रहता है, वो पढ़ने जाता है
1: जी।
0: वो जब उसको कोई उसके ऊपर कुछ केस ये होता तो वो जरा डिप्रेशन में चला जाता है, वो उसका जो एक नौकर रहता तड़ीराम, तो वो बोलता है यार ये गम भूलना है तो एक बड़ी चीज है मेरे। अच्छा। पास अब थोड़ी शराब पी के उसको वो उसका महत्व पढ़ा देता और अपने वो अपना क्लब तो एक मराठी में बात करता मैं दोनों एक पदवीधर और एक ये बैठ के दारू पी के बैठे है, तो ताला संग तो मुझे तो ताला दारू तो मरतो मने दारू सुटत नहीं, एकदा घेतली की मने दारू कधी सुटत नहीं, तेवढं ना दारू वाईट राइट बिशार का मने सुटत नहीं, भगीरथ दारू बद्दल बडबडणाऱ्या पैकी पुष्कळांना दारू काय चीज आहे हेच म्हणी मला माहित, बर मी म्हणू खरंच एकदा दारू घेतली की सुटत नाही, तेवढं ना दारू वाईट कशी ठरतो, वगैरह तुम्ही विश्वविद्यालयाचे पदवीधर आहात, चार दिवस परीक्षा देऊन एकदाची पदवी मिळवता ती जन्माची चिकटते, म्हणून कुणी पदवी घेण्याचं टाकलं आहे का? तशीच बायको, एकदा का नुसती लग्नमाळ गळ्यात घातली, उभा जन्म बायकोचा लबेदा पाठीमांग बिलवतो, म्हणून कुणी बायका करण्याचं टाकलं आहे का? अरे पदवी वाईट नाही, बायको वाईट नाही, दारूच तेवढी वाईट आहे का? तुम्ही घ्या. तसं म्हणाल ना भगीरथ, मद्यपान नीतिमत्तेला फार पोषक आहे. पहा कसं, मद्यपी माणूस कधी खोटं बोलत नाही, कारण त्याला खोटं रचून सांगताच येत नाही. मद्यपी माणूस कधीही कुणाची कुणार्जो चहाडी करत नाही, कारण माग कोण काय बोलला याची त्याला आठवणच राहत. आणि मद्यपी माणूस कधीही कुणाचा विश्वासघात करत नाही, कारण त्याच्यावर कुणी विश्वासच ठेवत नाही. असे ते मराठीतले डायलॉग असतात, ते पात्र म्हणजे नाटक फार सुंदर म्हणजे वाङ्मयी आहे त्या नाटकामध्ये, ते विद्यापीठाला पण होतं. अशी परंपरेने झालेली नाटकं आहेत आमचं. आणि दुसरी गोष्ट आहे मराठी भाषा.
1: जी सर, थोड़ा सा इसको हिंदी में समझा सकते हैं जो आपने बोला?
0: किसका?
1: आपने जो डायलॉग बोला.
0: हाँ, वो डायलॉग ऐसा है कि वो बोलता कि देखो एक बार गिलिए अपने नशा किए दारू पी तो बोली छूटती नहीं, ऐसे लोग उसकी बदनामी करते हैं. लेकिन उनके ये नहीं मालूम कि ये दारू क्या चीज है. वो भगीरथ, तू विश्वविद्यालय का जो ग्रेजुएट है, पदवीधर है, चार दिन को आप एग्जाम दे के आप पदवी मिलाते हो, जनंबर चिकटती है, उसका कोई बहाना नहीं करता.
1: अच्छा,
0: जैसे औरत अगर एक बार उसने माला डाल दी तो जनंबर आपके पीछे रहती हो, इतने में कोई औरत तो नहीं करने डाल दिया. अरे वो पदवी भी ये नहीं है, वो तुम्हारा ये औरत भी बुरी नहीं है, तो दारू क्या बुरी है? ये उसमें वो दो फायदे ऐसे कि दारूबाज मानुष कभी भी झूठ नहीं बोलता.
1: अच्छा, झूठ नहीं बोलता.
0: झूठ बोल के यानी बहाना बन के बताने आता ही नहीं.
1: अच्छा,
0: ये जो मध्य आदमी जो दारूबाज आदमी है
1: जी, वो कन्विंस कर रहे हैं उसको.
0: वो कभी किसका तो लावाला भी नहीं करता, चाहड़ी नहीं करता.
1: अच्छा,
0: क्यों? कि कौन क्या बोला उसको याद ही नहीं रहता, नशे में
1: भूल जाता. और
0: तीसरी बात, वो किसका उसको क्या बोलते विश्वासघात है, नहीं क्या बोलते
1: विश्वासघात बोल सकते.
0: हाँ, विश्वासघात नहीं करता. क्यों? ऊपर कोई विश्वास ही नहीं रखता. ये उसके ढंग से
1: विश्वास ही नहीं करता तो विश्वासघात कैसे करेगा?
0: हाँ
1: जी,
0: तो ऐसे तरीके से उनको
1: व्यंग यूज किया है.
0: वो अपने को अपने वो क्लब वो आयरे मदिरा वो अपने क्लब में उनको अपने इसमें लाने के लिए बहाना करता है, बताता है. लेकिन वो नाटक बहुत अलग ढंग का है.
1: जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है. लेकिन जैसा क्योंकि बहुत सारे अब हम सीरियसली उसको बात को कहें.
0: हाँ.
1: कि शराब नहीं पीनी चाहिए या इससे ये होता है. हाँ. तो शायद व्यक्ति नहीं सुनेगा या फिर वो
0: नहीं, नहीं, कान में ना जाए. उसका जो ये नहीं था, एक पहला
1: जी.
0: वो जो बताता है आखिरी में इतनी रचनात्मक बताया है, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं वो तो मेरे को याद नहीं अभी
1: जी, जी.
0: लेकिन जो उसका ये जो संदेश जाता है कि इतनी बुरी चीज है, उसमें जो लोगों के सामने जब उनका संसार आता है, वो बच्चे को मारता है, अपने बीबी को मारता है, और वो अच्छा क्वालिफाइड आदमी कैसे भीख मांगता है, और वो आदमी वो खुद पायजन देके समाप्त हो जाता. तो उससे जब बाहर निकलता है वहां से जो प्रेशर, बहुत बड़ा इवेंट है ये, कितनी गंदी चीज है, एक अच्छे चलते चलते इंसान को कैसी जानवर बना देती है, ये संदेश जाता है उससे.
1: ये संदेश
0: जाता है, तड़ना भी मरता ना करे.
1: अच्छा,
0: हाँ, उसमें उसमें आखिरी इन बहुत बच्चा पता है उसका. ये तो उसमें भाई ये जो नशा कितनी घातक हो सकती है, एक नाटक के माध्यम से. और बहुत बहुत से ऐसे को जो हमारा अभी जो चल रहा है इधर एरिया में, जो हम किसान के बेटे हैं,
1: जी जी,
0: तो जो आत्महत्या चलते है, नहीं करना चाहिए.
1: किसान आत्महत्या ये बहुत बड़ा विषय,
0: बहुत बड़ा इशू है अभी हमारे. तो उसमें नहीं भाई, उसमें एक संदेश आत्महत्या बोल लिखा लोगों ने. कोई अभी जैसो हुंडा पद्धति जो रिश्वत ले गए, तो बहुत ऐसे ये है इस बारे में कि जो जो संसार में चलते हैं
1: जी,
0: दहेज वगैरह का, तो वो विषय लेकर अच्छे सब यानी सब जगह अच्छे रहते हैं. संदेश जाता है एक समाज को, नहीं भाई ये करने से क्या बुराई हो सकती है, ऐसे कर्म कर्म से कैसी होती है. तो ऐसे आध्यात्मिक लोगों से जुड़ते जा रहे हैं, यानी मेरी पट्टी रंग वो मालूम हमारी एरिया हमारे तो हर गांव में नाटक रहता है.
1: अच्छा जी.
0: लेकिन हम माध्यम से वो जुड़े, अभी मैं तो थोड़ा परिचय मंडल में हूँ अभी. सेंसार बोर्ड का मैं सदस्य हूँ
1: जी,
0: हमारे इसका मैं एक 3 साल केंद्रीय फिल्म से इसका भी था, तो इस बारे में चलो अभी मैं इधर जो आया था अभी, तो हमारा वो क्या बोलते हैं 2 दिन सम्मेलन था
1: जी
0: झाड़ी पट्टी वो करके मैं इधर आया।
1: अच्छा अभी खत्म
0: बस वैसा ही इधर आया मैं, पूछो था ये मेरे को 9 तारीख बताए थे हमने 7-8 को लिए वो
1: जी जी,
0: तो मैं बोला 9 तारीख किसी का आ जाऊंगा, ये बोले 7 को जाना है आपको, फिर भी चलो मैं आता हूँ क्योंकि दीदी का मैं कार्य अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा कि
1: जी जी।
0: मेरे को आने की तमन्ना थी एक बार, मैं तो एक बार आ गया हूँ, लेकिन हम भी जरा वो टेंशन में रहते इधर हर दिन के अभी उधर का लेकिन ये आज मैं तो हर एक को बोलता हूँ अगर आपको मन शांति चाहते हो तो आप एक बार माउंट आबू जाओ उनसे मिलो
1: हमने
0: जब मैं नाटक में आया जब तो मैं हमने ये झाड़ी पट्टी विकास महामंडल नाट्य विकास स्थापना का मैं अध्यक्ष था 15 साल था, उसके एरिया में ऐसा लगा कि चलो भाई अब ये जो हमारे नाट्य परिषद वगैरह उसके गवर्नमेंट उसके ही देता है उनके सम्मेलन होते कि उस माध्यम से कलाकार इकट्ठा आ जाए, उनके कुछ जो कोई मनोबल है उससे कुछ डिफिकल्ट है वो एक माध्यम से वो संदेश, क्योंकि वयोवृद्ध कलावंत मानधन नहीं मिलता था पहले।
1: अच्छा।
0: लेकिन हमने उसको किया तो आज 5,000 रुपये एक कलाकार जो 60 उससे ऊपर हो गया उसको मिलता है।
1: अच्छा।
0: उनको रीटा की मदद कुछ नहीं मिलता था ना।
1: हाँ जी जी।
0: तो उसे कोई सुविधा है तो इसके वजह से, और जो नया कलाकार आता है जो इतने आज तो ढंग से, तो ये हमारे कुछ जो नाटक कंपनी है उनको कुछ अनुदान मिल जाए, बीमा कवच है उनको, अभी हमारा कुछ हर गांव में नाट्य गुरु बनाना चाहिए ऐसे, हाँ कुछ ये था, और गवर्नमेंट ने अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अच्छा चल रहा है अभी, हम 1,000 कलाकार आए थे
1: तो
0: माध्यम से एक परिचय, और उसको कुछ कुछ समस्या रहती है
1: जी।
0: तो एक झाड़ी पट्टी रंगभूमि मंच हमारा अलग ही, और मेरे को जब से पद्मश्री मिला है
1: जी।
0: तो एक चर्चा हो गई भाई झाड़ी पट्टी क्या है,
1: हाँ, जानना चाहते हैं अभी लोग।
0: उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि झाड़ी पट्टी के मंच पर एक पद्मश्री मिलता है
1: जी।
0: तो एक दृष्टिकोण चर्चा तो होती है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो उसके माध्यम से मेरे को जहाँ मैं जाता होती है झाड़ी पट्टी का जो ये और मैं भारत सरकार ही मानता हूँ कि हमको भी नहीं लग रहा था कि पद्मश्री क्या है, क्या किसको मिलता है, लेकिन अभी वो हर यानी जब से मिला है तो ये एक पहचान बन गई झाड़ी पट्टी रंगभूमि की, इज्जत बढ़ गई, लोगों का देखने का दृष्टिकोण बदल गया और इधर के लोग आने लगे अभी झाड़ी पट्टी में देखने लगे। अब एक झाड़ी उड करके पिक्चर भी निकला हमारा।
1: अच्छा।
0: हाँ झाड़ी उड।
1: अच्छा।
0: हाँ
1: वाह,
0: और कई लोगों ने PhD के डॉक्टरेट भी लिया उसमें, तो एक चल रहा है ना, बहुत लोग आ रहे हैं मजा ले रहे हैं, तो दृष्टिकोण अगर अच्छा है, इसलिए ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट था कि सब कलाकार नेपथ्य वाला है, तबले वाला, पिटी वाला, सब हर प्रकार का जो योगदान देता है झाड़ी पट्टी में
1: जी।
0: उसके लिए ये सम्मेलन वरदान है,
1: ये सम्मेलन वरदान है बिल्कुल। ये बहुत मतलब हम कम सुनते हैं कि इसमें रिटायरमेंट के बाद इस तरह की कोई व्यवस्था हो, ये शायद ही कहीं कभी सुनाई नहीं देती इस तरह की।
0: हमारे महाराष्ट्र में है
1: जी,
0: हमने पहली भी शासन ने भी बहुत, हमारे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक कला लोक कलावंत एरिया, तो उस वक्त क्या था उन्होंने 3 भाग में विभाजन किया था
1: जी,
0: ये अ ब क, अ वाले को 27, ब वाले को 22 और क वाले को 16-1200 ऐसे मिलते थे। तो अभी हमारे सांस्कृतिक मंत्री हमारे जिले के थे सुधीर बाबू, और मैं वो सम्मेलन का अध्यक्ष था
1: जी।
0: पिछले साल तो आखिर के जो समारोह के दिन में हमने बोले कि सर ये अभी 3-3 ये भाग ये सब मतभेद मत करो
1: जी।
0: और आज 1500 में क्या होता है, कुछ तो बढ़ा दो, एक रकम कर दो, तो 5,000 रुपये उन्होंने किए अभी चल मिल रहा फारे को अभी। और हमने ये जो सम्मेलन किया गया अभी और मांग ये किया कि भाई ये 5,000 में कोई नहीं होता, उसका कोई गुजारा नहीं होता
1: जी।
0: तो इसमें वो फायदा है
1: जी,
0: गवर्नमेंट को सोचना पड़ता नहीं, इनको जो मांगने रखी है इसमें करना पड़ता, तो ये उसका बड़ा फलित है,
1: बहुत बड़ा बेनिफिट है जी जी,
0: उनको न्याय मिलता है। और वो संदेश वहां तक जाता है
1: जी।
0: हाँ
1: उनकी बात पहुंचती है
0: बार।

0: सोचता है।
1: जी सर, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि हम जब भी भारत की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, और आपने भी बात की आज के समय कितना चेंज आ गया है, बहुत चीजें, तो क्या इस तरह की जो आर्ट फॉर्म्स हैं जो बहुत ही कई जगह तो विलुप्त हो रही हैं, कई जगह तो परिवर्तन इतना ज्यादा आ चुका है कि उसको ओरिजिनल फॉर्म भूलती ही जा रही है एकदम, तो क्या आपको लगता है कि ये भारत की संस्कृति को रिस्टोर करने में कोई भूमिका निभा सकता है इस तरह की कलाएं? नहीं,
0: मैं जो बोल रहा हूँ कि अभी क्या होता है, ये नए नए जब ये जो मीडिया आया
1: जी,
0: टीवी आया, मोबाइल आया
1: जी,
0: तो उसमें ये जो अपने जो कल्चर है
1: जी,
0: ये बहुत दूर चला गया। साठ वर्षों में जो मनोरंजन के साधन हो गए, तो अपन अपनी संस्कृति अपनी हैसियत भूल गए
1: जी,
0: ये बिल्कुल रियली मैं बता दूं, तो ये इसके लिए वही बोल रहा हूँ कि उसके लिए मैं करना क्या चाहिए। अभी तो इतना बढ़ गया कि कोई मानने को तैयार नहीं है
1: जी,
0: जिस ढंग से हम चले हैं, जो भारत जो हमारा प्रेम है, हम यहाँ के नागरिक है, स्वतंत्रता मिली है, बड़े बड़े लोगों ने त्याग दिया है, जो कोई जो वाद हो तो हमारे भारत में रहती है, भारत की जो संस्कृति
1: जी,
0: धर्म जो अपनी अनेकता में एकता है
1: जी जी,
0: ना वो करने के लिए तो भी आज का युवक जरूरी है। और मेरा ख्याल है धीरे धीरे ये अगर माध्यम होगा तो ऐसे ही माध्यम से, उन्नताई के माध्यम से बोलो, ऐसे में उसको इकट्ठे रहना, उसको समझा देना ढंग से, समझना जरूरी है, वो समझ में आ रहा है अभी,
1: आ रहा है अभी धीरे धीरे
0: समझ में आ रहा है। मैं भी जिस खेड़ में रहता हूँ आज, लोगों को समझ में आ रहा जो हो रहा आजू बाजू में, अपने जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी अपने कुछ मुल्क है, तो उसमें जो हो रहा है
1: जी,
0: तो उससे एक संदेश उसके वो उसको वो लाइन पे लाने के लिए
1: कभी हमें को भी
0: जरूरी है, ये संस्कार जरूरी है,
1: संस्कार जरूरी है।
0: तो अब कर रहे जेदी मानसिक आध्यात्मिक विषय से बोलो तो ये हो रहा परिवर्तन,
1: आध्यात्मिकता को अब स्वीकार है,
0: जो हो रहा ना अब अड़ोस पड़ोस में अपने, तो उसका उपयोग हो रहा नई पीढ़ी को
1: जी,
0: सोचने को मजबूर कर दिया, अगर हम इस ढंग से नहीं चले तो अपना क्या होगा,
1: अपना क्या होगा जी,
0: तो ये सोचना जरूरी है। और ये काम कोई अकेले ब्रह्म कुमारी का नहीं है, कोई उनका नहीं है, आप सबका है
1: बिल्कुल,
0: ज्ञान तो आप दे रहे हैं लेकिन आप वहां तो ले पीना नहीं पीना पानी वो उनका, ये तैयारी रखो, प्यासे हो आप, उसके लिए तो जरूरी नहीं है बात। तो ये नए जो कुटुंब प्रमुख होगा, कोई अपने जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे जैसे संस्था, एक एकता में आने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए करना, मुझे शुरुआत तो है, मैंने मैं तो बोलता हूँ वो तो हो जाएगा, क्योंकि जब एकदा जो क्या बोलते जो देखते हैं अपन
1: जी,
0: जो परिणाम
1: जी,
0: उसका इफेक्ट होता है ना
1: बिल्कुल,
0: तो वो तो जरूरी है आज के लिए, ये जरूरी
1: है, ये जरूरी है। सर एक और चीज जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि पद्मश्री जब आपको अवार्ड हुआ, वो अनुभव कैसा था उस समय, कैसा वातावरण था, क्या आप फील कर रहे थे उस समय?
0: मेरे को था क्या हो गया, मैं पहली बार जब कोई भी पुरस्कार रहे
1: जी,
0: जैसा आप ये फंक्शन कर रहे हैं
1: जी,
0: कोई भी उसको एक पुरस्कार जब मिलता है तो एक प्रेरणा मिली, जब मेरे को स्मिता पाटिल पुरस्कार मिल गया उसके नाम पर, दूसरा मेरे को कलादान पुरस्कार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया, तीसरा पुरस्कार मेरे को खेती में मैं अच्छा किसान हूँ, इसमें मैंने उपजत किया, तो उसके मैं क्षेत्रीय निष्ठा पुरस्कार महाराष्ट्र शासन का मिला
1: जी।
0: मेरे को समाज भूषण बाबा साहब अंबेडकर भूषण पुरस्कार मिल गया,
1: अनेक पुरस्कार,
0: ये मेरे महाराष्ट्र के पुरस्कार बहुत चारित्र। जब हमको लगा कि अभी जब डायरेक्ट बोलता हूँ कि ये जो सरकार आई है
1: जी,
0: तो पहले ऐसा लगता था कि भाई ये जो पुरस्कार, ये बड़े बड़े क्रिकेटवीर, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े उद्योगपति, उनको ही जाता होगा, पद्मश्री का हमको मालूम भी नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने एक ऐप निकाला था कि यहाँ का बोले भारत का कोई भी नागरिक जिसका जिन्होंने कार्य किया है, कोई सेवा की है, अपने अपने इसमें फील्ड में उसने नाम कमाया है, वो आप कर सकते हो, तो ऐसे मैंने मजाक में वो ये सब लेके भेज दिया
1: जी।
0: और मेरा नक्सलड एरिया पूरा वो ढंग से मेरे को शायद हो सकता है, वो इन 50 साल उन्होंने कार्य किया, इतने साल से इन्हें अवार्ड मिले, और नक्सलड एरिया में रहकर ये इतना 50 साल से कर रहे
1: जी।
0: तो वो ढंग से मेरे को जब मिला
1: जी,
0: तो मैंने मेरे को पत्रकार ने आए मेरे घर को, बोला आपको कैसा लग रहा, टीवी पे आ रहा आपको, मैंने कुछ नहीं, मैं बोला देखो ये मेरा अकेले का नहीं है,

0: मैं 50 साल ये झाड़ी पट्टी रंग में ये जो पूर्व विदर्भ है मैं घुमा हूँ, और 50 साल जो निकाला मैंने, इसका कारण ये कि जिस ये जो मेरा प्रेषक वर्ग है
1: जी,
0: रक्षिक वर्ग है, उन्होंने मुझे प्यार दिया 50 साल तक, मेरे को उन्होंने ऊर्जा दी, मेरे नाटक को आए टिकट निकाल के गर्दी की
1: जी।
0: बोला वो ये सब जो आज जो चल रही है उनका मान सम्मान झाड़ी पट्टी का, वो उसका हकदार वो है, मैं ये मेरा पद्मश्री उनके चरणों में अर्पण करता हूँ, ये मेरी पहली प्रतिक्रिया। और बाकी तो अपने कुटुंब में जो मिलता है तो मिला, तभी तब से मैं तो अरे मरे यकीन नहीं था कि मेरे को पद्मश्री मिल सकता है एक सामान्य आदमी को, लेकिन मिले।
1: आपने जो 50 वर्षों से भी ऊपर जो एक कला को समर्पित किया,
0: हाँ,
1: आपका जीवन,
0: तो मैं ये बहुत निस्वार्थपन से करो ना दीदी, वो भगवान उनको देता है। मेरे बारे में मैंने कहीं पैसे की लालच नहीं किया, मैं जितना दिया उतना लिया, लेकिन जाता था नाटक, लोग बुला नहीं जाता था, कोई पैसे भी कोई अपेक्षा नहीं थी, मैं करते रहे घर, तो 8-8 दिन घर नहीं जाता था मैं।
1: अच्छा।
0: उसके पीछे मेरी बीबी आई बीच, उनका भी बड़ा सहयोग है, मेरे भाई का, मेरे गाँव में सरपंच था 15 साल गाँव का, 15 साल फिर भी मैं वो उनका भी काम करता था। तो कोई काम लगन से करो ना, निस्वार्थ करो, तो उसको भगवान उसका मिट देता है,
1: फल देता है।
0: हाँ
1: जी।
0: अब मैं आज आया
1: जी,
0: मेरे को कभी ख्याल में मैं आऊंगा करके, लेकिन भगवान की इच्छा हुई, चलो आप माउंट आबू आपको जाना है
1: जी।
0: मैं तो टाल दिया था पहले पूछो, तो ये कभी कभी आदमी कर्मी भी ये हो जाते, इतना बड़ा ये आप मेरा एरिया देखोगे, आप उधर आओगे तो बड़े कहाँ आके बैठ गए, कभी कहा साला शेर निकलेगा, कभी आएगा ये।
1: अच्छा।
0: हाँ
1: जी।
0: तो ये इसमें रहकर मैं कभी साइकिल पर, कभी नाव पर, कभी ऐसे चलते थे, और रात भर नाटक करके घर के वापस आना, और दूसरे को मैंने नॉन स्टॉप करता था मैं 3-4 महीने
1: जंगलों के बीच,
0: जंगल के बीच में कोई 50 साल के एक नाटक किलोमीटर, दूसरा इकड़े मोटरसाइकिल जाना, कभी कभी रेंगे पे जाना, कभी डोंगे पे जाना,
1: तो आपको डर नहीं लगता था कभी?
0: गया था मैं, वो जमाना अभी तो रोड बन गए
1: जी,
0: उस वक्त नहीं था, मैं 70-80 की बात कर रहा हूँ, बहुत जंगल था, अभी भी है, ताड़ोबा है जंगल हमारा, नागजीरा है, हमें जंगल इनका ताड़ोबा देखने लायक है, वहाँ फेमस हमारा इधर नागजरा है, नयगांव बांध है, बड़े बड़े हमारे जंगली एरिया वो हमारा, लेकिन हमको अच्छा लगता अभी जब से कोरोना आया ना, तब से हमारा एरिया अच्छा लगता है कि वहाँ खुला हुआ साक्षर मिलता है।
1: सही बात है,
0: अभी बहुत बदल हो गया अभी।
1: तो इतने महीनों जब आप बाहर रहते थे, और मतलब क्या लगातार पूरी रात अलग अलग अलग अलग जगह कार्यक्रम,
0: हाँ आज अलग नाटक का, अलग मेरे को नाटक का नाम भी नहीं मालूम था।
1: अच्छा।
0: अभी तो कंपनी होगी, मैं जब जिस मैं जो 25 साल मैंने काम किया होगा वैसा किया कि आज यहाँ नाटक, परसों आने का अलग अलग कलाकार, कौन क्या कर रहा, जाके मैंने डायरेक्टर नहीं इसका डायरेक्ट जाना था।
1: अच्छा।
0: अभी तो डायरेक्टर बन गया, आज लोग सब रिहर्सल लेके नाटक तैयार करते हैं, हमारे दोनों वैसा नहीं था, वो गांव में 4-5 कलाकार, बाकी हम जाते थे क्या है बताओ।
1: अच्छा।
0: लेकिन वो एक मैं बोले कि महाभारत रामायण वही नाटक होते थे, तो वो कभी भी फिर वो मेरे को पूरे कंटेस्ट हो गए। लेकिन अभी जब से ये लावणी प्रधान आ गया, तो अभी अब थोड़ा क्या हो गया, वो थी होशी रंगभूमि, अभी ये 20 साल से थोड़ा कमर्शियल हो गई पूरी, पहले जो गांव के लोग करते थे वो गई अब होशी, अभी वो क्या करते, हमारे वर्षा में बड़ी बाजार पर जो झाड़ीवुड पिक्चर निकला है नहीं, तो बड़े वो उसका मार्केट है, जहाँ दुकान अपना आप लेके बैठे हैं नाटक के 4-5 नाम कलाकार के नाम, और वो जो लेने वाले आदमी फिर उनको एक दिन के लिए 40-50-70-80 हज़ार रुपये लेके गाँव में नाटक करते हैं, हर गाँव में नाटक होता है, तो वो आ गया अभी व्यवसाय, तो उसमें अगर तुमने थोड़ा भी गलती कर दिया तो पैसे नहीं देते, इसलिए अभी कंपटीशन बढ़ गया है,
1: कंपटीशन हो गया,
0: एक एक गांव में 12-12 नाटक होते, गिनीज बुक में है, गांव में 4 तो होते, 2 तो होते गांव में, क्योंकि वो पार्टी का अलग, ये पार्टी का अलग, वो पार्टी का अलग, चाहिए तो अभी उसके हमारा कोई मतभेद नहीं रहता, क्योंकि चलो कलाकार का पेट भरता है
1: जी, जी, जी।
0: एक गाँव में 4 नाट होना बोले तो क्या बोलते, कलाकार तो 150 का हो गया ना उसमें, तो उसमें कोई मतभेद नहीं, वो करते हैं
1: मिलजुल के,
0: मतलब मिलजुल के करते, बड़ी बात
1: जी जी, मतलब 12-12 नाटक भी,
0: और उसमें मैंने बताया कि उसमें खाली नाटक नहीं है
1: जी,
0: तो वो ढंग से जो मेहमान आते हैं लड़की देखने, वहाँ फिर शादियाँ जुड़ती है, नए जावई दामाद गांव में आते हैं, कोई देखने आती लड़की, ऐसे ही वो भी चलता है उसमें।
1: हाँ।
0: वो भी एक सामाजिक कार्य का एक फायदा है उसमें,
1: जैसे वो एक पूरा सामाजिक कार्य ही हो,
0: कार्य हो गया हो, क्योंकि हर साल में एक बार नाटक गाँव में होता है।
1: अच्छा।
0: तो एक वो गाँव वाले के लिए वो एक तैयारी है, मेरे गाँव में नाटक हो रहा है, अरे चलो मेरे गाँव में बुला जाओ, ही आ जाओ, मेरे बहन आ जाओ, मामा जी आ जाओ, वो ढंग से वो एक निमित्त से वो आते हैं, उससे सबर विदा भी होती, बढ़िया विदा की। हाँ।
1: खातिर भी होती
0: है। तो एक संस्कृति इसके पीछे
1: जी, भारत की भी संस्कृति ना, मेहमानों को बुलाना, उनका देख रेख करना,
0: उसमें यानी शादियां जुड़ती है ना
1: जी।
0: ये परंपरा चल रही है अभी भी,
1: परंपरा अभी भी चल रही है,
0: थोड़ा ढांचा नाटक का बदल गया
1: जी जी जी,
0: पूरे अभी क्या बोलते उसे व्यावसायिक होगी
1: जी,
0: वो ढंग से नाटक भी सादर करते
1: जी। सर जो भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई भी भारत के युवा या गांव में रहने वाले युवा, बहुत लोग सोचते हैं कि हमको जीवन में, हम गांव में रहते हैं हम क्या करेंगे, या फिर ठीक है अब जीवन यही है तो वो भी मान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं कि ठीक है यही है, नशा कर रहे हैं या आदत पड़ गई है, दोस्तों के साथ हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है हम कोई शहरों वाले थोड़ी हैं ना, हम वहाँ जाएंगे, हमारा जीवन यही, तो कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बहुत अंशी मेरा जो कार्य है वो देहात में गया
1: जी,
0: मैं बहुत नजीक से देखता हूँ उसमें तरुण को, लेकिन आजकल क्या हो गया, एक बड़ा यानी मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे को लोग मजूर नहीं मिलते, एक तरफ ऐसा भारत है वहाँ, दो भारत है, इधर मजूर नहीं मिलते, इधर कई वर्ग जाते तो भिखारी का है कि मैं जब चार लोगों को पालना चाहता हूँ, मेरे खेत पर बुलाना चाहता हूँ, नहीं आता, क्या कारण है? ये लगन नहीं, मैं कहता हूँ हमारे गांव मेरे गांव में जो कि लड़का ऐसे कि जो रात भर नाटक में काम करते, दिन भर खेती करते, अपने व्यवसाय करते, तो आजकल कोई भी सरकार तो हर एक को नहीं दे सकती ना, तो स्वावलंबी बनो, ये तो बड़ा, मैं तो बड़ा ये झाड़ी पट्टी रखी तो बड़ी एक बड़ा एरिया है जहाँ आपको अगर आत्मिक कोई गुणवत्ता हो, आप अच्छा आपको गला है, आपको अभिनय आता है, आपको अच्छा कोई आप पेंटर हो, आप अच्छा बाजा बजाते हो, तबला बजाते हो, सबके लिए तो खुला है, उनको होना ही है ना, अगर ये मैं तो तुम काय नौकर, और नौकरी तो इतनी बड़ी कोई जो नहीं लगता, आजकल डोनेशन दो पैसा भरो, ये भी भ्रष्टाचार बहुत चढ़ गया है, कोई ऐसी कोई ऐसा नहीं लगता कि ये लो, तो उनसे टाइम उसमें जो अर्जी जिंदगी चली जाती है उनकी, ना ये ढंग से एक ना गायक बन सकता है ना उधर नौकरी कर सकता, तो एक लगन से अगर आपको अच्छे है, आपको अभी नहीं आता है, तो आप उतर जाओ सीखो, और आज का शहर में भी ये जिंदगी बिताना बहुत कठिन काम हो गया
1: जी,
0: इतना सरल नहीं रहा, तो मान से अपने परिवार बोलो, अपने आए बाप जो माँ बाप रहते तो उनके सामने अगर आप अच्छा कमाएंगे, एक लगन से काम करेंगे, आज बहुत बहुत है ना, मैं तो कहूँ नहीं दम जाओ मिलिट्री में, देश की सेवा करो, क्या क्या पर आपका को, आप तो मुफ्त खाने की बात हो गया
1: जी,
0: एक रुपए करो चावल दो तो कर ये दो, अरे को देखने का, अरे वो तेरे पिताजी के लिए है, काम नहीं उनके लिए, तू क्या मनता है, खुद की पहचान अगर तेरे करना तो सोचना मेरे में क्या है, अगर तू अच्छा मजदूर बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा गायक बन सकता है, अच्छा कलाकार, खुद को पहचानने की जरूरत है, मेरे में क्या है, इस कम है तो मैं कैसा, इसके लिए कोई गाइड गुरु की जरूरत होती है, शांत उन्होंने सोचना चाहिए, ये अगर आपने गुरु ढूंढ लिया अच्छे इसमें ये गए तो आपको अच्छे मार्गदर्शन मिल जाएंगे, अपना क्रोध तुम कंट्रोल में होते हो, ब्रह्म कुमार तुम्हारे इसमें पढ़ाया जाता है, क्रोध का क्या अर्थ है, शांति कैसे बनाए चाहिए, उसका फायदा उसको हो जाता है उसमें, अगर पहले से आप अगर निगेटिव सोच रहे हो तो कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव सोचो,
1: पॉजिटिव सोचो, अपने अंदर अपनी पहचान,
0: पहचानो मैं कौन हूँ, अगर वो बन गई तो वो बन जाता, टाइम लगेगा थोड़ा, हमारे पता वैसा नहीं था, कंपटीशन कम था
1: जी।
0: अभी बढ़ गया,
1: अभी तो बहुत
0: बहुत है, हमारा हम तो भाग्यशाली क्या मुझ चले गए, अभी तो तुम्हारे बाप आज दूसरा बिला बुला आता है, तो खुद को रखो,
1: मजबूत रहना होगा,
0: प्रेजेंटेशन करो खुद को, मैं क्या हो, आत्मा बल बढ़ा, तो उसमें अगर ये मेडिटेशन तो आप ये ज्वाइन करो ब्रह्म को, वहां आके अपना ये करो, उसमें तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ना आपको, आप जो भटके हुए आपको जो विचार मन में नहीं होते उसको तो एकत्रित उसमें कैसा मैं यहाँ से मैं जाऊँ, तो वो ये कही है
1: जी। तो बहुत सुंदर आपने बात कही और मुझे लगता है युवाओं के लिए बहुत ही बहुत जरूरी है,
0: जरूरी
1: है। खुद को खोजना, खुद को पहचानना मेरे अंदर क्या है, और जैसा आपने कहा समय लग सकता है लेकिन पॉजिटिव उसके लिए मेडिटेशन या आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, मेडिटेशन तो बहुत ही मदद करता है
0: आज की जरूरत है।
1: युवाओं को भी हम सोचते हैं कि शायद हम कभी बुजुर्ग हो जाएंगे तो हम करेंगे तो ऐसा ही
0: आपके बच्चे भी वही
1: हर कोई
0: सोचे जब जो जैसे परंपरा चल रहा था वो अभी वो परंपरा ही बदलने को होना ना
1: जी।
0: पुराने तो हम नहीं बोलते पुराने लेखों का, लेकिन जो जैसा जैसा जमाना बदलते जा रहा है उसमें से अपने खुद को बचा के
1: जी, खुद को बचा के भी रखना,
0: साइड को बचा के खुद यहाँ से तैर, ये तो महासागर है
1: बिल्कुल,
0: यहाँ से तैरना निकालना तो आपको कोई ना सहारा लेना पड़ेगा।
1: सही बात है,
0: बहुत मार्ग है तेरे पास है लेकिन तू दिखता नहीं ना, वो गलत है, तेरे मोबाइल ही दिखता है,
1: मोबाइल ही दिखता है। सही बात है,
0: क्या नहीं वहाँ भी है वो खोज लो, मोबाइल के अच्छे ना मोबाइल भी सब कुछ है।
1: सही बात है, उसका भी नुकसान आज
0: वो नहीं देखता
1: भुगत रहे हैं बहुत ज्यादा, युवा पीढ़ी भी और समाज भी। सर बहुत मोटिवेटिंग आपकी कहानी है और आपने जैसा आगे बढ़ाया है एक कला को ही नहीं बल्कि एक जीने के तरीके को, जीवन शैली को। सर जाते जाते आपसे एक और छोटा सा राउंड हम करना चाहेंगे ऑडियो इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में, कि मैं कुछ एक शब्द कहूंगी आपसे और उस शब्द को सुन के आपके मन में एक कौन सा शब्द आता है वो आप बताइएगा, कि इसका जवाब आपको एक शब्द में देना है।
0: एक शब्द में?
1: हाँ जी। हाँ। कि ये शब्द सुनकर आपके मन में कौन सा शब्द आता है वो आपको बताना है।
0: अच्छा
1: जी, तो पहला शब्द है झाड़ी पट्टी।
0: झाड़ी पट्टी पूरा रंगभूमि।
1: पूरा रंगभूमि। भारत।
0: मेरा भारत महान।
1: मेरा भारत महान। कला। कला।
0: कला तो जीने का सहारा है,
1: जीने का सहारा,
0: एंजॉय, पॉजिटिव थिंकिंग।
1: युवा।
0: युवा आज का बोले तो आज का युवा भारत का आधार स्तंभ है, भारत उसको बनाना है,
1: बनाना है,
0: बनाना है, और हम हमारे जो पीढ़ी उनकी चाहते कि ये कुछ ना बन जाए। युवा बोले भारत, यंग भारत।
1: यंग भारत, क्या बात है। और अगर मैं आपसे कुछ शब्दों में जानना चाहूं कि आप कौन है, आप अपने बारे में क्या?
0: मैं भारत माता का सेवक हूं
1: जी।
0: मैं खुद को भाग्य से मैं भारत जैसे देश में जन्म लिया
1: जी,
0: और मेरे भारत में जैसे सनातन धर्म की परंपरा है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, खाली भारत में ही मिलेगा आपको ये
1: जी।
0: जैसे माउंट आबू में आया है, जो आध्यात्मिक देखा मैंने, तो ये कई कल्चर दूसरे देश में नहीं मिलेगा, जीने का सहारा ये है। इसमें भागवत करता हूँ, मेरे भारत में सही रास्ते पर लाने वाली बहुत संस्था है, ब्रह्म कुमारी जैसी है, ये मैं भाग्यशाली से रहता
1: हूँ जी। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं इस मामले में, इस भूमि पे जन्म,
0: भूमि में जन्म
1: जी।
0: भारत माता है, माता काली, इसलिए विश्व माता बोलते हैं, भारत बोलते कहीं नहीं बोलती, यहाँ सिखाया जाता है माता क्या है, मेरी माँ है,
1: मेरी माँ है,
0: और माँ के सामने सब बराबर होते हैं
1: जी। बहुत सुंदर बात किया आपने, माँ के सामने सब
0: सब बराबर
1: है,
0: पहले भारत माता के पुत्र है, माँ है हमारी, कोई माने ना माने, अगर ये हम सब अनेकता में एकता का प्रतीक यही है, वो माँ का माँ है,
1: ये शब्द माँ, क्योंकि हमें भारत माँ है, तो
0: भारत
1: बहुत सुंदर। सर आपका जीवन काल बहुत ही लंबा, आपने जो समय व्यतीत किया जैसा आपने बताया, कई रातें लगातार, और वो जीवन जीते जीते झाड़ी पट्टी को प्रमोट करते करते युवाओं को उस नक्सलाइट एरिया में उस जीवन शैली से निकालना, बचाना, सकारात्मक दिशा देना।
0: भूल भैया, मैं जब यहाँ से 22 साल का था, मैं जब मैंने डॉक्टर के पास की गांव में गया, वहाँ पूरा जब मैं सरपंच बना गांव का, पूरा वो आदिवासी, तो उनका पूरी श्रद्धा पुजारी, फुकपक बुआ बाजी, जब मैं कहीं घर को जाता था, बोले इंजेक्शन को, बोले उनको दे दो, मैं उनको पुजारी ये करके देगा, तो निकालना कैसे, वो पूरे इन ढंग से बुआ बाजी के इसमें गए थे, चमत्कार क्यों नमस्कार, तो मैंने कुछ मैजिक शो सीख लिया था।
1: अच्छा।
0: और वो करना चालू कर, फिर जो दुर्गा उत्सव हो, गणपति हो
1: जी।
0: ये उसका भी रहस्य भी एक, वही जैसे गुदबत्ती कैसी घूमती है, ये रुमाल हवा से ये कैसा आता है, चैन कैसे निकालते हैं, वो गणपति दूध कैसा पीता है, ये सब उसको अगर बोलो आश्चर्य लगता था
1: कैसे हो रहा है।
0: लेकिन ये है और ये सब थोतान है जब उसका ये कर रहा तो उस, अरे भाई ये तो साले जी ये साइंस क्या है उसके पीछे बनिए। मैंने को उसका वो भी कार्य मैं अभी भी कर रहा हूँ।
1: अच्छा तो आप करके बताते
0: हो। मैं टीवी पर अभी आया परसों मेरे इंटरव्यू हमारे महाराष्ट्र में, मैंने वो भी करता हूँ। मेरे को उसके भी मद्रास में किया था।
1: अच्छा
0: मैं अभी पुणे में मैं उसका शो किया था। मैं उसके लिए कोई ये नहीं, मैं उसके लिए वो उनके लिए करता हूँ जो अंदर सदा के निर्मूलन के जरिए मशाम मानव हमारी, तो वो भी मैं किया
1: जी। उनको बाहर निकालने बाहर के लिए उस अंधश्रद्धा से
0: हम नहीं, पूरा जो देहाती पहले था वो इसमें जाता था, डॉक्टर भरोसा नहीं लेकिन वो पुजारी को भरोसा रहता था। उसमें हम नाटक में मरीमाई का भूतिया,
1: अच्छा
0: एक नाटक आदिवासी परंपरा का नाटक है, सत्य घटना पर आधारित है। जो नरबड़ी कोई ज्यादा उत्पादन होने के लिए पहले उधर हमारे एरिया में आदमी वो काटते थे, कोई एक सत्य घटना पर आधारित था। मेरी माँ चाबूतिया मेरी माँ एक रही थी, उसको पटेल उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई, नक्सल एक्ट का हमारे ऊपर अटैक हो गया।
1: अच्छा
0: कोर्ट में गए इसके लिए, हम कोर्ट को न्यायाधीश को बताया इस बारे में, मतलब इसमें कोई ये जो इसमें से परंपरा किसी गलत है ये हम बताना चाहते हैं। उसमें वो आदिवासी को बाहर निकालना करके, तो उन्होंने भी फिर भी उसके बहुत यानी क्या है कोई नकारात्मक ये हुआ तो उसको बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है। तो वो इतना नाटक चला कि ऑटोमेटिक उसको प्रसिद्धि, तो वो भी हमने की।
1: क्या बात है, ये तो बहुत
0: बहुत अच्छा काम किया,
1: बहुत बहुत ही अच्छा।
0: वो पूरा वो आदिवासी संस्कृति में वो नाटक आदिवासी भाषा में था, वो जो बोलते थे ढंग का वो जो उनकी अलग भाषा है आदिवासी, मराठी अलग बात करेंगे
1: जी।
0: तो वो ढंग से उन्होंने लिखा और वो पूरे कलाकार आदिवासी थे हमारे, उनका पूरा जो आदिवासी का जो साज था बजाने का वो भी पूरा साज जो उनकी संस्कृति बजाते हैं देव वो पूरा हमने लाए थे। उसका बड़ा इफेक्ट बहुत दिन हो गए नाटक को अभी लेकिन बहुत चला,
1: बहुत चला, उसका बड़ा असर पड़ा,
0: बड़ा असर पड़ा। और हमने उसने भी निकाले जो नक्सलाइट में हमारे ऊपर पूरा भैंस का डाला था, लेकिन हमने उनको भी दिखाया, इसमें कोई बोला बुराई है ही नहीं सर, हम तो लोगों को समाज को निशान बाहर निकालना चाहते, ये जो परंपरा है बोले उत्पादन बढ़ने के लिए कुछ बोले आदमी को काटना पीटना अपनी देवी को करने थोता नहीं। उसके वो जो पटेल था आदिवासी उसकी लड़की उससे बंड करती है, इसमें ये बुरी क्या बात थोड़ी है, बोला
1: वो पूरी कहानी है,
0: कहानी
1: है। जी तो आपने उनको भी समझाया।
0: हाँ तो वो हमने वो ढंग का भाई वो ये मरी मैं जब होती बहुत पुराना नाटक,
1: बहुत पुराना नाटक,
0: मैं जब तो नाटक में कहूँ उसमें बहुत नाटक चलाओ
1: जी।
0: तो उसमें नक्सलाइट ने हमको धमकी दी थी कि हमारे ऊपर नहीं और आपकी तरफ नहीं है।
1: अच्छा उनको लगा होगा कि उनकी
0: हाँ, तो वो हमको फायर मिलिट्री खाली हम नाटक कर रहे हैं। फिर कलेक्टर ने को देखा है हमने सेंसर बोर्ड को और मिलने बोली इसमें कोई है ही नहीं, बाद में वो मान गए।
1: ये तो उनके बेहतरी के लिए कल्याण के लिए
0: आपके आपके अच्छे के लिए नाटक
1: अच्छे के लिए
0: ये जो थोतान है ये जब बुआ बाजी फुआ बाजी ये जो आपको पुजारी बताता है नर आदमी को काटना कहाँ से उत्पन्न होती है, आदमी को काटना गलत है ना,
1: बिल्कुल
0: वो सत्य घटना थी।
1: इस तरीके से
0: अभी तो नहीं, अभी तो उधर का आदिवासी बुरा प्रॉम्प्ट हो गया, अभी
1: अभी
0: फलित है। हमने हमारे जमाने में बहुत था,
1: बहुत था। बहुत अच्छा सर, बहुत ही पावरफुल कहानियां हैं और बहुत सारी कहानियां होंगी आपके पास क्योंकि 50 साल का एक लंबा अंतराल आपने इस कला को समर्पित किया है और इसके माध्यम से कुरीतियों को लोगों के दिलों से और डर बन जाता है, वो डर को निकाला वो बहुत बड़ा काम है, वो एक बार में नहीं होता, वो शायद कला के माध्यम से उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है।
0: जैसा हमने किया था जैसे मेरे को प्रेरणा मिली कि मेरे को इस काम का पद्मश्री मिला
1: जी,
0: तो पीछे वाला ने इससे कुछ भले किया तो उसको भी एक तमन्ना आ जाती है मैं भी अच्छा कार्य करूं,
1: मैं भी करूं,
0: तो वो भी तैयार हो जाए, वो होना चाहिए ना। जैसे दीदी अभी कार्य कर रही, इनके पीछे कोई आने को होना ना दीदी का कार्य सामने लाने के लिए, यही तो संस्कार है,
1: यही संस्कार है।
0: एक आदमी आया तो भी बहुत हो गया,
1: एक को भी प्रेरणा मिली तो बहुत हो गया जी।
0: भगवान को पत्थर मारो तो ये हो जाता है ना आसमान को।
1: जी जी जी, बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में पधारे, आपने अपना समय दिया और इतनी खूबसूरत रीति से इस जर्नी को हमारे साथ जो आपने शेयर किया, जो बांटा, इतनी अनेकों प्रेरणाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्ते,
1: धन्यवाद।
0: राधे राधे, ओम शांति,
1: ओम शांति, राधे राधे। चलिए दोस्तों, वक्त हो गया है इजाजत लेने का।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार, रेडियो मधुबन में आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। आज भी हम संगीत की भाषा में जो जाने माने या बार बार उपयोग करने वाले जो शब्द है उसके बारे में आज जानना चाहेंगे। हर बार कुछ न कुछ राग और इसके बारे में तो बहुत सारी जानकारी हमने ले ली, आज हम देखेंगे कि संगीत में ख्याल शब्द जिसको हमने बहुत बार श्यामली जी से सुना भी है मगर उसका सही मायने में अर्थ क्या है ये नहीं समझ पाए हैं। ऐसे तो साधारण भाषा में ख्याल ये कल्पना के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। ऐसे तो देखो ये जो गीत की शैली है वो कल्पना के आधार से बंदिश तान सरगम के साथ हम फ्रीडम से गा सकते हैं, तो इस प्रकार की शैली को हम ख्याल कह सकते हैं। इसमें ख्याल को जब प्रस्तुत करते हैं तब राग के ऊपर भिन्न भिन्न अंश लेकर विधि पूर्वक विभिन्न स्वर सहित छंद के आधार से मिठास के साथ हम गा सकते हैं, ऐसा ही है ना श्यामली जी?
3: हाँ जी।
2: तो आज हम श्यामली जी से सुनेंगे ये ख्याल जो शब्द हम बार बार आपके मुख से सुनते हैं इसको आप हमें स्पष्ट रूप में समझाएं। हाँ। फिर से संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों के साथ साथ हमारे संगीत गुरु हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: हाँ, जितने सारे लिसनर है आपको भी मैं भी नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तो एक्चुअली ये जो ख्याल जो है ये पारसिक भाषा है, पारस्य देश में जो लैंग्वेज है उसमें ख्याल को हम कल्पना कह सकते हैं। तो वही पर ये जो ख्याल सृष्टि किए हैं जो पहले इसको सुचारू रूप से आम जनता के सामने लाए हैं वो है वो पारस्य देश का जो एक फेमस जो गायक है आमिर खसरू।
2: अच्छा, सब जानते हैं खुशरू,
3: उन्होंने पहले इसको प्रेजेंट किया है।
2: अच्छा,
3: तो इसमें ये जो चैलेंज जो है ख्याल को जो ऐसे हम कह सकते हैं कि हम फ्रीडम से गा सकते हैं, जैसे कि कोई राग ले लिया हमने चुन लिया उसमें जितने सारे स्वर है जो है उसको हम क्या करेंगे अपने हिसाब से बहुत सुंदर मिठास से छंद से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं।
2: Okay.
3: इसलिए मैं बोल सकती हूँ गीत का जो संगीत का जो माता पिता है ये ख्याल है।
2: ओके।
3: जब तक हाँ इसको अपनाना भी बहुत जरूरी है, जब तक नहीं करेंगे तो जितने सारे गीत है उसमें कितना सुंदर सुंदर तान वगैरह है बहुत मीठा से करते हैं। मैं आपको सुनाऊंगी कि क्यों इसको करना चाहिए, ये जो है शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। तो इसमें जो अभी आज जो हम लाए हैं विलंबित ख्याल, मतलब हम इतना दिन जो किया है मध्य लय में किया है।
2: ओके।
3: हाँ,
2: तो इसमें कितने प्रकार होते हैं आप बोलते हैं?
3: हाँ, इसमें तीन प्रकार की ख्याल होते हैं। एक विलंबित होते हैं, थोड़ा आहिस्ता लय से हम धीरे लय से गा सकते हैं, और मध्य जो है वो जो हमने अभी इतना दिन जो शास्त्रीय संगीत प्रेजेंट किया है वो मध्य लय है।
2: Okay.
3: जब तान हम शुरू करेंगे वो जो मध्य लय थोड़ा फास्ट हो जाते हैं।
2: अच्छा,
3: उसको कहते हैं
2: गति थोड़ी
3: हाँ, गति थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो इसलिए इसको कहते हैं द्रुत लय।
2: अच्छा।
3: ऐसे संगीत की दुनिया में जो शास्त्रीय संगीत है उसमें और भी द्रुत के साथ गाते हैं ताराना। उस खाली ताराने के मतलब वो बाद में हम सिखाएंगे, वो ताराना द्रुत लय से गा सकते हैं, वो कभी मध्य लय से या विलंबित लय से ताराना नहीं होता है।
2: बहुत फास्ट
3: फास्ट
2: जो होता है उसको ताराना बोलते हैं।
3: हाँ जी, उसको ताराना कहते हैं। तो आज हम विलंबित ख्याल थोड़ा सिखाएंगे,
2: क्योंकि ऐसे साधारण भाषा में हिंदी में ख्याल मतलब अपना ध्यान रखना।
3: हाँ, हाँ जी,
2: है ना।
3: हाँ,
2: और
3: हाँ,
2: आपने ये भी बोला कि यहाँ भी संगीत
3: ख्याल
2: की भाषा
3: मतलब
2: में
3: अपने मन से अपने ढंग से अपने इच्छानुसार हम गा सकते हैं, जो गीत है वही है ख्याल। जैसे उसमें पूरा फ्रीडम है, मेरे को नहीं करना है कि वो सुर लेना है वो सुर लेना है, जो हमारा इच्छा होता है जो सुर अच्छा लगता है वो हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें विधि पूर्वक करना है क्योंकि इसमें भी थोड़ा राइट हिसाब से, क्योंकि जो हम राग लिया है उसमें जैसे जो जो स्वर प्रयोग होता है खाली वही लेना है।
2: अच्छा,
3: बाकी हम दूसरा स्वर नहीं ले सकते हैं। अगर वृंदावनी सारंग लेते हैं तो उसमें पार्श्वर प्रयोग होता है, खाली वो पार्श्वर की प्रयोग करेंगे, या भूपाली राग करेंगे तो भूपाली राग में पार्श्वर है, पार्श्वर ही प्रयोग करेंगे। और जहाँ ये है खम्बाच राग है, सारूप संपूर्ण है, जाने का टाइम 6 स्वर, आने का टाइम 7 स्वर, वही प्रयोग करेंगे, लेकिन अपना इच्छानुसार।
2: अच्छा,
3: कल्पना के साथ
2: माना विधि पूर्वक भी होना चाहिए,
3: ग्रामेटिकली
2: और इच्छा अनुसार भी, दोनों का संबंध है,
3: ग्रामेटिकली मैथमेटिकली, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार ताल के सहित। हम बेतला भी नहीं कर सकते हैं,
2: ओके,
3: ताल बिना भी नहीं चल सकते हैं।
2: अच्छा,
3: आज वही हम सिखाएंगे।
2: तो
3: है?
2: आज कौन सा राग लेकर आए हैं?
3: आज थोड़ा एक गीत है, परिचय फिल्म,
2: पहले ही हमको आप बताएंगे कौन सा राग, मगर पहले गीत सुनाएंगे और हमारी परीक्षा लेंगे।
3: आपको बोलना है कौन सा गीत है, क्योंकि हमने ये गीत पहले हमने सुनाया।
2: अच्छा,
3: सिखाया, इसलिए हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके
2: ओके ओके।

0: वाह, ये तो हमको जाते जाते आप कुछ अच्छा सुना के जाते हैं। आज तो शुरुआत में ही आपने बहुत अच्छा सुना दिया।
1: नहीं, आपको बोलना पड़ेगा ये जो गीत हमने प्रेजेंट किया
0: है, पहचानना है कौन से राग का है। श्रोता मित्रों ने तो शायद पहचान लिया होगा, मगर आपको ही बताना पड़ेगा।
1: हम बोल देते हैं कि ये जो राग है यमन राग की है।
0: अच्छा, यमन राग का ये गीत।
1: यमन राग की है ऊपर ये गीत है। तो आज हम क्या करेंगे, ये यमन राग के ऊपर हम विलंबित ख्याल सिखाएंगे।
0: अच्छा,
1: लेकिन ये जो विलंबित राग है इसमें अलग से ताल इसके साथ प्रयोग होता है। जैसे एक ताल, झूमरा, तिलवाड़ा, ये सब ताल होता है।
0: अच्छा,
1: तो हम क्या करेंगे,
0: माने ये सारे ताल के प्रकार है।
1: ताल के प्रकार है। शायद लिसनर को याद रहना चाहिए कि हम जब यमन के ऊपर लक्षण गीत सिखाए थे तो एक ताल सिखाए थे।
0: अच्छा,
1: 12 मात्रा की था। धीन धीन धागे तेरे केटे थुन ना कत्ता धागे तेरे केटे धीन धाधा धीन। ये जो 12 मात्रा है, 4 ताली है, 2 खाली है।
0: अच्छा,
1: अगर दो दो मात्रा लेकर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 × 2 होता है 12।
0: अच्छा,
1: 12 मात्रा होता है,
0: 12
1: होता है। तो हम अगर 2 लेंगे, इसमें 4 ताली है। पहले मात्रा में 1 ताली, दूसरा फाक है, तीसरा में फिर ताली, चौथा फाक है, उसके बाद 2 ताली है, इसलिए 4 ताली, 2
0: खाली है। अच्छा,
1: लेकिन अभी क्या करेंगे, विलंबित जब होता है वो तो फास्ट है। धीन धीन धागे तेरे केटे थुन ना, थोड़ा फास्ट है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, ये जो 12 × 4 इसको अगर 4 करेंगे 48 मात्रा होता है। ठीक है
0: जी।
1: 4 4 4 4 करके अगर करेंगे, लेकिन क्या है, एक मात्रा जो है धीन धीन, जैसे है धीन के ऊपर 4 मात्रा।
0: ओके।
1: और धीन के ऊपर 4 मात्रा, धागे ऊपर 4 मात्रा, तिर के ऊपर 4 मात्रा। तो अगर ऐसे करेंगे, 4 4 लेंगे, 12 मात्रा है, उसके साथ 4 अगर इंटू करेंगे, 1 × 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 4। ठीक है, 4 4 अगर करेंगे 12 मात्रा होता है, अगर इंटू 4 करेंगे, 4 करेंगे वो 48 होता है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वो जो

0: सब्जेक्ट करने से क्या होता है, जब विलंबित ख्याल वो प्रेजेंट करेंगे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम ठेका की बोल माने बताना चाहती हूँ लिख सकते हैं।
1: मगर श्यामली जी, आज तो आपने शुरू शुरू में इतना बड़ा गाना सुनाया, भले हमको पहचानने के लिए आपने गाया,
0: तो क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं होता है,
1: इसीलिए हमको अभी ब्रेक लेना पड़ेगा।
0: ओके,
1: है ना।
0: हाँ जी।
1: तो श्रोता मित्रों, आपने आज श्यामली जी से बहुत अच्छा फेमस गीत भी सुना, यमन राग की पहचान भी की। अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आप आनंद लीजिए यमन राग के संबंधित गीत का। हम फिर लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

0: सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक के पहले ख्याल के बारे में हमको उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ख्याल ये जैसे कि माता पिता के समान है, है ना?
1: हाँ जी, किसको इसको जो चलन जो है
0: जी,
1: ये विलंबित अभी जो शिखर है, पहले तो इसका धीर गंभीरतर है। ये जो हमने शैली सिखा रहे हैं ख्याल की, जो विलंबित है
0: जी,
1: तो अगर नहीं करेंगे कोई भी गाना, बाद में आप गीत गाएंगे थोड़ा धीमा लय से गाएंगे, तो पहले ये सीखेंगे तब वो गीत प्रेजेंट करेंगे तो आसानी से हो जाता है।
0: जी जी,
1: तो इसलिए हम माता पिता कह सकते हैं
0: जी। तो और आगे आप हमें यमन राग के ही बारे में क्या सिखाना है?
1: वही बोल रही हूँ कि ठेका देना है ना पहले।
0: अच्छा,
1: इसको ठेका के बारे में, ताल के बारे में, पहले ताल तो आएंगे क्योंकि इसको छंदबद्ध ताल के सहित करना है।
0: ओके,
1: एक तल के ऊपर धीन धीन धागे तेरे केटे, ये जो धीन का जो है एक जो मात्रा है इसमें क्या होता है, धीन इन ते टे, चार मात्रा।
0: अच्छा,
1: ऐसे करेंगे लिसनर जो है उसको समझ चाहिए, अगर समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। एक मात्रा की ऊपर चार मात्रा।
0: ओके, एक मात्रा के ऊपर
1: चार मात्रा करते करते 48 मात्रा हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पहले तो हम ठेका सम की ऊपर होता है, सम धीन इन ते टे, धीन इन ते टे फा का गया।
0: ओके,
1: धा आ धा धागे ते रे के टे दूसरा तली, थुन न ते टे ना आ ना ना ना दूसरा फाक, कत ते टे ता ते टे तीसरा ताली आ गया, धा आ धा धागे ते रे के टे चौथा ताली आ गया, धीन

0: ं ते टे धिन निन धा धा दा फिर धिन आ गया।
1: अच्छा,
0: तो फिर मैं रिपीट करती हूँ, बीच में जब हम सब छोड़ देते थोड़ा पॉज रखते हैं, मतलब उसमें भी एक मात्रा है।
1: ओके, मतलब जब रुकते हैं वहाँ भी एक
0: जैसे धिन ते टे हमने पॉज दिया, पॉज अच्छा। मतलब एक मात्रा चले गए। ये भी लिसनर को समझ लेना है क्योंकि ये संगीत की भाषा है, ठीक है। तो फिर से मैं बोलती हूँ, धिन ते टे धिन ते टे धा धा धा गि ते रे के टे थुन ते टे ना ना ना ना कत ते टे ता ते टे धा आ धा धा गि ते रे के टे धिन ते टे धिन न धा धा दा धिन। अगर लिस्टनर को संगीत के बारे में अगर कर रहे हैं
1: किसी भी जानकारी
0: मिल हाँ पकड़ लेंगे एकदम आगे। अभी हम क्या करेंगे, जब हम बंदिश या शुरू करेंगे, हमने पहले बताया कि मुखड़ा को बहुत वाइटल होता है, कोई भी गाने का जो मुखड़ा है उसके ऊपर सब आ जाते हैं।
1: अच्छा।
0: तो विलंबित ख्याल के जो मुखड़ा होता है, ये जो लास्ट 48 मात्रा है, 44 होता है, 45, 46, 47, 48 जो होता है 45 से लेना है।
1: अच्छा,
0: जब अगर मुखड़ा होंगे ना, पूरा गीत गाएंगे उसके बाद फिर वही सम में आ जाएंगे। ये थोड़ा ग्रामेटिकली मैथमेटिकली है।
1: ओके,
0: विलंबित जो है थोड़ा अभी तो कठिनाई में चढ़ेंगे ना, क्योंकि हमको सीखना है, इतना दिन तो हम शास्त्रीय संगीत सीखे हैं, उसके बाद अभी तो थोड़ा ऊपर चढ़ना है ना, क्वेश्चन आंसर
1: आगे बढ़ना है,
0: इसलिए वो मुखड़ा चार मात्रा की है। लास्ट में जो हमने बताया धिन न धा धा धा, ये जो मुखड़ा है ये चार मात्रा से शुरू होगा।
1: अच्छा,
0: ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो स्वरलिपि देना है, ये विलंबित ख्याल,
1: विलंबित
0: ख्याल की स्वरलिपि, ठीक है। नी पा निधा नीरे, ये जो नी पा निधा, तो हमने पहले बताया यमन राग को परिचय भी शायद नहीं याद है सबको लिसनर को, तो इसमें जो है करिमा होता है, कल्याण ठाटकी है, सारे गामा पाधा निशा सा निधा पा मागारे सा, जाति भी संपूर्ण संपूर्ण जाति है।
1: अच्छा।
0: तो ये जो राग की वैशिष्ट है, स्पेशलिटी है, नी से लेना है, नीचे नी मंद्र संग नीचे से नी रे गा।
1: अच्छा, नीचे से लेना,
0: नीचे से लेना है, ऊपर से नहीं लेना है, ठीक है। तो नीचे लेंगे तो इसको रूपरेखा जो है क्लियर आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने शुरू किया है नी पा निधा नीरे, मतलब नीचे जो है नी पा मंद्र सर की है, निधा मंद्र सर की है, नीरे मंद्र सर के नी है, अभी रे के मध्य है, नी पा निधा नीरे सा आ आ आ, ये जो सा जो है सा के ऊपर सम आ गया, सा आ आ आ नी, नी जो है नीचे नी मंद्र सर, नी ई नी रे गा आ गा रे सा आ रे ए, ऊपर नी नी ई ई पा पा आ पा पा पा करिमा आ गा आ पा आ नी ई धा आ पा आ करिमा आ गा रे नीचे नी नी ई रे सा, फिर नी पा नी धा नी रे सा। थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा क्योंकि अभी कठिनाई से चल रही हूँ ना, तो आज हम खाली स्थाई सिखाएंगे, थोड़ा आहिस्ता चलेंगे, ठीक है,
1: स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस।
0: यस, तो फिर हम देते हैं स्वर के, फिर प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम धुन से करेंगे, ठीक है।
1: अच्छा,
0: नी पा निधा सारे सा, ये सौम है, सा आ आ आ नीचे नी ई ई रे गा आ गा रे सा आ रे ए नी ई ई पा पा आ पा आ करिमा आ गा आ पा आ नी ई धा आ पा आ मा आ गा रे नी ई रे सा, फिर से नी पा निधा नीरे, ये है मुखड़ा, ठीक है। हम जब प्रेजेंट करेंगे, इसको करेंगे धुन में बैठेंगे, लिसनर समझ जाएंगे, ठीक है।
1: अच्छा।

0: इसमें जब धुन में बैठाया तब अलग से उसको रूपरेखा आ गया। अगर लिसनर जो सुन रहे हैं शायद उनको समझ में आ गए कि हमने ये जो 48 मात्रा है अगर गिनती करेंगे तो वही 48 मात्रा आएंगे।
1: अच्छा,
0: चार मात्रा मुकरा ले लिया, उसके बाद लास्ट में किया वो चार मात्रा छोड़कर फिर मुकरा ले लिया, पकड़ लिया।
1: अच्छा,
0: जब हम बंदिश करेंगे तब वही आएंगे। ठीक है
1: श्यामली जी, स्वर लिपि तो आपने हमको बता दी, अब जाते जाते आप हमको क्या सुनाने वाले?
0: बहुत पुरानी फिल्म है सरस्वती चंद्र।
1: अच्छा, ये तो बहुत ही फेमस फिल्म है।
0: तो इसमें एक गीत है लता जी का, चंदन सबदन चंचल सीधवन, वो यमन राग के ऊपर है।
1: अच्छा, वो पूरा यमन राग के ऊपर है। जी जी।

0: वाह, हर बार की तरह शुरुआत में भी और जाते जाते भी।
1: ये गीत का जो बोल जो है, सुर जो है, और जिन्होंने निभाया है जी, लता जी ने,
0: जी जी
1: कोशिश कर सकते हूँ।
0: जी जी बहुत ही सुंदर श्यामली जी,
1: थैंक यू।
0: नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे जानकारी लेंगे। आज समय देता है हमको इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, आप हमसे संगीत के विषय में कुछ बात करना चाहते हो, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। इसी के साथ दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: सन्यासी विद्रोह को स्वतंत्रता आंदोलन के प्राथमिक संघर्ष के रूप में जाना जाता है। लगभग 20 सालों तक चले इस संघर्ष की शुरुआत जमींदारों और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किसानों और कारीगरों पर किए जा रहे अत्याचारों का बदला लेने के लिए हुई थी। देवी चौधरानी सन्यासी विद्रोह की सूत्रधार थीं। उनका संगठन अंग्रेजी नावों पर हमला करके उनका माल असबाब और अस्त्र शस्त्र लूटता था, जिसे वे अपने अधीन वेतनभोगी बरकंदाजों पर खर्च किया करती थी। योद्धा दल की नेता होने के नाते वे खुद भी बहुत बड़ी योद्धा थीं। वे ऐसी निर्भीक योद्धा थीं जो अपने नाविक बेड़े में राजरानियों की तरह रहा करती थीं। उनके पास बहादुर बरकंदाजों की एक बड़ी सेना थी। कई सन्यासी योद्धा उनकी वीरता का लोहा मानते थे। संगठन के दो प्रमुख नेता मजनू शाह फकीर और भवानी पाठक की मृत्यु के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंग्रेजों से बराबर लड़ती रहीं। अंग्रेज कभी भी उन्हें पकड़ नहीं सके और वे इतिहास में सन्यासी विद्रोह की एकमात्र सशक्त महिला नेत्री के रूप में अमर हो गईं।
2: अरे छोटू।
3: हाँ भैया।
2: छोटू उस्ताद चाय पिला दो यार।
3: कितनी चाय भैया? 6 ना?
2: हाँ बेटा 6 ले आना। और कल का प्ले कैसा रहा यार?
4: अरे ठीक ही था यार, जोशी जी तो अपना ढर्रा छोड़ ही नहीं रहे, वो ही की वो ही पुरानी घिसी पिटी लाइन पर चल रहे हैं।
5: यार देख, मेरा मानना थोड़ा अलग है इस मुद्दे पर। मैं तो कहूँगा कि ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, पर तुमसे जिस बात पे मैं सहमत हूँ वो ये कि आप पुराने महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करें तो उसमें लोक श्रुति का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे अब कल देखना तुम लोग।
3: ये भैया चाय।
2: हाँ बेटा। अच्छा कल किसका है?
5: अरे कल देवी चौधरानी का नाटक है भाई, स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर है पूरा नाटक।
6: देवी चौधरानी? वाह वाह वाह वाह।
4: अरे काका आपको पसंद है? हमें तो मालूम ही नहीं था कि आपको इसमें भी दिलचस्पी होगी।
2: क्यों काका, नाटक देखने आओगे?
6: अरे ऐसे काम के लिए तो मैं डेढ़ पाँव पे तैयार रहता हूँ।
2: यार अपने पास कुछ टिकट पड़े थे ना यार, इनको एक दे दे क्या?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं यार।
2: वैसे यार ऐसे लोगों को तो जरूर देखने मिलना चाहिए।
4: हाँ हाँ श्योर। लीजिए काका ये रहे आपके टिकट, एक टिकट पे दो आ सकते हैं, हमारे छोटू को भी ले आना साथ।
7: अच्छा काका चलते हैं। राम राम।
6: राम राम,
7: राम,
6: राम, राम, राम बेटा। राम राम, राम, राम काका। जय राम जी की।
2: अरे काका आ गए आप, पहुँचिए जल्दी पहुँचिए, नाटक शुरू होने वाला है।
6: अच्छा
8: नमस्कार, नाट्य समारोह की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित नाटक देवी चौधरानी।

0: 1947 भारत की आजादी का वर्ष। ये आजादी सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और बलिदानों के बाद हमें प्राप्त हुई। आजादी की लड़ाई में उन तमाम क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का बीड़ा जिन लोगों ने उठाया था, उनमें पहली विद्रोही क्रांतिकारी थी देवी चौधरानी। वस्तुतः 1857 से बहुत पहले बंगाल में अकाल के समय जिन किसानों, जुलाहों और सन्यासी फकीरों ने विद्रोह किया था, व्यवस्थित रूप से उसका नेतृत्व करने वालों में एक देवी चौधरानी थी। हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध पहली व्यवस्थित क्रांति का सूत्रपात देवी चौधरानी ने किया। एक बड़े विद्रोही सन्यासी फकीर दल की नेता होने के साथ साथ देवी चौधरानी बहुत बड़ी योद्धा थी जो अपने नाविक बेड़े में राजरानियों की तरह रहती थी।
1: ये कैसा

0: रे भवानी?
1: लगता है गांव के लोग आ रहे हैं।
2: माँ को प्रणाम। बचा लो माँ,
3: तुम्हारी शरण चाहिए माँ।
0: अरे क्या हुआ बुरा?
3: कंपनी सरकार के लोगों ने शंकर जुलाहे को इतना मारा कि उसने दम तोड़ दिया है माँ।
0: क्यों क्यों मार डाला?
3: उसने माल जो तैयार नहीं किया।
0: कैसा माल?
2: चौधरानी जी, कंपनी के जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। हम जुलाहों से सरकार चौथाई दाम में जबरदस्ती माल बनवाती है,
0: और नहीं बनाया तो शंकर जुलाहे की तरह मार दिया जाता है।
1: हाँ देवी, बुनकर ही नहीं किसानों को भी लगान के लिए मजबूर कर रहे हैं।
0: इस भयंकर अकाल में लगान, ये तो अन्याय है। 24 परगनों की जागीर से शुरू हुआ फिरंगियों का राज यहाँ तक पहुँच गया कि हमारे जुलाहे बुनकर किसान भूखों मर रहे।
1: ये सब उस गद्दार मीर जाफर का करा धरा है। बंगाल नवाब सिराजुद्दौला को हटाने के लिए किए गए सौदे का नतीजा है ये।
0: माँ का सौदा करने का हक किसने दिया उसे?
1: बक्सर के युद्ध में अवध नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम और मीर कासिम की हार ने और हौसले बुलंद कर दिए इन अंग्रेजी हुकूमत के।
0: दीवानी हाथ आते ही इन अंग्रेजों ने बंगाल बिहार में लूटपाट मचा रखी है। भूख प्यास से एक तिहाई लोग मर चुके हैं। बंजर हो गई है धरती, पर अब और नहीं, इन्हें रोकना होगा भवानी।
1: पर कैसे?
0: हम रोकेंगे भवानी, हम संकल्प लेना होगा जन्मभूमि की रक्षा का। विद्रोह करना होगा, सन्यासी फकीर विद्रोह। बस अब यही हमारा कर्म होगा।
1: परंतु धन और हथियार?
0: उसके लिए हम यात्रा करेंगे। यात्रा से देश जागेगा और धन इकट्ठा होगा हथियारों के लिए।
1: आगे सैनिक प्रबंध की जिम्मेदारी हमारी होगी।
0: मुगल सेना के बेरोजगार सैनिक हमें हथियार चलाना सिखाएंगे।
1: मजनू शाह और चिराग अली फकीरों की टोली संभालेंगे और हम सन्यासियों की टुकड़ियों के साथ होंगे।
0: आप आज से ही सन्यासियों की टोली निकालना शुरू करें भवानी। एक टोली में 50 सन्यासी होंगे और हम जाते हैं माँ के बाहुबल को जगाने।
4: और बस निकल पड़ी देवी चौधरानी क्रांति की अलख जगाने। चारों ओर ओम वंदे मातरम का शंखनाद होने लगा।

0: शांत हो जाइए।
1: हे माँ, हम अनाज उगाते हैं फिर भी भूखे हैं। आपने जीवन दान दिया हमें, धन्य हो अन्नदाता।
0: मैं अन्नदाता नहीं, सिर्फ मददगार हूँ। अन्नदाता तो ऊपर वाला है।
2: ऊपर वाले ने ही तो अकाल और भुखमरी दी और ये हालत की हमारी।
0: नहीं नहीं भाई, हम तो अन्याय भुगत रहे, अंग्रेजों का अन्याय।
2: अंग्रेजी सरकार?
0: हाँ, अंग्रेजों और उनके चाटुकार जमींदारों ने हमारी रोटी, जमीन, काम सब छीन लिया है।
1: हम तो रहम की भीख मांग मांग के थक गए माँ।
0: अब भीख नहीं, अधिकार चाहिए, चाहे छीनना ही क्यों न पड़े।
1: अधिकार?
0: हाँ, तुम धरती पुत्र हो, अनाज पैदा करते हो, जिस पर तुम्हारा अधिकार है, हक है तुम्हारा।
2: पर कंपनी सरकार से लड़ना पड़ेगा माँ।
0: यही परीक्षा का समय है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अपनी ताकत से हिला दो अंग्रेजी हुकूमत को।
3: जय हो, जय हो, देवी माँ की जय हो, देवी चौधरी की जय हो।
0: हमें एक साथ मिलकर हेस्टिंग्स के मंसूबों को मिट्टी में मिलाना होगा। धरती माँ की मुक्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान हो चुका है। वीरों, अग्निकुंड की समीधा बनो, पूर्ण आहुति में अंग्रेजों का साम्राज्य स्वाहा करो। वंदे मातरम।
4: देवी चौधरानी ने लोगों को नैतिक विद्रोह की प्रेरणा दी और उनके आह्वान पर लोग उठ खड़े हुए। किसान, जुलाहे, कारीगर सब साथ हो लिए। क्रांतिकारियों ने पहला हमला ढाका में ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठी पर किया।
0: मोर्चा लो भवानी, हम पीछे से आते हैं।
5: हमला, पकड़ो पकड़ो उन अंग्रेज लुटेरों को।
6: What is this? You dirty Indian farmers?
2: बहुत भूखा मारा है हमको, नहीं छोड़ेंगे तुझे।
6: तुमको देख लेगा। You don't know what you are doing. I'll report the high command.
2: हमारी रिपोर्ट करेगा? ये ले।
6: Oh no! Oh, help! Help!
7: जल्दी कीजिए सरकार, सरकार जल्दी कीजिए। सरकार, पीछे के दरवाजे से निकल लीजिए, नाव तैयार है।
8: भाग गए चूहे, सामने दो दो हाथ क्या हुए तो भाग गए।

0: जितना भी धन है आपस में बांट लो, सब गरीब किसानों का ही है। भवानी
1: जी देवी,
0: आज से ये कोठी क्रांतिकारियों के सामरिक ठिकानों का केंद्र होगी।
1: देवी चौधरानी की जय।
0: ये तो शुरुआत है, स्वाधीनता का शगुन हम अपना राज लेकर रहेंगे। पहले रंगपुर, दिनाजपुर और मैमनपुर को जीतना है। हमारा निशाना अंग्रेजों की कोठियां और जमींदारों की कचहरियां होंगी, लेकिन ध्यान रहे आम जनता परेशान न हो।
2: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: अब क्रांतिकारियों ने चौतरफे हमले शुरू कर दिए। फकीर मजनू शाह के दल ने पहले जमींदारों की कचहरियों को लूटा, फिर श्रृंखलाबद्ध अभियानों में अपनी जीत के साथ कैप्टन एडवर्ड्स और कैप्टन रॉबर्टसन को मार डाला। भीषण युद्ध में 29 दिसंबर 1786 में मजनू शाह शहीद हुए। फकीरों की कमान संभाली मूसा शाह ने। इधर देवी चौधरानी के मोर्चे आक्रामक होते गए। गवर्नर हेस्टिंग्स तिलमिला गया, उसकी रातों की नींद उड़ गई थी।

0: What is this going on, Captain?
1: Know what it means?
0: Attack on...
1: Who are the people involved in this?
0: Who is he?
1: He's come with some news, sir.
2: चारों ओर सन्यासी फकीरों का बोलबाला करने लगे हैं।
1: सरकार देवी चार सन्यासी फकीर।
2: जी सरकार, ये लोग लूट का सामान गरीबों में बांटते हैं। लोग चौधरानी जी को देवी मानते हैं, देवी और पूजने लगे हैं।
1: देवी? What's that? It means goddess, sir.

0: खुले हाथों से दान करती है सरकार, लोगों की देवी है वो देवी।
1: नो नो नो, व्हाट गॉडेस, शी इज अ डेकॉय, डाकू, समझे तुम? वेयर डज शी लिव, कहाँ रहती है डाकू?
0: जी पानी में, नाविक बेड़ों में डेरा होता है उनका, साथ में 1000 से अधिक बरकंदाज भी हैं, हर तरफ जासूस फैले हैं उनके, और उनकी जासूसी करना बहुत मुश्किल काम है सरकार।
1: Shut up, काम के बाद बोलो।
0: सरकार, सुना है रंगपुर में डेरा डाला है क्रांतिकारियों ने।
1: तुम चाओ रामा, कैप्टन थॉमस?
2: Yes sir.
1: Next plan, attack on रंगपुर।
3: रंगपुर क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था। कैप्टन थॉमस ने बहुत बड़ी सेना के साथ श्यामगंज मैदान पर हमला कर दिया, पर देवी को खबर लग चुकी थी। उन्होंने निहायत ही सूझबूझ के साथ काम किया। अंग्रेजों के पास तोपें थी। देवी ने अपने लोगों को पीछे हटा लिया और बाद में छापामार युद्ध करने की नीति अपनाई। इधर अंग्रेज गलतफहमी में खुश थे कि देवी और उसके साथी भाग गए। जश्न मनाया गया, माहौल था जश्न का। और तभी कैप्टन थॉमस और उसके साथियों को घेर लिया गया।
4: तुम घिर चुके हो थॉमस, तुम्हारा गोला बारूद हथियार सब हमारे कब्जे में है।
1: What? सिपाहियों, fire!
5: हम गोली नहीं चलाएंगे सरकार, पूरे गांव के किसान मर जाएंगे।
1: तो मारने दो, I said fire!
4: भवानी, खत्म कर दो इसे, चीर के रख दो।
6: थॉमस मारने मारा गया, थॉमस मारने मारा गया।
7: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
3: देवी चौधरानी के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की शक्ति भी बढ़ी और हमले भी। लोगों का आत्मविश्वास लौटा। इधर अगला नाविक हमला हुआ। सेनापति थे भवानी पाठक।
8: इधर से लाओ नाव, जल्दी करो, जल्दी करो। पूरा तो पीछे से आना। पानी की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बहुत ही चुपके से कूदना। मैं सामना करूंगा, मेरे इशारे का ध्यान रखना। जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम लोगों ने अंग्रेजों पर टूट पड़ना। कूद पड़ो।
9: वेलकम भवानी, हम जानता था पानी का खिलाड़ी पानी में फंसेगा। तुम कूद लो जाकातुस गोला, तुमको हम पानी में मारेगा।
10: ओ वंदे मातरम।

भवानी पाठक और क्रांतिकारी साथियों की शहादत ने देवी को झकझोर दिया। वो विजय अभियान पर और जोर शोर से निकल पड़ी।

साथियों, मजनू शाह और भवानी का बलिदान अधिकार मांग रहा है। अब होगा भीषण संग्राम, अंग्रेजों का सर्वनाश। ओम वंदे।

0: देवी चौधरानी ने रंगपुर, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और पौंड्रवर्धन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हर तरफ देवी की विजय के झंडे लहरा उठे। उनके आक्रामक हमलों से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी। देवी का ठिकाना जानने के लिए लोगों को बंदी बनाया गया, फांसी पर चढ़ाया, पर किसी ने जबान नहीं खोली। कंपनी सरकार बौखला गई।
1: आओ देवी, देवी, देवी, बकरों से, we want her dead or alive.
2: सर, कोई पता नहीं, we can't find her. वो बार बार भाग जाता आए, where कुछ पता नहीं।
1: Come on, what rubbish? हम रूल काटे हैं यहाँ, और एक लेडी को पकड़ नहीं सकते।
0: हर हमले के बाद देवी जैसे गायब हो जाती। सारी कोशिशों के बावजूद अंग्रेज हताश थे। देवी चौधरानी के हमलों ने कंपनी सरकार को हिला कर रख दिया। यह सिलसिला लगभग 20 वर्षों तक जारी रहा और क्रांति की अलख जगाने के बाद

0: जाग उठी है तुम्हारी संतान अपने अधिकार के लिए। मैंने जो व्रत दिया था वो पूरा हो रहा है। देखो माँ, देखो, जगह जगह तुम्हें स्वतंत्र कराने के लिए तुम्हारे सेवक वंदे मातरम का जय घोष कर रहे हैं। मैं अब बूढ़ी हुई माँ, मुझे अब अरण्य में जाने दो ताकि शेष जीवन का समय तुम्हारी आराधना में बिताऊं।
1: ना माना उठाए जाबे मामा के छेड़े, ये धोरबे अमा के, ना जाओ माँ, ना जाओ।
0: तुम सफल हो, शक्तिमान हो, अब तुम ही तो देवी हो। तुम सब आगे आओ, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारी शक्ति में, तुम्हारे हर आक्रमण में, तुम अपने आप में मुझे ही पाओगी।
2: माँ की जय, हमें छोड़कर मत जाओ, ना जाओ माँ।
0: तुम ही हो मजनू शाह, तुम ही भवानी, धरती माँ तुम्हें पुकार रही है। ओम वंदे मातरम, ओम वंदे मातरम, ओम वंदे मातरम।
3: लगभग 20 वर्षों तक चलते रहे आजादी की लड़ाई के इस पहले संग्राम ने सन्यासी विद्रोह की एकमात्र सशक्त महिला नेता के रूप में देवी चौधरानी का नाम अमर है।

निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नई दुनिया नया जमाना, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई सालों से हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण को बचाना, स्वच्छता बनाए रखना और वाइल्ड लाइफ को कैसे हम बचा सकते हैं, आसपास के जीव जंतु के बारे में भी हमने जाना। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम अरावली की कहानी जानेंगे। जब हम अरावली को बेहतर समझेंगे, जो स्पीसीज हैं जो अभी लुप्त हो रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, तभी शायद हम बेहतर तरीके से इन्हें भी बचा सकते हैं, यहाँ के लोकल वनस्पतियों को बचा सकते हैं जो हमारे हित के लिए है। तो इसके लिए आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुनील दुबे जी, और आप पर्यावरण विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन और संरक्षण जैव विज्ञान में डॉक्टरेट हैं। 12 साल से आप पर्यावरण विज्ञान का शिक्षण देने के बाद स्वतंत्र पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जीव संवर्धन संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय संघों के 5 विश्व आयोगों के सदस्य भी हैं और इसके साथ साथ आप IUCN के साथ भी कार्य करते हैं। राजस्थान वन विभाग के परामर्शक के रूप में आप 25 साल से जुड़े हैं। आप भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राजस्थान सरकार के संसाधन व्यक्ति के रूप में 25 साल से जुड़े हुए हैं। आपने विज्ञान संचार और पर्यावरण संरक्षण संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के एजेंसियों के साथ संसाधन के रूप में कार्य किया है, एजेंसियों के साथ भी कार्य किया है। प्राकृतिक संरक्षण, जीव संरक्षण, शोध, शिक्षा और उपयोग के क्षेत्र में लगातार 27 सालों से आप कार्यरत हैं। आइए उनके विचार, अनुभव और समीक्षा को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। अरावली की कहानी जानते हैं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत।
1: नमस्कार, धन्यवाद
0: जी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में, इसके निर्माण के बारे में और विकास के बारे में बताएं।
1: जी, अरावली पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। यानी इसका निर्माण जब हुआ, तब जब पृथ्वी पर जैसे जो आग का तपता हुआ गोला थी, लावा था, फिर वो ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद में लगभग 3.5 अरब साल पहले, जब ठंडा होने के बाद ऊपर की परतें, जैसे दूध ठंडा होता है तो ऊपर मलाई जम जाती है, उसी तरह से ये ऊपर की परत इस गोले की ठंडी हुई है। अंदर अभी भी लावा है, लेकिन ऊपर की परत जो ठंडी हुई, वो ठंडी होने के साथ साथ क्योंकि पृथ्वी का आकार और इसका अपनी अक्ष पर घूर्णन, सूर्य के चारों तरफ घूमना, तो इसकी जो भौतिक गतियां हैं उसके कारण वो मलाई एक जैसी एक साथ नहीं रही। यानी पृथ्वी के ऊपर जो प्लेटें ठंडी हुई, ऊपर की जो परत ठंडी हुई, उसमें उतार चढ़ाव भी हुए और उसमें गड्ढे भी बने, उसमें ऊंचाइयां भी बनी। पृथ्वी के रेफरेंस में वो ऊंचाई थोड़ी हो सकती है इसके आकार में, हमारे लिए उतनी ही बड़ी होगी जैसे चींटी के नजर में हमारी ऊंचाई। तो उस तरह से जो परतें थोड़ी अपेक्षाकृत ऊंची थी और जो परतें अपेक्षाकृत नीची थी, उनमें जब पृथ्वी पर वायुमंडल परिवर्तन हुए, बरसात हुई, तो उसके कारण पानी भरा उन गड्ढों में, और जो हिस्से ऊपर थे वो महाद्वीप कहला दिए और जहां पानी भर गया वो महासागर कहला दिए। लेकिन 3.5 अरब साल पहले भी ये जो प्रक्रिया थी ठंडा होना, ये जारी रही, अभी भी तक वो जारी है। लेकिन उसके बाद जब पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन वाला वातावरण नहीं था, अवायवीय स्थितियां थी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी गैसों का बाहुल्य था, लेकिन उस समय पर भी उस तरह के वायुमंडल, उस तरह की स्थितियों में जीने वाले जीव जंतु उस समय प्रारंभ अवस्था में पैदा हुए थे। ये वो समय था जब 3.5 अरब साल पहले जो है अरावली पर्वतमालाओं का बनना शुरू हुआ। ये पर्वतमालाएं असल में समुद्र का जो तला था, यानी जो प्लेट पृथ्वी के ऊपर की प्लेट जो ठंडी हो रही थी, परत ठंडी हो रही थी, उस परत के ठंडी होने के क्रम में समुद्र का जो तला था वो ठंडा होने लगा, और ठंडा होने के साथ में इनमें आपस में घर्षण, आपस में दूरी बनना, चटकना, और उस प्रक्रिया के अंदर लगभग 3.5 अरब साल पहले समुद्र तल का ऊपर उठना शुरू हुआ। और ऊपर उठना शुरू होने के साथ साथ में ये अरावली का फॉर्मेशन जो है वो शुरू हुआ, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रही जब तक ये अरावली की पर्वतमालाएं शुरू में आज का जो आप एवरेस्ट देखते हैं सबसे ऊंची चोटी या उससे भी ऊंची चोटियां समुद्र के अंदर भी मौजूद हैं उनसे भी कहीं ज्यादा ऊंची थी, फिर ये सेटल भी होती गई, यानी जो ऊंचाई थी वो कम होती गई और ये सेटल होती गई। और इसके साथ साथ में जब ये भूभाग पूरा जिस एरिया में अरावली बनी, माउंटेन बनी पूरी, समुद्र तल ऊपर उठ करके जिन्होंने पहाड़ का रूप ले लिया, पानी से ऊपर आ गए, और फिर जो ऊपर की प्लेट थी और ठंडी हुई और ये महाद्वीपीय प्लेटों के रूप में कन्वर्ट हुए, ये प्लेटें जब अलग हुई, जब गोंडवाना लैंड मानी जाती थी यानी बहुत बड़ा भूभाग एक जैसा था उसमें से फिर टुकड़े टूट टूट करके और तैरते हुए अलग अलग छिटके, तब तक ये प्रक्रिया जारी रही और अभी तक भी वो टूटने के बाद ये जो टुकड़ा अरावली के साथ में भारतीय उपमहाद्वीप का था ये लगभग 16.5 करोड़ साल पहले उस गोंडवाना लैंड से टूटा और लगभग 15 करोड़ साल तक ये टूटने की प्रक्रिया जारी रही जिसको जुरासिक काल का प्रारंभ काल भी कहा जाता है। और अफ्रीकन जो प्लेट थी उससे टुकड़ा टूटा लगभग 16.5 करोड़ साल पहले से 15 करोड़ साल बीच के काल में, और उसके बाद में ये जो प्लेट थी वो तैरती हुई, जब ये टुकड़ा टूटा बड़ा तो इससे एक मेडागास्कर का छोटा टुकड़ा और टूटा और बाकी का भारत या उपमहाद्वीप जो प्लेट कहलाई वो प्लेट धीरे धीरे लगभग 5.5 करोड़ साल पहले तैरती हुई एशिया की प्लेट से टकराई और जिस टकराहट से हिमालय बना। तो हिमालय जो है वो अभी 5.5 करोड़ साल पहले बनना प्रारंभ हुआ उस टकराहट से, नीचे टिथिस महासागर था जिसके ऊपर से होती हुई ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट एशियन प्लेट से टकराई। लेकिन अरावली का फॉर्मेशन समुद्र तल के ठंडा होने के समय से जब वो एक बड़े लैंडमास ऊपर जो परत ठंडी हुई उसी का हिस्सा थी, और जहां पर गोंडवाना लैंड और उसके बाद में और टुकड़े टूटे अफ्रीकन प्लेट से हम जुड़े हुए थे उस काल का है। तो अरावली पर्वतमालाओं का निर्माण विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है और इसीलिए यहाँ के जो खनिज भंडार हैं वो विश्व में यानी जो बेहतर सबसे बेहतर, क्योंकि उनका जो कायंतरण हुआ है भूगर्भीय हलचलों के कारण, गर्मी तापमान दबाव और उनका जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं कायांतरण कहते हैं, तो यहाँ के जो खनिज भंडार हैं इसीलिए वो उत्कृष्ट श्रेणी के खनिज भंडार भी अरावली में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारी अरावली पर्वतमाला विकसित हुई और उसके बाद में जब एशियन प्लेट से ये भारतीय उपमहाद्वीप टकराई तो उसके बाद ये जो हलचलें थी, अरावली का सेटलमेंट और हुआ, इसका विस्तार पंजाब के फिरोजपुर इलाके तक से लेकर के हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान पूरा होते हुए गुजरात होते हुए जूनागढ़ तक इसका पूरा विस्तार था। उत्तरी हिस्सों में जब हिमालय का निर्माण हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंपीय हलचलें बढ़ी उस टकराहट से अरावली का सेटलमेंट जारी रहा, तो इसके उत्तरी हिस्से जो पंजाब हरियाणा दिल्ली के हिस्से हैं और उत्तरी राजस्थान के, उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर के ऊपर सीकर झुंझुनू चूरू के इलाके, वहां पर अरावली का सेटलमेंट बहुत ज्यादा हुआ और वहां वो छिटक छिटक के टुकड़ों के रूप में रह गई। लेकिन मध्य राजस्थान से लेकर के दक्षिणी राजस्थान में इसकी आज भी ऊंची चोटियां हैं और गुजरात तक में इसके ऊंची चोटियां और गहरी घाटियों वाले क्षेत्र आज भी पाए जाते हैं। तो ये अरावली के विकास का एक क्रम रहा है और ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। जी
0: जी, अपने इतिहास के बारे में यहाँ पर बताया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अरावली की जो भौगोलिक स्थिति है उसका क्या महत्व है हमारे भारत के लिए और राजस्थान के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है?
1: देखिए, अरावली का जो फॉर्मेशन हुआ यानी इसका जो ओरिएंटेशन है यानी जिसका

ये जो अरावली का ओरिएंटेशन है, यदि हम भारत के नक्शे में देखते हैं, सीधा राजस्थान भारत के नक्शे में देखते हैं और उत्तर दिशा ऊपर रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अरावली का जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ एक स्पिंडल शेप, एक एस बनाता हुआ विस्तार है। ये एक भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े भाग को जो है दो हिस्सों के अंदर विभाजित करती है, और इसी विभाजन को, इस अरावली के इस विस्तार को एक वैज्ञानिक हुए भौगोलविद ऑस्कर जॉर्ज ड्रूड, उन्होंने 1890 से 1913 के मध्य जो शोध किए उसके बीच में अरावली पर किए गए शोध के अनुसार इस अरावली को एक बड़े भौगोलिक विभाजनकारी रेखा के रूप में चिन्हित किया, जिसे ड्रूड लाइन नाम दिया गया। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये बंगाल की खाड़ी से उठकर आने वाले मानसून, जो हिमालय से टकराकर उत्तर भारत में चक्रित होता है, उसको राजस्थान के अंदर प्रवेश करने में इसका अलाइनमेंट है, जिसको ये फैसिलिटेट करती है। दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो अरब सागर की साइड से उठता है, उसको इंटरप्ट करने का काम ये करती है, ताकि इसके दक्षिणी हिस्सों में अच्छी बारिश होती है। अरावली का जो भौगोलिक विस्तार है वो इसके पश्चिमी हिस्से में, यानी अरावली का जो विस्तार है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, माउंट आबू, सिरोही, इस विस्तार के जो पश्चिम तक, तक का जो इलाका है, वहां का, जिसको साउथ वेस्ट एशियन एलिमेंट कहते हैं, यानी पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी उत्तर पश्चिमी जो जीव जगत है, अफ्रीका तक का और खाड़ी देशों तक का, वहां तक का जो पादप जंतु जगत है उसके लिमिट बनाती है ये, पूर्वी सीमा बनाती है, यानी उस जंतु जगत का विस्तार और अफ्रीका तक के पादप जंतु जगत से अरावली के जो पश्चिम में जो जीव जंतु जगत है, पादप जगत है, उसका संबंध है। लेकिन इसके पूर्व की तरफ, जहां भारत और ये मलायन रीजन, यानी इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया जो कहलाता है, साउथ ईस्ट एशिया के सारे देश, इंडोनेशिया, जकार्ता, बाली, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये सब कुछ मिला करके, और बाकी का पूरा दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत, इन का पूरे, यहाँ का जो जीव जगत है इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है, यानी इनको अरावली के पश्चिम में जाने से वो बैरियर का काम करती है, ये ड्रूड लाइन। ये इन दो बड़े रीजन, यानी अरावली के पश्चिम के अफ्रीका तक, यानी अरावली के पूर्व में पूरा दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के, इन दो बड़े इकोलॉजिकल जोन जिनको हम कहते हैं, क्लाइमेटिक जोन्स जिनको हम कहते हैं, उनको डिवाइड करने का काम करती है, वहां के जीव जंतु जगत के विस्तार के बैरियर का काम करती है। और इसीलिए इन दो बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज, बड़े इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्रों को हम माने तो उनके मध्य संयुग्मन, कॉन्फ्लुएंस जोन का काम करती है, जिसको इकोटोन भी कहते हैं, यानी दो बड़े पारिस्थितिकी तंत्र जहां पर मीट करते हैं, मिलते हैं, तो ये वो सीमा का निर्धारण करती है। और इसी कारण अरावली की जो भौगोलिक स्थिति है वो न सिर्फ देश के मानसून तंत्र में, पश्चिमी भारत में वर्षा को प्रभावित करने में इसका अहम रोल है, उसके अलावा जब ये अरावली अपने प्राचीन समय में इसका जो विस्तार था, थार मरुस्थल में भी, मैं आऊंगा उस पर, थार मरुस्थल में भी जो अरावली का विस्तार था, जहां ये आज आप थार का मरुस्थल देखते हैं, 12-13 हजार साल पहले यहाँ पर नदी बहाव क्षेत्र था, तो ये अरावली पर्वत मालाएं जो है वो हिमालय जब बना, ग्लेशियर बने, नदियों का उद्गम हुआ, उसके बाद इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र को भी नियंत्रित करने का काम करती थी। और आपको जान के बड़ा अभी अचरज होगा कि जब समुद्र का विस्तार उत्तर भारत में और ऊपर तक था, जैसलमेर तक और ऊपर तक, वहां पर जो हिमालयन क्षेत्र से जो बह करके लकड़ियां, वृक्ष, बड़े बड़े नदियों की बाढ़ों में आते थे, उनके फॉसिल आज आपको जैसलमेर में मिलेंगे। तो अरावली पर्वतमालाओं ने जब उत्तर, अपने से उत्तर क्षेत्र की नदियों के बहाव क्षेत्रों को भी बड़े पैमाने पर नियंत्रित किया है, और दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान की नदियों को, ये पहले कैसे उनका भूगर्भीय आपस में कनेक्शन था, जुड़ी हुई थी, सरफेस कनेक्शन भी था, फिर

0: अरावली में जो हलचलें हुई उसके कारण ये थार मरुस्थल का बनना, उसके का साथ साथ में शुष्कता का बढ़ना, उसके साथ साथ में नदियों का जो भूगर्भीय कनेक्शन भी जो था उसका धीरे धीरे कम होना, ये सारी प्रक्रिया चली। तो अरावली, अगर हम ये कहें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट, भारतीय उप महाद्वीप और उसके साथ पूरी पृथ्वी के रेफरेंस में कहें कि इसके जो उद्विकास की जो प्रक्रिया है जो अभी भी जारी है, उसका एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है। यानी यहाँ वो परिलक्षित होता है, यहाँ उन चीजों को, प्रमाणों को देख करके आप पृथ्वी के उद्विकास क्रम को, अपने भारतीय उपमहाद्वीप के उद्विकास क्रम को, राजस्थान प्रदेश के रेफरेंस में कहें तो यहाँ के भौगोलिक जो उद्विकास रहा है, डेवलपमेंट हुआ है, पहले जो स्थितियां थी, पहले जो जंगल थे, पहले जो वर्षा की स्थितियां थी, बहुत घने वर्षा वन, उसके बाद में पतझड़ी वन, उसके बाद में शुष्क कांटेदार वन, ऐसे ऐसे जो बदलाव हुए हैं इसके भौगोलिक रूप में परिवर्तन के साथ, इस सब का ये परिचायक रहा है। इसलिए अरावली माउंटेन्स का भौगोलिक महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो मानव सभ्यताएं भी विकसित हुई, यानी उदाहरण के तौर पर विश्व की प्राचीनतम मानव सभ्यताओं में से एक आहड़ सभ्यता, जिसके
1: जी
0: किनारे मैं रहता हूँ, यहाँ आहड़ नदी मेरे घर के पास ही, और आहड़ सभ्यता के टीले मेरे घर से 100 मीटर 200 मीटर दूर है। तो उन सभ्यताओं के विस्तार, जो इसको हम कहते हैं कि सिंधु, और उन नदियों में गुजरात में हम कहते हैं लोथल, कालीबंगा, ये सब जो एरिया रहे, पंजाब के पास के इलाके रहे, अभी पाकिस्तान के इलाके में है प्राचीन सभ्यताएं, सिंधु घाटी की सभ्यताएं कहते हैं, लेकिन आहड़ सभ्यता जो उस काल की है बल्कि उससे भी पुरानी, वो सभ्यताएं अरावली माउंटेन्स में डेवलप हुई, विकसित हुई, जिस पर मैं अभी आगे आपको और चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो ये भौगोलिक स्थिति से अरावली माउंटेन्स का न सिर्फ हमारे पृथ्वी के उद्विकास क्रम में इसका जो रोल है, इसका अपना डेवलपमेंट रहा है, भारत के जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं, जलवायवीय परिस्थितियों के जो चेंज रहे हैं, करोड़ों अरबों साल भारतीय उपमहाद्वीप के बनने, एशिया से टकराने, आज तक जो परिवर्तन हो रहे हैं और आगे भी जो होते रहेंगे, उसमें अरावली का महत्वपूर्ण योगदान है। जी मैम,
1: जी सर, तो जैसे आप नदियों की स्थिति के बारे में भी कह रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण अरावली पर्वतमाला की जो अहम भूमिका रही है, और जैसलमेर में भी हम फसलें देख रहे हैं, तो
0: जी
1: इस बारे में भी आप कह रहे थे, थोड़ा और विस्तृत रूप से जानेंगे कि दक्षिणी अरावली प्रदेश की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें, तो इस अरावली पर्वतमालाओं का जलीय तंत्र और वनस्पति और जीव जंतु के बारे में अगर कहें, तो इसका क्या प्रभाव रहा है इस दक्षिण
0: हाँ,
1: राजस्थान?
0: अरावली के दक्षिण हिस्सों में, जब मैं वापस आपका ध्यान दिलाता हूं, जो मैंने बताया कि अरावली पर्वतमालाओं का बनना कब शुरू हुआ, और उसके बाद लगभग 2 अरब साल पहले, यानी 3.5 अरब साल पहले समुद्र तल का ऊपर उठना और अरावली का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन तब भी उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट थी, और 2 अरब साल पहले भी जब ये उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट थी, लेकिन उन एरियाज में जब ये अरावली उठ रही थी, लेकिन तब भी समुद्र का क्षेत्र में ही थी, दबा हुआ तला था जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था पृथ्वी की भूगर्भीय हलचलों के कारण, तब दक्षिणी अरावली जो आज कहलाती है, यानी सिरोही, माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यानी दक्षिणी राजस्थान के इलाके, वहां शैलो मैराइन एरिया बना, यानी उथला समुद्री क्षेत्र बना, जल स्तर कम रहा, और उस समय पर भी पृथ्वी पर ऑक्सीजन का वातावरण नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर वातावरण था। ये वो काल था 3.5 अरब साल पहले से लेकर के 60 करोड़ साल पहले तक का, जिस काल में जब पानी बना और उसके बाद कुछ ठंडक बढ़ी, तापमान की अवस्थाएं बनी, गैसें बनी, और उनसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, कोशिकीय जीव जंतु कोशिकीय बने, कुछ शैवालें बनी, कुछ बैक्टीरिया तक बने। ये शैवालें बैक्टीरिया मुख्यतः जो है अवायवीय है, जिनको हम कहते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में जीने वाले, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर वातावरण में ये जीने वाले एल्गी बैक्टीरिया थे, जो उस समय पर विकसित हुए 3.5 अरब साल पहले से लेकर 60 करोड़ साल पहले तक, जिस काल को हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन इरा, जीवन की उत्पत्ति का, विकास का शुरुआती चरण। और उस काल में लगभग 2 अरब साल पहले जो है, उस समय ये एल्गी बैक्टीरिया जब विकसित होना शुरू हुए, और वो उथले समुद्र में ये बैक्टीरिया जो थे वो नील हरित शैवाल जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरमेंट में जी सकती है, उस पर ये फीड करते थे और उसके साथ ये गुच्छे बना करके रहते थे, उनमें कॉलोनी बना के रहते थे, जिनको माना जाता था कि एल्गल मैट्स, यानी एल्गी बढ़ रही है, शैवाल बढ़ रही है, उसके साथ बैक्टीरिया उस पर फीड कर रहे हैं। और उसके साथ जो उन उथले समुद्री क्षेत्रों के अंदर जो भी नदियों का सरफेस का महाद्वीपीय क्षेत्रों का जो बहाव आता था, उसमें जो भी ठोस चीजें होती थी, सेडिमेंट जिसको हम कहते हैं, पानी के साथ जो बह के आता है, वो इकट्ठा होता रहा उथले समुद्री क्षेत्रों में। और ये जो शैवाल बैक्टीरिया के जो गुच्छे थे, एल्गल मैट्स थे, इनको जो है वो दबाता गया, और ये उसके अंदर फिक्स हो गए, दबते गए, और बाद में पृथ्वी की हलचलों के कारण, ऊपर के दबाव के कारण, अंदर बढ़ती गर्मी के कारण, इन सब के साथ साथ में वो जीवाश्मीकृत हो गए। आपको मजा आएगा जानकर के कि वो जो जीवाश्म है आज भी
1: जी
0: दक्षिणी राजस्थान में, उन्हें कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट, और वो स्ट्रोमेटोलाइट हमारे यहाँ पर कई जगह पर है। उदयपुर शहर में जो फतेह सागर पिछोला झीलें हैं, इनके किनारे पर वो स्ट्रोमेटोलाइट के फॉसिल्स हैं। उदयपुर शहर से 10-12 किलोमीटर दूर झामर कोटड़ा एक जगह है, जहां पूरे पहाड़ की पहाड़ियां उन स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल की बनी हुई हैं। इसके
1: जी
0: अलावा उदयपुर से पूर्व की तरफ चित्तौड़गढ़ जिले में बोजुंदा एक जगह है, जहां पर चित्तौड़गढ़ शहर से लगा हुआ है क्षेत्र, जहां पूरी पहाड़ी जो है वो स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल की बनी हुई है। और चित्तौड़गढ़ से भी आगे भगवानपुरा एक जगह है, जहां पर भी इन स्ट्रोमेटोलाइट के फॉसिल्स हैं। ये फॉसिल्स लगभग 1,80,00,000 साल पुराने से लेकर के 90 लाख साल पुराने तक के काल के हैं। ये जो आज ये जो प्रमाण है, जीवाश्म प्रमाण है, जो देश के जो 34 भू विरासत स्थल हैं, नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट साइट, उनमें स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल साइट, स्ट्रोमेटोलाइट जियो हेरिटेज साइट के तौर पर ये चिन्हित हैं, लिस्टेड हैं। झामरकोटरा स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल और बोजुंदा स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल। तो ये एक प्रमाण रहा कि अरावली का जो जो महत्व है, यहाँ पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्थाएं थी, ये वो क्षेत्र है जहां पर जीवन की उत्पत्ति प्रारंभ हुई थी। ये अवस्थाओं का विश्व में कई जगह है ये अवस्थाएं, तो अरावली उसमें से एक है, यहां पर भी जीवन की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्थाएं विकसित हुई थी। दूसरा इसके साथ में ये है कि जब अरावली हिमालय का बनना हुआ, और उसके बाद में जब वहां से नदियों का उद्गम हुआ, और उन नदियों के अंदर जो पाकिस्तान आज जो इलाका है, भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट का जो पार्ट था, उसके अंदर जो बड़ी नदियां थीं, उन नदियों में सिंधु, चिनाब और ये सारी नदियां, और दक्षिण की तरफ मध्य राजस्थान में जो लूनी नदी का विस्तार था, और दक्षिण की तरफ जो सरस्वती नदी का विस्तार था, बनास नदी का विस्तार था, फिर चंबल और इनका जो बेसिन बना पूरा, उनका आपस में, उनका फ्लो आपस में कनेक्टेड था। लेकिन इसी अरावली में जब हिमालय पर्वत से आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट की टकराहट जारी है, शुरुआत में जब लगभग 5.5 करोड़ साल पहले तक ये टकराहट हुई, तब ये 12 से 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के धक्के से ये टकराहट थी। लेकिन आज ये टकराहट 2-3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के धक्के से ये टकराहट आज भी जारी है, और हिमालय पर्वत आज भी ऊपर उठ रहा है, इस धक्के से बन रहा है, गुरुत्व के प्रभाव में ये नीचे गिर रहा है, भूकंप आ रहे हैं इसमें, ये इस विश्व का सबसे संवेदनशील भूकंप संवेदी क्षेत्र है। लेकिन इस सब के कारण जो अरावली की जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां थी, उनमें भी जो हलचलें हुई, और उन धक्कों के कारण जो अरावली का जो आज आप थार मरुस्थल का एरिया पूरा देखते हैं, सरस्वती और सिंधु की जो सहायक नदियों का पूरा बहाव क्षेत्र था, ये बहाव क्षेत्र एरिया ऊपर उठा लगभग आज से 12,000 साल पहले, ये एरिया ऊपर उठा, और उसके ऊपर उठने के कारण इस काल को कहते हैं होलोसीन काल, लगभग 12,000 साल पहले का जो एरिया था, और उसके कारण दिल्ली से लेके कच्छ तक जो अरावली का उठाव हुआ, उस उठाव में जो है उसका सरफेस फ्लो नदियों का बंद हो गया, और ये जो आज आप मरुस्थल की मिट्टी देखते हैं, ये असल में जलोढ़ मिट्टी है, नदियों की जो बहाव की मिट्टी होती है ये वो है, और इसके नीचे इम्परमियेबल अपारगम्य चट्टाने हैं पूरी की पूरी थार मरुस्थल में। ये ऐसा नहीं है कि नीचे तक बहुत गहरे तक रेत ही रेत भरी हुई है या मरुस्थल का कुछ अलग रूप है, नहीं, ये जलोढ़ मिट्टी है, नदियों के बहाव की मिट्टी है, जो नदियों का सरफेस फ्लो बंद हुआ और उसके बाद ये मिट्टी सूख गई, शुष्क हो गई, इसका पानी खत्म हो गया, फिर इसके पोषक तत्व भी खत्म हो गए धीरे धीरे, और इसके नीचे अपारगम्य चट्टानें हैं बड़ी। और आज भी अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में, थार मरुस्थल में अगर 400-500 मिलीमीटर बरसात 2-3 दिन में हो जाए, भयंकर बाढ़ आ जाएगी, वही
1: जी
0: नदियों की स्थिति बन जाएगी। तो
1: जी
0: लेकिन आपको एक चीज और मैं इसमें जो बताना चाहता हूं, अरावली के यानी जो इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है, कि जब ये नदियों का बहाव था और अरब सागर की खाड़ी की तरफ में भी उधर में भी नदियों का बहाव जाता था, और इधर अरावली के जो पूर्व की तरफ गंगा यमुना चंबल ब्रह्मपुत्र उससे जुड़ करके बंगाल की खाड़ी तक जो पानी जाता था, उस समय पर जब सरस्वती और ये बनास नदियों का आपस में सरफेस फ्लो भी कनेक्टेड था और भूगर्भीय कनेक्शन भी था, लेकिन वो सरफेस फ्लो तो खत्म हो गया, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में जो उदयपुर शहर है उसके पास आज भी जो इनका भूगर्भीय कनेक्शन है वो आज भी है, और इसका जो जीवित प्राणी प्रमाण, लाइव बायोलॉजिकल एविडेंस, जो 1987 में हमारे जो बड़े मेंटर हैं डॉक्टर रजा तहसीन, जिनको मेवाड़ का वास्को डेगामा भी कहा जाता है, जो बड़े वाइल्ड लाइफर हैं, पुराने आदमी हैं, उन्होंने यहाँ जो उदयपुर शहर से लगी हुई पुरानी जो माइनिंग केव्स थी, गुफाएं थी खनन वाली पुराने टाइम की, उनमें जब उतरे और वहां पर जो विशाल जल धाराएं आज भी बह रही हैं, उसमें साइजोथोरेसिन फिश यानी जो कोल्ड वाटर जोन्स में, हिमालय के कोल्ड वाटर जोन में मिलती है, स्नो ट्राउट कहलाती है, वो जिंदा यहाँ कैप्चर करी, बहुत सारी मछलियां,
1: जी
0: यानी ये जीवित प्राणी प्रमाण था, ये स्नो ट्राउट फिश उदयपुर के भूगर्भीय बहाव में जो जिंदा मिली, के जो हिमालय क्षेत्र से बहने वाली नदियों का और दक्षिणी राजस्थान की बहने वाली नदियों का आज भी भूगर्भीय कनेक्शन है। पहले ये सरफेस कनेक्शन भी था और अरावली के फॉर्मेशन में चेंज के कारण इनके बदलाव आए, तो अरावली का इस तरह से जो महत्व है वो और ज्यादा हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने में बढ़ जाता है।
1: सर, जैसे आपने कहा कि टकराहट जो है अभी भी अगर हर साल देखा जाए 2 से 3 सेंटीमीटर तक का है, तो इससे क्या कुछ नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है?
0: देखिए, पृथ्वी पर जीवन का जो, या पृथ्वी का अपना जो उद्विकास का क्रम है, ये तो आग का गोला थी, सूर्य का भाग थी, टूटा छिटका और ये ठंडा पड़ रहा है, इस पर ऊपर की कुछ किलोमीटर की परत अभी ठंडी हो गई है, जिस पर हमारी अभी सैकड़ों लाखों करोड़ों साल की सभ्यताएं, जीवन की उत्पत्ति विकास और ये सब हो गया, कुछ किलोमीटर की परत ठंडी हुई है, उसमें सब अभी तक हुआ है, लेकिन बाकी का पृथ्वी अंदर जो है वो अभी भी दहकता आग का गोला है, अभी तो बहुत कुछ इसका जीवन और उद्विकास होना है। अभी
1: जी
0: तक जो 3.5 अरब साल में अब तक जो हुआ है, जो भी हमने देखा है, जो भी हमारा विज्ञान आज जो हम देख रहे हैं, कि हमारे पास आज जो भी प्रमाण है कि कितने पुराने से पुराने हमारे क्या जीवाश्म है, ये सब परिवर्तन है, ये तो ब्रह्मांड का जो अपना परिवर्तन है। इसके साथ साथ में लेकिन अगर आपका जो प्रश्न है उसको हम समझना चाहें, तो अरावली का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर बहुत चेंज आए हैं, ये इलाका तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा रहा होगा, उस समय पर यहाँ ग्लेशियल जोन भी रहे होंगे, उस समय पर यहाँ के जीव जंतु वनस्पति जात वो भी अलग रहे होंगे, उन माउंटेन्स का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ऊंचाई से नीचाई की ओर सरकना गिरना, ये भौगोलिक हलचलें हैं, हिमालय में ये आज भी हो रहा है, अपने आप में पृथ्वी के नेचुरल प्रोसेसेस में ये कोई हानिकारक नहीं है, ये तो उसका प्रोसेस है, राइट? लेकिन हमारे जो मानव सभ्यता के रेफरेंस में अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो पृथ्वी के बदलाव हो रहे हैं हम उनको समझ लें और उसके अनुसार पृथ्वी पर हमारा दबाव बनाने से बचें। आज हिमालयन जोन जिस तरह से आज भी अनस्टेबल है, उस पर अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्लेट का टकराहट है एशियन प्लेट से वो जारी है, ऐसी स्थिति में हिमालय का फॉर्मेशन, अभी ऊंचाई बढ़ना, गुरुत्व के प्रभाव में उसका दरकना, नीचे सेटल होना, वो हो अभी भी जारी है। अरावली का सेटल होना तो हो गया, जो उत्तर अरावली है, मध्य अरावली है, आप देखेंगे इन्हीं में जो फ्लैटन्ड माउंटेन बन गई हैं, उन्हीं पर हमारे गढ़ और किले बने हैं।
1: हाँ जी,
0: लेकिन आप दक्षिणी राजस्थान में आएंगी तो दक्षिणी राजस्थान में अभी भी हाई पीक्स हैं, माउंट आबू की सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में अरावली के फोल्ड इतने ऊंचे ऊंचे हैं, इतनी शार्प पीक है, पर्वतमालाएं इतनी पतली और लंबाई में है कि उन पर ज्यादा किले और गढ़ संभव नहीं हुए। तो
1: जी
0: ये माउंटेन जहां सेटल हुई और उनका जो नीचे का जो चौड़ाई थी वो ऊंचाई के रेफरेंस में ज्यादा हुई, यानी वो फर्दर और सेटल नहीं होंगी, तो ऐसी स्थिति में उन्हीं क्षेत्रों को भौगोलिक और सामरिक परिस्थिति से महत्वपूर्ण मान के वहां पर गढ़ बने, किले बने, सभ्यताएं बनी, वहां पर लोग बाग रहते थे उन ऊंचाइयों पर भी। लेकिन जहां पर ये ऊंचाई आज भी परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशील ऊंचाइयों में हम जो व्यवधान पैदा कर रहे हैं, आप ध्यान दें कि हिमालय के अंदर हमने अनावश्यक रूप से जितने डैम्स बना दिए है ना, जितने निर्माण कर दिए, जितना उसको छलनी कर दिया, जितना अरावली, दक्षिण अरावली आप देखेंगे कि पूरी तरह से इसको छलनी किया जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि विश्व के उत्कृष्ट श्रेणी के खनिज तत्व यहाँ पाए जाते हैं, बेस्ट
1: बिल्कुल
0: कॉपर, बेस्ट लेड, बेस्ट जिंक, सोना तक अब यहाँ मिल रहा है दक्षिणी राजस्थान में, बहुत सारे दूसरे नॉन मिनरल यानी अधातु खनिज यहाँ भरे पड़े हैं, और उनकी लालच में अनियंत्रित रूप से जिस तरह से अरावली को, उसके नेचुरल प्रोसेस को हम जो अफेक्ट कर रहे हैं वो हानिकारक है। इनका प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है वो हानिकारक नहीं है, हमें
1: जी
0: उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा।
1: जी
0: हम उस प्रकृति के उद्विकास का एक भाग हैं, एक छोटे से जीव जंतु हैं, और भी जो है उसी तरह से हम हैं, तो हम उसके साथ एडजस्ट ही कर सकते हैं। उद्विकास क्रम के साथ में हम उसे डोमिनेट, उस पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकते।
1: जी
0: अब इन सभ्यताओं के विकसित होने के साथ साथ में आहाड़ सभ्यता जो है, जो उदयपुर से लगी हुई थी, ये ज्यादा समय तक फ्लोरिश हुई। यहां तो बंदरगाह था, यहाँ तो शिप्स, छोटे छोटे व्यापारिक, ये केंद्र था बहुत बड़ा आहाड़ सभ्यता के समय पर, और ये 3,000 साल से 1,500 साल पहले तक ये सभ्यता यहाँ बहुत अच्छी खासी विकसित थी, बड़ा व्यापार केंद्र था। ये पूरी आहाड़ सभ्यता के जो करीबन 106 स्थल से ज्यादा चिन्हित हैं पूरे दक्षिण पूर्व राजस्थान में, ये जो सभ्यता का विस्तार था। तो यहाँ जो पहले जिस तरह का वातावरण था, वो वातावरण जो है वो आज आप जो वर्षावन आसाम या नॉर्थ ईस्ट के जो मानते हैं ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, घने वर्षावन वाले, या हाथी विचरते थे, या गैंडा हाथी विचरते थे, या बड़े सिंह वाले भैंसे बिसन विचरते थे, जिस पर मैं बाद में इस पर और प्रकाश डालूंगा। लेकिन यहाँ का जो वनों का प्रकार था, यहाँ का जो जीव जंतु का प्रकार था, और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, यहाँ तो बंदरगाह थे, राजसमंद में बंदरगाह था, उदयपुर में आहाड़ सभ्यता तक जहाज बह करके, तैर करके नावें आती थी, और ये बड़ा व्यापार केंद्र था। उस समय भी अरावली का ये पूरा उस समय का काल रहा है, यहाँ तांबा, लोहा, ये कांसा, इस तरह की मिश्र धातुएं तक यहाँ पर, ये वो काल था जब मिश्र धातुओं का निर्माण प्रारंभ हो गया था, जिसको हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं। सो ताम्रकालीन सभ्यता और उसके बाद में कांसा, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज टू ब्रॉन्ज एज, ये जो, और आयरन एज, इन सब का ये गवाह रहा है अरावली का दक्षिण पश्चिमी एरिया, ये इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है।
1: जी बिल्कुल, चंद्रावती नगरी जैसे आबू रोड में है तो वहां के अवशेष।
0: चंद्रावती नगरी, और ये आहाड़ सभ्यता को कहते हैं तांबावती नगरी।
1: जी, तो इसके बारे में आगे हम विस्तृत रूप से आपसे जानेंगे। वो जैसे आप आहार सभ्यता के बारे में कह रहे थे और नदियों के बारे में कह रहे थे, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अरावली में क्या कुछ वनस्पतियां उस समय हुआ करते थे जो शायद आज कम देखने को मिल रहे हैं।
0: देखिए, ये जो मानव सभ्यताएं मिली है, यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यताएं हैं, और जो ये आहड़ सभ्यता में जो चिन्ह मिले हैं, इनमें बहुत तरह के बर्तन भांडे मिले हैं, इनमें बहुत तरह के आभूषण मिले हैं, इनमें
1: जी
0: बहुत तरह के खिलौने मिले हैं, इनमें इवन उस समय पर जो धातुओं को गला करके मेटलर्जी यानी जो अयस्क निकलता था जमीन से खुदाई में, फिर उससे मेटल को अलग कैसे करते हैं, तो उस समय उसको पिघलाने के जो मिट्टी के कोण बनाते थे उनमें उनको पिघलाते थे भट्टियों में गर्म करके और धातु अलग करते थे, वो सारे जो चिन्ह मिले हैं, स्त्रियों के श्रृंगार की जो सामग्री मिली है, चूड़ियां मिली हैं, बालों में लगाने की सीकें मिली हैं, गले में पहनने के हार मिले हैं, कड़े मिले हैं, बच्चों के खेलने के खिलौने मिले हैं, और लोगों के बनाए हुए दूसरे आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं, चिकनी मिट्टी से बनाए हुए टेराकोटा के आइटम जिनको कहते हैं, उसके साथ हड्डियों से बनाए हुए आइटम हैं, शंख सीपियों से बनाए हुए आइटम हैं, वो बहुत सारे आइटम मिले हुए हैं, सींगों से बनाए हुए यानी हिरणों के सींग रहे होंगे, भैंसों के सींग रहे होंगे, जानवरों के सींग रहे होंगे, बहुत सारी चीजें मिली। इन सब का जब हमारे जो सीनियर जो वाइल्ड लाइफर हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया डॉक्टर रजा तहसीन, उनके साथ सब में राजस्थान के और देश के अन्य जो इतिहासकार भी रहे हैं, उन्होंने मानव सभ्यता और उस काल के विकास पर ध्यान दिया, लेकिन जो हमारे वाइल्ड लाइफ के जो सीनियर्स थे उन्होंने यहाँ के वाइल्ड लाइफ के प्रकार को जो एनालाइज किया, इन प्रमाणों से जो उनको इन्फरेंस उनका निकाला, जो निष्कर्ष निकाला, ये बताता है कि उस समय पर यहाँ पर हाथी विचरते थे, गैंडा हाथी विचरते थे, भेड़िए थे, काले हिरण थे, भालू थे, बिसन, लंबे लंबे सींग वाला जो बिसन है आज मध्य भारत में जो रह गया है, वो यहाँ बहुत आयत में थे। ये बिसन के जो प्रमाण हैं, अभी मैंने चित्तौड़गढ़ जिले में सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैं वन विभाग की कमेटी में हूँ, उसमें मैंने काम करते हुए वहां पर जो प्रागैतिहासिक मानव रहते थे चट्टानों में गुफाओं में, वहां इस बिसन के बनाए हुए फिगर मैंने अभी ढूंढे, ये वो पूरे प्रमाण है। उस समय पर यहाँ बारहसिंगा भी थे जिनको स्वाम्प डियर कहते हैं, जो आज नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा ये जो आर्टिफैक्ट मिले इनसे पता चलता है कि उस समय पर ये रोडेंट्स यानी नेवला, चूहा, गिलहरी, इस कुल के जो कुतरने वाले दांत वाले जो हैं रोडेंट्स, वो थे। उस समय यहाँ तोते, जंगली मुर्गे, इवन मछलियां तक, यानी उनके जो बोनी पार्ट मिले हैं, हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, उनसे बनी हुई सामग्रियां मिली हैं। यहाँ पशुओं का पालन किया जाता था, गाय, बैल, बकरी, भेड़, गधा और पोल्ट्री यानी मुर्गी, बतख वगैरह का, ये भी यहाँ पर पाले जाते थे। ये बहुत विशाल यहाँ पर दलदली इलाके भी थे, क्योंकि जो बारहसिंगा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्वाम्प डियर जिसको कहते हैं, वो स्वाम्पी मार्शी कंडीशन में ही मिलता है। तो उसके साथ में लेकिन यहाँ पर जो है वो जंगली मुर्गों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्वाम्प डियर के साथ में माना जाता है, बारहसिंगा के साथ। आज आपके माउंट आबू और कुंभलगढ़ से जो लगे जंगल हैं जहाँ बारहसिंगा, यहाँ सांभर भी आज मिलता है, यानी बारहसिंगा लोप हुआ लेकिन सांभर डियर जहाँ मिलता है उसके साथ ही वहां जंगली मुर्गों की भी बहुत आयत है। ये इलाका भी ये था कि जहाँ बारहसिंगा के साथ में यहाँ पर भी जंगली मुर्गों का डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया माना जाता है। तो ये एरिया जो है वो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ तक जंगली हाथी तक विचरते थे, यहाँ एशियाटिक लॉयन यानी बब्बर शेर लॉयन वो यहाँ पाए जाते थे, टाइगर यहाँ भरे पड़े थे, इवन चीता तक राजस्थान के इलाकों में डिस्ट्रीब्यूटेड था, अरावली के पश्चिमी उत्तरी भागों में विशेष रूप से जहाँ बड़े घास के मैदान थे वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड था चीता, और राजे रजवाड़ों में भी उन चीता को पालतू बना करके रखे जाने के जो प्रमाण हैं। तो ये जो आहड़कालीन सभ्यताएं हैं इनमें ऐसे बहुत सारी ये चीजें मिली हैं जिनके अध्ययन से यहाँ के प्राणी प्रमाणों के बारे में जो है वो निष्कर्ष निकले हैं। इसके साथ में जो पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ हैं राजाओं के टाइम पर आज से 500 300 साल पहले भी जो लिखे गए हैं, दक्षिणी ये मेवाड़ राज्य के इतिहास में भी जो लिखे गए हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे प्राणियों का रेफरेंस है। यहाँ जो सभ्यताएं मिली आहड़कालीन सभ्यता और ये यानी आज से 4,000 साल पहले या 1,500 साल पहले तक यहाँ पर गेहूं, जौ, चावल, सरसों, ये दालें, इसके अलावा ये तिल वगैरह, इसके अलावा ये बाजरा कुल के अनाज, चना, मूंग, इन सब का भी यहाँ कल्टीवेशन तक होता था, और कैटल ये पशु भी पाले जाते थे। तो और यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा खासा था।
1: जी सर, तो धीरे धीरे ये फिर लुप्त होने लगे
0: धीरे
1: जैसे।
0: धीरे ऐसे हुआ कि देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया कि जब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उधर की तरफ जो हलचलें हुई और
1: जी
0: उनके कारण जो सिंधु और सरस्वती नदी का जो फ्लो था उसका सरफेस फ्लो खत्म हो गया।
1: जी
0: सरफेस फ्लो खत्म होने के साथ में उसकी जो नमी थी वो लुप्त तो हो गई और फिर
1: जी
0: वो मरुस्थल का रूप ले लिया। उस मरुस्थल का रूप लेने के साथ साथ में फिर वहां का जो जीव जंतु है और उस पर निर्भर जो उस भौगोलिक क्षेत्र में जो रहने वाले जीव जंतु है वो बदलेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, और वो
1: जी
0: बचेगा जो वहां अनुकूलन में रह सके। तो आज जो हमें वहां दिखाई देता है वो है जो उस अनुकूलन में रह सका है, राइट। उसी तरह से दक्षिणी अरावली की तरफ में भी जो परिवर्तन अभी आए हैं, तो अब ये जो बचा है वो है जो आज की स्थितियों में अनुकूलित रह सकता है। हाँ, जो आप जानना चाहती हैं वो उसका मैं आपको बताता हूं कि ये जीव जंतु का प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन है
1: जी
0: उत्तरी अरावली में, जैसे जो वनस्पति जगत है उनमें जो सघन जो पेड़ चौड़ी पत्ती वाले सदा हरे इस प्रकार की जो वेजिटेशन थी, उसके बाद में जो परिवर्तन आया, आज वहां पर पीलू के जंगल, सेल्वेडोरा जिसको कहते हैं, मिसवाक जिसको कहते हैं, उसके बाद में वहां पर छितराए हुए जो वृक्ष प्रजातियां वन है, कंटिन्यूअस फॉरेस्ट जो है आज नॉर्थ अलावरी में नहीं रहा। सेंट्रल अरावली के अंदर जो है वो जहां जहां हाई माउंटेन्स हैं और जहां घाटियों के जोन हैं वहां पर पहाड़ों की चोटियों पर, पहाड़ों के ढलानों पर, मध्य ढलानों पर, निचले ढलानों पर, घाटियों के अंदर, नम क्षेत्रों में और प्लेन इलाकों में जो वनस्पतियां हैं उनमें परिवर्तन आए हैं। वृहद रूप से यदि हम देखें तो पूरे राजस्थान का जो आज का वनों का प्रकार है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूअस फॉरेस्ट का प्रकार है, यानी यहाँ गर्मियां गर्म, सर्दियां ठंडी हैं। बरसात के बाद जब तापमान बढ़ते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर वृक्ष, ज्यादातर प्रजातियां वो हो गई हैं जो पानी को बचाने के लिए अपने पत्तों को झड़ा देती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ जहां, जब यहाँ सोचिए कि यहाँ एलिफेंट घूमते थे, गेंडा हाथी घूमते थे, तो यहाँ कितने टॉल ग्रासलैंड यहाँ थे, लंबी घासों के एरिया, ऊंची घासों के टॉल ग्रासलैंड जो उनका हैबिटाट है। उसके साथ में यहाँ जब लॉयन जो प्राइमरीली प्लेन एरिया में अपना हंटिंग करते हैं, चीता और लॉयन, वो उनका यहाँ पर हैबिटाट था। उसके साथ में फिर हम देखें कि टाइगर और उसके बाद लेपर्ड, जो आज लेपर्ड बचा है, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो घने जो जंगल हैं उनमें था। अब टाइगर कुछ कुछ पार्ट में रह गया जहां घना जंगल बचा और जहां हमने टाइगर रिजर्व बना दिए, अन्यथा बाकी में लेपर्ड ही लेपर्ड बचा है, तेंदुआ बचा है बिग कैट्स में। इसके साथ में जो टॉल ग्रासलैंड्स के जो जानवर थे, हाथी, गेंडा, ये सब कुछ खत्म हुए, बिसन खत्म हुए। ये जो परिवर्तन आया है ये असल में बहुत बड़े पैमाने पर, पहले क्या होता था देखिए, आज से भी सैकड़ों साल पहले राजाओं के समय पर जब वो हंटिंग करते थे, शौकिया शिकार करते थे, तो उसमें नियम होता था कि मादा और बच्चों को और जवान जो नर हैं उनको नहीं मारेंगे, ताकि उनका जो फर्टाइल जीन है उनका,
1: जी
0: उनमें आगे संतति पैदा करने वाली जो जनरेशन है वो बची रहे और उनकी
1: जी
0: संख्या बनी रहे, उनकी जनसंख्याएं बनी रहे। तो जो मैच्योर होते थे, मेल होते थे, उनको प्रिफेर किया जाता था हंटिंग के लिए, सेलेक्टेड तरीके से हंटिंग होती थी। लेकिन फिर बाद में जब मुगल यहाँ पर आक्रांता आए देश में, तो उस समय पर वो हंटिंग हर तरह की हंटिंग में बदल गई। उसके बाद में फिर ब्रिटिश काल में वो हंटिंग और भी ज्यादा शौकिया में बदल गई। आपको बताऊं, ये दक्षिणी राजस्थान में आजादी के बाद में भी, जब तक ये वन अधिनियम 55 में और ये नहीं बना था, उसके
1: जी
0: पहले तक जो कुछ जीव जंतुओं के संरक्षित क्षेत्र थे उनको गेम रिजर्व कहा जाता था। गेम रिजर्व यानी जहां शौकिया हंटिंग स्वीकृत थी। बाद में वो पूरी तरह से वन्य जीव अभयारण्य और उसमें तब्दील हुए जब हमारे यहाँ वन्य जीव अधिनियम या वन अधिनियम और हमारे देश के जो संविधान थे उसके अंतर्गत ये चीजें बनने लगी। 73 में जाकर के हमारा वन्य जीव अधिनियम बना। उससे
1: जी
0: पहले तक जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कोई कठोर प्रावधान नहीं थे। और आज भी आपको बताऊं कि जब मानव कृषि का विस्तार कर रहा है ताबड़तोड़, तो आज वो नील गायें जब उनके खेतों में आती हैं तो आज उनको खतरा माना जा रहा है। नीलगाय, सुअर, जंगली सुअर और नीलगाय सबसे बड़े दुश्मन माने जा रहे हैं आज, स्पेशली जंगल क्षेत्रों के किनारे रहने वाले गांवों में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपना विस्तार अपनी आवश्यकताओं के लिए तो कहीं तक कर जा सकते हैं, लेकिन वो जंतुओं का आवास घटता जाए, सिकुड़ता जाए, तो अब आपके विस्तार में वो नहीं घुस सकते, उन्होंने पाप कर दिया। तो उनको वर्मिन यानी पीड़क यानी कि अनवांटेड पहुंचाने वाला घोषित करने का प्रावधान है। और आज भी वन्य जीव अधिनियम भारत सरकार का जो है उसमें प्रावधान है कि यदि इस तरह के जीव जंतु को पीड़क जंतु वर्मिन घोषित किया जाए, मानव के लालच ने हमारे इन बड़े बड़े जीव जंतुओं को खत्म किया। और ये समझिए कि जंतु के खत्म होने से वन भी खत्म होते हैं और वन के खत्म होने से जीव जंतु भी खत्म होते हैं। ये वाइस वर्सा रिलेशन है आपस का म्यूचुअल। अब ये कि ये सारे बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े बड़े बिसन, दरियाई घोड़े, ये गैंडा हाथी और ये सारी चीजें, ये जो बने, ये जो है ये खत्म हुए तो वन नष्ट नहीं हो। ये परिवर्तन मानव जनित परिवर्तन है। पहले तो ये था कि जब हमारे यहाँ रियासत काल था, या पहले जो भी हमारे यहाँ पर ये जो अलग अलग किंगडम्स थी, एम्पायर्स थी, और उस समय जो हमारे यहाँ हंटिंग के तरीके थे, वो हंटिंग के तरीके कुछ उसूलों के साथ में बंधे हुए थे, जिसमें मादा को, बच्चों को और जवान नरों को नहीं मारना होता था। लेकिन उसके बाद में जो है वो शौक में तब्दील हो गया और अंधाधुंध जो है किलिंग वो हुई। जब मुगल आक्रांता देश में आए और उन्होंने लंबे समय तक देश में शासन किया, तो ताबड़तोड़ जो है खाने के लिए प्राइमरीली, फिर वो केवल यूं शौक या उस शिकार के उद्देश्य से वो हंटिंग नहीं थी, वो खाने के उद्देश्य से हंटिंग शुरू हो गई। हर तरह से जो भी मिले उसको मारो और खाओ। उसके बाद में ब्रिटिश काल में भी ये हंटिंग उसी तरह से जारी रही कि केवल शौक नहीं था, बल्कि उनको अपने घरों में, अपने वहां ले जा करके उनको सजावट के तौर पर लगाने की जो होड़ बढ़ गई। उसके बाद में आजादी के बाद भी हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आने में तो और कई वर्ष लग गए, 1973 में आया, लेकिन वन अधिनियम पहले आए, जंगलों का थोड़ा कंजर्वेशन शुरू हुआ। लेकिन शुरुआत में वो भी था कि जो हमारे वन क्षेत्र हैं उनसे व्यावसायिक हम आइटम कितना प्राप्त करें, सिल्वीकल्चर और दूसरी फॉरेस्ट्री यानी टिम्बर और फ्यूल वुड, फायर वुड, मेडिसिन, यानी जो कुछ भी था, वो पहले व्यावसायिक दोहन के निमित्त जंगलों का प्रबंधन किया जाता था। अब उस व्यावसायिक दोहन के कारण और ये शौकिया शिकार के कारण हमारे जो प्लांट स्पीशीज थी और एनिमल स्पीशीज थी, ये दोनों ही खत्म। जब जंतु प्रजाति खत्म होती है तो उससे संबंधित तो उसको आश्रय भोजन देने वाली वो पादप प्रजाति भी खत्म होती है, और पादप प्रजाति खत्म होती है तो उससे जड़ी जंतु प्रजातियां भी खत्म होती हैं। और वही कारण था कि हमारे जो जलीय क्षेत्रों में, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान करके कि हमारे अरावली के जो जलीय क्षेत्र थे उनमें एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, जो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का इंडिकेटर मानी जाती है, महाशीर मछली, महाशीर मछली वो खत्म हो गई। आज वो हमारे राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान के कुछ जलाशय में, जैसे उदयपुर शहर से लगी एक झील है जिसको बड़ी लेक कहते हैं, लेक बड़ी, उसके अंदर कुछ बची है। लेकिन पहले वो हमारे यहाँ हर जगह थी, नदियों में भी थी, आज वो हिमालय के जोन में भी महाशीर मिलती है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जगह जगह मिलती है। तो राजस्थान में भी महाशीर मछली का डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन वो महाशीर मछली हमारे यहाँ से पूरी तरह जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में लुप्त तो हो गई। हमारे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जो बिग कैट्स थी, बड़ी बिल्लियां, लायन और टाइगर, लायन पूरी तरह से खत्म हो गया, टाइगर बस कुछ जगह पर हम बचा पा रहे हैं। हमारे भालू के आवास बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में खत्म हुए। अब वो भालू जो है इधर आपके सिरोही के एरिया में और दक्षिणी राजस्थान के कुछ एरिया में बचा है, बाकी और जगह मध्य राजस्थान में, सवाई माधोपुर, अलवर और इधर में कुछ बचा है, लेकिन बड़ी तादाद में इनके आवास नष्ट हुए। मगरमच्छ जो है वो हमारे जलाशयों में भरे हुए थे, नदियों में, और एक बहुत बहुत बहुत बड़ा, मैं आपको इंपॉर्टेंट एनिमल बता रहा हूँ, एक्वेटिक हैबिटाट, जलीय तंत्र का, ऑटर्स, उदबिलाव, जल मानुष जिसको कहते हैं, राइट, ये जल मानुष हमारे यहाँ से, जलीय तंत्रों से खत्म हो गया। ये पानी का शेर कहलाता था। अब ये हमारे यहाँ चंबल के बेसिन में, चंबल नदी में कुछ जगह पर ये ऑटर, जल मानुष हमारे बचे हैं, अन्यथा बाकी का हमारे यहाँ से, हर जगह से ये ऑटर, जलमानुष और महाशीर मछली ये बड़ी तादाद में हुए, और जमीन के तो मैंने एनिमल आपको बताए। अब उससे हुआ क्या, अब यह है कि नॉर्थ अलावली के तो जो जंगल थे सदा हरे, बड़ी पत्ती वाले, हमेशा हरे घने सघन, वो तो हो गए तब्दील छितराए हुए जंगलों में। फिर उनके बीच में ग्रासलैंड आ गए, टॉल ग्रासलैंड से भी वो शॉर्ट ग्रासलैंड में बदल गए, और उसके बाद में अब मध्य अरावली और दक्षिण अरावली में ये सब चल रहा है। यानी अब यहाँ के जो सघन वन क्षेत्र हैं इनमें बदलाव चल रहा है। अरावली का जो मैंने शुरू में कहा ड्रूड लाइन, अरावली जो पश्चिम और पूर्व को विभाजित करती है, अब ये हो रहा है कि जो पश्चिम में मरुशुष्क परिस्थितियां बन गई, इनका विस्तार अरावली के पूर्व की तरफ आ रहा है। यानी इधर के जो अरावली के पूर्व में जयपुर और इधर से लेकर के मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक, और तो ये जो दक्षिण पूर्वी अरावली और दक्षिण पूर्वी अरावली जो है, यहाँ बड़े बड़े नदी घाटियां आज भी हैं, इन सब में जंगल का जो परिवर्तन आ रहा है, और उस परिवर्तन के कारण जो शुष्क परिस्थितियां जो पश्चिम में बनी है, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर, इसका विस्तार, शुष्क परिस्थितियों का विस्तार अरावली को पार करके भी आ रहा है इधर, और अरावली के बीच बीच में जहां छोटे छोटे गैप हैं उनमें से भी घुस करके पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। आज दक्षिण अरावली में भी आज आप देखेंगे सिरोही, माउंट आबू का जंगल जो गुजरात के उत्तर गुजरात के घने जंगलों से जुड़ा हुआ है, बनासकांठा, साबरकांठा, अंबाजी के इलाके से, और
1: जी
0: उदयपुर का इलाका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का इलाका, भीलवाड़ा, चित्तौड़ का इलाका, कोटा बूंदी का इलाका, ये जो इधर दक्षिण राजस्थान का है, यहाँ जो सघन वन क्षेत्र है, आपको बड़ा मजा आएगा कि इस अरावली का जो दक्षिण पूर्वी भाग है चित्तौड़ की तरफ, चित्तौड़ की तरफ दक्षिण पूर्वी अरावली का जो विस्तार है वो पूर्व से मालवा के पठार और दक्षिण पूर्व से विंध्या पर्वतमालाएं, इनके साथ कॉन्फ्लुएंस जोन बनाती है अरावली, चित्तौड़गढ़ जिले में जहां सीता
1: जी
0: माता वन्य जीव अभयारण्य है,
1: एक
0: मालवा का
1: संगम
0: पठार,
1: प्रकार
0: संगम, मालवा का पठार, विंध्या माउंटेन और इधर से अरावली, इनका तीन ज्योग्राफिकल अलग अलग तरह की ज्योग्राफिकल जोन का ये कॉन्फ्लुएंस जोन है। वहां का जीव जंतु और भी पिक्यूलियर है, इन तीनों जोन का प्रतिनिधित्व करने वाले जीव जंतु। उसी तरह से सिरोही, माउंट आबू, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनका जो गुजरात से जुड़ा इलाका है, इस इलाके में भी जो जीव जंतु है वो ज्यादा प्रचुर है, ये खत्म हो रहा है, ये आवास नष्ट हो रहे हैं, और उसके कारण जो जंगल का प्रकार है वो चौड़ी पत्ती वाले सघन वन, यही क्षेत्र है चित्तौड़ भीलवाड़ा तक का, जो दक्षिण का सागवान का विस्तार, ये लास्ट लिमिट बनती है अरावली में, इसके बाद उत्तर में आपको सागवान का ही नहीं मिलेगा, राइट?
1: जी
0: इसके अलावा जो अरावली का जो, क्योंकि इसका उठान हो गया, शुष्क परिस्थितियां बढ़ गई, तो उसके कारण यहाँ जंगल क्या हो गया, भौंक का ज्यादा प्रचुर जंगल है। पूरी मध्य अरावली, उत्तर में भी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रेंज है झुंझुनू, सीकर और वहां पर भी दिल्ली तक में, उसके बाद में अजमेर, जयपुर और दक्षिणी राजस्थान में, वहां पर धौंक, एनोगेसिस पेंडुला जिसको हम कहते हैं, धौंक, काला धौंक, और उसके
1: जी
0: साथ में उसके भाई है सफेद धौंक, एनोगेसिस लेटीफोलिया। अब इनके साथ में अन्य जो सह संबंध प्रजातियां वो बढ़ गई, तो ये धौंक डोमिनेटेड चरम अवस्था का जंगल हमारे यहाँ बचा है। माउंट आबू जो अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचाई पर है, गुजरात के नॉर्थ डेंस फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, और दक्षिणी राजस्थान का एरिया अभी भी वर्षा प्रचुर है, यहाँ जलाशय हैं, तापमान की स्थितियां हैं, तो यहाँ अभी मिक्स जंगल है लेकिन पतझड़ी है, धौंक यहाँ पर बाहुल्य में ही है, ये अब जो है और ज्यादा शुष्क परिस्थितियों में बदल रहा है। शुष्क परिस्थितियों में बदलने का मतलब है कि यहाँ के जंगलों में गर्मी बढ़ रही है, चौड़ी पत्ती वाले सदा हरित रहने वाली वनस्पतियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, उनका फल भी बन रहा है तो वो फूट नहीं रहा है, फुटान नहीं हो रहा है उसका।
1: जी
0: आप अगर सिरोही, माउंट आबू के पहाड़ को देखें जो पश्चिमी भारत का सबसे ऊंचा इलाका है, तो वहां जो पुराने वृक्ष हैं उन प्रजातियों के नए फुटान आपको नहीं मिलेंगे। यानी ये जो दृष्टिकोण अगर आप देखना चाहें, कोई आम जनता भी इस चीज को समझना चाहे। हमारे बुजुर्ग इन चीजों को बड़े बड़े संवेदी तरीके से जानते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग जो 80-90 साल के हैं वो जानते हैं, वो एक लाइन में बोलते हैं, साहब पहले जो था वो आज नहीं है।
1: जी
0: एक लाइन में वो इस चीज को डिस्क्राइब कर देते हैं कि जो पहले था वो आज नहीं है। आज जो 50-60 ईयर्स की एज के जो जनरेशन के लोग हैं वो जानते हैं कि बचपन में वो जिन चीजों को वनस्पति जीव जंतुओं को देखते थे आज उनको वो नहीं दिखाई देता। और
1: जी
0: आपके ये जो आज जो यंग एज है 25-30 साल के लोग हैं, ये तो अभी इनको तो हवा ही नहीं लगती है कि पहले आज से 50 साल 80 साल 100 साल पहले क्या था। ना उनकी टेक्स्ट बुक में इस चीज को बताया जाता है पर्यावरण शिक्षा में पर्याप्त रूप से, ना वे अपने बुजुर्गों से कोई डिस्कशन ऐसा कर पाते हैं कि उनको अपनी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, अपनी बायोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानने को मिले। हमारे जंगलों से चौसिंगा हिरण, भेड़ल जिसको कहते थे, बुटार कहते थे, घने जंगलों का जो हिरण है, एंटीलोप है, वो खत्म हो गया लगभग से। उड़न गिलहरी हमारे जंगलों में पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि ये दक्षिण भारत में और वहां उड़न गिलहरी पाई जाती है, नहीं, दक्षिणी राजस्थान में हमारे जंगलों में उड़न गिलहरी पाई जाती है। लेकिन उनके आवास जिस तेजी से नष्ट हो रहे हैं, वो बड़े बड़े महुआ के पेड़ों में, बहेड़ा के पेड़ों में, सागवान के पेड़ों में, ऐसे बड़े बड़े सघन बड़े पेड़ों के अंदर उनके कोटर में रहती हैं। लेकिन जब उन जंगलों में रिपीटेड फायर लगती है, मानवीय व्यवधान बढ़ते हैं, हमारे पानी से महाशीर मछली वो खत्म हो गई, और उसके साथ में हमारी जो और भी मछलियां थी, चंबल तक जो गैंगेटिक डॉल्फिन का जो विस्तार था वो खत्म हो गया, और उसके साथ साथ में धीरे धीरे धीरे जो है हमारा जंगल भी जो है वो ज्यादा शुष्क प्रकार में बदलता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी, और ये कब आएगी ये आप और मतलब हम वैज्ञानिक तथ्य से, स्टेटिस्टिकल डाटा से एनालिसिस करके हम कह दें कि ये स्थिति आने में 150 साल लग जाएंगे। 150 साल में यहाँ का जंगल पूरा कांटेदार वनस्पति और बस वही रह जाएगा। लेकिन ये वैज्ञानिक अनुमान, हम जिस तेजी से परिवर्तन ला रहे हैं मनुष्य, उस
1: जी
0: अनुमान से भी पहले से घटित हो जाएगा। तो होगा जरूर, ये तय है, होगा जरूर ये परिवर्तन, क्योंकि अब हमने इतना चेंज कर लिया कि अब ये परिवर्तन जो है वो जब पृथ्वी पर कोई बड़ा ही हलचल, जो छठा महाविनाश पृथ्वी पर अब प्रारंभ हो गया है, और उसके बाद में फिर से पृथ्वी का उद्विकास होएगा, तब फिर यहाँ की स्थितियां फिर कुछ बदलेंगी, भौगोलिक परिस्थितियां बदलेंगी, यहाँ का क्या होगा। लेकिन ये हो रहा है,
1: जी
0: ये थ्रेट तो अभी बढ़ता ही जा रहा है।
1: जी जी बिल्कुल। और सर आगे हम विस्तृत रूप से अरावली की कहानी में और बेहतर समझेंगे, इसके इतिहास को जानेंगे, और ये जो गिरावट हुई है या फिर जो लुप्त हुए पशु पंछी है, वनस्पति है, और हमने देखा नदियों की धारा हमने बदल दी है, कई ऐसे जो मानवीय भूल के कारण हम आज जो भुगत रहे हैं उसे कैसे हम कह सकते हैं कि ये योगदान दे सकते हैं जिसे थोड़ा और बेहतर कर सके, इसके बारे में आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। और आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।

ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में, जीवन कौशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं करियर ऑप्शन में और आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं और उसमें ए टू जेड बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये करियर चुनने से आपके लिए क्या बेनिफिट होता है, आप इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं और इसमें कितनी पैकेजेस आपको मिलती है शुरुआत में और बाद में। इस तरह की बहुत सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। तो आज जीवन कौशल इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं वेब डेवलपर के रूप में करियर बनाएंगे। तो वेब डेवलपर क्या होता है, कैसे इसको कर सकते हैं और क्या क्या इसमें स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। तो आज के समय में डिजिटल युग में वेब डेवलपर दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला स्थायी जीवन कौशल है, करियर का विकल्प है और इंटरनेट की पहुंच गांव-गांव तक फैल रही है और ये व्यवसाय संस्था, स्टार्टअप, शिक्षा क्षेत्र या सरकारी विभाग को अपने कामकाज और सेवाओं को ऑनलाइन लाने के लिए वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। ऐसे में वेब डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है, इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक कौशल है जो वैश्विक स्तर पर अनगिनत अवसर प्रदान करता है। तो साथियों, आज हम लोग वेब डेवलपर के करियर कौशल, नौकरी की संभावनाएँ या फिर इसको सीखने की राह और भविष्य के अवसरों की विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। और बातें हो रही वेब डेवलपमेंट के बारे में, वेब डेवलपर के बारे में। जी हाँ, वेब डेवलपमेंट है क्या, इसके बारे में जानते हैं। वेब डेवलपमेंट ये एक प्रक्रिया है जिसमें वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन की योजना, डिज़ाइन, कोडिंग और मेंटेनेंस जो है वो शामिल होता है। इसके मुख्य तीन हिस्से में अगर देखा जाए, तो एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और तीसरा होता है फुल स्टॉक डेवलपमेंट। तो सबसे पहला आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में अगर बात करूं तो फ्रंट एंड का वो हिस्सा है जिसे यूज़र वेबसाइट पर देखते हैं और जिसके साथ वे इंटर एक्ट करते हैं, यानी हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसके अंतर्गत ये टेक्निक सीखनी होती है, जैसे कि आप कंप्यूटर लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें, जब वेब की बात आती है तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको, जो आप वेबसाइट्स में यूज़ होता है। CSS कास्ट कैडिंग स्टाइल शीट्स होते हैं। तीसरी बात आती है जावास्क्रिप्ट और चौथा आता है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, रिएक्ट, एंगुलर, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है UI UX नॉलेज। फ्रंट एंड डेवलपर वेबसाइट को सुंदर

डेवलपमेंट में। इसके अंतर्गत ये टेक्निक आती है जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोड, PHP, पाइथन, जावा, रूबी। दूसरा होता है डाटाबेस, MySQL, MySQL और MongoDB, पोस्टजर स्क्वेल, SQL, API डेवलपमेंट, सर्वर मैनेजमेंट। तो इस तरह की जो लैंग्वेज प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें आपको बैकएंड में ज़रूरत पड़ते हैं, जो बैकएंड ऑफिसर होते हैं। बैकएंड डेवलपर यूज़र से प्राप्त डेटा को सुरक्षित तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं और पूरी वेबसाइट को काम करने योग्य भी बनाते हैं। जैसे समझो आप अपना वेबसाइट बना लिया और उसमें कुछ प्रोडक्ट आपने दे दिया और लोग आते हैं उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं या प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, उसका विवरण होता है, तो वो सारी चीज़ें अपने वेबसाइट पर डाल के रखी हैं। लेकिन वेबसाइट एक स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे वो स्क्रीन पे वो जो चीज़ें आप डाल रहे हो उसे सेव करके रखना और उसे उसी तरह से दिखाना जैसा आप चाहते हैं, तो वो सारा सिस्टम जो है वो बैकएंड सर्वर में सेव हो जाता है, डाटाबेस में सेव होता है। तो इसको कहते हैं बैकएंड डेवलपमेंट। तो ये सर्वर से ही आपकी वेबसाइट कनेक्ट होती है, सर्वर में जो डाटा होगा वह वेबसाइट पे फ्लैश होगा। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। चलिए एक और बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। फुल स्टैक डेवलपर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में विशेषज्ञ होते हैं। ये आज के समय में सबसे अधिक मांग वाला रोल है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का पूरा अच्छी तरह से जानकार है तो आपके लिए आज के समय में काफ़ी आपका मांग है, क्योंकि कंपनियों को ऐसा प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो पूरी वेबसाइट को अकेले संभाल सके। जब अकेले संभालना हो तो आपको फ्रंट एंड बैक एंड वाली दोनों बातें आपके जहन में आनी चाहिए, तब आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं वेब डेवलपर की और क्या क्या कौशल है जिसको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ टेक्निकल शब्द आपको मैं बताऊंगा जो आपके कोर्स में ज़रूर आती है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर जीवन कौशल, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपर के बारे में। जी हाँ, वेब डेवलपर की क्या क्या मेन काम होते हैं वो हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं वेब डेवलपर बनने के लिए आवश्यक जो टेक्निक्स होती, कौशल होती, उसके बारे में। एक तो सबसे पहले आपको HTML, CSS, JavaScript की मजबूत समझ होनी चाहिए, इसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए। कम से कम एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आपको पूरी तरह से आनी चाहिए और एक बैकएंड भाषा भी आपको समझ में आना चाहिए। डाटाबेस का ज्ञान हो, गिट और गिटहब का उपयोग कैसे करें, API कैसे काम करती है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये सारी बातें आपके अच्छी तरह से आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ में ये हो गए हार्ड स्किल। इसके बाद सॉफ्ट स्किल में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, क्रिएटिव थिंकिंग, समय प्रबंधन, टीम के साथ काम करने की क्षमता और निरंतर सीखने की इच्छा। क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें जो है ये निरंतर इसमें नवीनता आती रहती है, चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ते जाता है। पहले चीज़ें बड़ी हुआ करती थी, अब छोटी बहुत कॉम्पैक्ट में आने लगे हैं। इवन आप जो है कंप्यूटर को आप ले भी जा सकते हैं, जैसे लैपटॉप है तो उसको लेकर जाते हैं तो आपका काम रुकता नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें जैसे बदलती जाती है, वैसे आपको भी इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से करने में आपको सक्षमता हासिल करनी है। तो आइए, वेब डेवलपमेंट क्यों चुने, इसके फ़ायदे क्या क्या है। एक तो हाई डिमांड पर है, भारत में और विदेश में भी वेब डेवलपर की भारी मांग होती है। हर संस्था को वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है और वेबसाइट को रन भी करना पड़ता है और उसके द्वारा लोगों को जोड़ना भी पड़ता है, तो इसीलिए ये बहुत ही हाई प्रोफाइल वाला जॉब है, हाई डिमांड वाला। दूसरा है, एक अच्छा वेतन भी यहाँ पर मिलता है। एक फ्रेशर वेब डेवलपर भी 20 से 40 हज़ार रुपये मासिक कमा सकता है, अनुभव के बाद तो लाखों तक पहुँच सकते हैं आप। तीसरा है, फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम विकल्प भी इसमें है। आप घर बैठे दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। चौथा है, क्रिएटिव और इनोवेटिव करियर है। हर प्रोजेक्ट नया होता है जिससे सीखने का अवसर लगातार आपको मिलता रहता है। पांचवी बात, यहाँ पर वैश्विक अवसर होता है। वेब डेवलपमेंट एक स्किल है जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी आपकी कीमत बढ़ाती है, तो इसीलिए ये चीज़ जो है रुकने वाली नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाली है और आपके लिए एक अच्छा विकल्प भी है। अगर आप रोज़ ड्यूटी पे जाना आना अच्छा नहीं लगता है तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है क्रिएटिव स्किल है जिसको आप अच्छे से सीख के अपने घर से ही इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है काम है, आपके अनुसार इसको बाइंडिंग कर सकते हैं आप। आप काम पे जाना हो तो काम पे जा सकते हैं, नहीं तो घर बैठे भी आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं या दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगा, सीखने की राह हमेशा आपकी खुली होनी चाहिए। स्टेप एक, बेसिक से शुरू कर सकते हैं आप। HTML, CSS के बेसिक, जावास्क्रिप्ट सीखे और फिर सादी वेबसाइट बनाए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं, सादी वेबसाइट। स्टेप दूसरा है, एडवांस जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क की तरफ काम करें, DOM, ES6 फीचर सीखे, React.js या फिर एंगुलर में महारत हासिल करें। इसके बाद धीरे धीरे जब इन चीज़ों को आप सीखते हैं तो फिर आगे तीसरा स्टेप पे आप आ सकते हैं, बैकएंड सीखें, Node.js, Express.js या फिर SQL या MongoDB, ये भी एक बहुत बढ़िया बैकएंड के स्किल्स होते हैं जिसको आपको सीखना है। और चौथा है, गिट या GitHub सीखें। और फिर पांचवा है, प्रोजेक्ट बनाएं, जैसे कि पर्सनल पोर्टफोलियो, ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म या चैट ऐप, या फिर इन सभी चीज़ों को करते करते आप जो है इंटर्नशिप या फ्रीलांसर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, जहां पर आप कम पैसे में सीखने के हिसाब से भी और आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से भी ये आप ज़रूर करें, जिससे आपकी जो है आय बढ़ेगी और आपको आइडिया भी आएगी और धीरे धीरे आप इनको प्रैक्टिकल में कैसे ये चीज़ें संभव है वो चीज़ें आपके
अनुभव बढ़ाएगा, और एक बार अनुभव बढ़ जाता है तो आपका पे स्केल भी दुगना हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर करियर ऑप्शन, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेब डेवलपिंग के बारे में। वेब डेवलपिंग करियर कैसे बना सकते हैं, इस करियर में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ बातें हमने आपसे शेयर की। साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जितना आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना आप अच्छे से करेंगे चीज़ें, उतनी आपके पास आएंगी। वेब डेवलपर्स के लिए करियर विकल्प ये है कि एक वेब डेवलपर के रूप में आप कई भूमिकाओं में काम कर सकते हैं। एक है फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, तीसरा है फुल स्टैक डेवलपर, और फिर UI UX डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, वर्डप्रेस डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मोबाइल ऐप डेवलपर, रिएक्ट नेटिव, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ा जॉब स्किल्स है। दूसरी बात, यहाँ जैसे मैंने सैलरी के बारे में बताया, अगर विस्तार से बता दे आपको, तो यहाँ पर भारत में वेब डेवलपर का जो स्केल है वो है 20,000 से 40,000 महीना फ्रेशर के लिए। जैसे आप कोर्स कर लिया और आपको अभी आप सीख रहे हैं, तो अनुभव बढ़ाने के लिए फ्रेशर है आप, तो 20,000 से 40,000 महीना आप कमा सकते हैं। 2 या 3 साल का आपका अनुभव हो जाता है तो आप सीधा जो है डबल इनकम आपका शुरू हो जाता है, 50,000 to 80,000, 50,000 से 80,000 तक आपको महीना मिलता है। अगर आप धीरे धीरे 5 साल का अनुभव आपके पास है तो 1,00,000 से 2,50,000 महीना आपको पेमेंट मिलता है। और फिर उसके बाद तो आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। 5 साल के बाद जो है आप अपना ही एक सेटअप बना के फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं, जिसमें आप 10,00,000 से 20,00,000 तक का भी काम कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कितना आप कर सकते हैं। और फिर अगर आप विदेश में जाते हो तो फिर पेमेंट का आपका कई गुना बढ़ जाता है। US और यूरोप में वेतन इससे कई गुना ज़्यादा होगा ही, और ये भी पेमेंट मिलेगा तो इंडियन रुपीस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना आप कमा सकते हैं इसमें। और भविष्य में वेब डेवलपमेंट का महत्व क्या है, आज जो मांग है वो आगे भी ये रहने वाली है। भविष्य में AI, LOT, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा पर आधारित होगा, और इन सभी को वेब प्लेटफॉर्म पर चलाने की ज़रूरत होगी। वेब डेवलपर की मांग आने वाले 20 वर्षों में लगातार बढ़ने वाली है। AI आने के बाद भी वेब डेवलपर की ज़रूरत कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी, क्योंकि AI टूल्स को चलाने के लिए भी वेबसाइट और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी चीज़ है तो उसको वेबसाइट पे चलाना ही है, तो वेबसाइट बनाने वालों का कभी भी रुकावट नहीं होता। और वेब डेवलपर बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर इसके बारे में बात करूँ तो आप अपनी वेब डेवलपमेंट एजेंसी खोल सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन कोर्स चला सकते हैं, तीसरा YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, चौथा

कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हैं। और पांचवा, एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, स्टार्टअप सबके लिए डिजिटल सोल्यूशन आप दे सकते हैं। तो ये एक खास बात थी जो हमने आपको बताई, वेब डेवलपमेंट एक सुरक्षित, स्थायी, प्रगतिशील और उच्च आय वाला करियर है। आप चाहे छोटे शहर में रहते हो या बड़े महानगर में, यदि आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट है तो आप वेब डेवलपर बनकर अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। ये करियर सीखने वालों के लिए खुला है, चाहे आपकी उम्र 15 साल हो या फिर 45 साल। निरंतर सीखते रहें, प्रोजेक्ट बनाते रहें और धीरे धीरे आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस जीवन कौशल कार्यक्रम में हमने बातें की वेब डेवलपमेंट के बारे में, वेब डेवलपर के बारे में। आशा करूँगा आपको हर बात समझ में आ गई होगी और आप इस कोर्स को आसानी से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। किसी भी अच्छे कंप्यूटर जो है कॉलेज से आप इन चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। और वेबसाइट डेवलपर का जो अच्छा जो विकल्प है करियर के लिए है, और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से करके, प्रैक्टिस करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जी हिचकी मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752 9001313752 ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से पसंद किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा खड़ताल ढोलक हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: सभी सुनने वालों का स्वागत है। वेलकम वेलकम। और मेरा फेवरेट्स प्रोग्राम जो आपको भी पसंद आता है, इसका नाम है जुनून। और हम लोग मिलते हैं किसी ना किसी जुनूनी से। इस बार हमारे साथ है युवा जुनूनी जिनका नाम है सत्यनारायण राव। आप आते हैं अजमेर जिले के सरवाड़ ब्लॉक से। सरवाड़ एक पंचायत समिति है, अजमेर से कुछ दूरी पर है, अजमेर शहर से। और जाना जाता है वहां के की फेवरेट दरगाह के लिए। दरगाह के बारे में तो हमारे साथी बताएंगे, सत्यनारायण जी जहाँ से आते हैं। सत्यनारायण जी, आप क्या करते हैं, थोड़ा बताएं अपने बारे में। जी
1: जी, मैं एक संस्था में काम करता हूँ और जिस संस्था का नाम है समाज कार्य एवं अनुसंधान केंद्र तिलोनिया।
0: जी
1: तिलोनिया एक गांव है, छोटा सा गांव है, जिसमें एक संस्था है। इस संस्था में मैं काम करता हूँ और मेरा मुख्य काम यह है कि मैं कठपुतलियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, गाने के माध्यम से लोगों को मैं जागरूक करने का काम करता हूँ और गांव-गांव में प्रचार प्रसार करने का काम करता हूँ, जो कि जितनी भी सरकार जो स्कीम्स बनाती है उसके प्रति मैं लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया। तो आपकी जो कठपुतलियां हैं, वो कौन कौन सी कठपुतलियां आपके साथ अभी आप लाए हैं?
1: जी, तो एक 8-10 तरीके की अलग अलग कठपुतली है, बनी हुई है। एक तो है कि ग्लव्स पपेट हुआ, दूसरा पपेट स्टीयरिंग पपेट हुआ, और एक लाइव साइज पपेट हुए, मास्क हुए और
0: जी
1: एनिमल मास्क हुए,
0: जी
1: जोखिम चाचा भी है और बेम्बू पपेट भी है। जो कि स्टीयरिंग जो वाला जो पपेट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो वो स्टीयरिंग वाला पपेट वो राजा महाराजाओं की हिस्ट्री के लिए काम में लिया जाता था, जिस जमाने में राजाओं का राज था उस जमाने में। बट हमने इस वाली पपेट को चलाना बनाना छोड़ा और फिर हम ग्लव्स पपेट पे आए, क्योंकि वो ऑलरेडी पावरफुल लोगों की पपेट हुई। और आज की हमें हमारा हक, हमारा अधिकार क्या है, भारत का संविधान क्या है, तो तमाम सारे इश्यूज को कहने के लिए हमने ग्लव पपेट को अडॉप्ट किया।
0: जी
1: और जिसमें बच्चे की पपेट बनी हुई है, महिलाएं की पपेट बनी हुई है, पुरुषों की पपेट बनी हुई है, और इन पपेटों के माध्यम से हम अपनी सहज भाषा में, गांव की भाषा में सरकारी योजनाओं को कैसे उतारें और कैसे समझाया जाए, तो इस वाली पपेट को हम गांव-गांव में लेके जाते हैं और शोज के माध्यम से, गाने के माध्यम से हम गांवों में प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं।
0: बहुत बढ़िया। तो जोखिम चाचा जो आपके साथ हैं, ये क्या जोखिम लेते हैं, इनका क्या जोखिम है? जी
1: इसका जोखिम चर्चा इसलिए है क्योंकि इसके सामने चाहे वेल क्वालिफाइड लोग बैठे हों या गांव का आदमी हो, चाहे 500 आदमी है चाहे 100 आदमी है, ये आसानी से उन लोगों के बीच में अपनी बात को रखता है
0: जी
1: और इसको कोई सिक्योरिटी गार्ड की इसके कोई जरूरत नहीं है।
0: जी
1: इसलिए
0: जी जी
1: इसका नाम जोखिम चर्चा रखा हमने।
0: अच्छा, इसलिए जोखिम लेता है। इनका
1: जी
0: जोखिम यह है कि कोई भी अपनी किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं और वो इनको पीट सकता है, ये इनका जोखिम है।
1: जी
0: जी, और आजकल भावना नाम की जो बेटी है वो बड़ी बड़ी कमजोर है, उसको कुछ कुछ चिल्लाता नहीं है तो वो तुरंत आहत हो जाती है ना।
1: जी
0: उनकी तो, सामने वाले की तो भावना आहत होती है और वो हमारे को शारीरिक रूप से आहत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर, तो ये तो हुई सरकास्टिक बात। आपके पास एक ग्लव पपेट है जिसको आपने बोला पावरफुल लोगों की पपेट है, ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि वो वाला जो पपेट है वो, उसमें अमर सिंह राठौड़ का पपेट हुआ, उसमें दुर्गा दास जी का पपेट हुआ, और उसमें महाराणा प्रताप के पपेट हुए, और भी राजा महाराजा की पपेट जिसका मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन उन लोगों की पपेट हुई। तो वो पपेट जो है, ये पपेट इसमें अपने को, आज की अगर बात करें, जैसे मैं बात करता हूँ कि पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, यातायात के साधन नहीं है,
0: जी
1: शायद मामला बैठता नहीं, क्योंकि वो एक राजा महाराजों की पपेट हुई,
0: ग्लव्स
1: इसलिए मैंने बोला कि वो पावरफुल लोगों की पपेट हुआ।
0: पपेट का मतलब क्या किया, कहीं ग्लव्स इन्वॉल्व है उसको चलाने की प्रक्रिया में?
1: उसमें और इसमें, ग्लव पपेट में और स्टीयरिंग पपेट में ये फर्क है, क्योंकि वो वाला जो स्टीयरिंग वाला जो पपेट है वो लकड़ी और कपड़े की सहायता से वो बनता है, और वो धागे के माध्यम से और 10 उंगलियों के कमांडिंग से उस वाली पपेट को हैंडल किया जाता है। तो वो वाला जो पपेट है उसको लिमिट ऑडियंस ही वाच कर सकती है, 50 से 100 लोग ही उसको देख पाते हैं। और ये जो ग्लव पपेट है इसको हम हाथ में पहनते हैं ग्लव्स की तरह, इसलिए इसको ग्लव पपेट बोला हमने। तो हाथ में पहन के, और ये रद्दी अखबारों से बनती है
0: जी,
1: अखबार के छोटे छोटे टुकड़े किए, पानी में डाला और 2-3 दिन गलने के बाद में उसको वापस निकाला, उंगली में कूटा, फेनोग्रिक पाउडर उसमें मिलाया और उसके बाद में ये वाला पपेट, तकरीबन 7 दिन के प्रोसेस में ये वाला पपेट कलर पेंटिंग होता है, प्राइमर कलर होता है, कलर वार्निश होता है और कपड़े सिलाई करते हैं तो इसमें 7 दिन का प्रोसेस रहता है, ये वाला पपेट तैयार हो जाता है।
0: आपने बताया कि जो पपेट्स आपके कट पपेट से मतलब कठपुतलियां जो राजा महाराजाओं के समय ग्लव्स पपेट कहलाते थे, अब जो पपेट्स हैं वो नए पपेट्स आ गए हैं समय के साथ, जो समय से ग्रामीण परिवेश से नए पपेट्स निकल कर आए हैं, उसमें कौन कौन से पपेट्स आपके हीरो बने हैं? अब जिसमें मुझे किसी ने बताया कि नूरती बाई एक नई पपेट है जिनको अब हमारे लिए रोल मॉडल है, थोड़ा सा बताएं उनके बारे में।
1: एक मांगी बाई है, भमरदाट है जिसको हम दादा की उम्र में हो गए थे दादा बोलते हैं
0: जी।
1: और एक नूरती माँ है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसमें रामू काका हुआ, आरती जी हुई, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये वाला पपेट के माध्यम से। और ये जो पीछे वाला जो मेरे पीछे जो पपेट है, इस पपेट में भी बहुत सारे अलग अलग करेक्टर बने हुए हैं
0: जी। तो कोई आपका फेवरेट करेक्टर, और जब वो गांव में जाके प्रचार प्रसार करता है योजनाओं को लेकर तो वो कैसे करता है, गीत के माध्यम से आप पेश कर सकते हैं छोटा सा गीत? जब पपेट गांव में जाता है तो वो लोगों से वो करता है
1: हमारा, हम जब टीम के जो साथी हैं वो स्टेज पर जब गांव में प्ले करने के लिए जाते हैं तो हमारा एक छोटा सा 4-5 फीट का एक स्टेज लगता है, उस स्टेज में ब्लैक कलर का पर्दा होता है, उसके हम सब लोग पीछे रहते हैं और उसमें एक रामू काका के पपेट हुआ, उस वाली पपेट से हम गाँव में जाते हैं तो हम हाथ में पहन के उसको नमस्कार बोल के उस गांव की भाषा में,
0: स्ट्रिंग्स के माध्यम से, राइट,
1: ग्लव्स पपेट के माध्यम से, ग्लव पपेट्स के माध्यम से। तो जी, मेरा नाम रामू काका हुआ, मैं एक गांव का किसान आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप हमारे इस बैरफुट कॉलेज के अंदर आए, आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आप जानते हैं कि इसे बैरफुट कॉलेज क्यों कहते हैं? तो बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं साहब, नहीं जानते हम क्या है, तो कि बैरफुट कॉलेज इसलिए कि यहाँ पे ना कोई कास्ट बैरियर है, ना कोई जेंडर बैरियर है, ना कोई रिलीजन बैरियर है और ना कोई इकोनॉमिकल बैरियर है, इसलिए इसे बैरफुट कॉलेज कहते हैं। तो यहाँ लोग काम करने के लिए आते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और सीखते सीखते फिर गाँव में काम करते हैं, इसलिए इसे बैरफुट कॉलेज कहते हैं। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट हुआ, आर्टिजांस हुआ, कम्युनिकेटर हुआ, रेडियो जॉकी हुआ, सोलर इंजीनियर हुए, तो ऐसे करके इसको बैरफुट कॉलेज कहते हैं। ये रामू काका का मैसेज होता है
0: जी। तो मैं चाहूंगा कि कोई गीत के माध्यम से किसी योजना को, किसी गीत के माध्यम से जब आप प्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो करके बताएं।
1: जी सर, अभी मेरे हाथ में रामू काका का पपेट पहना हुआ हूँ तो उसके माध्यम से मैं अपनी गाने के माध्यम से उस बात को रख रहा हूँ
0: जी।

0: बहुत बढ़िया,
1: जी
0: आपने दुष्यंत कुमार को पेश किया हमारे बीच में। जो श्रोता हम देर से जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं हमारे शो में। आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8, और हमारे साथ हैं सत्यनारायण राव, जो कि एक कम्युनिकेटर है। अपने गीतों और अपने पपेट्री के माध्यम से आम जन को जागरूक कर रहे हैं। सत्यनारायण जी, जो मैं आपसे बात कर रहा था, आपके सरवाड़ और अपनी परवरिश के बारे में बताइए थोड़ा सा। और मैं भूल गया उस दरगाह का नाम जो आपके सरवाड़ में है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो श्रोता दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़े हैं, वो जानना चाहते हैं आपकी परवरिश और आपकी जगह के बारे में, जहां से आप आते हैं।
1: हाँ जी सर, मैं अजमेर जिले में सरवाड़ के पास में एक छोटा सा गांव है गणेशपुरा, वहां का मैं रहने वाला हूँ। और जिस दरगाह की आप जो बात कर रहे हो वो अजमेर में है, छोटे भाई की दरगाह है सरवाड़ में।
0: जी
1: बड़े भाई साहब जो है ख्वाजा साहब, तो वो ख्वाजा साहब अजमेर के रहने वाले हैं, और उनके जो छोटे भाई हैं वो सरवाड़ में है,
0: अच्छा,
1: उनका दरगाह
0: हाँ, उनका
1: सरवाड़
0: नाम मैं
1: का
0: भूल
1: नाम है।
0: गया हूँ, खैर उनका नाम याद आएगा तो बात
1: जी
0: करेंगे। खैर, तो आपके साथ जो जोखिम चाचा है, वो कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं?
1: वो सरकारी योजना में तमाम सारी योजना, जैसे पालनहार हुआ, पीएम किसान निधि योजना के हुआ, बहुत सारे बुढ़ापे की पेंशन हुई, ये सब सरकारी योजना में ये काम करते हैं। हर सिर्फ जोखिम चाचा ही नहीं, उसके साथ में स्टरिंग पपेट हुआ, ग्लव्स पपेट हुई,
0: हाँ,
1: बेम्बू पपेट हुआ, ये सब उन्हीं के साथ में चलते हैं।
0: तो जब जोखिम चाचा किसी सरकारी योजना का प्रचार करते हैं, थोड़ा सा वो गीत के माध्यम से प्रेजेंट करिए ना।
1: जी बिल्कुल जरूर। जैसे मैं बुढ़ापे की पेंशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं बुढ़ापे की पेंशन में गाना गाता हूँ। अरे बुढ़ापा की पेंशन हक है आपनों, बुढ़ापा की पेंशन हक है आपनों, हकदार ने ओ हक पानो है, बुढ़ापा की पेंशन हक है आपनों। कटा सू अटकी, कटा सू भटकी, पतोई को लगानो है, बुढ़ापा की पेंशन हक है आपनों। कागज कार्रवाई पूरी करा कर, कागज कार्रवाई पूरी करा कर, अरे जयपुर तक की दौड़ लगानो है, बुढ़ापा की पेंशन हक है आपनों। सेंटर कार्यकर्ता गवा गवा घूमे, सेंटर कार्यकर्ता गवा गवा घूमे, वासु भी बतलानो है, बुढ़ापा की पेंशन हक है आपनों। तो क्योंकि ये सहज भाषा में, गांव की मारवाड़ी भाषा में ऐसे गाने भी बनाए कि बुढ़ापा की पेंशन हक है हमारा, इस हक को हमें नहीं छोड़ना, इस हक को हमें पाना है।
0: जी, इस पूरी प्रक्रिया में मैंने एक पालनहार को लेकर भी आपका एक गीत सुना था, वो भी बड़ा अच्छा था, वो भी मैं आप सुनना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले, जो ग्लव सपेट, जो कागज की वास्तव अखबार की लुगदी से बना है, अखबार की लुगदी जो है वो, ये देखिए, जो लोगों तक सूचना नहीं पहुंचा पाया, जो समाचार पत्र, उसको आपने गला के लुगदी बनाकर, कठपुतली बनाकर, और फिर लोगों तक जानकारी पहुंचाई। तो जहां पर समाचार पत्र फेल हो गए, वहां पर आपकी पपेट्री काम आई। तो ये एक महत्व की बात है आपकी पपेट्री के बारे में। लेकिन मैं चाहूंगा आपसे कि एक पालनहार योजना को लेकर जो आपने एक शानदार गीत बनाया है, वो भी आप हमारे रेडियो श्रोताओं को सुनाएं।
1: जी सर जरूर जरूर।
0: जो श्रोता हमें दुनिया के अलग अलग कोनों से सुन रहे हैं हमारे मधुबन रेडियो एप्लीकेशन के माध्यम से, या कहें कि देश के अलग अलग हिस्सों से, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पालनहार योजना ऐसे व्यक्तियों के लिए है, ऐसे बच्चों के लिए है जिनके माता पिता दोनों ही जीवन में नहीं हैं, और सरकार

0: है वो उन बच्चों के दायित्व तो लेती है उनके जीवन पालन को लेकर, और उनको हर महीने एक कुछ राशि उनके पालन पोषण के लिए दी जाती है। उस योजना का नाम पालनहार योजना है, और लोगों को इसकी जानकारी रहे उसके लिए प्रचार करना आवश्यक है। मेरा मानना है कि राजस्थान सरकार वो पहली सरकार है जिसने ऐसी इस योजना का शुरुआत की, और भी राज्य सरकारों ने ऐसी योजना का शुरुआत की होगी, लेकिन राजस्थान सरकार का ये एक नवाचार है और ये योजना कई सालों से राजस्थान में कार्यरत है और इसे लाखों लोगों को लाभ हुआ है। आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ हैं सत्यनारायण राव। सत्यनारायण जी, आप निकाल पाए हैं?
1: सुनाता हूँ सर।
0: जी
1: बिन माँ बाप का टाबर राखो कुण है जिम्मेदार, बिन माँ बाप का टाबर राखो कुण है जिम्मेदार। इकी राजस्थान में योजना लागू है पालनहार, इकी राजस्थान में योजना लागू है पालनहार। एकल नारी दिव्यांगता सु पीड़ित जो परिवार, अरे नाता गोता वाले माता हो कोई लाचार। ये योजना की बात ने ते घर घर पहुंचा तारो, ये योजना की बात ने ते घर घर पहुंचा तारो। सरकार का लोगा सुवी थे बतला तारो, बिन माँ बाप का टाबरा को कुण है जिम्मेदार, बिन माँ बाप का टाबरा को कुण है जिम्मेदार। इकी राजस्थान में योजना लागू है पालनहार। HIV सिल्कोसिस कुष्ठ रोग सु बीमार, माँ बाप ने पासी हो या उम्र कैद को भार। जरूरत वाला कागजा ने भी बनवा तारो, अरे जरूरत वाला कागजा ने भी बनवा तारो। जिकी पात्रता हो भी ने थे लाभ दिरा तारो, बिन माँ बाप का टाबरा को कुण है जिम्मेदार। इकी राजस्थान में योजना लागू है पालनहार, बिन आसरा का टाबरा ने पाले जो परिवार, बिन आसरा का टाबरा ने पाले जो परिवार। बने स्कूल को सारो खर्चो देवे पालनहार, अरे ज्यादा जानकारी चाहो ई मित्र तैयार। जन सूचना पोर्टल थे तो देखो बारंबार, बिन माँ बाप का टाबरा को कुण है जिम्मेदार। इकी राजस्थान में योजना लागू है पालनहार। तो सर जी, मैं अकेला नहीं गाता हूँ, मेरी टीम के 3-4 लोग हैं, वो सब हम
0: जी जी
1: इसको इसको म्यूजिक के माध्यम से पूरा, वो म्यूजिक बजता है हमारा, एक ढोल बजता है, हारमोनियम बजता है, और फिर उसके साथ में हम तीनों चारों लोग गाते हैं।
0: जी देखिए, टीम वर्क है और जीवन भी एक टीम है और हम भी आपकी टीम के पार्ट हैं। मधुबन रेडियो ने इसलिए आपको एक मंच दिया है कि आपका प्रतिभा और आपके कार्य को लोगों तक पहुंचे और आपका जुनून जो है वो लोगों तक पहुंचे और लोग जान पाए कि हम किस प्रकार से कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार, बेहतरीन। और आपको ये जुनून कहाँ से आया सत्यनारायण जी?
1: मैं जब गांव में था तो गांव में मैं सिर्फ 8वीं पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद में गांव में मेरा काम ये था कि किसी के भी शादी हो गई तो उसमें ढोल बजाना, उसमें गाने गाना, और मैं मेरे ढोल के माध्यम से, मैं मेरे गाने के माध्यम से लोगों की शादी रचाता था।
0: जी
1: फिर उसके बाद में मुझे समय काम करने का मौका मिला, फिर मैं संस्था में इधर आया तिलोनिया बैरफुट कॉलेज के अंदर। तो फिर इसमें मुझे विशेष, इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज पे काम हो रहा है, लेकिन मुझे जो काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो संचार विभाग सेक्शन में काम मिला। और
0: जी
1: संचार विभाग में काम करने से मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और बहुत खुश इस मायने में हूँ कि भले ही इससे अलग दुनिया में मैं अगर होता तो शायद ज्यादा पैसा कमाता और भी, या कहीं ना कहीं ज्यादा और आगे कहीं जाता। लेकिन मुझे यहाँ काम करने से, मेरे कठपुतली के माध्यम से, मुझे ये समझ में आया कि इंसानियत क्या है।
0: जी
1: आज मैं मेरी कठपुतलियों के माध्यम से ना केवल कि मेरी परिवार का आलन पालन भरण पोषण करता हूँ, मैं मेरी कठपुतली के माध्यम से गाँव में जाता हूँ तो सहज भाषा में पालनहार के पैसे बच्चों को कैसे दिलाएं, राशन कार्ड कैसे बनवाएं, आधार कार्ड किसी का नहीं बना हुआ तो उनको आधार कार्ड का कैसे बनवाएं, दिव्यांग लोग हैं उनका हम उनको कैसे सरकार से कैसे फायदे दिलाएं, तो ये सारा सब काम करने का एक हमें मौका मिला।
0: जी बहुत ही बढ़िया। तो हम चाहेंगे कि हम आपसे और तो बातचीत करते रहेंगे, कम्युनिकेशन और पपेट्री के बारे में और बारीकी से बात कर सके आपके साथ। हम चाहेंगे कि आप हमें मांड या फिर जो भी आपको पसंद हो राजस्थान के लोक संगीत से कोई भी गीत आप पेश करना चाहें तो आप पेश कर सकते हैं।
1: जी सर जरूर। तो फोक सॉन्ग में केसरिया बालम
0: जी, वो तो राजस्थान की, हाँ वो राजस्थान की पहचान है और
1: हाँ
0: दुनिया में अलग अलग हिस्सों से सुन रहे हैं, वो लाइक भी करेंगे इसको।
1: और सर जी मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई अगर हमें हमसे अगर कोई और कोई अलग का कोई गाना सुनना चाहे या आपके जो श्रोता जो भी श्रोता लोग भी सुन रहे हैं तो उनकी क्या फरमाइश है सर?
0: राजस्थान का फेवरेट केसरिया बालम।
1: केसरिया बालम तो केसरिया बालम गाए सर आपका अगर इजाजत हो तो आपके श्रोता जो भी सुन रहे हैं जरूर सर।

मैं तो पल पल पजवारू जीव पधारूनी मार दे सुजी

0: बहुत ही शानदार, बेहतरीन। मन तो हो रहा है कि आपको गले लगा लिया जाए, लेकिन रेडियो की एक सीमा है। सत्यनारायण जी, आपने केसर कर दिया राजस्थान की इस भूमि को, और डेफिनेटली केसरिया पालम। जो लोग श्रोता हमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं हमारा फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8, और आपके लिए हमारे साथ थे आज सत्यनारायण राव जी। नमस्ते श्रोताओं, मेरा नाम है शरद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून। आप हैं हमारे फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन के साथ, और आपकी फ्रिक्वेंसी है 107.8 FM, अरावली की सर्वोच्च पहाड़ियों और पहाड़ियों पे बिखरी हुई हरी घास और वनस्पति, एक स्पाइरल रोड, हमारे शांतिवन में फैली हुई एक शांति, एक सुरमई शाम। और हमारे साथ हैं हमारे सत्यनारायण राव। सत्यनारायण राव जो हैं वो सरवाड़ से आते हैं, अजमेर के एक हिस्से से, जो कि एक सब डिविजन भी है, एक ब्लॉक है, पंचायत समिति है। सरवाड़ बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे सत्यनारायण राव से, और वो जाने जाते हैं अपनी पपेट्री के लिए। पपेट्री की शुरुआत सत्यनारायण राव, आपकी जिंदगी में कैसे हुई?
1: पपेट्री की शुरुआत सन 1981 से हुई विभाग की, पर मैं 2014 से पपेट्री सेक्शन में काम करने लगा। और मैं कठपुतलियों के माध्यम से, क्योंकि कठपुतली के माध्यम से इसलिए कि अखबार में जो लिखी हुई बातें थी, उस बातों को गांव में ग्रामीण लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, सरकारी योजनाओं को, अखबार में लिखी हुई बातें को, हमारे हक हमारे अधिकार की बातों को, इसको अपने सहज भाषा में हम कैसे गांव में पहुंचाया जाए, उसको लेके पपेट्री का विभाग चालू हुआ और विभाग में मैं काम करता हूँ।
0: विभाग से मतलब है आप जिस संस्था में काम करते हैं उसके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं। आपने पपेट्री को ही क्यों चुना कम्युनिकेशन के माध्यम के रूप में? क्या आपको लगता है कि आज भी एक सशक्त माध्यम है संचार के लिए?
1: जी जी जी बिल्कुल, इसीलिए पपेट को हमने चुना। और क्योंकि ऐसे अगर हम गांव में जाके अगर बात करें, जन चेतना की बात करें, तो शायद लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन है क्या है। तो उस दृष्टि से मैं पपेट के माध्यम से जब जाता हूँ, तो उसमें चाहे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे और पुरुष लोग हैं, चाहे वो देश में किसी भी कोने के रहने वाला हो, किसी भी पहनाव को पहनने वाला हो, हम अपनी सहज भाषा में पपेट के माध्यम से अपनी बात को कैसे रखें, एक तो ये माध्यम हुआ। और पपेट में क्या है कि पपेट में सर मतलब ये मतभेद नहीं है कि सिर्फ महिलाएं आएगी या पुरुष लोग आएंगे या बच्चे आएंगे, उसमें सभी लोग आते हैं पपेट शो देखने के लिए। और पपेट शो के माध्यम से, गाने के माध्यम से, गाने के साथ साथ पपेट शो के साथ साथ हम गाँव में क्या कमी खामी है, उस बात को आसानी तौर से पपेट से रख देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में पपेट एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।
0: जी, आपको क्या लगता है कि पपेट्री ने पिछले कुछ सालों में, या कहें कि कुछ कुछ कुछ सैकड़ों सालों में, अपने रोल में, मतलब कि अपनी भूमिका में क्या बदलाव किया है?
1: पपेट को लेके या अपना
0: हाँ, आप मेरे सवाल
1: अपनी
0: को मैं मेरे सवाल को स्पष्ट करता हूँ। पिछले कई वर्षों में पपेट्री ने अपनी भूमिका में क्या बदलाव किया है?
1: पपेट ने अपनी भूमिका में ये बदलाव किया है कि जैसे हम बात करें राजस्थान के इतिहास की, तो जैसे मैंने पिछली बार में बताया था कि स्टरिंग जो पपेट हुआ, वो स्टरिंग पपेट राजा महाराजाओं के बखान के लिए, उनका हिस्टोरियस के लिए काम में लिया जाता था। तो पपेट एक हमारा राजस्थान का एक पारंपरिक ट्रेडिशनल मीडिया रहा शुरू से,
0: जी
1: लेकिन हमने उस वाली पपेट को ब्रेक दिया। फिर उसके बाद में वही हिस्सा हमने दूसरी दृष्टि से अपनाया, एजुकेशन से, कि
0: जी
1: एजुकेशन का मायना क्या है, शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, भारत का संविधान हमें क्या देता है, हमारा हक हमारा अधिकार क्या है। तो तमाम सारे इश्यूज को कहने के लिए सहज भाषा में हमने ग्लव पपेट का इस्तेमाल किया। इसलिए पपेट, क्योंकि जब राजा महाराजों का एक दरबार लगता था, जैसे मैं बात करूं कि आज के तकरीबन 400 साल 500 साल पहले, ऐसे मैंने मेरे सीनियर लोगों से सुना है कि जिस
0: जी
1: जमाने में दरबार लगता था, उस टाइम में वह लोग अपनी बात को कैसे उन राजा तक पहुंचाया जाए,
0: जी
1: तो उसको पपेट के माध्यम से कठपुतली एक खेल के माध्यम से वो अपनी भाषा में राजा साहब को, क्योंकि आने जाने की अनुमति तो सिर्फ उन्हीं लोगों की थी जो कि अपने राजा के निकट जो लोग रहते थे,
0: जी
1: बाकी लोगों को पीने का पानी की समस्या है कि आने जाने का साधन नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो ऐसी बातों को राजा तक कैसे पहुंचाया जाए। तो राजा को एक खेल के माध्यम से कि दरबार आपके इसमें हम एक खेल दिखाना चाह रहे हैं, उस खेल के माध्यम से फिर वो उस बात को कठपुतली के माध्यम से रख देते थे कि सर आपने जो सुना है वो पर्याप्त नहीं है, मेरे लिए पीने का पानी नहीं है, या इधर में इस दरबार में, इस नागौर में या पाली में या बाड़मेर में या जैसलमेर में बात करें तो साहब इधर में अकाल पड़ा हुआ है, पानी की सिचुएशन अभी बहुत डाउन है। तो इस बात को राजा तक कठपुतली के माध्यम से उस टाइम में रखा करते थे, और आज हम उससे हट के ग्लव पपेट के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना क्यों जरूरी है, किसका राशन कार्ड बना हुआ है, किसका आधार कार्ड बना हुआ है, सरकार स्कीम्स बहुत अच्छी बना देती है परंतु वो बेनिफिट गांव में उतरा कि नहीं उतरा, तो तमाम सारे इश्यूज को कहने के लिए हम पपेट का अपनाया और पपेट के माध्यम से आज भी प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। तो ये हमारा भूमिका रहा और इसमें ये बदलाव आया।
0: जी निश्चित रूप से पपेट्री ने अपनी भूमिका ही नहीं बदली है बल्कि अपनी रेलेवेंस मतलब कि अपनी सार्थकता को भी बनाए रखा है। यह बात आपसे बेहतर तो कौन बता सकता है। तो आज के दिन जब आप पपेट्री को लेकर या पपेट्री के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं, संचार हक अधिकार की बात करते हैं, वो हक
1: जी
0: अधिकार की बात क्या है? वो संविधान की बात है? वो संविधान की बात क्या है जो आप लोगों के साथ संप्रेषित करते हैं?
1: बात करते हैं, जैसे गांव में पालनहार के पैसे हुए
0: जी
1: कि पालनहार किनको मिलना चाहिए, कौन किन किन बच्चों को कितने पैसे मिलते हैं, पीने के पानी के ऊपर बात हुई, अस्पताल में दवाई नहीं है तो उस पर बात हुआ, सरकार योजना बनाती है उस योजना का बराबर गांव में बेनिफिट उतरा के नहीं उतरा, जैसे पीएम किसान निधि योजना के पैसे हुए, बुढ़ापे की पेंशन के पैसे हुए उनका वो योजना हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हम गांवों में जाके बातों को सहज रूप से रखते हैं।
0: जी जैसे आपकी रंग बिरंगी पपेट्री जो है
1: जी
0: उसके पीछे नेपथ्य में एक साफ सुथरा पर्दा है सफेद रंग का, और वो
1: जी
0: कंट्रास्ट जब आता है तो बड़ा हमारी पपेट बड़ी निकल के आती है और संदेश बड़ा स्पष्ट समझ में आता है। तो ऐसे ही हक अधिकार की बात के पीछे एक संविधान का साफ सुथरा पर्दा है, या कहें कि एक आसमान है हमारे संविधान का। तो वो संविधान क्या है जिसकी बात आप लोगों तक लेके जाते हैं?
1: संविधान की बातें उसमें जो लिखी हुई बातें हैं कि हमें संविधान तो खैर बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं संविधान का एक छोटा सा हिस्सा बताऊंगा। जैसे संविधान की बातें हम उसमें गांवों में जाके आज बेटा और बेटी में भेदभाव है कि नहीं है, आज बराबर रूप से लड़का लड़की स्कूल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या आज भी समानता है कि नहीं है, क्या आज भी सब बराबरी से आजादी में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बंधुता से रहते हैं कि नहीं रहते हैं, भाईचारा है कि नहीं है। तो इन सब बातों को लेके हम गांवों में इन रूपों को लेके गांवों में जाते हैं और संविधान की बेसिक चीजों को हम गांवों में उतारने की कोशिश करते हैं कठपुतली के माध्यम से।
0: आप संविधान का कोई गीत हमें पेश कर सकते हैं?
1: संविधान का
0: जी
1: बिल्कुल सर बिल्कुल
0: जी
1: संविधान के ऊपर हमने गाना बनाया है हमारी टीम ने, उस टीम के एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ, तो वो गाना मैं आपके सामने पेश करूंगा। वैसे हमारे 3-4 लोगों की टीम है, वो गाना बनाते हैं और गाना सुनाते भी हैं, तो उसमें
0: आप चाहे तो जिन्होंने संविधान के इस गीत को लिखा है आप चाहे तो उनके नाम ले सकते हैं मंच पे।
1: हाँ जी जी रामनिवास जी, मैं जरूर लेना चाहूंगा, मेरे सीनियर पति हैं रामनिवास जी, वो उन्होंने ये गाना बनाया है और वो गाना है जो मैं आपके सामने गा के पेश करूंगा सर।
0: जी
1: संविधान संदेश को संविधान संदेश को दिल से अपनाएंगे हम, भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, रंग रूप भाषा और वेश रीत पंत हो भले अनेक, मतभेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सब नेक, लोगों के लिए लोगों से बना, लोगों का अपना प्यारा देश, हम न्याय समानता, हम न्याय समानता आजादी बंधुता लाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, गरिमा और समता का सपना पूरा करने की, क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने की, हो आजादी हो सबको अपनी बात रखने की, हो आजादी हो सबको अपनी बात रखने की, हम संविधान के मूल को, हम संविधान के मूल को हर वक्त बचाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे।
0: जी श्रोताओं, जो हमसे देर से जुड़े हैं, हमारे साथ हैं सत्यनारायण राव जो सरवाड़ अजमेर जिले से आते हैं। आप न केवल एक जुनूनी हैं, एक युवा हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पर आप संविधान, हक, अधिकार और सरकार की योजनाओं को पपेट्री के माध्यम से ग्रामीण भारत में लेकर जा रहे हैं। आपका जुनून काबिले तारीफ है, हम उसको सलाम करते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM, हमारे साथ सत्यनारायण राव। सत्यनारायण राव जी, आपने बहुत बेहतरीन गीत गाया, हम संविधान का मान बढ़ाएंगे, एक संविधान का एक गीत आपने हमारे श्रोताओं के लिए रखा। सत्यनारायण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पपेट्री को लेकर जो आपने एक ऐतिहासिक परिदृश्य हमारे सामने रखा, पपेट्री किस प्रकार से आज के दौर में अपनी भूमिका को बदल रही है परंतु सार्थकता भी लिए हुए है, ये कैसे संभव हुआ है?
1: पपेट्री क्योंकि गांव में बहुत अनपढ़ लोग रहते हैं जो कि बहुत बेसिक उनको मालूम है कि, लेकिन उनकी नजर में कठपुतली क्या है, कठपुतली सिर्फ एक शो माना जाता है कि एक कठपुतली, यहाँ एक कठपुतली चल रहा है, एक कलाकार है, और कठपुतली एक तेजाजी के खेल के लिए भी यूज किया जाता है, अमर सिंह राठौड़ के खेल के लिए भी यूज किया जाता है, जगदेव कंकाली के लिए भी खेल के लिए भी यूज किया जाता है, सिर्फ गांव में कठपुतली वहां तक ही सीमित है। लेकिन आज कठपुतली हक अधिकारियों की बातों को लेके, पीने के पानी के इश्यूज के ऊपर बातों को लेके, यातायात के साधन के ऊपर, सड़कों के ऊपर, तो आज कठपुतली गांव में सब लोग इस बात को समझने लगे हैं कि कठपुतली ना केवल एक मनोरंजन है, कठपुतली हमारा एक हिस्सा है, और कठपुतली के माध्यम से हम हमारे सहज भाषा में उस बात को रख सकते हैं। ये कठपुतली का एक बड़ा बड़ा,
0: हाँ, एक मोटी समझ है। पपेट्री एक एंटरटेनमेंट ही नहीं, एक इंफोटेनमेंट का माध्यम भी है, इंफॉर्मेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है। तो ऐसी कोई घटना जो आपके मानस पटल पे हो और आपको याद हो, जिसने आपको न केवल आपको पपेट्री का क्या जीवन का साथी बना दिया और साथ ही पपेट्री के माध्यम से आपको भी एक पहचान मिली है इस समाज के अंदर और इस देश के अंदर, तो ऐसी कोई घटना जो आपके जीवन में हुई हो बताना चाहें हमारे बीच में?
1: सर, मैं एक गांव का रहने वाला आदमी हूं और मैं हमारे गांव में छोटी सी प्राथमिक स्कूल है, वहां का मैं पढ़ा लिखा हूँ, पर आज मैं मेरी कठपुतली के माध्यम से आज मैं बिलाई यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, बड़े बड़े कॉलेजों में जाता हूँ, और इस बात को लेके मैं सरकार तक गांवों की बातों को शेयरिंग करने का और सरकारी योजनाएं उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का ये मुझे बड़ा अवसर मिला। आज मैं, मेरे को खुद को नहीं मालूम था कि भारत का संविधान क्या है, लेकिन आज मैं बेसिक कि भारत का संविधान हमें क्या क्या चीजें देता है, इन बातों को लेके मैं आज गांव गांव में, शहर शहर में, वहां पे मैं जाता हूँ, तो मैं मेरे जिंदगी में मेरे एक बहुत बड़ा मेरी कठपुतली बहुत हिस्सेदार बनी मेरा, कि आज मैं उसी के माध्यम से मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरी कठपुतली लेके जाता हूँ और उसी के माध्यम से मैं अपनी बात को रखता हूँ।
0: जी, मैं इस मंच से आपसे ये जानना चाहूंगा कि न केवल आपने हक अधिकार की बात आपने की है, हक अधिकार के गीत आपने सुनाए, सरकारी योजनाओं को लेकर भी आपने प्रचार प्रसार किया, कोई ऐसा गीत हमारे बीच में रखना चाहें जो सामाजिक जागरूकता या सामाजिक चेतना गीत जिसे कहते हैं, आप जो लिंग भेद या जातिवाद को एड्रेस करता हो, हमारे देश में जो पसरा हुआ है उसको लेकर अगर गीत आपके बीच आप हमारे बीच रखना चाहें तो?
1: जी सर, बिल्कुल।

0: किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। क्या बात है सत्यनारायण जी, बहुत ही बेहतरीन गीत और बहुत ही शानदार प्रस्तुति। सत्यनारायण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण भारत में आज की जो समस्याएं हैं, जो आज के हालात हैं, हमारे देश में जो हालात हैं, उसको आप अपने संचार के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बेहतर तस्वीर बन जाए, क्योंकि तो जागरूकता ही सब हर चीज की दवाई है, और जागरूकता के माध्यम से ही आप कोशिश कर रहे हैं कि समस्याएं जो हैं हमारे देश में वो कम हो और हमारे समाज में प्रगति आए और हम एक प्रगतिशील देश के रूप में विकसित भारत बने। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के अंदर आपको क्या लगता है कि पपेट्री जो एक कला है, जो कई बार ऐसा लगता है कि बदलते दौर में और इस समय में वो लुप्त होती जा रही है ये कला, और युवाओं ने इसको उस आतुरता के साथ नहीं अपनाया जैसा कि पूरे विश्व में अपनी कलाओं को लोग हम सहेजने की बात करते हैं, तो आपका क्या मानना है इस बारे में?
1: कठपुतली धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे हैं सर, क्योंकि जिस जमाने में राजाओं का राज था उस जमाने में तो ये पपेट चलता था, लेकिन आज तो राजाओं का राज भी गया, तो धीरे धीरे क्या कि कठपुतली और परंपरागत, जैसे उस जमाने में हमारे यहाँ पे जो लोकल देवी देवता है उन देवी देवताओं को भी प्रचार प्रसार करने में कठपुतली का बहुत बड़ा एक हाथ रहा, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ये कला खत्म होने के कगार पे आ रही है। तो अभी भी ये बहुत सारा काम बाकी है कि इस कला को कैसे वापस जिंदा रखें और इस कला से हम कैसे लोगों को एक मैसेज दें, इस बात पे काम करने का अभी भी जोर है सर।
0: जी, नहीं, निश्चित रूप से हम लोग भी कुछ ना कुछ आगे की कुछ योजनाएं साथ में बनाएंगे, प्रयास करेंगे कि रेडियो मधुबन के मंच पर हम कुछ और पपेट्री संबंधित कार्यक्रम कर सकें और युवाओं तक इसके बारे में एक अवेयरनेस पहुंचे, एक समझ बने। हालांकि ये तो कला है, इसको तो अपने उंगलियों से ही सीखना होगा और गीत संगीत के माध्यम से ही इसको प्रस्तुत करना होगा। तो और आपको तो पता ही है कि हमारे समाज में कला को लेकर एक रुझान बना रहे युवाओं में, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। मैं चलते चलते आपसे कुछ मांड या फिर ऐसा फोक गीत जो मारवाड़ी में आप सुनाना चाहें हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर। तो सर मैं अपनी ओर से ही रखूं या आप कुछ डिमांड करेंगे सर, थोड़ा डिमांड के अनुसार से जो आप चाहते हैं या?
0: एक गीत जो जेंडर को लेकर, या कहें कि एक दिखाता है कि पत्नी कैसे अपने पति से सीधे बात नहीं कर पाती है और उसको उसकी बहन को बोलती है, मतलब भाई सारा वीरा, तो भाई सारा वीरा भी सुना सकते हैं आप हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर जरूर।

0: जी श्रोताओं, जयपुर की जो चुनरिया है, जो जिन पर एक हमें काम दिखता है, हमें गोटे का और साथ साथ उस पर डेकोरेटिव वर्क दिखता है, तो उस चुनरी की डिमांड हमारी गायिका जो है, हमारी जो इस गीत की जो जिसने भी गीत पहली बार गाया होगा वो डिमांड कर रही है अपने अपने हस्बैंड से, बट वो सीधा नहीं बोल पा रही है, तो वो कह रही है बहन के जो भाई हैं वो आते समय वो चुनरी लेकर आया। खैर, तो एक अच्छी बातचीत हमारे साथ रही, और एक पार्ट टू में आज हमारे साथ थे सत्यनारायण राव, और आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, और रेडियो मधुबन में ऐसे ही हम इसी प्रकार के जुनूनियों से मिलते रहेंगे, और जिनका जुनून अपने उरूस पर जब पहुंचेगा तो रेडियो मधुबन उनके साथ होगा। थैंक यू वेरी मच सत्यनारायण जी, आप हमारे बीच में आए और आपने एक समय दिया और पपेट्री की बारीकियों से हमें अवगत कराया। निश्चित से हम फिर से मिलते रहेंगे, आपकी ज्ञान और आपकी इस कला को आप सहेज के रखें और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर जरूर करें। थैंक यू वेरी
1: बिल्कुल,
0: मच
1: और
0: सर।
1: सर आपको भी और मेरे सभी श्रोता जो भी सुन रहे हैं उनको सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करने चाहूंगा। आपने आपका बहुत ही अमूल्य कीमती समय मेरे लिए निकाला, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
0: आपका आभार सत्यनारायण जी, नमस्ते।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति।
1: मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, ढाणी ढाणी में जाते हैं, फली में जाते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलता है। कोई परिचय नहीं होता है, अचानक में जाते हैं तो हमारा भाई बंधु मिल जाते हैं, आई लोग भी मिल जाते, कभी बाप लोग भी मिल जाते हैं। तो आज खासकर हम धमसरा ग्राम पंचायत में पहुँचे, धमसरा के भाई बहन हम जो बात किए बहुत अच्छा लगा। कौन सी फली का नाम क्या है? भुमरिया फली। तो धमसरा का ग्राम पंचायत में भुमरिया फली में हम पहुँचे, यहाँ का जो निवासियों से मिले और खासकर भाई लोग यहाँ पर अपना खेती भी करते हैं। इसके साथ साथ बच्चे को जब हम बात किए तो बहुत पढ़े लिखे में बहुत होशियार है, सब पढ़ाई लिखाई किए हैं, कोई MA तो कोई BEd, आश्चर्य हो गया। मतलब ये शहर से भी कम नहीं है ग्रामांचल लोग। तो आज इस कार्यक्रम में जब भुमरिया फली में पहुँचे तो यहाँ का एक बुजुर्ग वृद्धजन जिसको हम सम्मान करते हैं, सलाम करते हैं, आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, तो उनको राम राम करते हैं। राम राम। तो

0: नाम
1: बाबू
0: और गाँव रो गाँव रो फलर हो नाम
2: बुमरियापल्ली
0: में हम पहुंचे और तो बाबूजी आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है। तो क्या क्या खेती करते हैं? खेती क्षेत्र क्षेत्र में
1: मक्की बापता था, मक्की और बाजरी, हमने सवला छोला बीड़े सब चीज रे, टमाटा अपने गुआर फड़ी
0: ये सब खेती करते हैं।
1: हाँ
0: उसमें हो जाता है। और घर में छोकरा छोकरी कितना है? लड़का लड़की
1: छोकरा छोकरी कितना? तीन
0: तीन लड़का और लड़की
1: लड़की से
0: चार, सात लोग पूरा, सात लोग को पूरा पढ़ाई लिखा है सभी को?
1: तीन बढ़िया,
0: तीन बढ़िया। अरे वाह, इतना लोग को पढ़ा है, इतना बड़ा परिवार है, फिर भी सब मिलजुल कर रहते हैं, खेती करते हैं और खुशी लगता है क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में बहुत सारा आता है, सबको लेकर चलना है, ये कम बात नहीं है। क्योंकि कॉलेज हो गए, सबका संस्कार अलग अलग होता है, कोई पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ है, और कोई करना चाहते हैं, कोई करना नहीं चाहते हैं, फिर भी एक जिम्मेदारी माँ बाप का होता है,
1: सही बात,
0: सबको संतुष्ट रखना होता है, सभी बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। फिर भी बहुत अच्छा जानकारी दिए, तो बच्चों को पढ़ाया, जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ाया, जो नहीं पढ़ना चाहे उसको खेती में
1: लगे,
0: खेती में लगे, खेती भी जरूरी,
1: खेती करी भी रहे, एक अन्य लगे भी खेती करी,
0: जी जी
1: लगी भी नौकरी। ये बात है नहीं।
0: तो बर्तन को देखते हुए, संसार को देखते हुए आपका जमाना में और आज का में क्या अंतर
1: है? हमारा जमाना में ये भी है, वो तो अपने कुआ था, हल होते हल खेलता, काटी खेलता, तब आना जमाना मोड़िया भंडवार वाला आ जाएगा, आना जमाना में ट्रैक्टर आई हो, लाइट आई, हमारा माँ हमारा खेती करता के उन्होंने कुआ था, बड़ी कुआ और मारे वाला वही कुआ करता था, बलद खेलता था,
0: बल्द से पानी निकलता,
1: हाँ पानी बलता तो करता था,
0: अब किए सब काम,
1: बस वो काम करता था, एवं मोड़िया रह रहे, बिजु आज आज अपने वाला गे उन बिजु आज राजे वाले राजे हैं नीचे, एवं बूढ़ा पर अपने जागो, अब बूढ़ा पढ़ने जा, अब बूढ़ा पढ़ने जा, तो अपने वो कोई तो मन ये वही मोड़ जा क्या पाये, मेरा दो चेते कर पे, एक दो ही कर पे आगे, वो ही कर पे, ये बाप क्या थम बजी क्या मैं क्या कर पाई कर पे, तो आप वो क्या नहीं नहीं थे नहीं करे वाले मगे ना करो, अपने तो नहीं डे इडे। ये बात है,
0: समय का खेती और आज के खेती में बहुत अंतर,
1: हाँ
0: रात दिन का फर्क है,
1: सही सही बात,
0: तो कहने मतलब समय अनुसार बदलना पड़ता है,
1: सही
0: प्रकृति भी साथ नहीं देता, पहले तो प्रकृति पानी बारिश होता था, अभी तो बारिश कम हो रहा है, जमीन भी बंटवारा हो गया, पहले ज्यादा था,
1: उम्दा भी,
0: तो ये भी एक क्या बात है, लेकिन हम सबको मिलकर चलना होता है समय को देखते हुए। और वृद्ध जन जो होते हैं, वृद्ध मैंने जो हमारा ढोकरा हो जाते हैं ना, ढोकरी हो जाते हैं, तो उनका पास बहुत अनुभव रहता है, क्योंकि वो किए हुए जीवन में देखे हुए संसार को, जमीन को देखे हैं, उस हिसाब से उनसे जब समय मिलता है उनका पास बैठने से वो हमको बताएगा, अनुभव बताएगा, जिसका आधार से हम अपना जीवन को, अपना परिवार को भी, हमारा संसार को भी चला सकते हैं, क्योंकि वो तो चला जाएंगे, हमको जाना है, किंतु वो पहले चला जाएगा, तो हम उनका पास जो शक्ति है, जो खजाना, जो अनुभव हम कैसे लेंगे, तो जब बैठेंगे तब हमारा वो काम निकल पाएगा। बहुत अच्छा जानकारी दिए। और आज का बच्चों को देखते हैं, और कभी भी आप बच्चा था, अभी छोकरा था, कभी कभी छोकरा था ना, उसमें पढ़ाई होता था, अभी जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं, आप भी जाते थे स्कूल में,
1: अब
0: ये लोग जा रहे,
1: आप तो गतु किया इन्हें, आप तो पूरा डोकरा आगे डोकरा दबे गए, मैं ये ढूंढता ही
0: नहीं, लेकिन
1: बहुत बहुत जी छोकरा मिल जाए आगे,
0: अभी तो बच्चे तो कितना सुंदर में पूरा ड्रेस पहन कर, पूरा जीन पैंट शर्ट पहन कर सब पढ़ रहे, लेकिन आपका समय तो वो नहीं था, लेकिन अंतर है,
1: जितने अंतर हमारी होते थे, हमारा कोई खोद रहा नहीं है, वो मकम वाड़ी है, वो कोई भारी की दो वो ठीक भाई दूसरों तो आगे डूब रहे,
0: ठीक है, बस बहुत बहुत धन्यवाद इतना जानकारी दी। आपका समय में भजन कीर्तन करते थे, गीत गुब्बारा गाते थे, घर से गीत गाते थे,
1: गीत गाता था,
0: कभी गणगौर त्योहार हो,
1: मेला था,
0: मेला जाते थे, उसमें गीत गुब्बारा गाते थे, शादी में गाते थे, है
1: ना, वो आगे डोकरा गीत गाए था, वो कोई गीत नहीं कोई थी, आगे डोकरी गाई थी गीत, अपने मेला रहा, मेला में गाए थे, गणगौर लेता,
0: ये जो बगरिया फली में, ये जो फली धमसरा में पहले सब कैसे था, आज तो पूरा घर द्वार दिखाई दे रहा है सभी लोग, उस समय कैसे था, आपका समय में जो आप आप जब इस तरह
2: पहले
1: की स्थिति होती है, नहीं होती, ये तो स्थिति होती जी दीवार ठीक भाई।
0: इसे रास्ता बड़ा अच्छा था, रास्ता जिसे जाने आने
1: ना ना रास्ता ही ना कोई नहीं, डोड़ी सीधी और रास्ता है बस, ये रही डोड़ी इस तरह पग डोड़ी, पग डोड़ी।
0: फिर इसमें खेत में रहते थे, जंगल में रहते थे आप लोग?
1: आपने कहा कि मैंने एक मौजू अब तो के तो ऊपर नहीं जाता, इस पे तले मुड़े नहीं जाता है, जोड़ी करें जोड़ी में करें नहीं जाने हौसलो करता था। वो तो मैंने सोचो आज मुँह बा बेहे नीडो चलो मैट क्यों हमारा जाने उन्हें मैं खेती हम करता क्या उन्हीं बारे में कोई मजा नहीं होता। फिर वो मोटिया अपने जो धीरे धीरे धीरे धीरे हमारा कुआ का बोध करता मूड़ा कर, अपने माड़े बनता एरू धंधो तो कोई हम एरू थोड़ू भापता था, थोड़ू भापता था आगे खेतों कोई कोई गिनती नहीं होती, आज बे बे है कि तीन है एतरू भापता था खावा एतरू बस बीजू छूटू कौन भावे एतरू।
0: जी जी बहुत अच्छा, तो बाबूराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते इतना जानकारी दिए। उनका पीरियड में जो समय था जब उनका बचपन का याद कर रहे हैं और बच्चों को आज सुना रहे हैं, अपने बच्चे भी सुन रहे हैं और रेडियो का माध्यम से भी जो जो माता पिता ऐसे बच्चों को अपना अनुभव आधार से बताएंगे तो वो लोग भी कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि जो इतिहास है गाँव का जो पृष्ठभूमि है पहले जैसे और आज बहुत फर्क है, समय बदल गया और हम सब अपने को भी बदल दिए, लेकिन शुरुआत में जो शुद्धता गांव का जो वातावरण गांव का जो एकता मिलता था अभी और देखने को बहुत अच्छा लगा। तो चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। राम राम, धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते। राम राम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है, क्योंकि गांव और अंचल में जब जाते हैं, गांव का आसपास में जो गतिविधि हो रही है, सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो हमेशा कोशिश करता है, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा ही परिचालित होता है, और सामुदाय का आवाज़ उनका पहचान हो, क्योंकि सबको एक मंच मिले, एक स्टेज मिले, जिसके माध्यम से अपना मन का बात को, दिल का बात को सरकार तक पहुंच पाए। सरकार जब सुनते हैं उसी हिसाब से स्कूल में हो चाहे पंचायत में हो ऐसे स्कीम देते हैं, योजनाएं निकालते हैं, क्योंकि जमीन स्तर पे जो चीज़ हो रही तकलीफ हो, पढ़ाई में जो असुविधा हो, कि आगे के लिए जो लक्ष्य रखें उसको लेने में भी दिक्कत हो रहा है, तो इस माध्यम से वो सरकार तक पहुँचाएगा, और सरकार इस बात को जब सुनेगा तो उसी हिसाब से योजनाएँ इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, तो बहुत खुशी मिलता है। गांव और अंचल में हम जाते हैं, जब चाहे किसान वर्ग हो, चाहे प्रशासन वर्ग हो, चाहे किशोरियाँ हो, चाहे हमारा आई लोग हो, सभी वर्ग से मिलते हैं, समाज सेवी हो, रोजगार संबंधित हो, सभी विभाग से मिलने के बाद उनका जो मत मन का बात को रखते हैं, तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ एक किशोरी है, पढ़ी लिखी है, और नाम तो पहले मुझे बता दी, ये सुनीता है, क्योंकि यहाँ का सुनीता तो नंबर वन है, फर्स्ट क्लास नाम, जहाँ भी जाते हैं सुनीता और सुरेश अंचल का फेमस नाम है सुनीता और सुरेश, तो सुनीता को स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से, क्योंकि हम जब बुमरिया फल्ली धमसरा में जब पहुँचे तो यहाँ के एक किशोरी हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है। सुनीता कहाँ तक पढ़ाई किए?
2: दसवीं,
1: अभी इस साल 10th क्लास में पढ़ रहे। अच्छा, कौन सा स्कूल का नाम बताओ? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगथला। प्रिंसिपल कौन है? सत्येंद्र गोल गुजार। वहाँ पर भी सुनीता मैडम भी है के हैं तुम तो सुनीता है और एक सुनीता मैडम भी है ना? सुनीता मैडम को देखे है ना? क्या पढ़ाती है सुनीता मैडम?
2: इतिहास।
1: इतिहास, कितने मैडम है तुम्हारे स्कूल में? सुनीता मैडम तो एक हो गई, और कोई मैडम?
2: प्रेमलता मैडम, विनीता मैडम,
1: प्रेमलता मैडम, नीता मैडम मैडम और सुनीता मैडम, और बाकी सब सार। अच्छा, सबसे आपका पूरा फेवरेट प्यारा शिक्षक व शिक्षयित्री कौन है? आपको बहुत आकर्षण होता है वो टीचर का व्यवहार, उनका पढ़ाई करने का शैली और बातचीत, कौन आपको अच्छा लगता है? विनीता मैडम। ताली बजा भाई विनीता मैडम के लिए, जहाँ भी सुन रहे हैं, हमारा विनीता मैडम जैसे सभी बने और हमारा सुनीता को अच्छा जैसे लग रहा, सबको अच्छा लगे। और सुनीता बढ़ेकर तुम क्या बनेगी? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, कार्यकर्ता और
2: मैडम।
1: घर में और कौन कौन है?
2: भाई बहन।
1: बड़ी बहन है, बड़ी बहन, और आप दो बहन हैं। अच्छा, बढ़िया से पढ़ाई करो, है ना? और कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा, कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है, जैसे कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है, आप तो विनीता मैडम बता दिए, और कौन सा सब्जेक्ट विषय, इतिहास, गणित, इंग्लिश, कौन सा विषय आपको अच्छा लगती है?
2: सभी लगती
1: है। वेरी गुड। स्कूल में गीत वगैरह गाते हैं आप?
2: नहीं।
1: अपना लोकगीत, घरेलू गीत
2: नहीं का।
1: गाते। कौन सा त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं सब लोग मिलकर?
2: होली।
1: होली, अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। और स्कूल

0: में क्या मिलता है? साइकिल
1: मिलती है।
0: साइकिल? अरे वाह, चलाती साइकिल? चलाती
1: जी।
0: अरे कितने साल हुआ साइकिल मिलती हूँ? एक साल।
1: नाइन।
0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनीता को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और कुछ जानकारी लेंगे जो लास्ट में आएंगे, लेकिन अच्छा प्रस्तुत देंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वो आएंगे। उनका परिवार है बाबूराम का, बहू है, बेटा है, सब पढ़े लिखे, लेकिन उनसे भी बात करेंगे, उनका दिल का बात, मन का बात। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है कि परिवार का जो भाषण सही में देखने को मिलता है और होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि माँ बाप बेटा बेटी बहू पोता पोती सब रहते हैं एक जॉइंट फैमिली में। एक समूह रूप में देखना हो तो घर से समाज में देखो, बहुत अच्छा से रहते हैं। जो भी दाल रोटी मिलता है रोटा मिलता है उसमें खाकर जीवन गुजारा करते हैं। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपना देह अभिमान नहीं रहता है, एक परिवार का भावना दिलाते हैं और चाहे सास हो चाहे ससुर हो चाहे पति देव हो सबको सम्मान देकर घर को चलाना ये एक कला बहनों से सीखना पड़ता है, क्योंकि बहनों के पास इस तरह कला रहता है, भाई लोगों के पास इतना कला नहीं रहता, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड भगवान का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ है बहनों को। क्योंकि भाई के पास तुरंत गुस्सा हो जाते हैं बा इधर उधर काम दम करने, घर का जो संभालने का काम जो लक्ष्मी कहते हैं ना, घर का लक्ष्मी बहू होते हैं बेटी होते हैं, वो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उनको भी स्वागत करते हैं। बाबूराम जी का बहू है और हमें खुशी है इस तरह बहू जो बढ़ चढ़ कर हमारे कार्यक्रम को सजाएंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगा। चलिए अभी सुनते बाबूराम जी का जो बहू है तो वो भी पढ़ी लिखी है, वो अपना बात खुद बताएंगे, हम कम जानते उनका बारे में, मैं बताऊँगा तो कम बता पाऊँगा, लेकिन वो खुद जो बताएगी तो बहुत कुछ बता पाएगी।
2: मेरा नाम अंजा कुमारी, गांव का नाम दामसरा है, उमरेवली, और मैं एमए की है फाइनल।
1: ओ, ओपन से किया?
2: हाँ, प्राइवेट है।
1: प्राइवेट में किया। और बीए कहाँ पर किए थे? बीए
2: मोहनलाल सुखड़िया गुरु।
1: बीए काम कंप्लीट किए थे?
2: पीयर में बीए थे, कर लिए
1: पीयर में जो थे। शादी का कितना साल हो गया?
2: पाँच साल
1: हो गया। पढ़ाई में इतना रुचि क्यों आपका?
2: क्योंकि सर आगे सीखने को कुछ न कुछ मिलेगा और नौकरी मिलेगी, पढ़ाई करेंगे तो परिवार सुधरेगा पूरा।
1: अरे वाह, आपका प्यार घर?
2: चौहाना की फली चनर।
1: चौहान की फली, वो भी बहुत अच्छा गांव है और आप उसी गांव से आए हैं तो अच्छे ही होंगे, क्योंकि गांव के जो व्यक्ति जो जन योग्य जन का चलते गांव का नाम रोशन होता है। आपका बचपन, पढ़ाई और शादी, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आया होगा।
2: हाँ।
1: बहुत मेहनत किए होंगे, सबको सम्मान देकर खुश अभी भी आप इतना खुशी से बोल पा रहे, कोई इतना बोल नहीं पाते आजकल जो छोकरी हैं, लेकिन आप इतना पढ़ी लिखी होने के बाद करते हुए आपका चेहरा में बहुत खुशी मिल रही है। इतना खुशी रहना सबसे बड़ी खजाना है, सबसे ज़्यादा संपत्ति धन जो है खुशी नहीं है, आप कितना भी रोजगार करें कोई फायदा नहीं। तो आपको देखकर आपका उमंग उत्सव देखकर जो भी छोकरियाँ सुन रहे जो भी बहू सुन रहे तो उनको एक प्रेरणा मिले, आपका जैसे उमंग उत्सव हौसला है, आपका भाभी से भी कुछ प्रेरणा लिए, परिवार से भी लिए, सास ससुर से भी लिए, पतिदेव से भी लिए, तो इस बीच में आप क्या सीखें और क्या त्याग किए, क्या छोड़े, क्या खोए और क्या पाए, क्या छोड़ दिए और क्या मिला आपको? क्या मिला? पतिदेव मिला। क्या छोड़ दिए? माँ बाप को दूर हो गए ना। और क्या मिला? कुछ त्याग किए? त्याग बिना तो भाग्य बनेगा नहीं, त्याग बिना ना जब हम यहाँ त्याग कर यहाँ पर नहीं आएंगे तो मिलेगा क्या? आए तब तो बड़ समय दिए तब तो कुछ मिल रहा है ना, घर बैठ कर आप लोग हमारे पास आएंगे क्या?
2: नहीं।
1: इसलिए करना पड़ेगा, कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, वो भी श्रीमद आधार में होना चाहिए, हमारा कर्म किसको दुख न दे।
2: मैं पहले जाती थी स्कूल 8वीं तक थी मेखेड़ा में, तो उस समय अभी तो 10वीं तक बनी है, तो पहले हम जाते थे ना, हमारे दोस्त छोटे छोटे बच्चे लड़कियां सब मिल के जाते थे, एक दूसरे को जाते न तो रास्ते में भी एक दूसरे के इंतजार करते थे, वो आएगी तो मैं भी जाऊंगी साथ साथ में, यूं साथ जाने का, एक पास पास में रहते थे न, तो एक साथ साथ में जाते थे, साथ साथ में आ रहे थे, खेलते थे, खेल में भी मैं भाग ले रही थी, और कोई भी उत्सव होता था ना उसमें गाना गीत वगैरह नाचना सब में भाग लेती थी आगे होके साथ साथ में सभी लड़कियां मिलकर। और जैसे जैसे आगे गई, जैसे जैसे मैंने पढ़ाई छोड़ने का, तो ऐसा नहीं लगा कि पढ़ाई छोड़ूं, मैंने मुझे लगा कि आगे आगे मैं पढ़ाई करती रहूं, आगे पढ़ के कुछ बनना चाहती थी अभी, लेकिन मैं पढ़ाई अभी भी मेरी जारी है, अभी छोड़ी नहीं है। इधर आई तो इधर भी ससुराल वाले अच्छे मिले, तो इन्होंने अभी भी पढ़ाई मेरी चालू करी है, अभी मेरे पढ़ाई के पर कोई अभी रोक टोक नहीं हो रहा है।
3: अरे वाह।
2: और उधर भी मैं जब पढ़ने के लिए तो कभी मना नहीं कर रहे थे, माँ बाप भी नहीं किया और इधर आई तो इधर भी नहीं किया, घर का भी काम कर रही हूँ और पढ़ाई भी जारी है और बच्चे भी है, बच्चों का भी पालन पोषण कर रही हूँ।
3: सही होना चाहिए। और आपको मैं जब सुन रहा था, हमारा श्रोता मित्र भी जब सुन रहे हैं अभी, सबसे मेन चीज बहनों को व छोकरियों को सपोर्टिंग मिलना जरूरी है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगी।
2: हाँ।
3: जैसे आपने बोला हमारा पतिदेव व ससुराल हमको फ्री दिए, मैंने हाँ। आप पढ़ाई करना चाहो तो करो, जितना करना चाहो करो, हमारा तरफ से जो भी सहयोग होगा हम देंगे।
2: हाँ।
3: इस तरह सभी सास ससुर हो चाहे पतिदेव जो देंगे तो बहुत आगे
2: हाँ।
3: चला जाएगी, लेकिन
2: हाँ।
3: कुछ भी नहीं होगा तो कुछ तो आपने जानकारी उनको मिल पाएगा। हाँ। जैसे आज रेडियो में जितना अभी हम लिए सबका रिकॉर्डिंग, लेकिन आपका रिकॉर्डिंग टॉप हो रहा है, क्यों ना, आपको फ्रीडम है बोलने के लिए, बोलो कुछ, पतिदेव बोला भाई तुम्हारा आवाज को सब तक पहुंचे।
2: हाँ।
3: एक पहचान मिले, आपका आवाज ही पहचान हो, सरपंच कभी खड़े होंगे तो आपका गांव वाले भी तो आपको बोलना पड़ेगा ना उनको भी, अभी तो माइक में बोल रहे।
2: हाँ।
3: जब आपको कभी मौका मिल जाएगा सरपंच बनेगी कि ना।
2: हाँ।
3: चांस मिलेगा तो छोड़ेंगे क्या,
2: बनेंगे
3: सरपंच बनेंगे तो क्या होगा ना, गाँव का विकास करेंगे।
2: हाँ।
3: जो योग्य जन है उसको निखारने के लिए आपको एक चांस मिलेगा। अभी जो पीरियड है अभी एक बहू, बहू का क्या रोल होता है, बहू मतलब घर में किस तरह रहना चाहिए बहू को, आप तो रह रहे, आप अपना अनुभव से बताइए बहू का भूमिका सबका साथ कैसे होना चाहिए। आपको एक बहू है।
2: हाँ।
3: सबको खुशी रखना है, सबका आवश्यकता जो है उसको देना है।
2: हाँ।
3: और खुद का भी ध्यान देना पड़ेगा।
2: हाँ।
3: आप खुद का पर कैसे, जैसे आप अटेंशन रखते हैं स्वास्थ्य को लेकर हो, अपना मनन चिंतन को लेकर हो, भविष्य भी देखते हैं भाई आगे मैं बढ़कर बच्चों के लिए थोड़ा पढ़ाई लिखा अच्छा कराऊंगा, ऐसे सोचते हैं ना, तो क्या सोचते हैं आप बच्चों के लिए?
2: बच्चों के लिए कि पहले खुद पढ़ेंगे तो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, खुद तो पढ़े लिखे है ही है, तो अब खुद पढ़े लिखे है तो बच्चों को भी चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में जाके अच्छी पढ़ाई करें, और बच्चों का भविष्य भी आगे हमारे जैसे पढ़े लिखे हो जाएंगे तो उनके बच्चों को भी वो अच्छे पढ़ाई करवाएंगे, और घर का काम भी साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा और परिवार के भी साथ में मिल के काम करना पड़ेगा, कोई भी काम है तो मिल बांट के करते हैं।
3: जी जी, बहुत अच्छा। हाँ। ये एक बहू का रोल होना चाहिए।
2: हाँ।
3: भूमिका होना चाहिए।
2: हाँ।
3: बच्चों का भविष्य को भी सामने रख के कर्म करना है और बच्चों को जहाँ भी जरूरत पड़ा प्रेरणा देना चाहिए।
2: पहले वो अबरोड में बौद्ध संस्था करके नाम थी, संस्था आई थी उसमें भी मैं काम कर रही थी पहले आंगनवाड़ी में।
3: ओ,
2: तो मैं जहाँ जाती थी तो मैं रास्ते पर जाती थी पैदल पैदल, तो मुझे देख के बच्चे आगे आ रही, मैडम आई चलो आंगनवाड़ी चलो, तो माँ बाप भी देख के भेजते थे कि मैडम आई है चलो आज तो आंगनवाड़ी जाएंगे, तो बच्चे देख के आंगनवाड़ी आ जाते थे, बुलाने नहीं जाते तो भी देख के आ जाते थे। जैसे कोई भी एक्टिव गतिविधियाँ करवाते थे तो आंगनवाड़ी में तो पहले होती थी लेकिन कम होती थी, तो जैसे बौद्ध संस्था उस समय से तो इतना टाइट हुआ कि बच्चे देख के भागते थे आ जाते थे आंगनवाड़ी में भी, और पहले तो आते थे लेकिन तो भी थोड़ा कम होते थे।
3: तो राज हंजा जी का भी पता चला बोलते बोलते, क्योंकि ये पहले भी काम कर चुके हैं समाज सेवा में, जिसे बहुत शिक्षा समिति जो
4: पांच वर्ष,
3: हाँ 5 वर्ष तो काम किए, वो एक्सपीरियंस है, अनुभव ही है, इसलिए बोलने में कोई झिझक नहीं, क्योंकि उनका काम ही था भाषा ज्ञान हो, बुद्धि को तेज करने के लिए उनको एक दायित्व मिला था जो बौद्ध शिक्षा समिति में, जिसका चलते 5 साल का जो एक्सपीरियंस है जिसका चलते आज अपना चुप्पी तोड़ के आगे होना चाहिए। इस तरह सभी हमारा जो बहू हो चाहे बेटियाँ आएंगे तो क्यों नहीं हमारा भारत, हमारा गांव आदर्श बनेगा और हमारा घर आदर्श बन पाएगा, और खुद जब आदर्श बनेगा हमारा घर आदर्श बनने में कोई देर नहीं लगेगा। एक शिक्षित होने के नाते ये फायदा होता है सबका सामने बात करने के लिए, एक कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, नहीं अपना हक को साबित कर पाते हैं। तो
2: मैं बौद्ध में काम कर रही थी उस समय से, अब मैं किसी के सामने बोलती हूँ तो भी इतनी झिझक नहीं होती, पहले तो मुझे डर लगता था मैं क्या बोलूँगी, सही बोलूँगी कि गलत बोलूँगी कि क्या बोलूँगी, ऐसे डर लगता था, अब तो मुझे डर इतना नहीं लगता है। पहले मीटिंग करवाई थी पहले तो मुझे डर लगता था मैं क्या बोलूँगी, उतने महिलाएँ आएगी वो आदमी आएंगे तो उनके सामने मैं क्या बोलूँगी, तो जैसे जैसे वो आती थी ना आंगनवाड़ी में पूछताछ हो रही थी, उनसे मेरी बात हुई, इसमें काम कर रही हूँ, ऐसे बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाती थी तो उनके माँ बाप देखने के लिए भी आते थे, उनको मैं प्रोजेक्ट जैसे ले बच्चों ने काम किया ना उनके, उनके बच्चों का काम भी बता रही थी, आपने बच्चों ने ये किया, ये लिखा है, ये ऐसे गाता है गीत, ऐसे ये करता है, घर जाके भी वो हाव भाव के साथ में करता था एक्शन, तो वो बोलते थे पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, अब तो ये बच्चे बहुत होशियार हो रहे हैं, ऐसे करके बच्चे भी भेजते थे आंगनवाड़ी में। मीटिंग भी मैं करवा रही थी महिलाओं की पुरुषों की।
3: चलिए उनका छुकरा है
2: हाँ। नाम है बोलो
4: अभिमन्यु।
2: अभिमन्यु गांव का नाम क्या
4: है?
2: फली का नाम
4: नाम मिश्रा।
2: दाम मिश्रा कौन से जिले में रहते हो? जिला जिला चिरोई
3: जिला
2: ने तहसील
4: अबूर।
2: अबूर मम्मी रहू ना मैं
4: अंजा देवी।
2: अंजा देवी पप्पा रो
4: बदराम जी।
3: ये था कुछ छोटे आवाज में क्योंकि बोध शिक्षा समिति में जो उसको याद आई अंजा जी उसका लड़का को भी कैसे छोकरा को भी कैसे पढ़ाता है और बहुत सारा प्रश्न उनको रखा है। भले मुझे देख रहा था और लड़का थोड़ा झिझक कर रहा डर रहा पहला बात हमको ही देख रहा है इसलिए थोड़ा सा नर्वस है लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तो सब चीज़ का उत्तर देगा मेरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि जब उनका मम्मी इतना पढ़ी लिखी है तो उनका बेटा बेटी को तो होशियार करा देगी। अभिमन्यु को भी धन्यवाद छोटा बच्चा है लेकिन अभिमन्यु जब सुनते तो अर्जुन का मुझे याद आ रहा मातृ गर्भ से ही अभिमन्यु सब सीख गए थे तो सही में नाम जैसे वो काम भी ऐसे करेगा क्योंकि अभिमन्यु जो था पूरा महारथियों को भी हरा दिया था। जैसे पूछा आपका जिला का नाम क्या है तो बोला सिरोही भाई आपका तहसील का नाम क्या है तो आबू रोड तो आपका गांव का नाम क्या है तो भुगरिया फल्ली आपका ग्राम पंचायत का नाम क्या है तो बोल रहा है धमसरा क्या ग्राम पंचायत धमसरा बोलो जोर से
4: हाँ
3: ये धमसरा है ना सभी तो पूरा अच्छा बात बता रहे बड़े होकर क्या बनेगा तुम मार्शा बनेगा। अरे वाह ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु के लिए। पहले इस तरह तोतल तोतले आवाज में जो बच्चों को मिलता है तो आगे बहुत नाम रोशन करेंगे क्योंकि आज रेडियो पे आ रहे हैं कल स्टेज में बड़ा बड़ा स्टेज में जाकर अपना भाषण करेगा अभी से प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ये तो श्री हंजा देवी को और बाबूलाल जी को जाता होगा क्योंकि बाबूलाल का पोता है और हंजा का बेटा है
2: तो अभी चार साल ही है
3: चार साल है वो भी उनका मम्मी बता रही है चार साल
2: ये सब बता रहा है शरीर के नाम इंग्लिश में
3: बता रहे शिक्षा जैसे हमारा संस्कार है उसके ऊपर हम डालेंगे। छोटा परिवार सुखी परिवार जो कहते हैं ना पढ़ा लिखा होने के बाद उसको जो प्रेरणा मिलता है क्योंकि माँ बाप शिक्षित हैं इसलिए उसका असर परिवार बच्चों का ऊपर पड़ता है और उनसे ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। जैसे हंजा का ससुर मैंने उनका पति का जो बाप है वो कम पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो बेटा बीए पढ़ लिया ग्रेजुएशन कर लिया बहू एमए किया लेकिन उनका बेटा जो थर्ड परिवार आएंगे एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी तीसरे पीढ़ी जो आएंगे वो तो इससे और होशियार होंगे उनका माँ बाप से ज़्यादा होशियार तो मोटरसाइकिल चला देगा दो साल में ही क्योंकि साइंस का कमाल है और वर्तमान मॉडर्न युग है तो कॉलेज युग में तो आज बच्चे तुरंत फटाफट सीख जाते हैं क्योंकि इंटरनेट मीडिया इतना सुंदर मिला आज तो माइक देखो कभी सोचे नहीं उनका परिवार वाले जो आज रेडियो पे उनका आवाज़ जा रहा है ये तो कमाल है समय की। तो बहुत बहुत धन्यवाद हंजा देवी का साथ साथ उनका पतिदेव भी उपस्थित है तो उनको भी स्वागत करेंगे लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन पर।

सात तारों भरी नामी ने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहला हम हंजा देवी से सुन रहे थे। खासकर एक शिक्षित होने के नाते जो झिझक, जो डर और एक अपना बात को रखने के लिए जो साहस सही में शिक्षा में रहता है, शिक्षित और अशिक्षित में यही अंतर है। चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे जो भी है, लेकिन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पढ़ा लिखा होने से थोड़ा होशियार होते हैं और समझ में आता है हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको एक बल मिलता है। तो चलिए, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जो परिवार में बात कर रहे थे, पिताजी, बहू, पोता, अभी बेटा से बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम बताइए, आपका परिचय।
2: माय नेम इज बदाराम।
1: और कहाँ तो पढ़ाई किए?
2: मैंने एमए और बीएड दोनों किए।
1: अच्छा, वाह, बहुत क्वालिफाइड है। तो श्रोता मित्र ग्रामवासी, हम वो कह रहे थे ना, एक परिवार में ऐसे भी कभी कभी परिवार मिलता है जिसमें पढ़े लिखे बहुत होते हैं, जैसे आज बाजाराम ने अपना बात को रख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है और कार्यक्रम को सजा रहे हैं तो सुंदर लगेगा ही। हंजा जी, वो भी पढ़ी लिखी है और ये भी इतना पढ़ा लिखा किए, आप क्या लक्ष्य रखे, इतना पढ़ाई लिखाई किए परिवार में, इतना पढ़ाई लिखे में आपका रुचि कैसे आया और इसका पीछे क्या राज है?
2: पहले तो मैं, हम पाँचवीं तक पढ़ रहे थे यहाँ पे मीरगढ़ में
1: जी।
2: शुरू से मेरे पढ़ने में रुचि थी शुरू से। फिर पाँचवीं में था, पाँचवीं बोर्ड था उस टाइम में। तो उस टाइम में जैसे कि हमारे साथी बहुत थे स्कूल से, हमें वो फर्स्ट बैंक मिलता था उस टाइम में, तो बहुत लड़के थे हमारे साथी, बहुत ही इतने पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे कहीं घर से, तो स्कूल से उनको देते मैडम, तो बहुत पढ़ते नहीं थे, तो वो वापस मुझे देते थे वो फर्स्ट बैंक था ना तैयारी के लिए। तो मैं बहुत पढ़ते नहीं थे, कोई तो एक दिन आता था, कोई भाग जाता था, स्कूल ही नहीं आते। मैं उनसे डेली लेता, मैं खुद ही फर्स्ट आया था हमारे बीरगढ़ स्कूल में यहाँ से। फिर यहाँ से उस टाइम हम यहाँ से फिर टीचर निकाल के हम मानपुर ग्रामीण में गए थे पढ़ने के लिए, और वो छात्रावास में रहते थे कुछ प्राथमिक विद्यालय
1: ग्रामीण में।
2: हाँ, ग्रामीण में आठवीं तक पढ़ाई की,
1: वहाँ छात्रावास भी है।
2: हाँ, मानपुर वाला हेलीपैड के पास है,
1: जहाँ आकरा बटा
2: है। इस साइड में लड़कियों का है, इस साइड लड़कों का है, हेलीपैड वाला रोड है ना, इस साइड मंदिर का, मंदिर टाइप है ना।
1: अच्छा अच्छा,
2: वो छात्रावास है,
1: वो उसमें अब थे।
2: हाँ, उसमें
1: ठीक है, समझ गए। वहाँ पर
2: फिर वहाँ से आठवीं तक पढ़ाई की, उसके बाद दरबार स्कूल है ना, राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, वो दरबार स्कूल, वहाँ से बारहवीं की।
1: क्योंकि दरबार स्कूल में जो बच्चे हम देखते हैं पढ़ाई, तो उनको बोलने में हो चाहे होशियार होते हैं, क्योंकि स्कूल बहुत पुराना स्कूल, अभी कोई टीचर पूछेंगे ना यहाँ का शिक्षकगण, वो भी दरबार स्कूल से ही निकले, क्योंकि दरबार स्कूल का पूरा नाम है इस एरिया में, एक छाप लग चुका है कि नहीं।
2: उस टाइम में
1: कौन प्रिंसिपल थे जब आप बारहवीं कर रहे थे?
2: रमेश जी
1: थे। अच्छा, प्रिंसिपल।
2: उसके बाद बीए किया था, उसके बाद वो बी एड का वो प्री एग्जाम दिया था, क्या तो उसमें फर्स्ट लिस्ट में ही हमारी तेजेंद्र प्रसाद कॉलेज मुझे मिला था पहली बारी। अब
1: सिलेक्शन होता है बी एड का,
2: वे प्री एग्जाम होता है।

0: ग्रेजुएशन बी ए करने के बाद प्री एग्जाम होता है तो उसमें जैसे मतलब दो तीन लिस्ट निकलती है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और क्राउंड होते हैं। तो हमारा पहले लिस्ट में ही निकले, ये जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं ना उन्हीं को ही, ये तेजेंद्र प्रसाद कॉलेज है ना उनको, उन्हीं को ही मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है आज भी।
1: तो उसमें आप सिलेक्शन,
0: हाँ तो उसमें, हाँ फिर वो उस टाइम में मेडिसिन में बहुत करता था, पहले मैं इधर लगी थी कि छोटी थोड़ी उस टाइम में, फिर वो ओम का उच्चारण ऐसे करते करते मैं मेंटल फिर थोड़ा सही हो गया क्या नहीं करते।
1: अच्छा,
0: फिर ये पहले कोई भी, मैं कॉलेज जाता था उस टाइम में मुझे लगी थी तो मैं पढ़ता था ना बहुत, मुझे याद नहीं होता, टीचर पढ़ाते थे ना बहुत सारा याद हो जाता था।
1: ओ
0: हाँ, खुद पढ़ता वो बिल्कुल याद ही नहीं होता, टाइपर निकला था कि उस टाइम में हॉस्टल में रहता था उस टाइम में, तो मैं एकदम से खड़ा हो गया तो मुझे चक्कर आ गया, तो दीवार था ना, दीवार का कोना होता ना
1: जी,
0: तो वो टच हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, फिर माइंड तो एकदम गर्म हो गया, बहुत जाम हो गया ऐसे करते करते। फिर मैं कॉलेज जाता था, डेली जाता था, रेगुलर कॉलेज थी मेरी, क्योंकि वो पढ़ाते वो मुझे याद रहता था ना, मैं खुद पढ़ता वो बिल्कुल याद ही नहीं रहता, ऐसे करते करते फिर मैं प्री एग्ज़ाम में वो बी करने के बाद फिर प्री एग्ज़ाम में मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया।
1: अच्छा।
0: फिर मेरे ये है ना, फिर मुझे याद भी तेज होने लगा और कॉलेज में वो तेजेंद्र तेजेंद्र प्रसाद कॉलेज था ना उसमें भी मैं सब ये जीके की करवाना ये सब मैं करवाता था उस टाइम में।
1: ओके,
0: पांच पाकिस्तान था मेरा।
1: ओके, वेरी गुड। अरे
0: वाह, फिर मेडिसिन करने लगा तो मेरा अब मैं खुद पढ़ता वो भी याद होता है और दूसरा वो भी याद हो जाता है। मेडिसिन दो तीन साल तक मैंने रेगुलर करता था मैं, एक मेरा एक घंटा तो परफेक्ट था उस टाइम,
1: जैसे अभी कुछ
0: ध्यान करने भी एक घंटा आधा घंटा ऐसे में ऊपर जाता था कि पहाड़ पर चट्टान है तो भाई बैठा रहता था।
1: अच्छा, याद करते
0: हैं क्या कि एकाग्रता शक्ति रहती है कि हाँ, तो उससे मेरे पढ़ाई में क्या बहुत मतलब सहयोग मिला, उससे योगा से मतलब बहुत सहयोग मिला मुझे।
1: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बात बता, ये तो यादगार बचपन का सुनाए और पढ़ा लिखा इतना है, और सभी जो हमारा यूथ सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं, तो एक करियर के लिए अपना
0: योगा भी जरूरी है,
1: जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन मन को शांत देता है और एकाग्रता में वृद्धि होता है, आत्मा में एक बल आता है, मन और बुद्धि संस्कार पूरा तेज होता है, मन बुद्धि जिसका तेज है, बुद्धि जिसका तेज है, बौद्धिक शिक्षा जब होता है बुद्धिमान, बुद्धि का बल से ही काम होता है, बाहुबल से काम नहीं हो पाएगा, बाहुबल अल्प दिन के लिए, किंतु बुद्धि बल कहीं भी रहो, बुद्धि से काम करो तो आराम से काम निकल जाएगा। बहुत अच्छा बात बताया बाजाराम जी। तो
0: उसके बाद सर वो आपके वो ब्रह्मा कुमारी वाले आए थे, हमारा ट्रेनिंग चल रहा था मई खेड़ा में उस टाइम में, तो वहाँ से मैंने और थोड़ा वो सीखा उस टाइम, हाँ शांति वाले कि मतलब वो चिंता कोई भी अपन टेंशन होता है तो उसे कैसे दूर किया जाता है, फिर वो वहाँ वहाँ बताया था कि वहाँ आए थे आपके ब्रह्मा कुमारी वाले, तो वहाँ से कोई भी चिंता टेंशन हो जाता तो फिर तो बस सांस अंदर वो ऐसे करता था मैं उस टाइम, माँ से सिखाया था उस टाइम, टेंशन ऑटोमेटिक दूर हो जाता था ऐसे।
1: तो राज्य को इस पूरे विश्वविद्यालय ओम शांति में राज्य को सिखाते हैं जो कि खुद का बारे में, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन हूँ, हु एम आई, और व्हिच गॉड, परमात्मा कौन है, आत्मा का पिता परमात्मा कौन है, जब वो ज्ञान आ जाता है, समझ आता है, तो उसी हिसाब से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। जीवन जीने की कला, जो भी हम कर्म करते हैं कर्मेंद्र द्वारा, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, मुख से बोलने, बोलने वाला, देखने वाला, करने वाला आत्मा है,
0: आत्मा है।
1: जो ड्राइवर है जब बाबूराम जी काम करेगा तब ये काम में आएगा, तो ये आत्मा जैसे देखे देखना चाहेगी उस तरह स्थिति बनेगा, इस चक्षु से आत्मा देखती है, आत्मा निकल जाएगा तो चक्षु काम करेगा नहीं, आँख कोई काम का
0: नहीं,
1: आँख का रोशनी भी कुछ काम नहीं करेगा, आँख है ही नहीं रसने करने वाला, बैटरी जैसे मोबाइल से बैटरी निकाल देंगे
0: तो फिर मोबाइल
1: चलेगा नहीं, या शरीर से जब आत्मा मैंने मन बुद्धि को निकाल देंगे तो काम करेगा नहीं। तो मेडिटेशन, राजयोग, जो ध्यान केंद्रित करने का शक्ति राजयोग से हम प्राप्त करते हैं। अच्छा बात बताए आपने, राजयोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं, हठयोग भी जानते हैं, और आपका बौद्धिक विकास के लिए ये सब काम में आता है। तो श्रोता मित्र सब सुन रहे, युद्ध जो सुन रहे, जब भी समय मिले वो ध्यान लगाए, अपना मन बुद्धि को भ्रुकुटी में एकाग्रता करने के लिए देखिए, खुद को देखने के लिए अभ्यास करें, खुद का और खुद, तो आत्मा अलग और शरीर
0: अलग,
1: ये चीज़ जब जान लेंगे तो आप कोई भी काम करेंगे तो सक्सेस हो पाएंगे, और नहीं मिलेगा तब भी खुशी होगा, क्योंकि कर्म का गुह्य गति को मालूम होता है। जैसे शिक्षा को लेकर इतना पढ़ा लिखा किया आपका समाज में, गारा समाज में बहुत कम लोग पढ़ते, लेकिन आप इतना पढ़ाई किए, इसका पीछे इतना पैसा आप आपका उमंग उत्साह को आगे बढ़ाने के लिए कौन साहय किया?
0: हमारा मकसद यही है कि मैं ये सोचता हूँ कि मतलब ये जो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे देख देख कर मेरे गांव के मतलब जो है ना लोग, वो भी मतलब मेरी जैसे ही बने के कहने करते पढ़ाई करे, और मैं तो ये सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर बल देता हूँ।
1: कभी अफसोस नहीं होता अभी तक नौकरी नहीं मिला बा हम ट्राई कर रहे हैं अभी तक सक्सेस नहीं है इसको भी?
0: अफसोस तो अभी क्या कि हार मानने से कोई नहीं होता, हम सोचते कि लगेंगे, मेरा लक्ष्य है कि मैं टीचर बनूंगा तो बनूंगा।
1: उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए क्या मेहनत करते हैं, क्योंकि ऐसे हरास कभी नहीं होना चाहिए। जब तक आपका उम्मीद है, जब तक प्राण है, जब तक आपका एज का सीमा है, तब तक आप कोशिश और लगाइए। 20 नाखून लगाकर आप थोड़ा सब त्याग किए, और थोड़ा हुआ नहीं तो और त्याग करो और पढ़ाई करो तो ज़रूर कामयाबी होगा, और ऊपर वाला तो बैठा है। तो इसके लिए आप क्या क्या मेहनत करते हैं बादाराम जी, पढ़ाई के लिए जो आप लख रहे टीचर बनूंगा ही, तो बनने के लिए आपका प्रयास जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे जो वैकेंसी निकालता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रयास?
0: प्रयास तो ऐसे मैं कोचिंग के लिए गया था जोधपुर में, जोधपुर भी रहा था मैं, दो बार गया जोधपुर, फिर एग्जाम से पहले दो ये कोरोना काल आ गया, फिर वो घर आते पढ़ाई थोड़ा सपोर्ट हो गया यहाँ से, फिर वापिस चले गए कोचिंग के लिए, वापिस कोरोना आया तो वापिस घर आते, घर पे इतनी पढ़ाई नहीं होती है।
1: दो तीन साल जब गया कभी अफसोस नहीं हो रहा भाई हमारा तो एज जो लिमिट है वो तो माइनस हो रहा है, तो क्या सरकार बढ़ाएगा, दो तीन साल देगा आपको?
0: एज तो नहीं देगा, लेकिन सर क्या है कि हमारा वो एग्जाम ही था, 6 बार तो खिसक गया उस टाइम में, तो फिर क्या लो हो जाते, फिर क्या कि इतना पैसा और कहाँ से करे बार बार, तो फिर वो एग्जाम भी दिया था वो भी रद्द हो गया, तो वापस अब वही एग्जाम है ना, 2 साल उसमें खर्च किए, तो वही एग्जाम अभी जुलाई में हमारा। मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत रुचि है, इंटरेस्ट, यहाँ पहले ये घर पे ही मैं पढ़ाता था इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे बहुत आते थे हमारे गाँव के।
1: अच्छा, इस फल में कितने बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे
0: तो
1: 3 साल से 8 साल काम कर रहे हैं?
0: बहुत ये फली है ना हमारी, ये और ऊपर वाले बांधे ने वहाँ, ये ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे ही आप, ये फल बुमरिया फली, ये नीचे की साइड जान मिलेंगे लेकिन कम, ये यहाँ से सीमा है डामर फली, बिल्कुल मतलब इतना कम है, मतलब शिक्षित कम है क्या यहाँ के, हमारे यहाँ के बुमरिया फली पूरी पढ़े लिखे ही है, थोड़े बहुत कोई मिलेंगे।
1: आपका अभी उम्र क्या है?
0: मेरी उम्र 31 साल।
1: और कितने साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं?
0: 40 तक
1: और 9 साल है तो है, कर सकते हैं और हो जाएगा, लेकिन थोड़ा और थोड़ा मेहनत करो। और
0: मैं तो हमारे पीछे भी लड़की है नहीं, इनको भी डांटता हूँ मैं, कभी फालतू का घूमना नहीं, फालतू ये टाइम चला जाएगा, अभी तुम्हारे अभी हम पढ़े लिखे तो आपको कुछ राय देंगे तो उस पर चलोगे तो जल्दी लग जाऊँगा, हमसे पहले लग जाऊँगे, हमारे क्या कि अनुभव बताने वाले उस टाइम में मिले नहीं थे उस टाइम में कि कौन से लाइन पकड़ने से कौन सा सही रहेगा।
1: जी जी जी।
0: अब तो क्या कि 12वीं तक पढ़ता लड़के डायरेक्ट बता देते कि यार ये BST का प्री एग्जाम दिए तो ये मास्टर के लिए सही रहेगा कहने, तो पहले से तैयारी बच्चे को बता देते तो पहले से तैयारी प्री में निकल जाता, तो फिर वो क्या 2-4 ट्रेनिंग होती है दूसरा।
1: अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बाजाराम जी को, इतना सुंदर प्रस्तुति दी और अपना अनुभव बता रहे जो भाई हम तो समाज सेवा के लिए उपस्थित हैं, हम करेंगे तो जरूर हमारा लक्ष्य रखें जे बच्चों को पढ़ाना, और हम उसी लाइन में जा रहे हैं, अभी पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई के बाद जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि अभी एग्जाम बाकी है ना, तो बाकी होने के बाद फिर वो सफलता ये सफलता मिलेगी, जब हम नेक्स्ट बार आएंगे तो जरूर वो कामयाब हो जाएंगे, एक ही परीक्षा होगा ना इसमें रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद आप इंटरव्यू हो जाएंगे, आपका फिर नंबर मिलेगा।
0: अब की बार 2 एग्जाम किए फ्री देना और इसके बाद मेन है।
1: हाँ मेन भी आएगा।
0: हाँ इस साल किया है, नहीं तो एक ही था।
1: अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ गुनगुनाएंगे, कुछ गीत बड़ा गाते हैं गीत आपको अच्छा लगता सुनने में, आपका गला सा गीत अच्छा लगता है। समाज सेवा के लिए क्या करना चाहिए, एक यूथ समाज सेवा क्या कर सकता है, आपका गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए क्या करना चाहेंगे, आपका की मैसेज, व्हाट इज योर की मैसेज टू द ऑडियंस?
0: गांव को आदर्श बनाने के लिए सबसे पहले क्या है कि मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई पढ़ने स्कूल नहीं जाता है तो उसे स्कूल से जोड़ना चाहिए, क्योंकि क्योंकि वो पढ़े लिखे होंगे तो गांव का विकास भी होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ये के मैसेज जो भी हमारा श्रोता सुन रहे हैं, और खासकर जो यूथ, मान लीजिए नौकरी मिलेगा तो दी बेस्ट, नौकरी नहीं मिलेगा तब भी खुद का पैर पे खड़े होकर दूसरों को भी खड़ा करना ये एक जिम्मेदारी रहेगा। और कितना दुआएं मिलेगा, आप तो रोजगार कर रहे, उसके साथ पांच लोगों को रोजगार दिला रहे है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में, एक परिवार में जो बाप बेटा और बहू और पोता सबका आवाज,
0: अंकल जी
1: जो भी आते हैं तो उनको भी बोलता है भाई उनको भी माइक दो, वो भी कुछ बोले। क्या करते हैं आप,
2: खेती कर, खेती अंडा बिरयानी गो।
1: अभी गर्मी का टाइम में आप खेत को कैसे बना कर रखे, अभी आप खेत को कैसे रखें,
2: सफाई
1: सफाई क्या क्या सफाई किए,
2: और साला बीजा काटे खेर बीज करें।
1: अच्छा
2: बोना रू
1: आषाढ़ महीना में,
2: आषाढ़ महीना दूसरा मक्की रो न बिर सो अपने अंडा हुआ है गो तो आपने सियाड़ी में नहीं आते सियाड़ी में।
1: और घर में कौन कौन है, बच्चे छोकरा छोकरी
2: हैं,
1: क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई क्या रहा है सबको,
2: पढ़ाई क्या रही है का कोई दुकान माता है
1: जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये था काका जी है और बहुत बहुत धन्यवाद देते आज का कार्यक्रम, धन्यवाद सुनते रहे कान, धन्यवाद आभार राम।

माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा. और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है.

0: और ओम शांति सभी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो चैनल और मधुबन रेडियो, जो कि अवेलेबल है 107.8 रेडियो फ्रीक्वेंसी पर हमारे अबू रोड और सिलोही के श्रोताओं के लिए। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आप जुड़ सकते हैं मधुबन रेडियो के एप्लीकेशन के माध्यम से। तो हम जैसी बात कर रहे थे, बात चल रही थी दिव्यांगता की, और जिसे कहते हैं हमारा फेवरेट शो मन की आंखों से, हमारे मन की बात, हमारी जीवन की बात, दिव्यांगता की बात, पुनर्वास की बात, और इसके साथ साथ जीवन को कैसे हम अच्छे तरीके से जी सकते हैं और वो सब कर सकते हैं जो सामान्य लोग अपने जीवन में करते हैं। तो इसको करने के लिए आवश्यक है कि हमारे साथ कोई ना कोई पुनर्वास को लेकर एक्सपर्ट हो या हमारे बीच में उस विषय के जानकार हो। तो हम हर बार किसी न किसी नए व्यक्ति को या फिर किसी जानकार व्यक्ति को, उस विषय विशेषज्ञ को आपके बीच लेकर आते हैं। तो आज दोबारा से, क्योंकि बात बहुत लंबी है, गहराई की बात है, गंभीर विषय है, तो उस पर बात भी गंभीरता के साथ होनी चाहिए। तो हमारे बीच है डॉक्टर नीरज मधुकर, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के CRC सेंटर जयपुर से। डॉक्टर नीरज मधुकर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: नीरज जी, हमने पिछली बातचीत में, जो हमारा पिछला एपिसोड रहा, उसमें हमने हमारे श्रोताओं के लिए बहुत सारे विषयों को सतही रूप से छुआ, और हमने उसमें बात करी पेरेंटिंग को लेकर, CRC पर उपलब्ध सेवाओं को लेकर, वयोश्री योजना को लेकर, और दिव्यांग व्यक्ति को दी जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के बारे में हमने बातचीत करी। लेकिन बातचीत का अब ये जो सिलसिला है, जिसमें हम अगले कुछ समय तक या कुछ एपिसोड तक हम विशिष्ट विषयों पर कुछ विशिष्ट तरीके से गंभीर बातचीत गहराई के साथ करेंगे, और ये एक सामान्य बातचीत नहीं होगी, ये कोई आपका ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, ये गंभीर विषय है। तो हमारे श्रोताओं से हम निवेदन करेंगे कि वो सब कुछ छोड़कर अपने कान मजबूती के साथ लगा ले और बात को समझे। और चूंकि बात कान की हो गई है, डेफिनेटली बात आज विषय है डेफ लोगों के बारे में, और डेफ लोगों को संप्रेषण में आने वाली चुनौतियां, उनके भाषा विकास को आने वाली चुनौतियां और संप्रेषण में आने वाली चुनौतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसको लेकर हमारे बीच में नीरज जी है। तो नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो डेफ व्यक्ति है, जिसका चाहे वो जन्मजात हो या उसने जीवन के किसी अन्य मोड़ पर डेफ मतलब सुनने संबंधी दिव्यांगता जो है वो हासिल कर ली हो, तो उसके लिए कैसे वो अपने जीवन में वापस आ सकता है, पुनर्वास किया जा सकता है, उसकी चुनौतियां क्या है, पहले चुनौतियों बताएं आप, उसके बाद फिर हम आगे बात कर पाएंगे। जी नीरज जी, स्वागत है।
1: जी सरद जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कृष्णा बेन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मन की आंखों से ये जो कार्यक्रम है रेडियो मधुबन का, इसमें हमें आमंत्रित करने के लिए और इतना बड़ा मंच देने के लिए, ताकि मैं आम जनमानस के साथ जुड़ सकूं, सामान्य मानविकी के साथ जुड़ सकूं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और CRC की स्थापना ही समाज को संबल देने के लिए किया गया है, विशेष तौर पे दिव्यांगजनों और विशिष्ट जो सीनियर सिटीजन जो हैं हमारे समाज के, उनके लिए। लेकिन आज का जो विषय है वो स्पेसिफिक इसलिए है कि हम बेजुबान लोगों, जिनको बेजुबान बोलते हैं, श्रवण बाधित बोलते हैं, उनके पास अपनी स्पीच नहीं है, और इसकी वजह से कई बार ऐसी समस्याएं आती है कि वो समाज में अपनी बातों को पूरी तरह रख नहीं पाते। शुरुआती दौर जब देखेंगे तो जब 0 to 6 months की जो कंडीशन होती है, उसमें बच्चा शुरुआती दौर में भाषा का अलग अलग रूप जो है वो उसको अख्तियार करता है, सामान्य संप्रेषण के लिए, सामान्य बातचीत करने के लिए। और मैं इसमें एक चीज और जोर देना चाहूंगा कि खास करके माँ जो है, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है भाषा विकास के लिए, परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है भाषा विकास के लिए। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, आप देखिए दो चीजें आती है, एक तो आता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और दूसरा आता है रिसेप्टिव लैंग्वेज। तो जब हम भाषा विकास की बात करते हैं तो भाषा से पहले, भाषा पूर्व की जो संकल्पना है, हमको उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करनी हो। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास भाषा नहीं होती, तो वो तो जैसे आप मन की आंखों से देख पाते हैं, वो वैसे टच से, स्मेल से, ऑल्फैक्टरी सेंस, गैस्ट्रेटरी सेंस और बाकी जो हमारे काइनेस्थेटिक सेंस है, प्रोप्रायसेप्टिव सेंस है, ये जो अलग अलग इंद्रियां हैं, वो चाहे संतुलन इंद्रिय की बात करें या सूंघने की क्षमता की बात करें, या आपको एक जानकारी मैं दूं, आपको आश्चर्य होगा कि कि जो बच्चा होता है छोटा, वो अपनी माँ को शुरुआती दौर में गंध से पहचानता है। जब जन्म लेता है तो वो उसके देखने की क्षमता भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, थोड़ा विजन उसका शुरुआती दौर में हफ्ते 10 दिन तक उसका ब्लर होता है, और उसकी वजह से वो गंध से और टच से माँ को पहचानता है। और यही कारण है कि जब बच्चा रोता है, रोना उसका कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। किसी भी चीज की जरूरत उसको पड़ती है तो वो रोता है, रोने के अलावा उसको दूसरी कोई भाषा आती नहीं। लेकिन मैं इस चीज में सल्यूट करना चाहूंगा उन करोड़ों माताओं को जो उस रोने के पैटर्न से पता कर लेते हैं कि उनके बच्चे को क्या चाहिए। पिता को नहीं पता चल पाता, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा समय देती है। इसलिए माँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी धरती पे अगर कोई दूसरा देवता है तो वो माँ है, इसलिए उनका उनसे बड़ा कोई नहीं, उसने जन्म दिया है। अब ऐसी परिस्थिति में जब बच्चा रोता है, कभी आप उस चीज को थोड़ा महसूस कीजिए कि कभी तो बच्चे का डायपर गीला हो गया उसके लिए रोता है, कभी तो उसको डर लग गया है, घबरा गया है किसी चीज से उसकी वजह से रोता है, कभी उसको भूख लगी है इसकी वजह से रोता है, कभी उसको बाहर से गांव में घूमने के लिए जाना है, घर से बाहर निकलना है इसके लिए रोता है, या कभी उसको अलग अलग तरह की जरूरतें हैं, माँ के साथ समय गुजारना चाहता है इसलिए रोता है। सो रोना को एक प्राइमरी नीड, प्राइमरी कम्युनिकेशन के तौर पे लिया जा सकता है कि बच्चे को कुछ भी आवश्यकता होगी तो वो रोएगा, और रोने के पैटर्न से माँ को पता चल जाता है कि वो किस चीज के लिए रो रहा है। वो उसके पापा के साथ बाहर घूमने जाने का टाइम हो गया, या उसको डायपर चेंज करना है, या ऐसी जो भी जरूरतें। So, पहली चीज तो ये हुआ कि जो भाषिक संप्रेषण होता है, जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन होता है, उससे पहले भी संप्रेषण होता है, उससे पहले भी वो अपनी चीजों की अभिव्यक्ति कर पाता है लोगों के सामने, और लोगों को समझ भी पाता है। जैसे ही माँ उसके पास आती है, उसको आलिंगन करती है, गोद में लेकर के पुचकारती है, तो उसके बाद जैसे ही टच मिलता है, स्मेल मिलता है, उसको समझ में आ जाता है मेरी माँ। उसके बाद वो धीरे धीरे चीजों को और पहचानना शुरू होता है। आप देखिए, बच्चा जब एक आध साल के आसपास का रहता है या उसे थोड़ा छोटा रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो लोगों को पहचानने के लिए उनके चेहरे से नहीं पहचानता, उनके कपड़े से नहीं पहचानता, पर उनको मतलब उसकी पहचान किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होती। लेकिन अगर आप देखेंगे, जितना लोग शर्ट पैंट पहनने वाला है, धोती कुर्ता पहनने वाला है, ये उसका अपना ऑब्जर्वेशन है। पायजामा शर्ट पहनने वाले हैं, उसको मुछे हैं उसकी, तो एक उसके दिमाग में जो एक संकल्पना बनती है कि अच्छा, मेल मेंबर है तो ऐसा कपड़ा होगा, फीमेल मेंबर है तो ऐसा कपड़ा होगा। सो अपनी मम्मा से और अपने पापा से, वो दोनों के कपड़ों, पोशाक, रहन सहन, उन सब चीजों को देख करके ऑब्जर्व करता है, और जितने मेल मेंबर होते हैं सबको पापा बोलना शुरू करता है। एक 8 महीने 10 महीने का बच्चा जो है सबको पापा बोलता है, महिलाएं अगर है तो सबको मामा बोलता है। इसका मतलब यह है कि उसका जो कंसेप्ट का डेवलपमेंट है वो अलग अलग चरणों में होता है, अलग अलग परिस्थितियों में होता है, और उसकी वजह से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होने के बाद वो धीरे धीरे फिर कॉन्सेप्ट अलग अलग जो भी होंगे, उसके विजुअल कॉन्सेप्ट है, या काइनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, सेंसिटाइजेशन उसकी जो हो रही है, सो सेंसरी नीड्स हैं, ये सब अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं। और हर एक कॉन्सेप्ट के डेवलप होने के लिए एक पर्टिकुलर विंडो है, वो विंडो पर्टिकुलर एक एज के बाद खुलता है। हम 6 महीने के बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि उसको तैरना आएगा पानी में, लेकिन वो तैरने की आप सिखाना जब शुरू करेंगे तो ये हो सकता है कि आपका ज्यादा रिग्रेस एक्सरसाइज कराए तो 6 महीना पहले आ जाएगा, 2 महीना पहले आ जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बहुत छोटा सा बच्चा एकदम बड़े बच्चे की तरह बिहेव करना शुरू करे। समाज में उसको बातचीत करने में सबसे ज्यादा समस्या होती है जो डेफ पर्सन होते हैं। मैं यहाँ पे 2 भाग में बांटना चाहूंगा। डेफ पर्सन जितने भी हैं उनके लिए, एक तो होते हैं जो कंप्लीटली डेफ है, माने लीगल भाषा में अगर बात करूं तो एक होते हैं डेफ और दूसरे होते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। टर्मिनोलॉजी की भाषा अगर बात करूं तो 60 डेसिबल्स का अगर लॉस है और 70 डेसिबल तक का सुनने की आवाज, सुनने की जो क्षमता उनकी आती है प्योरटोन एवरेज निकालने पे, तो ऐसी परिस्थिति में, या सामान्य बात करूं तो जो सामान्य बातचीत की आवृत्तियों को सुन पाता है उसको तो बोलेंगे नॉर्मल। सामान्य आवृत्ति से थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है, कहते हैं ना कि कोई अगर बुजुर्ग लोग घर में है तो थोड़ा तेज लाउड साउंड में इनसे बात कीजिए तो सुन पाते हैं, अदरवाइज नहीं सुन पाते। तो ऐसी परिस्थिति में उसको डेफ के कहने के बजाय हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, ऊंचा सुनने वाले। और तीसरी जो कंडीशन है, 70 डेसिबल से ज्यादा अगर आवाज उनको सुनाई पड़ रही है, माने लाउड साउंड देने पे भी नहीं सुनाई पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में उनको डेफ की श्रेणी में रखें। तो ये तीन श्रेणी हुए, नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी, दूसरा हार्ड ऑफ हियरिंग और तीसरा डेफ। और क्राइटेरिया जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट की बात करें तो 60 से 70 डेसिबल तक के हार्ड ऑफ हियरिंग का केस, और 70 डेसिबल से ज्यादा अगर होगा तो फिर ऐसी कंडीशन में वो डेफनेस की कंडीशन में उनको रख सकते हैं। फिर उसका भी और क्लासिफिकेशन है, बहुत वो ज्यादा डीप में आज नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है वो सामान्य जनमानस के लिए है, तो टेक्निकल भाषा से बचना चाहूंगा। ये है
0: जी सर। जी जी बिल्कुल, आपने ना केवल डेफ व्यक्तियों के और उनके चिन्हीकरण कैसे किया जा सकता है, उनकी समस्याओं के को के आधार पे, उनकी समस्याओं की चुनौती या उसकी उसकी सुनने की क्षमता के आधार पे आपने उसकी परिभाषा तय करी। निश्चित रूप से आपने जो बात शुरू की है, हमने जो ये बात की कि हम उन लोगों की बात करेंगे जो श्रवण बाधित हैं, तो उनका पुनर्वास भी आवश्यक है और पुनर्वास को लेकर भी हमें बात करनी है। नीरज जी, इसके पुनर्वास को लेकर एक पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है और हम एक डेफ व्यक्ति को जन्म से अर्ली इंटरवेंशन करके कैसे सामान्य मुख्य धारा में ला सकते हैं? जी नीरज जी,
1: मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये जो डेफ पर्सन है, शुरुआती दौर में सर अपने समाज में इतना अवेयरनेस नहीं था। जब बहुत पहले की बात करें, 19th सेंचुरी की बात अगर करते हैं, तो उस समय में डेफ पर्सन को और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों को, दोनों को एक साथ पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही थी, एक साथ एक समझा जाता था, कैटेगराइज किया जाता था। लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे नकारात्मक भावनाएं हैं कि डेफ पर्सन शादी नहीं कर सकता, डेफ पर्सन सोसाइटी के साथ एसिमिलेट नहीं हो सकता, डेफ पर्सन पढ़ करके क्या कलेक्टर बन जाएगा। ये जो चीजें लोगों के मन में विचार आता है, ब्लाइंड पर्सन के लिए भी आता है, डेफ के लिए भी आता है, और उनको समाज से आइसोलेट कर। तो सबसे पहली चीज जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा सरद सर, कि सबसे पहली चीज है फैमिली का एक्सेप्टेंस। और मैं चर्चा कर रहा था कि बच्चे का जब जन्म

ऐसे कई रीजन हो सकते हैं। माता को प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाया जिसकी वजह से दिक्कत हुई, वैक्सीनेशन माँ जो है उसको अलग अलग तरह का कोई हेपेटाइटिस का टीका नहीं लग पाया टाइम पे, या बीपी का प्रॉब्लम है उसका, शुगर का प्रॉब्लम है उसका, इन सब चीजों की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और इस कंडीशन में जब बच्चे का जन्म हो गया, अब डॉक्टर ने देख करके उनको बताया, शुरुआती दौर में सबसे बड़ी बात है कि डेफ बच्चे की पहचान करना बड़ा मुश्किल है कि ये बच्चे में नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी होगी या डेफ होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि स्क्रीनिंग का ऐसी कोई व्यवस्था अभी हमारे सारे पीएचसी सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे नहीं है, और हम लोग सौभाग्यशाली है कि साउथ में इस पर ज्यादा थोड़ा फोकस है। सो एक एक टेस्ट किया जाता है जन्म के टाइम में जिसको बोलते हैं अपगार स्कोर निकाल। अपगार स्कोर में बहुत सारी चीजों के बारे में देखा जाता है, जैसे उसका अपियरेंस क्या है, या उसका जो पल्स रेट है वो कैसा है, शरीर का रंग कैसा है, इन सब हार्ट बीट कैसा है, इन सब चीजों के आधार पर पता किया जाता है कि बच्चे में डिफॉर्मिटी आगे आएगी कि नहीं, या डेवलपमेंटल इश्यूज आएगा कि नहीं। एक छोटा सा टेस्ट और है जिससे पता किया जा सकता है, अगर डॉक्टर को लगता है कि अपगार स्कोर में गड़बड़ हो रहा है, स्कोर बराबर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिए एक टेस्ट होता है ऑटो एक्वास्टिक इमिशन टेस्ट, और वो सीआरसी में उपलब्ध है। तो उसके माध्यम से हम लोग शुरुआती दौर में ही बच्चा का हियरिंग सेंसिटिविटी पास है कि फेल है ये पता चल जाता है, ताकि उसकी अगर कोई ऐसा कोई इशू आने वाला हो तो फिर स्पेशल उसके लिए इंटरवेंशन प्रोसेस शुरू कर सके। घर में अगर बच्चा 2 महीना 3 महीना का हो गया, 4 महीने का हो गया, उसके बाद 4 से 6 महीने होते होते बच्चा बाबा बाबा दादा दादा करना शुरू करता है। अब वहां पे पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि क्या उनका बच्चा 6 महीने का हो जाने के बाद, 7 महीने का हो जाने के बाद शुरू किया बाबा बाबा, बैबलिंग स्टेज उसको टेक्निकली बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस आवाज निकलता रहता है बाबा बाबा बाबा दा दा दा इस तरीके का। तो अगर ये स्टेज नहीं आया तो बच्चे के पेरेंट्स के कान खड़क जाने चाहिए कि कुछ ना कुछ इशू है, बच्चा 4 महीने के बजाय 6 महीने में ऐसा कर सकता है, 8 महीने में कर सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा डिले हो रहा है, मतलब सिग्निफिकेंट डिले है, तो फिर तुरंत हमको ऑडियोलॉजिस्ट के पास या जो ENT डॉक्टर्स हैं उनके पास मिलना चाहिए, या किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो नजदीक का हो, सीआरसी हो, डीडीआरसी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, या आरबीएस के स्कीम के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी एक डीआईसी है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, वहां जाकर के उसकी टेस्टिंग कर सकते। सो ये सब अलग अलग परिस्थितियां हैं जिसके माध्यम से बच्चे को शुरुआती दौर में सहायता मिल सकती है और उसका स्क्रीनिंग संभव हो सकता है। ये भारत सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं ये निःशुल्क है बीपीएल कैटेगरी के लिए, छोटे जो बच्चे हैं बीपीएल कैटेगरी तो उनके लिए, अदरवाइज कहीं कहीं 10-20-50 रुपए का एक नॉर्मल चार्ज होता है। जिस टेस्ट को आप बाहर कराने के लिए जाते हैं 2,000 रुपए चार्ज लगता है, वो उस टेस्ट के लिए सीआरसी में, डीडीआरसी में या नेशनल इंस्टीट्यूट जो भी आपके पास है वहां पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे ये सारे टेस्टिंग अवेलेबल। एक तो ये बात हुई, अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अब मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन मोड में आगे लेकर के चलो शरद सर, चूंकि टाइम हमारा काफी कुछ हो चुका है और समय पे खत्म भी इसको करना है, तो बहुत बहुत ब्रीफ में और आम आदमी की भाषा में कोशिश करूंगा कि इसको मैं समझाऊं। सो इसमें अगर हम देखेंगे, दुनिया में लाखों प्रजातियां हैं, लेकिन मानव एक ऐसा प्रजाति है जिसको ईश्वर ने एक खुशनसीबी दी है कि वो संप्रेषण कर सकता है, सामान्य मानविकी के बीच में संप्रेषण कर सकता है, अपनी जरूरतों को बता सकता है, और उसकी भाषा एक निश्चित है। संप्रेषण तो सभी कर लेते हैं, आप देखेंगे कि तो जानवर भी जो है वो आपस में बात तो करते हैं, जैसे शाम के टाइम होते होते सियार जो है वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, किसी चीज को हो जाने पे कुत्ता अगर भौं भौं करता है तो आसपास के सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब संप्रेषण तो हुआ, लेकिन लिंग्विस्टिक संप्रेषण नहीं। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमारा ये जो लिटरेसी स्किल की बात करते हैं, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, एरिथमेटिक स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, इसकी बात जब करते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि हमारा जो एक तो होता है मानव संप्रेषण और एक होता है एनिमल संप्रेषण, जिसको जंतु संप्रेषण बोल सकते हैं, कि व्यक्ति व्यक्ति से जब बात करता है तो वो हो सकता है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन हो सकता है नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन हो। मैंने छोटा बच्चा जब भाषा का विकास नहीं होता है, हिंदी इंग्लिश या जो भी उसकी अपनी मातृभाषा है उसमें अगर उसका विकास नहीं होता, तब भी वो अपने परिवार से, अपने माँ से, अपने आसपास के लोगों से बात तो कर पाता है,
जैसा मैंने पहले बताया कि बच्चा रोता है, लेकिन रोने के स्टेज से जब आगे बच्चा बढ़ जाता है और उसको जरूरत पड़ती है, भूख लगी, तो वो जाकर के सिंबॉलिक कम्युनिकेशन होता है। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, कोई सिंबल लेकर, जैसे उसको भूख, हम लोग जो सबसे ज्यादा संप्रेषण करने के लिए माध्यम का चयन करते हैं दैट इज कॉल्ड

ओरल मोड। अब इसको एक चीज और ध्यान देना है, जिसमें हम लोग बोलते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग में ओरल ओरल क्यों आया, ओरल ओरल क्यों नहीं, इस पर भी सवाल उठता है। क्योंकि ओरल मीन्स समथिंग रिलेटेड विद ईयर, और ओरल मीन्स समथिंग रिलेटेड विद माउथ, ओरल से रिलेटेड है माउथ, मतलब सुनना और बोलना, लिसनिंग और स्पीकिंग। सो इसलिए इसको रखा गया है ओरल को पहले, बिकॉज हम कुछ सुनते हैं, इनपुट पहले मिलता है, बाद में आउटपुट निकलता है। छोटा बच्चा जब 4 महीने 5 महीने कंटिन्यूअस भाषा के बाढ़ में रहता है, फ्लड ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, कम्युनिटी में सब लोग उससे बात कर रहे हैं, अरे रे रे, मम्मा बोलती है उसे, अरे चुप चुप चुप, दूध पीना है क्या, बाहर चलना है क्या, अच्छा मालिश का टाइम हो गया, मालिश करना है क्या, तो ये करके उनसे बात करते हैं। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन माँ इतनी अच्छी टीचर है कि वो सारी चीजों को, बच्चे को बेशक नहीं समझ में आता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ माँ उनसे बात करती है कि अगला 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद हमारी भाषा को सीखेंगे और वो बैबलिंग स्टेज पे पहुंचेंगे, वो भाषा की समझ उनकी बढ़ेगी। सो ये है। दूसरा है विजुअल ग्राफिकल मोड, में हम रीडिंग राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद विजुअल फेशियल मोड, जैसे हम किसी के हाव भाव को समझते हैं, चेहरे के हाव भाव, भाव भंगिमा को समझते हैं। जैसे हमारा बॉस अगर गुस्सा है तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि आज उनके पास फाइल पुटअप करना है कि नहीं। ऐसा छोटा बच्चा जो है, उनको माँ का चेहरा देखकर समझ में आ जाता है कि हम माँ के पास जा रहे हैं तो वहां पे डांट पड़ने वाली है, गाली मिलने वाली है, थप्पड़ पड़ने वाला है, या फिर वो खुश होकर के चॉकलेट देने वाली। सो ये सारी चीजें छोटे बच्चे में जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, वो अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करता है संप्रेषण के। अब देखिए, कुछ लेना होता है अगर माँ से उसको या पापा से उसको, बच्चे को आप ऑब्जर्व कीजिए, मीठी मीठी बातें बोलेंगे, अपनी चीजों को बतलाएंगे, थोड़ा प्यार दुलार करेंगे उनसे, और उनको ये उम्मीद होती है कि इन सब चीजों से रीज करके उनके माता उनके पिता उनको बाहर लेकर के जाएंगे, घूमने खेलने के लिए देंगे, और कुछ ना कुछ उसको रिवॉर्ड देंगे। सो हो सकता है वो चॉकलेट टॉफी हो सकता है उसको कोई किट खरीद करके दे दिया, खेलने का खिलौना दे दिया, जो भी उनकी परिस्थिति हो या जो भी उनकी अच्छी चीजें हो जो उनको पसंद हो। इसके बाद एक विजुअल मैनुअल मोड है, जिसके ऊपर हम लोग पिछली बार के सेशन में चर्चा किए थे, साइन लैंग्वेज के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, और हमको खुशी हो रही है शरद सर ये बताते हुए और कृष्णा बेन कि यहाँ पे साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने 2 साल का पर्टिकुलर एक कोर्स चलाया है RCI की मान्यता के साथ, भारतीय पुनर्वास परिषद की मान्यता के साथ, और ये भाषा शिक्षक होंगे, और पूरे देश में अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो भी एक अलग अलग भाषा के रूप में साइन लैंग्वेज को चिन्हित कर रही है। आसाम से इसकी शुरुआत हो चुकी है, और वहां पे आसाम का जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने ये घोषित कर दिया कि डेफ बच्चों के लिए अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो साइन लैंग्वेज तो होगा ही। साइन लैंग्वेज अगर नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी वाले पर्सन अगर सीखना चाहते हैं तो 12वीं के बाद कोई भी एक ऑप्शनल भाषा के रूप में साइन लैंग्वेज को चुन सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी डिसेबल्ड पर्सन का, डेफ पर्सन का, और उसमें अगर उनको भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रहेंगे तो फिर तो हम कुछ कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बहुत जरूरी है हमारे। नेक्स्ट जो इसका है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव, हम जब बात करते हैं आपसे तो हमारे चेहरे की भाव भंगिमा भी आ रही है, साथ में हम हाथ भी आपका मूवमेंट करते हैं, पूरे शरीर का मूवमेंट होते रहता है, पोस्चर जेस्चर वो हमारा बदलते रहता है। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल बोल रहे हैं तो बोलेंगे ही, चेहरे के एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं होता। सो इसका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा प्राइमरी मोड और सेकेंडरी मोड, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में 2 तरह के मोड हो सकते हैं सर। जैसे ओरल ओरल मोड जो है, जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया कि ये लिसनिंग स्पीकिंग का है, वो हमारा प्राइमरी मोड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है। छोटा बच्चा लिखना पढ़ना नहीं चाहता, विजुअल ग्राफिकल स्किल उसके अंदर डेवलप नहीं है, लेकिन सुनता है बोलता है, धीरे धीरे करके वो सुनने बोलने की क्षमता बढ़ जाती है, और ये बेस बनता है हमारा जो पर्पजफुल कम्युनिकेशन जो है, या जो हमारा स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट है, या उसका प्रोफेशनल ग्रोथ है, लोगों के साथ एक एडवांस लेवल का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना है, उन सब के लिए ये प्राइमरी मोड का काम करता है ओरल ओरल कम्युनिकेशन। जो विजुअल ग्राफिकल कम्युनिकेशन की बात हमने की, वो सेकेंडरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो उसको आगे चल करके मदद करेगा एजुकेशनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा
कि ये एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है कम्युनिकेशन स्किल। ऐसा नहीं हो सकता कि आधे घंटे में बच्चे ने सीख लिया या एक घंटे का कोचिंग कर लिया और सीख लिया। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए बोला जाता है E3। E3 का मतलब होता है इन्वायरमेंट, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस। ये तीनों चीजें अगर नहीं होगी तो बच्चे में या व्यक्ति में लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं आज अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए जाऊं और एक घंटे में बतलाता है फर्राटा द्वारा अंग्रेजी बोलना सीखिए, फर्राटे द्वारा फ्रेंच बोलना सीखिए, ऐसा कहीं नहीं होता है। शरद सर, कितना टाइम माँ देती है बच्चे के साथ, कम्युनिटी देता है बच्चे के साथ, तब वो बच्चा 6 महीना में बाबा बाबा करना सीखता है। लेकिन जब डेफ बच्चे की बात हम करते हैं तो उसका शुरुआती दौर में जो प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो डेवलप हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने किसी की आवाज ही नहीं सुनी। बिकॉज उसके कान से होकर के जो दिमाग तक आवाज जानी चाहिए और वहां डब्बा भरना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। तो ऐसी परिस्थिति में जो फाउंडेशन ही नहीं बना प्राइमरी लैंग्वेज का, तो रीडिंग राइटिंग डेवलप होगी कहां से। हम शुरुआत में माँ हमको ABCD सिखाई, क ख ग घ सिखाई, और उस क से फिर आगे जाकर के टीचर ने उस बेस पर सिखाया कि क से कबूतर होता है, क से कमल होता है, कब क से कमला है या ख से खरगोश है। तो ये जो कंसेप्ट डेवलपमेंट है रीडिंग राइटिंग का, ये तो हमारा लिसनिंग स्पीकिंग डेवलप होगा तो ही होगा। डेफ बच्चों में सबसे बड़ी समस्या है कि उसका प्राइमरी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं लैंग्वेज का, तो फाउंडेशन का ही लॉस है। और उसमें फिर साइन लैंग्वेज उसको मदद करता है। लेकिन साइन लैंग्वेज में भी सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि अगर ऐसा बच्चा जिसके परिवार में कोई डेफ है तो वो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनहेरेंट कैपेसिटी के साथ वो सीख जाता है उनके कम्युनिटी में रह करके और एक्वायर कर लेता है उस लैंग्वेज को, जबकि हमको सेकेंडरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन रीडिंग राइटिंग के लिए हमको स्कूल जाना पड़ता है। ये बेसिक चीजें हैं। अब उसमें ऑडिटरी स्किल की बात करें कि ऑडिटरी स्किल डेवलप कैसे होता है, और उसमें हम देखेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें ऑडिटरी स्किल डेवलप करने के लिए शुरुआती दौर में ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब हम लोगों को भी ट्रेनिंग तो मिली, लेकिन अनोइंगली मिली है। मामा ने कितनी कविताएं और लोरी सुनाई होगी सोने के टाइम में, कितने लोगों ने बात किया होगा, सो उससे ऑडिटरी इनपुट तो हमको मिलता रहा। बोलने का एक्सेंट कैसे हो सकता है, कैसे बात करेंगे, तो वो जो तरीका हमने समाज से अनोइंगली सीख लिया तो हमको कम मेहनत करनी पड़ी। लेकिन डेफ पर्सन चूंकि सीख ही नहीं रहा है तो उनके लिए फिर असिस्टिव डिवाइसेज की जरूरत पड़ेगी, ऑडिटरी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, स्पीच ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, और ये पेरेंट्स नहीं कर पाते तो उनको आसपास का रिहैबिलिटेशन सेंटर से जाकर के जोड़ करके और किसी न किसी तरीके से उनको तरीका समझाना है। करेंगे तो पेरेंट्स ही, क्योंकि एक घंटा हमारे पास बच्चा आएगा, हम उसमें कोई ऐसा जादू की छड़ी किसी भी प्रोफेशनल के पास नहीं है कि वो एक घंटे में लैंग्वेज डेवलप कर दे। लेकिन क्या करना है घर पे जाके, यहाँ हम क्या करा रहे हैं, उसका ऑब्जर्वेशन, पेरेंटल ट्रेनिंग, सिबलिंग्स का ट्रेनिंग, कम्युनिटी का अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सारी चीजों के माध्यम से हम बताते हैं कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई। जैसे आज हम अलग तरह के हियरिंग इम्प्रूवमेंट के बच्चे के लिए सुनने की जो मशीन आती है हियरिंग एड, हम वो एडिट स्कीम में फ्री दे रहे हैं। हम पूरे देश में 500 बच्चों का हर साल कॉक्लियर इम्प्लांट करती है सरकार, और एक कॉक्लियर इम्प्लांट के ऊपर अप्रोक्सीमेट 7 लाख आसपास का खर्च कर रही है। और हियरिंग सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि कॉक्लियर इम्प्लांट अगर किसी ने कराया 7 लाख का, उसमें उनका स्पीच थेरेपी का, ऑडिटरी ट्रेनिंग का, वो सारा पैकेज फिक्स होता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये कर नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारे स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता। अब देखते हैं कि हियरिंग और लिसनिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। जस्ट एक लाइन इस पर लेना चाहूंगा, अगर आप पर्पसिव लिसनिंग करते हैं, माने किसी चीज के ऊपर अगर फोकस करते हैं, तो वो लिसनिंग है। जैसे शरद सर यहां से बैठ करके मगअप कर रहे, सुन रहे हैं, सीख रहे, समझ रहे हैं, होता क्या है ये सारा का सारा, ये जो पंडा क्या है, तो ये आपका पूरा ध्यान इधर है। आप मनसा वाचा कर्मणा, ये जो तीनों चीज कहते हैं उससे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप केवल हियरिंग नहीं कर रहे, आप लिसनिंग कर रहे। हियरिंग का जो प्रोसेस है वो तो केवल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि हमारा शरीर कान तो हमेशा खुला हुआ है, सो उस परिस्थिति में कान में आवाज आई, हमने सुन ली, लेकिन उसको ब्रेन तक पहुंच भी गया और उसको हम भी उसका प्रोसेसिंग नहीं कर पाए। जैसे क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे कई बार ऐसा होता है, आधे बच्चे अटेंटिव है, आधे बच्चे में सुनने के प्रति रुचि नहीं। सो जब रुचि नहीं हुई तो केवल हियरिंग हुआ, लिसनिंग नहीं हुआ। ये चीजें हैं।
दूसरी कंडीशन है कि अलग अलग स्टेज पे हम इसमें दिखाने की कोशिश किए हैं प्रेजेंटेशन में कि किस लेवल पे रहेगा बच्चा, तो क्या उसको कम्युनिकेशन का स्किल डेवलप होता है। जैसे छोटा बच्चा है, ऑडिटरी अवेयरनेस की बात हम करते हैं, सबसे पहले क्राइंग स्टेज जिसकी बात हमने करी, और वो क्राइंग स्टेज के बाद कुइंग स्टेज आता है, स्माइलिंग का स्टेज आता है। बच्चा 3 महीने 4 महीने का हो गया, 2 महीने के बाद से ही वो समझना शुरू कर देता है दूसरे लोगों के स्माइल को समझना, और स्माइल अगर आप करते हैं उसके साथ तो वो भी आपको स्माइल करके रिप्लाई करता है। आप अगर उसको कुछ बोलते हैं, सुनता है, तो उस पर आपको रिएक्ट करता है, लोकलाइज करता है, आवाज किधर से आ रही है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेट करना मतलब पापा की आवाज मम्मा की आवाज अलग है, मेल की आवाज फीमेल की आवाज अलग है, कुत्ते की आवाज बिल्ली की आवाज अलग है, मोबाइल की घंटी और डोरबेल की घंटी इसकी आवाज अलग है। सो उसके आधार पे वो खुश होगा तो हंसेगा, अगर उसको आवाज पसंद नहीं आएगी तो वो रोएगा। सो ये डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाता है अलग अलग साउंड स्टिमुलस के। इसके अलावा हमारा वोकलाइजेशन है, हमने बोला बैबलिंग स्टेज, उसके अलावा जार्गोन्स आते हैं, और साल भर होते होते उसमें फर्स्ट वर्ड डेवलप हो जाता है। कहते हैं कोई बच्चा अगर 1 साल का हो गया तो फर्स्ट वर्ड, 1 वर्ड का वो सेंटेंस शुरू करता है, 1 वर्ड सेंटेंस। मम्मा को जाकर बोलेगा भूभू, और मम्मा समझ जाती है कि उसको दूध पीना है, वो दूधू बोलेगा, भूभू बोलेगा, या कुछ भी बोलना है तो एक शब्द बोला और वही पूरा एक सेंटेंस के रूप में मान करके मम्मा उसको समझ करके और रिएक्ट करती है। बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा, और मैं आगे चलना चाहूंगा कि हमारा रीडिंग स्किल की बात जब हम करते हैं, सामान्यतः लोग समझते हैं कि रीडिंग स्किल का मतलब तो हुआ पढ़ने से संबंधित, लेकिन हम पढ़ तो कई बार अंग्रेजी के टर्मिनोलॉजीज को ले लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे जो हैं वो किसी तरह उसको सीख करके, किसी तरह छोटी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी सीख लेते हैं तो वो अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी पढ़ना एक विजुअल एक्टिविटी है, लेकिन अंग्रेजी का कॉम्प्रिहेंशन भी उनको है क्या? हम कई बार अखबार पढ़ते हैं, छोटे बच्चे अखबार पढ़ते हैं और उनको अखबार पढ़ना तो आ गया लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। जैसे मैं इसी में किसी से पूछूं कि लाल शब्द जो है वो, या काला जो है वो, उसके लिए एक बिहार में टर्म यूज होता है कि लाल भुटभुट है कि टूटू है। अब ये भुटभुट और टूटू ये क्षेत्रीय टर्म, ये वही आदमी समझ पाएगा जो वहां पे रहा है और उसको मगही भाषा आती है। या दूसरी चीज बोले, चालत्य बस मगे मदे चढ़ू अगर उतरू नका आपला जीवाला धोखा है। सुनाई तो निहायत गरीब आदमी होगा, आधा फटी हुई धोती पहना है, ऊपर कोई कपड़ा है नहीं, ये मजदूर वर्ग है। दूसरी

ऐसी परिस्थिति में अब हम देखते हैं कि ये जरूरतें क्या होती है, तो खास करके जब है तो वो अवश्य ये देखना पड़ेगा कि जो छोटा बच्चा हमारे पास आया है तो क्या वो जो फाइनाइट सिंबल्स हैं, लैंग्वेज के जो सिंबल्स हैं, हम जैसे क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, या ए बी सी लिखते हैं, इसमें अलग अलग जो कंडीशंस है, अलग अलग जो सिंबल्स बनाते हैं, ए लिखने का तरीका अलग, बी लिखने का तरीका अलग, तो क्या इसको डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, इसको पहचान पाता है? दूसरी चीज उसमें ये है कि क्या वो प्रोनंसिएशन कर सकता है, क्या सिंबल्स जो अलग अलग बने हुए हैं, क ख ग घ, क्या उसको प्रोनंसिएशन कर सकता है, क्या पढ़ सकता है, क्या आर्टिकुलेट कर सकता है क्या? तीसरी चीज है कि क्या वो उसको विजुअली डिस्क्रिमिनेट कर सकता है क्या, जो शब्द लिखे हुए हैं या अक्षर लिखे हुए हैं, क्या उसमें विजुअली डिस्क्रिमिनेट कर सकता है क्या उसको? अगर ये स्किल उसके अंदर नहीं है तो वो मीनिंगफुल वर्ड को पहचान नहीं पाएगा, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा और शब्दों को नहीं पहचान पाएगा, तो वो एक साथ जोड़ करके पढ़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एक व्यक्ति है जो व्यवसायी था और उसने एक बोर्ड बनाने के लिए दिया और बोर्ड पे लिखवाया रविवार को दुकान बंद रखा जाएगा। अब वो बोर्ड पर लिखने वाला जो होता है वो इतना पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, तो उसने क्या किया, दुकान बंद रखा जाएगा में बंद में और रखा में रखा का र जो है वो बंद के साथ जोड़ और खा अलग लिख दिया। अब दिक्कत क्या हो गई, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, रविवार को दुकान बंदर खा जाएगा। छोटी सी चेंज हुई है, केवल एक अक्षर उस शब्द से हट करके दूसरे शब्द में जुड़ गया और रविवार को दुकान बंद रखा जाएगा के जगह पे पूरा अर्थ ही उसका बदल गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, रविवार को दुकान बंदर खा जाए, तो उसका पूरा जो बना हुआ बोर्ड था वो बेकार हो गया उसका। सो भाषा की महिमा बहुत अजीब है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है, और कई बार हम भाषा को सुपरफेशियल तौर पे समझते हैं, हम उसके इनडेप्थ में जाकर के हम उसको अगर समझते हैं तो फिर व्यक्ति एडवांस लेवल पे उसका इस्तेमाल करना शुरू करता है और वो कवि बन जाता है, लेखक बन जाता है, अलग अलग चीजों को गहराई से लिखता है, टीकाकार भाष्य लिखना, उपनिषद का भाष्य लिखना, उसके ऊपर टीका लिखना, ये सारी चीजें उसके अंदर डेवलप हो जाती है, वो बहुत एडवांस लेवल का आदमी हो गया। फिर उनके पास अद्भुत शब्द संकलन है, शब्दों को समझने की क्षमता है, ये सारी चीजें होती है। दूसरा और चीजें है कि क्या वो दो शब्दों के बीच में एम्प्टी स्पेस को समझता है, क्या वो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना सीखता है, क्या वो बाएं से दाएं की तरफ जैसा सामान्यतः भाषा में सीखते हैं पढ़ने के लिए, क्या वो कर सकता है क्या, या अगर नहीं कर, कुछ भाषाओं में दाहिने से बाएं की तरफ पढ़ते हैं जैसे उर्दू में, उसमें उल्टा पढ़ना पड़ता है, तो क्या इतना उसको नॉलेज है और इतना स्किल डेवलप है? जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो समझ पाते हैं क्या? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का, छोटा बच्चा है उसको हम पढ़ा रहे हैं, अब एक मिलाना शब्द है या काटना शब्द है, काटना शब्द का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैसे समझना जरूरी है, इसको मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से बतलाना चाहूंगा अपने सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, कि उसमें देखिए कोई छोटा बच्चा है, जब हम उसको सिखाते हैं तो किसी शब्द को ऐसे शब्द का संकलन हम करते हैं या चयन करते हैं जिसको हम टेंजिबल रूप में सामने दिखा सके, टेंजिबल रूप में माने वस्तु के रूप में सामने हाथ में दिखा सके, जिसको वो महसूस कर सके। जैसे काटना शब्द है तो पेपर काटना, कपड़ा काटना या कोई लकड़ी काटना, ये काटना समझाना बहुत आसान है, लेकिन उसके बेस पर आगे चल करके उसको ये भी समझाना जरूरी है, जब 8वीं 10वीं 9वीं में पहुंच जाएगा वो बच्चा तो उसी डेफ बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि सजा काटना भी होता है, ततैया का काटना भी होता है, दांत काटना भी होता है, और ये चीजें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है तो कई बार समझ में नहीं आता। बात काटना, अब ये बात काटना कुछ कैची से काटने जैसी चीज तो है नहीं, तो ये लेवल जो है वो बच्चे में बाद में आता है। दूसरी चीज है हम दिखाना चाहेंगे कि कहाँ बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, ये प्रॉब्लम्स कहाँ करते हैं, सो कॉम्प्रिहेंशन में, सेंटेंस के कॉम्प्रिहेंशन में इनको दिक्कत होती है, तो आइसोलेटेड वर्ड के रूप में उसको पढ़ता है बजाय कंप्लीट एक सेंटेंस के रूप में समझने। दूसरी कंडीशन है कि जो लैंग्वेज का फिगरेटिव लैंग्वेज जो है उसका समझने में इनको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है, संख्याओं के बारे में समझना, मात्राओं के बारे में समझना, अलग अलग मात्रा जैसे आधा किलो पौना किलो ये बताया तो क्या उसको समझ पाता है वो, ये चीज है। दूसरी चीज कि जो वर्ड है उसको आइसोलेशन में पढ़ने के बजाय क्या एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ करके पूरे सेंटेंस को पढ़ पा रहा है, वो एक इशू उसमें आती है डेफ बच्चों को। और इसके बाद अब ये कंडीशन आती है राइटिंग की, मैं थोड़ा सा समय का भी ध्यान रख रहा हूँ ताकि हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है वो समय पे

0: खत्म हो सके। सो राइटिंग में भी इसी तरह की समस्या आती है, और वो जो अपने डिजायर को, अपने विल्स को, अपने जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, थॉट्स है, उन सब चीजों को प्रशस्त करने का, दूसरे के सामने रखने का ये एक माध्यम है। अपने अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी जो है उसको व्यक्त करने का माध्यम है राइटिंग। और इसमें बच्चे जो गड़बड़ करते हैं, वो सामान्यतः जब डेफ बच्चों को लिखने के लिए आप देंगे कि आप अपने बारे में 10 लाइन लिखो, तो आप देखिएगा बहुत सिंपलर शब्द जो है वो यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंसेज यूज करेंगे, शॉर्ट सेंटेंसेज यूज करेंगे, और ऐसी कंडीशन में एक ही शब्द का बार बार इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेज में। So, जैसे लिखते हैं कि राम ने खाना खा लिया, राम चला गया, राम अब पढ़ने के लिए जाएगा, राम खेलने के लिए जाएगा। सो, राम के जगह पे वह वर्ड जो है, प्रोनाउन जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता। मैक्सिमम नाउन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का नहीं। ये उसको एडवर्ब समझने में, वर्ब समझने में, ये सब में काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कितने तरह के रीडिंग हो सकते हैं। हम जब रीडिंग की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, सो इसमें पर्पजिव रीडिंग हो सकते हैं कि किसी पर्पज के लिए हम पढ़ रहे हैं। हमको आनंदित होना है इसलिए हम चुटकुला की किताब पढ़ रहे हैं, हमको आनंदित होना है इसलिए कोई मजा आता है तो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, मजा आता है तो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, मजा आता है तो किसी को बाइबल पढ़ने में मजा आता है। हो सकता है कि उसको अखबार पढ़ने की लत लग गई हो सकता है कि कोई कहानी पढ़ने की लत लग गई हो। हमारा पर्पस क्या है रीडिंग का? दूसरी चीज है कि हम मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं जनरली, उनको पहले नन्ही दुनिया की किताब आती थी, सरद सर अगर आपको याद होगा, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वो फनी लैंग्वेज में बना हुआ रहता था, चेहरे उसके कार्टून के बने हुए होते थे, तो इन सब चीजों से बच्चे को सीखने में थोड़ा मजा आता है। और आप टॉम एंड जेरी देखे हैं, उसके जो लैंग्वेज है बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखिए सीरियल जब भी देखने के लिए करेंगे, मोटू पतलू बच्चा उसको पसंद करता है, क्यों? उसका भाषा उसकी जो है वो फनी है और वो उसके लेवल की भाषा है और उसको मजा आता है। वो चूहा बिल्ली भाग रहे हैं, मजा आता है उसको, और दूसरे जो अलग अलग तरह के कार्टून्स है उसको देख करके। सो ये अलग अलग टाइप के रीडिंग हो सकते हैं। स्टाइल ऑफ रीडिंग क्या है हमारा? लाउड हम रीडिंग कर रहे हैं या मन ही मन पढ़ रहे हैं, ये हो सकता है। हमारा असिस्टेंस क्या जरूरत पड़ रही है? बच्चा पढ़ता है, कहते हैं उसको, हम लोगों का इमला पढ़ने के लिए कहता था कि जब क्लासरूम में खड़े हो गए, बारी बारी से टीचर देते थे कहानी को पढ़ो, और बीच में रोक देते थे, पूछते थे वो कहाँ अभी पढ़ रहे हैं, तुम उंगली रखो उसके ऊपर और बताओ, और प्रायः उसमें बड़ी मार पड़ती थी, क्योंकि एक बच्चा पढ़ता है तो दूसरे लोग बोर होते थे और वो ध्यान ही नहीं देता था। तो ये डेफ बच्चों के साथ समस्या आती है, उसमें जो लैंग्वेज का असिस्टेंस लेवल है वो कई बार हो सकता है कि बीच बीच में आपको एक आध शब्द पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है तो आपने थोड़ा प्रमोट कर दिया, हो सकता है कि पूरा ही पढ़ करके आपने सुनाया और उसको इमिटेट कर रहा है वो, ये डिपेंड करता है। अब उसके बाद फिर इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं स्टाइल्स के ऊपर, अब राइटिंग के ऊपर आएंगे कि कॉपिंग क्या होता है। राइटिंग जो होता है उसमें तीन तरह की राइटिंग हो सकती है, एक तो कॉपिंग हो सकती है, दूसरा गाइडेड राइटिंग हो सकती है, और तीसरा इंडिपेंडेंट राइटिंग हो सकती है। ये लेबल है। जब छोटे क्लासेज में बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे भी और डेफ बच्चे भी, तो हम क्या करते हैं, एक शब्द लिख दिए उसका बोलते हैं नीचे कॉपी करो, या एक लाइन लिख दिए और उसको बोलते हैं कि इसको देख करके लिखो। सो बेसिकली इसमें हम कॉपिंग का कर रहे हैं, और इसमें उसको दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता, केवल देखना है और उसका जो शब्द का या जो उसका सिंबल है उसको देख करके एज इट इज उतारना होता है, देखना देख करके लिखना होता है। दूसरा उससे एडवांस लेवल पे आया तो गाइडेड राइटिंग होती है कि हम उसको बोलते हैं 10 शब्दों में लिखिए या 10 वाक्यों में लिखिए या निबंध लिखिए, डिपेंड करता है कि बच्चा कितना बड़ा है, या हम उनको लिखते हैं खाली स्थानों को भरो। तो ऐसी कंडीशन में रीडिंग डेवलपमेंट और राइटिंग डेवलपमेंट दोनों एक साथ हो रहा है, बिकॉज वहां कॉम्प्रिहेंशन भी हो रहा है और एक्सप्रेशन भी हो रहा है। इंडिपेंडेंट राइटिंग की बात हम करते हैं कि बड़ा बच्चा हो गया अब अपने से लिख सकता है, जैसे शरद सर ने कई सारी किताबें लिखी है, तो वो उनका इंडिपेंडेंट राइटिंग है कि कोई अगर व्यक्ति एडवांस लेवल पे पहुंच गया तो इंडिपेंडेंट राइटिंग कैसे कर सकता है। सो ये एक हमारा प्रेजेंटेशन था डेफ बच्चों में लिटरेसी स्किल, लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के, और अब हम शरद सर के पास चलना चाहेंगे अगर इसके बारे में कुछ और चर्चा करनी है। शरद सर
1: जी, मैं सुन पा रहा हूँ और बिल्कुल जी, तो जी आपने लगभग पूरा अपने पुनर्वास की संकल्पना और उसके उसके पूरे दर्शन के बारे में आपने विस्तार से बताया, और इनफैक्ट पुनर्वास के लिए जो सुविधाएं अवेलेबल है वो भी अच्छा बताई। क्या ऐसा कोई की बात है जो आप इस इंटरव्यू में चाहते हूँ और मैं आपसे पूछना भूल गया हूँ, और खास तौर पे कि एक सामान्य डेफ व्यक्ति आप तक कैसे पहुंच सकता है, और भारत सरकार ने पुस्तकों आईआरटीसी की भी स्थापना की और सीआरसी की भी स्थापना की कई राज्यों में, तो ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और डेफ व्यक्तियों के पुनर्वास में कार्य कर रहे व्यक्तियों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर किस प्रकार से डेफ इंडियन साइन लैंग्वेज के क्षेत्र में है, कृपया इस बारे में बताएं।
0: जी तरत सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सबसे पहले तो अपने श्रोताओं को ये बतलाना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये उनका एक सामाजिक दायित्व है कि अपने आसपास में अगर कोई डेफ पर्सन हो, कोई डिसेबल्ड पर्सन हो या सीनियर सिटीजन हो, उनको सरकार की योजनाओं के साथ जोड़े। हमारा ये अवेयरनेस कार्यक्रम जो चल रहा है मन की आंखों से, उसका भी पर्पज वही है कि आम सामान्य मानवीय तक सरकार की योजनाओं और बाकी चीजों को, लाभकारी चीजों को, कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाए। मैं उनके साथ सीआरसी का नंबर शेयर करना चाहूंगा, अगर कभी कुछ जरूरत पड़ती है कंसल्टेंसी की या यहाँ से कोई उपकरण लेने की, तो उनके लिए मैं बतलाना चाहूंगा कि आप 0141-268-2075, मैं रिपीट करना चाहूंगा 0141-268-2075, इस नंबर पर संपर्क करके सीआरसी से कभी भी सेवाओं के बारे में जानकारी, सुविधाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। खास करके अगर डेफ पर्सन की बात करें तो कहीं भी अगर डेफ पर्सन को स्कूल में एडमिशन में दिक्कत आ रही है, हम उनके स्थानीय गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, स्थानीय स्वशासन के साथ मिलकर के उनकी मदद करेंगे ताकि उनको पढ़ाई में व्यवधान न हो। अगर उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की दिक्कत हो रही है तो समग्र शिक्षा का अभियान हर एक विद्यालय को कवर करता है आज के डेट में, सो उसके लिए वो अपने स्थानीय डीईओ से संपर्क कर सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं ताकि उनको टीचर मिल सके। अगर उस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ हियरिंग एड उसके पास नहीं है, तो उसके लिए 3 कागज लेकर के सीआरसी से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। या अपने आसपास के जो पीएमडीके है, प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, भारत सरकार की बहुमुखी योजना है ये और फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके माध्यम से किसी भी तरह का उपकरण किसी भी दिव्यांग जन के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। कुछ क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना होता है, जैसे दिव्यांग जन का दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID वो रहना चाहिए 40% या उससे ज्यादा का, तो ऐसी कंडीशन में उनको हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांटेशन के लिए, उनको कॉकलियर इम्प्लांटेशन के लिए 100% डेफनेस की जरूरत पड़ती है सर्टिफिकेट की, चूंकि उसको जब हियरिंग एड से काम चलता है तो फिर हम ऑपरेशन की तरफ नहीं जाते। कॉकलियर इम्प्लांटेशन का मैं अलग से चर्चा करता हूँ, अभी मैं पहले हियरिंग एड के बारे में बता दूं। सो कोई भी व्यक्ति उसमें हियरिंग एड के लिए आते हैं तो उनको UDID कार्ड और एक आय प्रमाण पत्र जो 22,500 रुपए तक होगा अगर आय प्रमाण पत्र, तो उनको हियरिंग एड फ्री मिलेगा। 30,000 रुपए तक अगर मासिक आमदनी उनकी है तो उसके लिए उसको 50% का कंसेशन मिलेगा, और अगर आय उनका 30,000 रुपए मासिक से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में वो पे कर सकते हैं, इसलिए सरकार ने उनके लिए कोई भी छूट नहीं दिया, पर सरकार का निर्धारित जो रेट है वो दे करके वो सामान को खरीद सकते हैं। अब मैं 4,000 के आसपास का अप्रोक्सीमेट रेट, अभी मैं ध्यान में नहीं है कि 4,000 समथिंग कितना है, लेकिन 4,000 के आसपास का एक हियरिंग एड मिलता है और वो उनको फ्री मिलता है। 8,000-8,500 रुपए का हियरिंग एड उनको फ्री देते हैं, लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल। अब कॉकलियर इम्प्लांटेशन की बात करें, ऐसे बच्चे जो 5 साल से नीचे के हों और उनको सुनने में दिक्कत है, और इतनी दिक्कत है कि हियरिंग एड से उसको फायदा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उनको कोई एसोसिएटिव डिसेबिलिटी नहीं। तीसरी कंडीशन है कि उनका सारा वो टेस्टिंग का प्रोसीजर जो है, लैंग्वेज टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और जितना भी तरह के टेस्ट होते हैं, वो सब प्रोसेस पूरा हो गए। तो ऐसी कंडीशन में अगर सब जगह से ये पता चल गया कि यह कॉकलियर इम्प्लांटेशन का सुटेबल केस है, देन सरकार उनको 7,00,000 रुपए तक का कॉकलियर इम्प्लांटेशन का खर्चा अनुदान के रूप में देती है। वो उनको नहीं मिलेगा, वो आकर के हमारे पास या जो राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान है अपना AYSA NISHT मुंबई, वाणी एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, तो उसके पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कॉकलियर इम्प्लांटेशन के लिए। वहां से फिर उनको संपर्क करके और बता दिया जाएगा कि इस हॉस्पिटल में जाकर के उनको टेस्टिंग करवानी है और को टेस्टिंग का रिपोर्ट कैसे करना है। सो पूरी जानकारी उस पर उपलब्ध है अली अवर जंग के वेबसाइट पे, गूगल में जाकर के AYJNISHD अली अवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज इसको टाइप करना है, और शरद सर उनके पास पूरा एक वेबसाइट खुल करके आएगा। कॉकलियर इम्प्लांटेशन और एडिप सेक्शन में जब जाएंगे तो उनको सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगा, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, इम्पैनल्ड सेंटर्स कौन कौन से हैं जहां जाकर के वो संपर्क करें, और वो पूरा उनका एड्रेस और फोन नंबर सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। जी शरद सर,
1: श्रोताओं बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीआरसी के माध्यम से हम कॉक्लियर इम्प्लांट भी करवा सकते हैं और साथ साथ हियरिंग एड हमें की सुविधा भी हमें प्राप्त हो सकती है। सर एक महत्वपूर्ण विषय रह गया कि इस क्षेत्र में जो पुनर्वास के क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों खासतौर पर डेफ व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में जो युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध हैं वे पर हम अलग से कभी गंभीरता के साथ बातचीत करेंगे। पूरा हम चाहेंगे कि इस पर एक पूरा शो या पूरा एक पूरा ब्रॉडकास्ट करें हमें
0: जरूर रोजगार के जितने अवसर हैं उस पर हम लोग अलग अलग डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक एक घंटे का अलग से सेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं सामान्य तौर पर बता दूं कि उनके लिए सामान्य क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर है जिसको ओपन एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं 4% सीटें उनके लिए रिजर्व है चाहे किसी भी चीज की वैकेंसी आए। दूसरा बहुत सारे बैकलॉग वैकेंसी जाते रहते हैं जो पर्सन्स विद हियरिंग इम्प्लॉयमेंट के लिए होता है। तो अब इनको ध्यान रखना है रोजगार समाचार पत्र पे, इनको ध्यान रखना है जो डेफ पर्सन है हमारे उनको ध्यान रखना है कि कहाँ से अलग अलग वेबसाइट्स का हम चयन कर सके या freejobalerts.com हालांकि वो प्राइवेट वेबसाइट है लेकिन बावजूद उसके डिस्क्लोजर के साथ बात करना चाहूंगा कि उस पर जाकर के अगर चेक करते हैं तो कहीं से भी आता है कोई एडवर्टीजमेंट तो उस पर तुरंत वो अपलोड करते हैं, इसलिए वो भी एक अच्छा वेबसाइट है। बाकी जितने भी हमारे राष्ट्रीय संस्थान है या कंपोजिट रीजनल सेंटर है उनके साइट्स पे जाकर के अभी गूगल में जाकर के जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस स्टेट में वो चाहते हैं सीआरसी जयपुर सीआरसी पटना सीआरसी अहमदाबाद सीआरसी गोरखपुर सीआरसी लखनऊ इतना लिखना सफिशिएंट होगा, वेबसाइट खुल जाएगा वहां सामने पहला पेज दिख जाएगा वेबसाइट का। सो ऐसी कंडीशन में वो सारी जानकारी वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे माध्यम से और कौन कौन सी सुविधाएं दे सकते हैं क्योंकि एक घंटे में सारी चीजों के बारे में चर्चा करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको खजाने की चाबी दे दूं कि आप वहां से सारी जानकारी दे सकते हैं। जी सर सर
1: जी तो श्रोताओं आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मन की आंखों से इसलिए कि कुछ चीजें यदि आपकी सामान्य आंखों से छूट जाए तो दिव्यांग व्यक्तियों की विशिष्ट शक्तियों से हम उन चीजों को से जोड़ सके। इसलिए नजर की नहीं नजरिए की जरूरत ज्यादा है जीवन जीने के लिए। तो आप ऐसे ही सुनते रहे अपने फेवरेट प्रोग्राम को और आप सुन रहे थे नीरज सर को। आप फिर किसी प्रोग्राम में नीरज सर के साथ और इस विषय पर गंभीर बातचीत के लिए फिर से मिलेंगे। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमको आमंत्रित करने के लिए और ये मौका देने के लिए लोगों के साथ जुड़ने के लिए। मैं अंतिम एक शब्द के साथ इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा कि हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं बहता कान सावधान, कभी भी कान से अगर मवाद निकलता है पस निकलता है कान में डिफॉर्मिटी दिखती है बाहर से दिखने वाली या कान में रैसेज हो रहे हैं लाल हो रहे हैं बच्चा बार बार कान को खुजलाता है ऐसी कंडीशन में चुप नहीं बैठना है, पूरी जिंदगी खराब हो सकती है उसकी, तुरंत ऑडियोलॉजिस्ट के पास या हॉस्पिटल में जाकर के संपर्क करें ताकि इंटरवेंशन हो सके। ओम शांति।
1: अति सुंदर बहता कान सावधान जी, आपका आभार कार्यक्रम।
0: थैंक यू सो मच सर। रेडियो मधुबन और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिभागीगण का भी आभार और जो इस पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट की है हमारी कृष्णा बेन उनका भी आभार, हमको आपने मौका दिया सीआरसी परिवार को आपने आमंत्रित किया। हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे समाज के कल्याण के लिए समाज के संबल देने के लिए और उनको एम्पावर्ड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

बेहद ही सच कहा है, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। यह जो हमारी और आपकी मुस्कान है, यह भी प्रभु की कृपा है, प्रभु वरदान है। कितना सुंदर कहा गया है, कितना अद्भुत है यह शब्द, है ना। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर से हम सब तैयार हो गए हैं सद्गुणों को, सद्विचारों को अपनाने के लिए। सद्विचारों के सागर प्रभु से आज हम सद्विचार सद्गुण अपनाएंगे। फिर से रेडियो सुनने वाले तमाम श्रोता बंधु हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में। गुलदस्ता कार्यक्रम आप सभी को आज यही पैगाम दे रहा है, यही संदेश दे रहा है कि सद्विचारों के झरने में अपने आप को ले आओ।

0: ओम शांति, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सुविचार, स्वच्छ विचार, साफ विचार सही दिशा की ओर बढ़ाता है हमें। स्वच्छ विचार के लिए प्योर एटमॉस्फेयर में रहना या बनाना आवश्यक है। दिव्य जीवन का उद्गम सद्विचार, सद्बोल, सत्कर्म से होता है। सद्भावना ही सुविचार और सद्विचार का बीज है। प्रभु से मिलन मनाना, खुशियों से मुलाकात करना, यह सब सद्विचारों के झरने में अपने आप को लेकर आने का एक सुगम मार्ग है। बने रहिएगा स्वर्णलता के साथ पूरे कार्यक्रम के अंत तक, क्योंकि आज का प्रोग्राम अन्य दिनों के कार्यक्रम से थोड़ा हटके है, थोड़ा भिन्न है, क्योंकि भिन्नता के सागर में ही हम सब हिलोरे लेते हैं। हर सप्ताह कार्यक्रम है गुलदस्ता। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मुस्कान को बिखेरते रहिए।

का, सद्विचारों का, भिन्नता का, वैरायटी का सागर है वो प्रभु ईश्वर भगवान, जिनका ध्यान धरते ही सद्विचार, सद्बोल, सद्गुण चारों दिशाओं में फैलने लगते हैं। सद्गुणों का व सद्विचारों का झरना आज हम सब बनेंगे, और यह बनकर आइए कल कल करते हुए गिर पड़े सभी के हृदय में। तैयार है ना? आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं कुछ ऐसे विचार जो मैं भी आपके पास ना हूं, और खास उन श्रोता बंधुओं के लिए जिनके पास ऐसे विचार पहुंचते नहीं हैं। तो ये विचार आज इंग्लिश में भी हो सकते हैं तो हिंदी में भी हो सकते हैं। बहुत दिनों से मेरा दिल कह रहा था कि मुझे जो बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेजेस मिलते रहते हैं, इतने सारे गुणवान जो हमारे साथी हैं वो हमें भेजते हैं, तो क्यों ना हम उन साथियों तक ऐसे विचारों को पहुंचाएं जिन्हें सुनकर उनके अंदर भी प्रभु मिलन मनाने को जी चाहेगा, उनके मन में भी

ऐसी बातों को अपने जीवन में धारण करने के लिए उत्साहित हो उठेगा। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वर्णलता के साथ देते चले प्यार और दुआएं सभी।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: देते चले प्यार, देते चले प्यार, प्रभु का लुटाते चले प्यार, प्रभु का बांटते हुए चले। ऐसा करने पर जीवन की जो बगिया है वह मुस्कुराती है। जीवन के बगिये में तरह तरह के रंग बिरंगे मन भावन फूल खिलते हैं और जीवन के रास्ते में दिए जगमगाने लगते हैं। ऐसी ही जिंदगी आप चाहते हैं ना, तो आज इन सुविचारों के झरने में आपको लेकर आ रही हूँ मैं स्वर्णलता। जैसा संग वैसा रंग, यानी अगर हम अच्छे विचारों वाले, अच्छे मन वाले लोगों के साथ, मनुष्यों के साथ उठना बैठना करते हैं और प्रभु प्रीत के गीत के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, तो हमारा मन का वातावरण भी तुरंत साफ हो जाता है। और मन का वातावरण कैसे साफ होता है? विचार पढ़कर, विचारों को आदान प्रदान कर, विचारों को बदल कर। विचार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, इसलिए सद विचारों को जब हम पढ़ते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो हमारा मन का आंगन स्वच्छ हो जाता है। बने रहिए स्वर्णलता के साथ और आज के सद विचारों वाले गीतों को सुनकर, सद्गुणों को धारण कर ऊंचे आसमान में उड़ते रहिए और उड़ाते रहिए।

सीख से भरे गीत, शिक्षा से भरे गीत, सद्गुणों से भरे गीत, कार्यक्रम गुलदस्ता में आप सुन रहे हैं, जहां पर अभी हमने सुना कि जब हम स्वयं को बदलेंगे तो जग बदलेगा। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आज हम सुन रहे हैं ऐसे गीत जो सद्गुणों से, सद्विचारों से भरे हैं। कहते हैं हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान और दौलत है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना और दूसरों के प्रति दया भाव रखना सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे सुविचार आज हम आपके साथ बांट रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। कहते हैं परमात्मा

0: मन की स्थिति और जीवन की परिस्थिति श्रेष्ठ विचार युक्त गीत सुनने से बदल सकते हैं, और बदलाव तभी आएगा जब हम उसे यूज करेंगे अपने जीवन में। जैसे अभी हमने सुना, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। अब यह सब समझने के लिए जीवन हमें समय प्रति समय कोई ना कोई घटना से वाकिफ कराती है, कोई ना कोई परिस्थिति से वाकिफ कराती है, और जब हम उसमें जीत जाते हैं तो संभल जाते हैं, और जब हम हार जाते हैं तब भी संभलने के लिए उपाय ढूंढते हैं, और ये उपाय हमें इन श्रेष्ठ विचारों से ही मिलते हैं। कहा जाता है कि एक सच्चा शुभचिंतक वह है जो आपके सामने आपकी कमजोरियों के बारे में बात करता है और दूसरों के सामने आपकी योग्यताओं के बारे में गर्व से बात भी करता है। तो ऐसे शुभचिंतक क्या हमारे जीवन में हैं? जरा ढूंढिए, जरा गौर से देखिए। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। तो इसलिए आइए हम दुआएं दें और दुआएं लें, ताकि हम जीवन में कुछ अच्छा अच्छा सोच सकें, चाहे स्थिति सही ना हो, चाहे परिस्थिति सही ना हो। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए स्वर्णलता के साथ।
1: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
2: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

हमारे दिलों में दुआओं का सिलसिला चलता रहे नॉन स्टॉप, कभी भी यह रुके नहीं, यह कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? जब हम श्रेष्ठ विचारों के साथ अपने मन को, अपने इंटेलेक्ट को, बुद्धि को जोड़ते हैं, साथ ही जब हम ईश्वरीय गीतों को सुनते हैं जिसमें वैल्यूज भरे पड़े हैं, जैसे आज के गीतों को हमने सुना जिसमें सत विचार, सत गुण, सत बोल भरे पड़े थे, ऐसे गीतों के साथ जब हम अपने दिल को जोड़ देते हैं तो दुआओं का सिलसिला चलता रहता है। इसलिए कहते हैं कि बारंबार ईश्वर भगवान पे दिल वारी हो जाता है जब वह एक पटरी बनकर जीवन को आसान बना देता है, और क्या करता है, बिन बताए अड़चनों को दूर कर देता है। क्योंकि ऐसे गीत तभी बने हैं जब ईश्वर का ध्यान किसी ने किया है, ईश्वर को याद किसी ने किया, तभी ऐसे गीतों में हम जान डाल पा रहे हैं। सुनते रहिए और बने रहिए कार्यक्रम गुलदस्ता।

0: नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांडली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: साथ है प्रभु प्यारा तो गुनगुनाता है दिल मेरा, और हमारा दिल गुनगुनाता है क्योंकि कार्यक्रम गुलदस्ता आपके लिए लेकर आता है ढेर सारे ऐसे गीत जिसमें सुविचार होते हैं, आनंद होते हैं, जिसमें खुशी प्रदान करने वाली बातें होती हैं। तो सुविचारों से और सुविचार युक्त गीत सुनकर, प्रेरणादायक गीतों को सुनकर हम अपने जीवन में जागृति लाते हैं। तो आज के प्रोग्राम के गीतों को सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ, जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारा मनोबल और भी बढ़ाता है। और आपके लिए ढेर सारे गीत लाने के लिए मेरा मन जो है उत्साहित हो उठता है, वैसे भी हो उठता है। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए। जाते जाते आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए हम अपने मन को जब सत विचारों से, सुविचारों से भरेंगे, तभी हम अपने जीवन को श्रृंगार सकते हैं, और तभी हमारा श्रृंगारा हुआ जीवन दूसरों के लिए लाभदायक हो सकेगा। तो इन्हीं सद विचारों के साथ स्वर्णलता को आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह एक बेहतरीन विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, इन सुविचारों को जो आज आपने सुना, इनको अपने जीवन में अपनाइए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई सालों से हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण को बचाना, स्वच्छता बनाए रखना और वाइल्ड लाइफ को कैसे हम बचा सकते हैं, आसपास के जीव जंतु के बारे में भी हमने जाना। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम अरावली की कहानी जानेंगे। जब हम अरावली को बेहतर समझेंगे, जो स्पीसीज हैं जो अभी लुप्त हो रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, तभी शायद हम बेहतर तरीके से इन्हें भी बचा सकते हैं, यहाँ के लोकल वनस्पतियों को बचा सकते हैं जो हमारे हित के लिए है। तो इसके लिए आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुनील दुबे जी, और आप पर्यावरण विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन और संरक्षण जैव विज्ञान में डॉक्टरेट हैं। 12 साल से आप पर्यावरण विज्ञान का शिक्षण देने के बाद स्वतंत्र पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जीव संवर्धन संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय संघों के 5 विश्व आयोगों के सदस्य भी हैं और इसके साथ साथ आप IUCN के साथ भी कार्य करते हैं। राजस्थान वन विभाग के परामर्शक के रूप में आप 25 साल से जुड़े हैं। आप भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राजस्थान सरकार के संसाधन व्यक्ति के रूप में 25 साल से जुड़े हुए हैं। आपने विज्ञान संचार और पर्यावरण संरक्षण संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के एजेंसियों के साथ संसाधन के रूप में कार्य किया है, एजेंसियों के साथ भी कार्य किया है। प्राकृतिक संरक्षण, जीव संरक्षण, शोध, शिक्षा और उपयोग के क्षेत्र में लगातार 27 सालों से आप कार्यरत हैं। आइए उनके विचार, अनुभव और समीक्षा को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। अरावली की कहानी जानते हैं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत।
1: नमस्कार, धन्यवाद
0: जी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में, इसके निर्माण के बारे में और विकास के बारे में बताएं।
1: जी, अरावली पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। यानी इसका निर्माण जब हुआ, तब जब पृथ्वी पर जैसे जो आग का तपता हुआ गोला थी, लावा था, फिर वो ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद में लगभग 3.5 अरब साल पहले, जब ठंडा होने के बाद ऊपर की परतें, जैसे दूध ठंडा होता है तो ऊपर मलाई जम जाती है, उसी तरह से ये ऊपर की परत इस गोले की ठंडी हुई है। अंदर अभी भी लावा है, लेकिन ऊपर की परत जो ठंडी हुई, वो ठंडी होने के साथ साथ क्योंकि पृथ्वी का आकार और इसका अपनी अक्ष पर घूर्णन, सूर्य के चारों तरफ घूमना, तो इसकी जो भौतिक गतियां हैं उसके कारण वो मलाई एक जैसी एक साथ नहीं रही। यानी पृथ्वी के ऊपर जो प्लेटें ठंडी हुई, ऊपर की जो परत ठंडी हुई, उसमें उतार चढ़ाव भी हुए और उसमें गड्ढे भी बने, उसमें ऊंचाइयां भी बनी। पृथ्वी के रेफरेंस में वो ऊंचाई थोड़ी हो सकती है, इसके आकार में हमारे लिए उतनी ही बड़ी होगी जैसे चींटी के नजर में हमारी ऊंचाई। तो उस तरह से जो परतें थोड़ी अपेक्षाकृत ऊंची थी और जो परतें अपेक्षाकृत नीची थी, उनमें जब पृथ्वी पर वायुमंडल परिवर्तन हुए, बरसात हुई, तो उसके कारण पानी भरा उन गड्ढों में, और जो हिस्से ऊपर थे वो महाद्वीप कहला दिए और जहां पानी भर गया वो महासागर कहला दिए। लेकिन 3.5 अरब साल पहले भी ये जो प्रक्रिया थी ठंडा होना, ये जारी रही, अभी भी तक वो जारी है। लेकिन उसके बाद जब पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन वाला वातावरण नहीं था, अवायवीय स्थितियां थी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी गैसों का बाहुल्य था, लेकिन उस समय पर भी उस तरह के वायुमंडल, उस तरह की स्थितियों में जीने वाले जीव जंतु उस समय प्रारंभ अवस्था में पैदा हुए थे। ये वो समय था जब 3.5 अरब साल पहले जो है अरावली पर्वतमालाओं का बनना शुरू हुआ। ये पर्वतमालाएं असल में समुद्र का जो तला था, यानी जो प्लेट पृथ्वी के ऊपर की प्लेट जो ठंडी हो रही थी, परत ठंडी हो रही थी, उस परत के ठंडी होने के क्रम में समुद्र का जो तला था वो ठंडा होने लगा, और ठंडा होने के साथ में इनमें आपस में घर्षण, आपस में दूरी बनना, चटकना, और उस प्रक्रिया के अंदर लगभग 3.5 अरब साल पहले समुद्र तल का ऊपर उठना शुरू हुआ। और ऊपर उठना शुरू होने के साथ साथ में ये अरावली का फॉर्मेशन जो है वो शुरू हुआ, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रही जब तक ये अरावली की पर्वतमालाएं शुरू में, आज का जो आप एवरेस्ट देखते हैं सबसे ऊंची चोटी या उससे भी ऊंची चोटियां समुद्र के अंदर भी मौजूद हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा ऊंची थी, फिर ये सेटल भी होती गई, यानी जो ऊंचाई थी वो कम होती गई और ये सेटल होती गई। और इसके साथ साथ में जब ये भूभाग पूरा जिस एरिया में अरावली बनी, माउंटेन बनी पूरी, समुद्र तल ऊपर उठ करके जिन्होंने पहाड़ का रूप ले लिया, पानी से ऊपर आ गए, और फिर जो ऊपर की प्लेट थी और ठंडी हुई और ये महाद्वीपीय प्लेटों के रूप में कन्वर्ट हुए, ये प्लेटें जब अलग हुई, जब गोंडवाना लैंड मानी जाती थी, यानी बहुत बड़ा भूभाग एक जैसा था, उसमें से फिर टुकड़े टूट टूट करके और तैरते हुए अलग अलग छिटके, तब तक ये प्रक्रिया जारी रही। और अभी तक भी वो टूटने के बाद ये जो टुकड़ा अरावली के साथ में भारतीय उपमहाद्वीप का था, ये लगभग 16.5 करोड़ साल पहले उस गोंडवाना लैंड से टूटा, और लगभग 15 करोड़ साल तक ये टूटने की प्रक्रिया जारी रही, जिसको जुरासिक काल का प्रारंभ काल भी कहा जाता है। और अफ्रीकन जो प्लेट थी उससे टुकड़ा टूटा लगभग 16.5 करोड़ साल पहले से 15 करोड़ साल बीच के काल में, और उसके बाद में ये जो प्लेट थी वो तैरती हुई, जब ये टुकड़ा टूटा बड़ा तो इससे एक मेडागास्कर का छोटा टुकड़ा और टूटा, और बाकी का भारत या उपमहाद्वीप जो प्लेट कहलाई वो प्लेट धीरे धीरे लगभग 5.5 करोड़ साल पहले तैरती हुई एशिया की प्लेट से टकराई, और जिस टकराहट से हिमालय बना। तो हिमालय जो है वो अभी 5.5 करोड़ साल पहले बनना प्रारंभ हुआ उस टकराहट से, नीचे टिथिस महासागर था जिसके ऊपर से होती हुई ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट एशियन प्लेट से टकराई। लेकिन अरावली का फॉर्मेशन समुद्र तल के ठंडा होने के समय से, जब वो एक बड़े लैंडमास ऊपर जो परत ठंडी हुई उसी का हिस्सा थी, और जहां पर गोंडवाना लैंड और उसके बाद में और टुकड़े टूटे अफ्रीकन प्लेट से हम जुड़े हुए थे, उस काल का है। तो अरावली पर्वतमालाओं का निर्माण विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, और इसीलिए यहाँ के जो खनिज भंडार हैं वो विश्व में, यानी जो बेहतर, सबसे बेहतर, क्योंकि उनका जो कायंतरण हुआ है भूगर्भीय हलचलों के कारण, गर्मी, तापमान, दबाव, और उनका जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, कायंतरण कहते हैं, तो यहाँ के जो खनिज भंडार हैं इसीलिए वो उत्कृष्ट श्रेणी के खनिज भंडार भी अरावली में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारी अरावली पर्वतमाला विकसित हुई, और उसके बाद में जब एशियन प्लेट से ये भारतीय उपमहाद्वीप टकराई, तो उसके बाद ये जो हलचलें थी, अरावली का सेटलमेंट और हुआ, इसका विस्तार पंजाब के फिरोजपुर इलाके तक से लेकर के हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान पूरा होते हुए गुजरात होते हुए जूनागढ़ तक इसका पूरा विस्तार था। उत्तरी हिस्सों में जब हिमालय का निर्माण हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंपीय हलचलें बढ़ी उस टकराहट से, अरावली का सेटलमेंट जारी रहा, तो इसके उत्तरी हिस्से जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के हिस्से हैं और उत्तरी राजस्थान के, उत्तर पूर्वी राजस्थान के, जयपुर के ऊपर सीकर, झुंझुनू, चूरू के इलाके, वहां पर अरावली का सेटलमेंट बहुत ज्यादा हुआ और वहां वो छिटक छिटक के टुकड़ों के रूप में रह गई। लेकिन मध्य राजस्थान से लेकर के दक्षिणी राजस्थान में इसकी आज भी ऊंची चोटियां हैं, और गुजरात तक में इसके ऊंची चोटियां और गहरी घाटियों वाले क्षेत्र आज भी पाए जाते हैं। तो ये अरावली के विकास का एक क्रम रहा है और ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। जी
2: जी अपने इतिहास के बारे में

का ओरिएंटेशन है, यदि हम भारत के नक्शे में देखते हैं, सीधा राजस्थान भारत के नक्शे में देखते हैं और उत्तर दिशा ऊपर रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अरावली का जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ एक स्पिंडल शेप, एक एस बनाता हुआ विस्तार है। ये एक भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े भाग को जो है दो हिस्सों के अंदर विभाजित करती है, और इसी विभाजन को, इस अरावली के इस विस्तार को एक वैज्ञानिक हुए भौगोलविद ऑस्कर जॉर्ज ड्रूड, उन्होंने 1890 से 1913 के मध्य जो शोध किए उसके बीच में अरावली पर किए गए शोध के अनुसार इस अरावली को एक बड़े भौगोलिक विभाजनकारी रेखा के रूप में चिन्हित किया, जिसे ड्रूड लाइन नाम दिया गया। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये बंगाल की खाड़ी से उठकर आने वाले मानसून, जो हिमालय से टकराकर उत्तर भारत में चक्रित होता है, उसको राजस्थान के अंदर प्रवेश करने में इसका अलाइनमेंट है, जिसको ये फैसिलिटेट करती है। दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो अरब सागर की साइड से उठता है, उसको इंटरप्ट करने का काम ये करती है, ताकि इसके दक्षिणी हिस्सों में अच्छी बारिश होती है। अरावली का जो भौगोलिक विस्तार है वो इसके पश्चिमी हिस्से में, यानी अरावली का जो विस्तार है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, माउंट आबू, सिरोही, इस विस्तार के जो पश्चिम तक, अफ्री तक का जो इलाका है, वहां का, जिसको साउथ वेस्ट एशियन एलिमेंट कहते हैं, यानी पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी उत्तर पश्चिमी जो जीव जगत है, अफ्रीका तक का और खाड़ी देशों तक का, वहां तक का जो पादप जंतु जगत है उसके लिमिट बनाती है ये, पूर्वी सीमा बनाती है, यानी उस जंतु जगत का विस्तार और अफ्रीका तक के पादप जंतु जगत से अरावली के जो पश्चिम में जो जीव जंतु जगत है, पादप जगत है, उसका संबंध है। लेकिन इसके पूर्व की तरफ, जहां भारत और ये मलायन रीजन, यानी इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया जो कहलाता है, साउथ ईस्ट एशिया के सारे देश, इंडोनेशिया, जकार्ता, बाली, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये सब कुछ मिला करके, और बाकी का पूरा दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत, इनका पूरे, यहाँ का जो जीव जगत है इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है, यानी इनको अरावली के पश्चिम में जाने से वो बैरियर का काम करती है, ये ड्रूड लाइन। ये इन दो बड़े रीजन, यानी अरावली के पश्चिम के अफ्रीका तक, यानी अरावली के पूर्व में पूरा दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के, इन दो बड़े इकोलॉजिकल जोन जिनको हम कहते हैं, क्लाइमेटिक जोन्स जिनको हम कहते हैं, उनको डिवाइड करने का काम करती है, वहां के जीव जंतु जगत के विस्तार के बैरियर का काम करती है। और इसीलिए इन दो बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज, बड़े इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्रों को हम माने तो उनके मध्य संयुग्मन, कॉन्फ्लुएंस जोन का काम करती है, जिसको इकोटोन भी कहते हैं, यानी दो बड़े पारिस्थितिकी तंत्र जहां पर मीट करते हैं, मिलते हैं, तो ये वो सीमा का निर्धारण करती है। और इसी कारण अरावली की जो भौगोलिक स्थिति है वो न सिर्फ देश के मानसून तंत्र में, पश्चिमी भारत में वर्षा को प्रभावित करने में इसका अहम रोल है, उसके अलावा जब ये अरावली अपने प्राचीन समय में इसका जो विस्तार था, थार मरुस्थल में भी, मैं आऊंगा उस पर, थार मरुस्थल में भी जो अरावली का विस्तार था, जहां ये आज आप थार का मरुस्थल देखते हैं, 12-13 हजार साल पहले यहाँ पर नदी बहाव क्षेत्र था, तो ये अरावली पर्वत मालाएं जो हैं वो हिमालय जब बना, ग्लेशियर बने, नदियों का उद्गम हुआ, उसके बाद इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र को भी नियंत्रित करने का काम करती थी। और आपको जान के बड़ा अभी अचरज होगा कि जब समुद्र का विस्तार उत्तर भारत में और ऊपर तक था, जैसलमेर तक और ऊपर तक, वहां पर जो हिमालयन क्षेत्र से जो बहकर के लकड़ियां, वृक्ष, बड़े बड़े नदियों की बाढ़ों में आते थे, उनके फॉसिल आज आपको जैसलमेर में मिलेंगे। तो अरावली पर्वतमालाओं ने जब उत्तर, अपने से उत्तर क्षेत्र की नदियों के बहाव क्षेत्रों को भी बड़े पैमाने पर नियंत्रित किया है, और दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान की नदियों को, ये पहले कैसे उनका भूगर्भीय आपस में कनेक्शन था, जुड़ी हुई थी, सरफेस कनेक्शन भी था, फिर अरावली में जो

0: हलचलें हुई उसके कारण ये थार मरुस्थल का बनना, उसके का साथ साथ में शुष्कता का बढ़ना, उसके साथ साथ में नदियों का जो भूगर्भीय कनेक्शन भी जो था उसका धीरे धीरे कम होना, ये सारी प्रक्रिया चली। तो अरावली, अगर हम ये कहें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट, भारतीय उप महाद्वीप और उसके साथ पूरी पृथ्वी के रेफरेंस में कहें कि इसके जो उद्विकास की जो प्रक्रिया है जो अभी भी जारी है, उसका एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है। यानी यहाँ वो परिलक्षित होता है, यहाँ उन चीजों को, प्रमाणों को देख करके आप पृथ्वी के उद्विकास क्रम को, अपने भारतीय उपमहाद्वीप के उद्विकास क्रम को, राजस्थान प्रदेश के रेफरेंस में कहें तो यहाँ के भौगोलिक जो उद्विकास रहा है, डेवलपमेंट हुआ है, पहले जो स्थितियां थी, पहले जो जंगल थे, पहले जो वर्षा की स्थितियां थी, बहुत घने वर्षा वन, उसके बाद में पतझड़ी वन, उसके बाद में शुष्क कांटेदार वन, ऐसे ऐसे जो बदलाव हुए हैं इसके भौगोलिक रूप में परिवर्तन के साथ, इस सब का ये परिचायक रहा है। इसलिए अरावली माउंटेन्स का भौगोलिक महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो मानव सभ्यताएं भी विकसित हुई, यानी उदाहरण के तौर पर विश्व की प्राचीनतम मानव सभ्यताओं में से एक आहड़ सभ्यता, जिसके
1: जी
0: किनारे मैं रहता हूँ, यहाँ आहड़ नदी मेरे घर के पास ही, और आहड़ सभ्यता के टीले मेरे घर से 100 मीटर 200 मीटर दूर है। तो उन सभ्यताओं के विस्तार, जो इसको हम कहते हैं कि सिंधु, और उन नदियों में गुजरात में हम कहते हैं लोथल, कालीबंगा, ये सब जो एरिया रहे, पंजाब के पास के इलाके रहे, अभी पाकिस्तान के इलाके में है प्राचीन सभ्यताएं, सिंधु घाटी की सभ्यताएं कहते हैं, लेकिन आहड़ सभ्यता जो उस काल की है बल्कि उससे भी पुरानी, वो सभ्यताएं अरावली माउंटेन्स में डेवलप हुई, विकसित हुई, जिस पर मैं अभी आगे आपको और चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो ये भौगोलिक स्थिति से अरावली माउंटेन्स का न सिर्फ हमारे पृथ्वी के उद्विकास क्रम में इसका जो रोल है, इसका अपना डेवलपमेंट रहा है, भारत के जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं, जलवायवीय परिस्थितियों के जो चेंज रहे हैं करोड़ों अरबों साल भारतीय उपमहाद्वीप के बनने, एशिया से टकराने, आज तक जो परिवर्तन हो रहे हैं और आगे भी जो होते रहेंगे, उसमें अरावली का महत्वपूर्ण योगदान है। जी मैम,
1: जी सर, तो जैसे आप नदियों की स्थिति के बारे में भी कह रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण अरावली पर्वतमाला की जो अहम भूमिका रही है, और जैसलमेर में भी हम फसलें देख रहे हैं, तो इस बारे में भी आप कह रहे थे, थोड़ा और विस्तृत रूप से जानेंगे कि दक्षिणी अरावली प्रदेश की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें, तो इस अरावली पर्वतमालाओं का जलीय तंत्र और वनस्पति और जीव जंतु के बारे में अगर कहें, तो इसका क्या प्रभाव रहा है इस दक्षिण राजस्थान?
0: अरावली के दक्षिण हिस्सों में, जब मैं वापस आपका ध्यान दिलाता हूं, जो मैंने बताया कि अरावली पर्वतमालाओं का बनना कब शुरू हुआ, और उसके बाद लगभग 2 अरब साल पहले, यानी 3.5 अरब साल पहले समुद्र तल का ऊपर उठना और अरावली का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन तब भी उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट थी, और 2 अरब साल पहले भी जब ये उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट थी, लेकिन उन एरियाज में जब ये अरावली उठ रही थी, लेकिन तब भी समुद्र का क्षेत्र में ही थी, दबा हुआ तला था जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था पृथ्वी की भूगर्भीय हलचलों के कारण, तब दक्षिणी अरावली जो आज कहलाती है, यानी सिरोही, माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यानी दक्षिणी राजस्थान के इलाके, वहां शैलो मैराइन एरिया बना, यानी उथला समुद्री क्षेत्र बना, जल स्तर कम रहा, और उस समय पर भी पृथ्वी पर ऑक्सीजन का वातावरण नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर वातावरण था। ये वो काल था 3.5 अरब साल पहले से लेकर के 60 करोड़ साल पहले तक का, जिस काल में जब पानी बना और उसके बाद कुछ ठंडक बढ़ी, तापमान की अवस्थाएं बनी, गैसें बनी, और उनसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, कोशिकीय जीव जंतु कोशिकीय बने, कुछ शैवालें बनी, कुछ बैक्टीरिया तक बने। ये शैवालें बैक्टीरिया मुख्यतः जो है अवायवीय है, जिनको हम कहते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में जीने वाले, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर वातावरण में ये जीने वाले एल्गी बैक्टीरिया थे, जो उस समय पर विकसित हुए 3.5 अरब साल पहले से लेकर 60 करोड़ साल पहले तक, जिस काल को हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन इरा, जीवन की उत्पत्ति का, विकास का शुरुआती चरण। और
1: जी
0: उस काल में लगभग 2 अरब साल पहले जो है, उस समय ये एल्गी बैक्टीरिया जब विकसित होना शुरू हुए, और वो उथले समुद्र में ये बैक्टीरिया जो थे वो नील हरित शैवाल जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरमेंट में जी सकती है, उस पर ये फीड करते थे और उसके साथ ये गुच्छे बना करके रहते थे, उनमें कॉलोनी बना के रहते थे, जिनको माना जाता था कि एल्गल मैट्स, यानी एल्गी बढ़ रही है, शैवाल बढ़ रही है, उसके साथ बैक्टीरिया उस पर फीड कर रहे हैं। और उसके साथ जो उन उथले समुद्री क्षेत्रों के अंदर जो भी नदियों का सरफेस का महाद्वीपीय क्षेत्रों का जो बहाव आता था, उसमें जो भी ठोस चीजें होती थी, सेडिमेंट जिसको हम कहते हैं, पानी के साथ जो बह के आता है, वो इकट्ठा होता रहा उथले समुद्री क्षेत्रों में। और ये जो शैवाल बैक्टीरिया के जो गुच्छे थे, एल्गल मैट्स थे, इनको जो है वो दबाता गया, और ये उसके अंदर फिक्स हो गए, दबते गए, और बाद में पृथ्वी की हलचलों के कारण, ऊपर के दबाव के कारण, अंदर बढ़ती गर्मी के कारण, इन सब के साथ साथ में वो जीवाश्मीकृत हो गए। आपको मजा आएगा जानकर के कि वो जो जीवाश्म है, आज भी
1: जी
0: दक्षिणी राजस्थान में उन्हें कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट, और वो स्ट्रोमेटोलाइट हमारे यहाँ पर कई जगह पर है। उदयपुर शहर में जो फतेह सागर पिछोला झीलें हैं, इनके किनारे पर वो स्ट्रोमेटोलाइट के फॉसिल्स हैं। उदयपुर शहर से 10-12 किलोमीटर दूर झामर कोटड़ा एक जगह है, जहां पूरे पहाड़ की पहाड़ियां उन स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल की बनी हुई हैं। इसके
1: जी
0: अलावा उदयपुर से पूर्व की तरफ चित्तौड़गढ़ जिले में बोजुंदा एक जगह है, जहां पर चित्तौड़गढ़ शहर से लगा हुआ है क्षेत्र, जहां पूरी पहाड़ी जो है वो स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल की बनी हुई है। और चित्तौड़गढ़ से भी आगे भगवानपुरा एक जगह है, जहां पर भी इन स्ट्रोमेटोलाइट के फॉसिल्स हैं। ये फॉसिल्स लगभग 1 करोड़ 80 लाख साल पुराने से लेकर के 90 लाख साल पुराने तक के काल के हैं। ये जो आज ये जो प्रमाण है, जीवाश्म प्रमाण है, जो देश के जो 34 भू विरासत स्थल हैं, नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट साइट, उनमें स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल साइट, स्ट्रोमेटोलाइट जियो हेरिटेज साइट के तौर पर ये चिन्हित हैं, लिस्टेड हैं। झामर कोटरा स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल और बोजुंदा स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल। तो ये एक प्रमाण रहा कि अरावली का जो जो महत्व है, यहाँ पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्थाएं थी, ये वो क्षेत्र है जहां पर जीवन की उत्पत्ति प्रारंभ हुई थी। ये अवस्थाओं का विश्व में कई जगह है ये अवस्थाएं, तो अरावली उसमें से एक है, यहां पर भी जीवन की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्थाएं विकसित हुई थी। दूसरा इसके साथ में ये है कि जब अरावली हिमालय का बनना हुआ, और उसके बाद में जब वहां से नदियों का उद्गम हुआ, और उन नदियों के अंदर जो पाकिस्तान आज जो इलाका है, भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट का जो पार्ट था, उसके अंदर जो बड़ी नदियां थीं, उन नदियों में सिंधु, चिनाब और ये सारी नदियां, और दक्षिण की तरफ मध्य राजस्थान में जो लूनी नदी का विस्तार था, और दक्षिण की तरफ जो सरस्वती नदी का विस्तार था, बनास नदी का विस्तार था, फिर चंबल और इनका जो बेसिन बना पूरा, उनका आपस में, उनका फ्लो आपस में कनेक्टेड था। लेकिन इसी अरावली में जब हिमालय पर्वत से आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट की टकराहट जारी है, शुरुआत में जब लगभग 5.5 करोड़ साल पहले तक ये टकराहट हुई, तब ये 12 से 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के धक्के से ये टकराहट थी, लेकिन आज ये टकराहट 2-3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के धक्के से ये टकराहट आज भी जारी है, और हिमालय पर्वत आज भी ऊपर उठ रहा है, इस धक्के से बन रहा है, गुरुत्व के प्रभाव में ये नीचे गिर रहा है, भूकंप आ रहे हैं इसमें, ये इस विश्व का सबसे संवेदनशील भूकंप संवेदी क्षेत्र है। लेकिन इस सब के कारण जो अरावली की जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां थी, उनमें भी जो हलचलें हुई, और उन धक्कों के कारण जो अरावली का जो आज आप थार मरुस्थल का एरिया पूरा देखते हैं, सरस्वती और सिंधु की जो सहायक नदियों का पूरा बहाव क्षेत्र था, ये बहाव क्षेत्र एरिया ऊपर उठा लगभग आज से 12,000 साल पहले, ये एरिया ऊपर उठा, और उसके ऊपर उठने के कारण इस काल को कहते हैं होलोसीन काल, लगभग 12,000 साल पहले का जो एरिया था, और उसके कारण दिल्ली से लेके कच्छ तक जो अरावली का उठाव हुआ, उस उठाव में जो है उसका सरफेस फ्लो नदियों का बंद हो गया, और ये जो आज आप मरुस्थल की मिट्टी देखते हैं, ये असल में जलोढ़ मिट्टी है, नदियों की जो बहाव की मिट्टी होती है ये वो है, और इसके नीचे इम्परमियेबल अपारगमीय चट्टाने हैं पूरी की पूरी थार मरुस्थल में। ये ऐसा नहीं है कि नीचे तक बहुत गहरे तक रेत ही रेत भरी हुई है, यानी मरुस्थल का कुछ अलग रूप है, नहीं, ये
1: जी
0: जलोढ़ मिट्टी है, नदियों के बहाव की मिट्टी है, जो नदियों का सरफेस फ्लो बंद हुआ और उसके बाद ये मिट्टी सूख गई, शुष्क हो गई, इसका पानी खत्म हो गया, फिर इसके पोषक तत्व भी खत्म हो गए धीरे धीरे, और इसके नीचे अपारगम्य चट्टाने हैं बड़ी। और आज भी अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में, थार मरुस्थल में, अगर 400-500 मिलीमीटर बरसात 2-3 दिन में हो जाए, भयंकर बाढ़ आ जाएगी, वही
1: जी
0: नदियों की स्थिति बन जाएगी। तो
1: जी
0: लेकिन आपको एक चीज और मैं इसमें जो बताना चाहता हूं, अरावली के यानी जो इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है, कि जब ये नदियों का बहाव था और अरब सागर की खाड़ी की तरफ में भी उधर में भी नदियों का बहाव जाता था, और इधर अरावली के जो पूर्व की तरफ गंगा, यमुना, चंबल, ब्रह्मपुत्र, उससे जुड़ करके बंगाल की खाड़ी तक जो पानी जाता था, उस समय पर जब सरस्वती और ये बनास नदियों का आपस में सरफेस फ्लो भी कनेक्टेड था और भूगर्भीय कनेक्शन भी था, लेकिन वो सरफेस फ्लो तो खत्म हो गया, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में जो उदयपुर शहर है उसके पास आज भी जो इनका भूगर्भीय कनेक्शन है वो आज भी है, और इसका जो जीवित प्राणी प्रमाण, लाइव बायोलॉजिकल एविडेंस, जो 1987 में हमारे जो बड़े मेंटर हैं डॉक्टर रजा तहसीन, जिनको मेवाड़ का वास्को डिगामा भी कहा जाता है, जो बड़े वाइल्ड लाइफर हैं, पुराने आदमी हैं, उन्होंने यहाँ जो उदयपुर शहर से लगी हुई पुरानी जो माइनिंग केव्स थी, गुफाएं थी, खनन वाली पुराने टाइम की, उनमें जब उतरे और वहां पर जो विशाल जल धाराएं आज भी बह रही हैं, उसमें साइजोथोरेसिन फिश, यानी जो कोल्ड वाटर जोन्स में, हिमालय के कोल्ड वाटर जोन में मिलती है, स्नो ट्राउट कहलाती है, वो जिंदा यहाँ कैप्चर करी, बहुत सारी मछलियां,
1: जी
0: यानी ये जीवित प्राणी प्रमाण था, ये स्नो ट्राउट फिश उदयपुर के भूगर्भीय बहाव में जो जिंदा मिली, के जो हिमालय क्षेत्र से बहने वाली नदियों का और दक्षिणी राजस्थान की बहने वाली नदियों का आज भी भूगर्भीय कनेक्शन है। पहले ये सरफेस कनेक्शन भी था और अरावली के फॉर्मेशन में चेंज के कारण इनके बदलाव आए, तो अरावली का इस तरह से जो महत्व है वो और ज्यादा हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने में बढ़ जाता है।
1: सर, जैसे आपने कहा कि टकराहट जो है अभी भी अगर हर साल देखा जाए 2 से 3 सेंटीमीटर तक का है, तो इससे क्या कुछ नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है?
0: देखिए, पृथ्वी पर जीवन का जो, या पृथ्वी का अपना जो उद्विकास का क्रम है, ये तो आग का गोला थी, सूर्य का भाग थी, टूटा छिटका और ये ठंडा पड़ रहा है, इस पर ऊपर की कुछ किलोमीटर की परत अभी ठंडी हो गई है, जिस पर हमारी अभी सैकड़ों लाखों करोड़ों साल की सभ्यताएं, जीवन की उत्पत्ति, विकास और ये सब हो गया, कुछ किलोमीटर की परत ठंडी हुई है, उसमें सब अभी तक हुआ है, लेकिन बाकी का पृथ्वी अंदर जो है वो अभी भी दहकता आग का गोला है, अभी तो बहुत कुछ इसका जीवन और उद्विकास होना है। अभी
1: जी
0: तक जो 3.5 अरब साल में अब तक जो हुआ है, जो भी हमने देखा है, जो भी हमारा विज्ञान आज जो हम देख रहे हैं, कि हमारे पास आज जो भी प्रमाण है कि कितने पुराने से पुराने हमारे क्या जीवाश्म है, ये सब परिवर्तन है, ये तो ब्रह्मांड का जो अपना परिवर्तन है। इसके साथ साथ में लेकिन अगर आपका जो प्रश्न है उसको हम समझना चाहें, तो अरावली का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर बहुत चेंज आए हैं, ये इलाका तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा रहा होगा, उस समय पर यहाँ ग्लेशियल जोन भी रहे होंगे, उस समय पर यहाँ के जीव जंतु वनस्पति जात वो भी अलग रहे होंगे, उन माउंटेन्स का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ऊंचाई से नीचाई की ओर सरकना, गिरना, ये भौगोलिक हलचलें हैं, हिमालय में ये आज भी हो रहा है। अपने आप में पृथ्वी के नेचुरल प्रोसेसेस में ये कोई हानिकारक नहीं है, ये तो उसका प्रोसेस है, राइट? लेकिन हमारे जो मानव सभ्यता के रेफरेंस में अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो पृथ्वी के बदलाव हो रहे हैं, हम उनको समझ लें और उसके अनुसार पृथ्वी पर हमारा दबाव बनाने से बचें। आज हिमालयन जोन जिस तरह से आज भी अनस्टेबल है, उस पर अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्लेट का टकराहट है एशियन प्लेट से, वो जारी है, ऐसी स्थिति में हिमालय का फॉर्मेशन, अभी ऊंचाई बढ़ना, गुरुत्व के प्रभाव में उसका दरकना, नीचे सेटल होना, वो हो अभी भी जारी है। अरावली का सेटल होना तो हो गया, जो उत्तर अरावली है, मध्य अरावली है, आप देखेंगे इन्हीं में जो फ्लैटेंड माउंटेन बन गई हैं, उन्हीं पर हमारे गढ़ और किले बने हैं।
1: हाँ जी
0: लेकिन आप दक्षिणी राजस्थान में आएंगी तो दक्षिणी राजस्थान में अभी भी हाई पीक्स हैं, माउंट आबू की सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में अरावली के फोल्ड इतने ऊंचे ऊंचे हैं, इतनी शार्प पीक है, पर्वतमालाएं इतनी पतली और लंबाई में है कि उन पर ज्यादा किले और गढ़ संभव नहीं हुए। तो
1: जी
0: ये माउंटेन जहां सेटल हुई और उनका जो नीचे का जो चौड़ाई थी वो ऊंचाई के रेफरेंस में ज्यादा हुई, यानी वो फर्दर और सेटल नहीं होंगी, तो ऐसी स्थिति में उन्हीं क्षेत्रों को भौगोलिक और सामरिक परिस्थिति से महत्वपूर्ण मान के वहां पर गढ़ बने, किले बने, सभ्यताएं बनी, वहां पर लोग बाग रहते थे उन ऊंचाइयों पर भी। लेकिन जहां पर ये ऊंचाई आज भी परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशील ऊंचाइयों में हम जो व्यवधान पैदा कर रहे हैं, आप ध्यान दें कि हिमालय के अंदर हमने अनावश्यक रूप से जितने डैम्स बना दिए है ना, जितने निर्माण कर दिए, जितना उसको छलनी कर दिया, जितना अरावली, दक्षिण अरावली आप देखेंगे कि पूरी तरह से इसको छलनी किया जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि विश्व के उत्कृष्ट श्रेणी के खनिज तत्व यहाँ पाए जाते हैं, बेस्ट कॉपर, बेस्ट लेड, बेस्ट जिंक, सोना तक अब यहाँ मिल रहा है दक्षिणी राजस्थान में, बहुत सारे दूसरे नॉन मिनरल यानी अधातु खनिज यहाँ भरे पड़े हैं, और उनकी लालच में अनियंत्रित रूप से जिस तरह से अरावली को, उसके नेचुरल प्रोसेस को हम जो अफेक्ट कर रहे हैं वो हानिकारक है। इनका प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है वो हानिकारक नहीं है, हमें
1: जी
0: उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा।
1: जी
0: हम उस प्रकृति के उद्विकास का एक भाग हैं, एक छोटे से जीव जंतु हैं, और भी जो है उसी तरह से हम हैं, तो हम उसके साथ एडजस्ट ही कर सकते हैं। उद्विकास क्रम के साथ में हम उसे डोमिनेट, उस पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकते।
1: जी
0: अब इन सभ्यताओं के विकसित होने के साथ साथ में आहाड़ सभ्यता जो है, जो उदयपुर से लगी हुई थी, ये ज्यादा समय तक फ्लोरिश, यहाँ तो बंदरगाह था, यहाँ तो शिप्स, छोटे छोटे व्यापारिक, ये केंद्र था बहुत बड़ा आहाड़ सभ्यता के समय पर, और ये 3,000 साल से 1,500 साल पहले तक ये सभ्यता यहाँ बहुत अच्छी खासी विकसित थी, बड़ा व्यापार केंद्र था। ये पूरी आहड़ सभ्यता के जो करीबन 106 स्थल से ज्यादा चिन्हित हैं पूरे दक्षिण पूर्व राजस्थान में, ये जो सभ्यता का विस्तार था, तो यहाँ जो पहले जिस तरह का वातावरण था, वो वातावरण जो है वो आज आप जो वर्षावन आसाम या नॉर्थ ईस्ट के जो मानते हैं ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, घने वर्षावन वाले, या हाथी विचरते थे, या गैंडा हाथी विचरते थे, या बड़े सिंह वाले भैंसे बिसन विचरते थे, जिस पर मैं बाद में इस पर और प्रकाश डालूंगा, लेकिन यहाँ का जो वनों का प्रकार था, यहाँ का जो जीव जंतु का प्रकार था, और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, यहाँ तो बंदरगाह थे, राजसमंद में बंदरगाह था, उदयपुर में आहाड़ सभ्यता तक जहाज बह करके, तैर करके नावें आती थी, और ये बड़ा व्यापार केंद्र था उस समय भी। अरावली का ये पूरा उस समय का काल रहा है, या तांबा, लोहा, ये कांसा, इस तरह की मिश्र धातुएं तक यहाँ पर, ये वो काल था जब मिश्र धातुओं का निर्माण प्रारंभ हो गया था, जिसको हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं। सो ताम्रकालीन सभ्यता और उसके बाद में कांसा, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज टू ब्रॉन्ज एज, ये जो, और आयरन एज, इन सब का ये गवाह रहा है अरावली का दक्षिण पश्चिमी एरिया, ये इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है।
1: जी बिल्कुल, चंद्रावती नगरी जैसे आबू रोड में है तो वहां की अवशेष।
0: चंद्रावती नगरी, और ये आहाड़ सभ्यता को कहते हैं तांबावती नगरी।
1: जी, तो इसके बारे में आगे हम विस्तृत रूप से आपसे जानेंगे। वो जैसे आप आहाड़ सभ्यता के बारे में कह रहे थे और नदियों के बारे में कह रहे थे, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अरावली में क्या कुछ वनस्पतियां उस समय हुआ करते थे जो शायद आज कम देखने को मिल रहे हैं।
0: देखिए, ये जो मानव सभ्यताएं मिली है, यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यताएं हैं, और जो ये आहड़ सभ्यता में जो चिन्ह मिले हैं, इनमें बहुत तरह के बर्तन भांडे मिले हैं, इनमें बहुत तरह के आभूषण मिले हैं, इनमें
1: जी
0: बहुत तरह के खिलौने मिले हैं, इनमें इवन उस समय पर जो धातुओं को गला करके मेटलर्जी यानी जो अयस्क निकलता था जमीन से खुदाई में, फिर उससे मेटल को अलग कैसे करते हैं, तो उस समय उसको पिघलाने के जो मिट्टी के कोण बनाते थे उनमें उनको पिघलाते थे भट्टियों में गर्म करके और धातु अलग करते थे, वो सारे जो चिन्ह मिले हैं, स्त्रियों के श्रृंगार की जो सामग्री मिली है, चूड़ियां मिली हैं, बालों में लगाने की सीकें मिली हैं, गले में पहनने के हार मिले हैं, कड़े मिले हैं, बच्चों के खेलने के खिलौने मिले हैं, और लोगों के बनाए हुए दूसरे आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं, चिकनी मिट्टी से बनाए हुए टेराकोटा के आइटम जिनको कहते हैं, उसके साथ हड्डियों से बनाए हुए आइटम हैं, शंख सीपियों से बनाए हुए आइटम हैं, वो बहुत सारे आइटम मिले हुए हैं, सींगों से बनाए हुए यानी हिरणों के सींग रहे होंगे, भैंसों के सींग रहे होंगे, जानवरों के सींग रहे होंगे, बहुत सारी चीजें मिली। इन सब का जब हमारे जो सीनियर जो वाइल्ड लाइफर हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया डॉक्टर रजा तहसीन, उनके साथ सब में राजस्थान के और देश के अन्य जो इतिहासकार भी रहे हैं, उन्होंने मानव सभ्यता और उस काल के विकास पर ध्यान दिया, लेकिन जो हमारे वाइल्ड लाइफ के जो सीनियर्स थे उन्होंने यहाँ के वाइल्ड लाइफ के प्रकार को जो एनालाइज किया, इन प्रमाणों से जो उनको इन्फरेंस उनका निकाला, जो निष्कर्ष निकाला, ये बताता है कि उस समय पर यहाँ पर हाथी विचरते थे, गैंडा हाथी विचरते थे, भेड़िए थे, काले हिरण थे, भालू थे, बिसन, लंबे लंबे सींग वाला जो बिसन है आज मध्य भारत में जो रह गया है, वो यहाँ बहुतायत में थे। ये बिसन के जो प्रमाण हैं, अभी मैंने चित्तौड़गढ़ जिले में सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैं वन विभाग की कमेटी में हूँ, उसमें मैंने काम करते हुए वहां पर जो प्रागैतिहासिक मानव रहते थे चट्टानों में गुफाओं में, वहां इस बिसन के बनाए हुए फिगर मैंने अभी ढूंढे, ये वो पूरे प्रमाण है। उस समय पर यहाँ बारहसिंगा भी थे जिनको स्वाम्प डियर कहते हैं, जो आज नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा ये जो आर्टिफैक्ट मिले इनसे पता चलता है कि उस समय पर ये रोडेंट्स यानी नेवला, चूहा, गिलहरी, इस कुल के जो कुतरने वाले दांत वाले जो हैं रोडेंट्स वो थे। उस समय यहाँ तोते, जंगली मुर्गे, इवन मछलियां तक यानी उनके जो बोनी पार्ट मिले हैं, हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, उनसे बनी हुई सामग्रियां मिली हैं। यहाँ पशुओं का पालन किया जाता था, गाय, बैल, बकरी, भेड़, गधा और पोल्ट्री यानी मुर्गी बतख वगैरह का, ये भी यहाँ पर पाले जाते थे। ये बहुत विशाल यहाँ पर दलदली इलाके भी थे, क्योंकि जो बारहसिंगा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्वाम्प डियर जिसको कहते हैं, वो स्वाम्पी मार्शी कंडीशन में ही मिलता है। तो उसके साथ में लेकिन यहाँ पर जो है वो जंगली मुर्गों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्वाम्प डियर के साथ में माना जाता है, बारहसिंगा के साथ। आज आपके माउंट आबू और कुंभलगढ़ से जो लगे जंगल हैं जहाँ बारहसिंगा यहाँ सांभर भी आज मिलता है, यानी बारहसिंगा लोप हुआ लेकिन सांभर डियर जहाँ मिलता है उसके साथ ही वहां जंगली मुर्गों की भी बहुत आयत है। ये इलाका भी ये था कि जहाँ बारहसिंगा के साथ में यहाँ पर भी जंगली मुर्गों का डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया माना जाता है। तो ये एरिया जो है वो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ तक जंगली हाथी तक विचरते थे, यहाँ एशियाटिक लॉयन यानी बब्बर शेर लॉयन वो यहाँ पाए जाते थे, टाइगर यहाँ भरे पड़े थे, इवन चीता तक राजस्थान के इलाकों में डिस्ट्रीब्यूटेड था, अरावली के पश्चिमी उत्तरी भागों में विशेष रूप से जहाँ बड़े घास के मैदान थे वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड था चीता, और राजे रजवाड़ों में भी उन चीता को पालतू बना करके रखे जाने के जो प्रमाण हैं। तो ये जो आहाड़कालीन सभ्यताएं हैं इनमें ऐसे बहुत सारी ये चीजें मिली हैं जिनके अध्ययन से यहाँ के प्राणी प्रमाणों के बारे में जो है वो निष्कर्ष निकले हैं। इसके साथ में जो पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ हैं राजाओं के टाइम पर आज से 500 300 साल पहले भी जो लिखे गए हैं, दक्षिणे ये मेवाड़ राज्य के इतिहास में भी जो लिखे गए हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे प्राणियों का रेफरेंस है। यहाँ जो सभ्यताएं मिली आहड़कालीन सभ्यता और ये यानी आज से 4,000 साल पहले या 1,500 साल पहले तक यहाँ पर गेहूं, जौ, चावल, सरसों, ये दालें, इसके अलावा ये तिल वगैरह, इसके अलावा ये बाजरा कुल के अनाज, चना, मूंग, इन सब का भी यहाँ कल्टीवेशन तक होता था, और कैटल ये पशु भी पाले जाते थे। तो और यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा खासा था।
1: जी सर, तो धीरे धीरे ये फिर लुप्त होने लगे
0: धीरे
1: जैसे।
0: धीरे ऐसे हुआ कि देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया कि जब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उधर की तरफ जो हलचलें हुई और
1: जी
0: उनके कारण जो सिंधु और सरस्वती नदी का जो फ्लो था उसका सरफेस फ्लो खत्म हो गया।
1: जी
0: सरफेस फ्लो खत्म होने के साथ में उसकी जो नमी थी वो लुप्त तो हो गई और फिर
1: जी
0: वो मरुस्थल का रूप ले लिया। उस मरुस्थल का रूप लेने के साथ साथ में फिर वहां का जो जीव जंतु है और उस पर निर्भर जो उस भौगोलिक क्षेत्र में जो रहने वाले जीव जंतु है वो बदलेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे और वो
1: जी
0: बचेगा जो वहां अनुकूलन में रह सके। तो आज जो हमें वहां दिखाई देता है वो है जो उस अनुकूलन में रह सका है, राइट। उसी तरह से दक्षिणी अरावली की तरफ में भी जो परिवर्तन अभी आए हैं, तो अब ये जो बचा है वो है जो आज की स्थितियों में अनुकूलित रह सकता है। हाँ, जो आप जानना चाहती हैं वो उसका मैं आपको बताता हूं कि ये जीव जंतु का प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन है,
1: जी
0: उत्तरी अरावली में जैसे जो वनस्पति जगत है उनमें जो सघन जो पेड़ चौड़ी पत्ती वाले सदा हरे इस प्रकार की जो वेजिटेशन थी, उसके बाद में जो परिवर्तन आया, आज वहां पर पीलू के जंगल, सेल्वेडोरा जिसको कहते हैं, मिसवाक जिसको कहते हैं, उसके बाद में वहां पर छितराए हुए जो वृक्ष प्रजातियां वन है, कंटिन्यूअस फॉरेस्ट जो है आज नॉर्थ अलावरी में नहीं रहा। सेंट्रल अरावली के अंदर जो है वो जहां जहां हाई माउंटेन्स हैं और जहां घाटियों के जोन हैं वहां पर पहाड़ों की चोटियों पर, पहाड़ों के ढलानों पर, मध्य ढलानों पर, निचले ढलानों पर, घाटियों के अंदर, नम क्षेत्रों में और प्लेन इलाकों में जो वनस्पतियां हैं उनमें परिवर्तन आए हैं। वृहद रूप से यदि हम देखें तो पूरे राजस्थान का जो आज का वनों का प्रकार है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूअस फॉरेस्ट का प्रकार है, यानी यहाँ गर्मियां गर्म, सर्दियां ठंडी हैं। बरसात के बाद जब तापमान बढ़ते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर वृक्ष, ज्यादातर प्रजातियां वो हो गई हैं जो पानी को बचाने के लिए अपने पत्तों को झड़ा देती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ जहां जब यहाँ सोचिए कि यहाँ एलिफेंट घूमते थे, गेंडा हाथी घूमते थे, तो यहाँ कितने टॉल ग्रासलैंड यहाँ थे, लंबी घासों के एरिया, ऊंची घासों के टॉल ग्रासलैंड जो उनका हैबिटाट है। उसके साथ में यहाँ जब लॉयन जो प्राइमरीली प्लेन एरिया में अपना हंटिंग करते हैं, चीता और लॉयन, वो उनका यहाँ पर हैबिटाट था। उसके साथ में फिर हम देखें कि टाइगर और उसके बाद लेपर्ड, जो आज लेपर्ड बचा है, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो घने जो जंगल हैं उनमें था। अब टाइगर कुछ कुछ पार्ट में रह गया जहां घना जंगल बचा और जहां हमने टाइगर रिजर्व बना दिए, अन्यथा बाकी में लेपर्ड ही लेपर्ड बचा है, तेंदुआ बचा है बिग कैट्स में। इसके साथ में जो टॉल ग्रासलैंड्स के जो जानवर थे, हाथी, गेंडा, ये सब कुछ खत्म हुए, बिसन खत्म हुए। ये जो परिवर्तन आया है ये असल में बहुत बड़े पैमाने पर, पहले क्या होता था देखिए, आज से भी सैकड़ों साल पहले राजाओं के समय पर जब वो हंटिंग करते थे, शौकिया शिकार करते थे, तो उसमें नियम होता था कि मादा और बच्चों को और जवान जो नर हैं उनको नहीं मारेंगे, ताकि उनका जो फर्टाइल जीन है उनका
1: जी
0: उनमें आगे संतति पैदा करने वाली जो जनरेशन है वो बची रहे और उनकी
1: जी
0: संख्या बनी रहे, उनकी जनसंख्याएं बनी रहे। तो जो मैच्योर होते थे, मेल होते थे, उनको प्रिफेर किया जाता था हंटिंग के लिए, सेलेक्टेड तरीके से हंटिंग होती थी। लेकिन फिर बाद में जब मुगल यहाँ पर आक्रांता आए देश में, तो उस समय पर वो हंटिंग हर तरह की हंटिंग में बदल गई। उसके बाद में फिर ब्रिटिश काल में वो हंटिंग और भी ज्यादा शौकिया में बदल गई। आपको बताऊं, ये दक्षिणी राजस्थान में आजादी के बाद में भी जब तक ये वन अधिनियम 55 में और ये नहीं बना था, उसके
1: जी
0: पहले तक जो कुछ जीव जंतुओं के संरक्षित क्षेत्र थे उनको गेम रिजर्व कहा जाता था। गेम रिजर्व यानी जहां शौकिया हंटिंग स्वीकृत थी। बाद में वो पूरी तरह से वन्य जीव अभयारण्य और उसमें तब्दील हुए जब हमारे यहाँ वन्य जीव अधिनियम या वन अधिनियम और हमारे देश के जो संविधान थे उसके अंतर्गत ये चीजें बनने लगी। 73 में जाकर के हमारा वन्य जीव अधिनियम बना। उससे
1: जी
0: पहले तक जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कोई कठोर प्रावधान नहीं थे। और आज भी आपको बताऊं कि जब मानव कृषि का विस्तार कर रहा है ताबड़तोड़, तो आज वो नील गायें जब उनके खेतों में आती हैं तो आज उनको खतरा माना जा रहा है। नीलगाय, सुअर, जंगली सुअर और नीलगाय सबसे बड़े दुश्मन माने जा रहे हैं आज,
1: जी
0: स्पेशली जंगल क्षेत्रों के किनारे रहने वाले गांवों में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपना विस्तार अपनी आवश्यकताओं के लिए तो कहीं तक कर जा सकते हैं, लेकिन वो जंतुओं का आवास घटता जाए, सिकुड़ता जाए, तो अब आपके विस्तार में वो नहीं घुस सकते, उन्होंने पाप कर दिया। तो उनको वर्मिन यानी पीड़क यानी कि अनवांटेड पहुंचाने वाला घोषित करने का प्रावधान है। और आज भी वन्य जीव अधिनियम भारत सरकार का जो है उसमें प्रावधान है कि यदि इस तरह के जीव जंतु को पीड़क जंतु वर्मिन घोषित किया जाए, मानव के लालच ने हमारे इन बड़े बड़े जीव जंतुओं को खत्म किया। और ये समझिए कि जंतु के खत्म होने से वन भी खत्म होते हैं और वन के खत्म होने से जीव जंतु भी खत्म होते हैं। ये वाइस वर्सा रिलेशन है आपस का म्यूचुअल। अब ये कि ये सारे बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े बड़े बिसन, दरियाई घोड़े, ये गैंडा हाथी और ये सारी चीजें, ये जो बने, ये जो है ये खत्म हुए तो वन नष्ट नहीं हो। ये
1: हाँ
0: परिवर्तन मानव जनित परिवर्तन है। पहले तो ये था कि जब हमारे यहाँ रियासत काल था, या पहले जो भी हमारे यहाँ पर ये जो अलग अलग किंगडम्स थी, एम्पायर्स थी, और उस समय जो हमारे यहाँ हंटिंग के तरीके थे, वो हंटिंग के तरीके कुछ उसूलों के साथ में बंधे हुए थे, जिसमें मादा को, बच्चों को और जवान नरों को नहीं मारना होता था। लेकिन उसके बाद में जो है वो शौक में तब्दील हो गया और अंधाधुंध जो है किलिंग वो हुई। जब मुगल आक्रांता देश में आए और उन्होंने लंबे समय तक देश में शासन किया, तो ताबड़तोड़ जो है खाने के लिए प्राइमरीली, फिर वो केवल यूं शौक या उस शिकार के उद्देश्य से वो हंटिंग नहीं थी, वो खाने के उद्देश्य से हंटिंग शुरू हो गई। हर तरह से जो भी मिले उसको मारो और खाओ। उसके बाद में ब्रिटिश काल में भी ये हंटिंग उसी तरह से जारी रही कि केवल शौक नहीं था, बल्कि उनको अपने घरों में, अपने वहां ले जा करके उनको सजावट के तौर पर लगाने की जो होड़ बढ़ गई। उसके बाद में आजादी के बाद भी हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आने में तो और कई वर्ष लग गए, 1973 में आया, लेकिन वन अधिनियम पहले आए, जंगलों का थोड़ा कंजर्वेशन शुरू हुआ। लेकिन शुरुआत में वो भी था कि जो हमारे वन क्षेत्र हैं उनसे व्यावसायिक हम आइटम कितना प्राप्त करें, सिल्वीकल्चर और दूसरी फॉरेस्ट्री यानी टिम्बर और फ्यूल वुड, फायर वुड, मेडिसिन, यानी जो कुछ भी था, वो पहले व्यावसायिक दोहन के निमित्त जंगलों का प्रबंधन किया जाता था। अब उस व्यावसायिक दोहन के कारण और ये शौकिया शिकार के कारण हमारे जो प्लांट स्पीशीज थी और एनिमल स्पीशीज थी, ये दोनों ही खत्म। जब जंतु प्रजाति खत्म होती है तो उससे संबंधित तो उसको आश्रय भोजन देने वाली वो पादप प्रजाति भी खत्म होती है, और पादप प्रजाति खत्म होती है तो उससे जड़ी जंतु प्रजातियां भी खत्म होती हैं। और वही कारण था कि हमारे जो जलीय क्षेत्रों में, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान करके कि हमारे अरावली के जो जलीय क्षेत्र थे उनमें एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, जो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का इंडिकेटर मानी जाती है, महाशीर मछली, महाशीर मछली वो खत्म हो गई। आज वो हमारे राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान के कुछ जलाशय में, जैसे उदयपुर शहर से लगी एक झील है जिसको बड़ी लेक कहते हैं, लेक बड़ी, उसके अंदर कुछ बची है। लेकिन पहले वो हमारे यहाँ हर जगह थी, नदियों में भी थी, आज वो हिमालय के जोन में भी महाशीर मिलती है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जगह जगह मिलती है। तो राजस्थान में भी महाशीर मछली का डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन वो महाशीर मछली हमारे यहाँ से पूरी तरह जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में लुप्त तो हो गई। हमारे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जो बिग कैट्स थी, बड़ी बिल्लियां, लायन और टाइगर, लायन पूरी तरह से खत्म हो गया, टाइगर बस कुछ जगह पर हम बचा पा रहे हैं। हमारे भालू के आवास बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में खत्म हुए। अब वो भालू जो है इधर आपके सिरोही के एरिया में और दक्षिणी राजस्थान के कुछ एरिया में बचा है, बाकी और जगह मध्य राजस्थान में, सवाई माधोपुर, अलवर और इधर में कुछ बचा है, लेकिन बड़ी तादाद में इनके आवास नष्ट हुए। मगरमच्छ जो है वो हमारे जलाशयों में भरे हुए थे, नदियों में, और एक बहुत बहुत बहुत बड़ा, मैं आपको इंपॉर्टेंट एनिमल बता रहा हूँ, एक्वेटिक हैबिटाट, जलीय तंत्र का, ऑटर्स, उदबिलाव, जल मानुष जिसको कहते हैं, राइट, ये जल मानुष हमारे यहाँ से, जलीय तंत्रों से खत्म हो गया। ये पानी का शेर कहलाता था। अब ये हमारे यहाँ चंबल के बेसिन में, चंबल नदी में कुछ जगह पर ये ऑटर, जल मानुष हमारे बचे हैं, अन्यथा बाकी का हमारे यहाँ से, हर जगह से ये ऑटर, जलमानुष और महाशीर मछली, ये बड़ी तादाद में हुए, और जमीन के तो मैंने एनिमल आपको बताए। अब उससे हुआ क्या, अब यह है कि नॉर्थ अलावली के तो जो जंगल थे सदा हरे, बड़ी पत्ती वाले, हमेशा हरे घने सघन, वो तो हो गए तब्दील छितराए हुए जंगलों में। फिर उनके बीच में ग्रासलैंड आ गए, टॉल ग्रासलैंड से भी वो शॉर्ट ग्रासलैंड में बदल गए, और उसके बाद में अब मध्य अरावली और दक्षिण अरावली में ये सब चल रहा है। यानी अब यहाँ के जो सघन वन क्षेत्र हैं इनमें बदलाव चल रहा है। अरावली का जो मैंने शुरू में कहा ड्रूड लाइन, अरावली जो पश्चिम और पूर्व को विभाजित करती है, अब ये हो रहा है कि जो पश्चिम में मरुशुष्क परिस्थितियां बन गई, इनका विस्तार अरावली के पूर्व की तरफ आ रहा है। यानी इधर के जो अरावली के पूर्व में जयपुर, और इधर से लेकर के मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक, और तो ये जो दक्षिण पूर्वी अरावली और दक्षिण पूर्वी अरावली जो है, यहाँ बड़े बड़े नदी घाटियां आज भी हैं, इन सब में जंगल का जो परिवर्तन आ रहा है, और उस परिवर्तन के कारण जो शुष्क परिस्थितियां जो पश्चिम में बनी है, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर, इसका विस्तार, शुष्क परिस्थितियों का विस्तार अरावली को पार करके भी आ रहा है इधर, और अरावली के बीच बीच में जहां छोटे छोटे गैप हैं उनमें से भी घुस करके पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। आज दक्षिण अरावली में भी आज आप देखेंगे सिरोही, माउंट आबू का जंगल जो गुजरात के उत्तर गुजरात के घने जंगलों से जुड़ा हुआ है, बनासकांठा, साबरकांठा, अंबाजी के इलाके से, और
1: जी
0: उदयपुर का इलाका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का इलाका, भीलवाड़ा, चित्तौड़ का इलाका, कोटा बूंदी का इलाका, ये जो इधर दक्षिण राजस्थान का है, यहाँ जो सघन वन क्षेत्र है, आपको बड़ा मजा आएगा कि इस अरावली का जो दक्षिण पूर्वी भाग है चित्तौड़ की तरफ, चित्तौड़ की तरफ दक्षिण पूर्वी अरावली का जो विस्तार है वो पूर्व से मालवा के पठार और दक्षिण पूर्व से विंध्या पर्वतमालाएं, इनके साथ कॉन्फ्लुएंस जोन बनाती है अरावली, चित्तौड़गढ़ जिले में जहां सीता
1: जी
0: माता वन्य जीव अभयारण्य है,
1: एक
0: मालवा का
1: संगम
0: पठार,
1: प्रकार
0: संगम मालवा का पठार, विंध्या माउंटेन, और इधर से अरावली, इनका तीन ज्योग्राफिकल अलग अलग तरह की ज्योग्राफिकल जोन का ये कॉन्फ्लुएंस जोन है। वहां का जीव जंतु और भी पिक्यूलियर है, इन तीनों जोन का प्रतिनिधित्व करने वाले जीव जंतु। उसी तरह से सिरोही, माउंट आबू, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनका जो गुजरात से जुड़ा इलाका है, इस इलाके में भी जो जीव जंतु है वो ज्यादा प्रचुर है, ये खत्म हो रहा है, ये आवास नष्ट हो रहे हैं, और उसके कारण जो जंगल का प्रकार है वो चौड़ी पत्ती वाले सघन वन, यही क्षेत्र है चित्तौड़ भीलवाड़ा तक का, जो दक्षिण का सागवान का विस्तार, ये लास्ट लिमिट बनती है अरावली में, इसके बाद उत्तर में आपको सागवान का ही नहीं मिलेगा, राइट?
1: जी
0: इसके अलावा जो अरावली का जो, क्योंकि इसका उठान हो गया, शुष्क परिस्थितियां बढ़ गई, तो उसके कारण यहाँ जंगल क्या हो गया, भौंक का ज्यादा प्रचुर जंगल है। पूरी मध्य अरावली, उत्तर में भी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रेंज है, झुंझुनू, सीकर, और वहां पर भी दिल्ली तक में, उसके बाद में अजमेर, जयपुर और दक्षिणी राजस्थान में, वहां पर धौंक, एनोगेसिस पेंडुला जिसको हम कहते हैं, धौंक, काला धौंक, और उसके साथ में उसके भाई हैं सफेद धौंक, एनोगेसिस लेटीफोलिया। अब इनके साथ में अन्य जो सह संबंध प्रजातियां वो बढ़ गई, तो ये धौंक डोमिनेटेड चरम अवस्था का जंगल हमारे यहाँ बचा है। माउंट आबू जो अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचाई पर है, गुजरात के नॉर्थ डेंस फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, और दक्षिणी राजस्थान का एरिया अभी भी वर्षा प्रचुर है, यहाँ जलाशय हैं, तापमान की स्थितियां हैं, तो यहाँ अभी मिक्स जंगल है लेकिन पतझड़ी है, धौंक यहाँ पर बाहुल्य में ही है, ये अब जो है और ज्यादा शुष्क परिस्थितियों में बदल रहा है। शुष्क परिस्थितियों में बदलने का मतलब है कि यहाँ के जंगलों में गर्मी बढ़ रही है, चौड़ी पत्ती वाले सदा हरित रहने वाली वनस्पतियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, उनका फल भी बन रहा है तो वो फूट नहीं रहा है, फुटान नहीं हो रहा है उसका।
1: जी
0: आप अगर सिरोही, माउंट आबू के पहाड़ को देखें जो पश्चिमी भारत का सबसे ऊंचा इलाका है, तो वहां जो पुराने वृक्ष हैं उन प्रजातियों के नए फुटान आपको नहीं मिलेंगे। यानी ये जो दृष्टिकोण अगर आप देखना चाहें, कोई आम जनता भी इस चीज को समझना चाहे। हमारे बुजुर्ग इन चीजों को बड़े बड़े संवेदी तरीके से जानते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग जो 80-90 साल के हैं वो जानते हैं, वो एक लाइन में बोलते हैं, साहब पहले जो था वो आज नहीं है।
1: जी
0: एक लाइन में वो इस चीज को डिस्क्राइब कर देते हैं कि जो पहले था वो आज नहीं है। आज जो 50-60 ईयर्स की एज के जो जनरेशन के लोग हैं वो जानते हैं कि बचपन में वो जिन चीजों को वनस्पति जीव जंतुओं को देखते थे आज उनको वो नहीं दिखाई देता। और
1: जी
0: आपके ये जो आज जो यंग एज है 25-30 साल के लोग हैं, ये तो अभी इनको तो हवा ही नहीं लगती है कि पहले आज से 50 साल 80 साल 100 साल पहले क्या था। ना उनकी टेक्स्ट बुक में इस चीज को बताया जाता है पर्यावरण शिक्षा में पर्याप्त रूप से, ना वे अपने बुजुर्गों से कोई डिस्कशन ऐसा कर पाते हैं कि उनको अपनी हिस्ट्री इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अपनी बायोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानने को मिले। हमारे जंगलों से चौसिंगा हिरण भेड़ल जिसको कहते थे बुटार कहते थे, घने जंगलों का जो हिरण है एंटीलोप है वो खत्म हो गया लगभग से। उड़न गिलहरी हमारे जंगलों में पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि ये दक्षिण भारत में और वहां उड़न गिलहरी पाई जाती है, नहीं दक्षिणी राजस्थान में हमारे जंगलों में उड़न गिलहरी पाई जाती है, लेकिन उनके आवास जिस तेजी से नष्ट हो रहे हैं वो बड़े बड़े महुआ के पेड़ों में बहेड़ा के पेड़ों में सागवान के पेड़ों में ऐसे बड़े बड़े सघन बड़े पेड़ों के अंदर उनके कोटर में रहती हैं। लेकिन जब उन जंगलों में रिपीटेड फायर लगती है, मानवीय व्यवधान बढ़ते हैं, हमारे पानी से महाशीर मछली वो खत्म हो गई और उसके साथ में हमारी जो और भी मछलियां थी चंबल तक जो गैंगेटिक डॉल्फिन का जो विस्तार था वो खत्म हो गया, और उसके साथ साथ में धीरे धीरे धीरे जो है हमारा जंगल भी जो है वो ज्यादा शुष्क प्रकार में बदलता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी और ये कब आएगी ये आप और मतलब हम वैज्ञानिक तथ्य से स्टेटिस्टिकल डाटा से एनालिसिस करके हम कह दें कि ये स्थिति आने में 150 साल लग जाएंगे। 150 साल में यहाँ का जंगल पूरा कांटेदार वनस्पति और बस वही रह जाएगा। लेकिन ये वैज्ञानिक अनुमान हम जिस तेजी से परिवर्तन ला रहे हैं मनुष्य उस
1: जी
0: अनुमान से भी पहले से घटित हो जाएगा। तो होगा जरूर ये तय है, होगा जरूर ये परिवर्तन, क्योंकि अब हमने इतना चेंज कर लिया कि अब ये परिवर्तन जो है वो जब पृथ्वी पर कोई बड़ी हलचल जो छठा महाविनाश पृथ्वी पर अब प्रारंभ हो गया है और उसके बाद में फिर से पृथ्वी का उद्विकास होएगा, तब फिर यहाँ की स्थितियां फिर कुछ बदलेंगी, भौगोलिक परिस्थितियां बदलेंगी, यहाँ का क्या होगा। लेकिन ये हो रहा है,
1: जी
0: ये थ्रेट तो अभी बढ़ता ही जा रहा है।
1: जी जी बिल्कुल। और सर आगे हम विस्तृत रूप से अरावली की कहानी में और बेहतर समझेंगे, इसके इतिहास को जानेंगे, और ये जो गिरावट हुई है या फिर जो लुप्त हुए पशु पंछी है, वनस्पति है, और हमने देखा नदियों की धारा हमने बदल दी है, कई ऐसे जो मानवीय भूल के कारण हम आज जो भुगत रहे हैं उसे कैसे हम कह सकते हैं कि ये योगदान दे सकते हैं जिसे थोड़ा और बेहतर कर सके, इसके बारे में आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। और आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी बजे हैं रात के 11। 1 मिनट के स्वचिंतन से टेंशन होगी 9-2-11।

नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, शनिवार की सुप्रभातम। सभी श्रोताओं को प्रभा पंडिताइन का नमस्कार और स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम पंडिताइन में। शुरू करते हैं एक बहुत सुंदर सी कहानी से। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता रहा। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वो पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। अब महामंत्री जी गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उनको ये पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर ये पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुई गवा और महामंत्री के जाए के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़े के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर वार किए किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब का टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गए और उसे ये कह कर वापस कराया कि पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना रहा, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गवा। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गवा। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार कोनो कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास जगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। का पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो क्या करिएगा, हार मत मानिएगा। किसी काम में मेहनत करते हैं, आधे में मत छोड़िएगा। क्या पता अगला कदम पे ही आपको सफलता मिल जाए। यानी छोटी छोटी बात में निराश हो गए कि नहीं भाई, हमने तो बहुत प्रयत्न कर लिया, अब तो हम थक गए हैं, ऐसा मत करिए। नहीं तो भाग्य आपके दरवाजे पे ठक ठक करके चला जाएगा और दूसरे के दरवाजे पर एक हथौड़े मारने से उनका जैसा पत्थर टूट गया और उनका भाग्य बन गया, वैसे उनका बन जाएगा, आप वंचित रह जाएंगे। कहे का मतलब, अपने तरफ से पूरा प्रयास करें, छोटी छोटी बातों में हार ना माने।
जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। और मौन रहना एक साधना है, सोच समझकर बोलना एक कला है। ये कला हर किसी को नहीं आती। कई लोग बर बर सारा दिन बर बर क्या करते हैं और उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। ये भी एक कला है, कहाँ बोलना, कितना बोलना है, कैसे बोलना। बोलना जरूरी भी है या नहीं, किसी ने आपसे पूछा नहीं और आप अपनी राय देने लगे, आपकी राय कोई नहीं सुनेगा कि बीच में काहे टपक पड़ा। यानी हमें मालूम होना चाहिए अपने बोल का वजन कहाँ है। अगर आप बहुत खुश रहना चाहते हैं तो अपने आसपास होने वाली हर बात को व्यक्तिगत रूप से ना ले, इस बात का ध्यान रखें। कोनो दो व्यक्ति बात कर रहा है आपकी तरफ देख रहा है, वो देख कहीं और रहा है, आपको लग रहा है आपकी तरफ देख रहा है और आपकी बुराई कर रहा है, बस आपके मन में वो कीड़ा शंका का आ जाएगा और बस आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर खुश रहना तो ये बात भी ध्यान रखिए। पुराने जमाने में इंसान झूठ बोलने से डरता रहा कि गुनाह होगा, और आज के जमाने में इंसान सच बोलने से डरता है कि नुकसान होगा। अरे थोड़ा समय का नुकसान होगा, लेकिन अगर सत्य बोलेंगे तो खुश रहेंगे अंदर से। हर बार सोचना नहीं पड़ेगा कि वहाँ का बोले रहे। झूठ बोलेगा तो सोचेगा ना, और सच है तो नींद में से भी उठा के पूछेंगे तो वो उसके मुँह से वही निकलेगा। जीवन में झुकना भी आवश्यक है, लेकिन केवल वहीं तक जहाँ तक आपका आत्मसम्मान और संबंधों का मान बना रहे। झुकना अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं हम काहे झुके, हम कायर थोड़ी है, कायर की निशानी नहीं है, लेकिन उतना ही झुके कि आपका आत्मसम्मान बना रहे। क्योंकि आत्मसम्मान बना है तो आप कहीं ना कहीं मन में परेशान नहीं होंगे कि उनने हमको गलत कह दिया और हम कुछ भी नहीं बोले, या हम काहे झुक गए, तो वो भी ना हो, लेकिन अभिमान भी नजर ना आए। सबको पार लगाने वाली नाव नदी में ही रह जाती है, उसका कोनो ठिकाना नहीं होता। इसे सीख लीजिएगा। कई लोग दूसरों को बहुत मदद करते हैं, पार भी लगा देते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यही वो साधन है जो आपको खुद पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। वही फिर आपके अंदर कितना कंट्रोलिंग पावर है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। अपने संघर्ष से मत घबराओ। यदि वो कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है, यही वो कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। संघर्ष करोगे, सफलता पाओगे, फिर लोग पूछेंगे कैसे पाई, तो आप बताएंगे ये बात आई, संघर्ष आया, लेकिन भगवान की मदद मिली, हमारा आत्मविश्वास बना रहा, इसके लिए हम पार हो गए। लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना, प्रशंसा कौनो मायने नहीं रखती। हमारा लक्ष्य सबसे ऊपर है, हमने जो सोचा है वो करके रहेंगे, फिर ये सब बातें तो रास्ते में आएंगी। लोग बोलेंगे, टोकेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई लोग मस्काबाजी भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे। इन सब से उपराम होकर अपने लक्ष्य को ध्यान देंगे। जीवन के अंतिम पलों में जीवन का एक एक कर्म फिल्म की तरह आंखों के सामने झलकेगा। कोशिश करें कि अपनी फिल्म देखने लायक हो, यानी हमने जीवन भर कौन से कर्म किए हैं, उसका फल हमें जब मिलेगा, यानी साक्षात्कार परमात्मा जी कराएंगे, तो ऐसा ना हो कि बाद में पश्चाताप करना पड़े, और पश्चाताप करके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कहे कि अब तो चिड़िया चुग गई खेत। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं
अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। अरे भाई अभी जरा अच्छा नहीं, समय नहीं चल रहा। अरे भाई अभी हमारा भाग्य ठीक नहीं चल रहा। अरे भाई अभी साढ़े सात ही चल रही है। अरे भाई अभी राहु की दशा चल रही। नहीं, ये सब फीके पड़ जाते हैं जब आपका प्रयास, आपका पुरुषार्थ तीव्र होता है। आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए ये बात पे गीत सुन लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पे। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, सुनिएगा गीत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो real मायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और stable भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर generate हुआ, चाहे वो suppress कर दिया, लेकिन हम stable नहीं होते हैं तब। You know, तो then I cannot say कि I'm internally stable, but now I'm being assertive। तो internal stability means, you know, no trace of anger, उसको जब पूरा खत्म होगा, internally बिल्कुल calm and in control है, लेकिन फिर भी आपको discipline करना, you know, and assertive जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, you know, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप full in control है। anger में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुना रहे हैं, छोटी सी है, डिलीवर बॉयफ्रेंड की जुबानी। एक डिलीवरी बॉयफ्रेंड अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, ज़्यादातर शाम की शिफ्ट में काम करता हूँ। उस दिन रात करीब 9 बजे आखिरी ऑर्डर उठाया, रेस्टोरेंट से पैकेट लिया तो देखा ऑर्डर छोटा था, बस एक सादा खिचड़ी, दही और 2 केले। पता शहर के पुराने हिस्से का रहा, एक जर्जर सी बिल्डिंग, ऊपर 3री मंजिल। डोरबेल दबाई, दरवाज़ा एक बूढ़ी अम्मा ने खोला, सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, आंखों पर मोटा चश्मा, चेहरे पर थकान रही लेकिन आवाज़ में मिठास रही। बेटा जरा अंदर रख दो, हाथ कांपते हैं। मैं खाना टेबल पर रखकर मुड़ा ही था कि उन्होंने पूछा, 2 मिनट बैठोगे? अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने घड़ी देखी, शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ा थका था लेकिन पता नहीं क्यों मैं बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था, दीवार पर पुरानी घड़ी टिक टिक टिक टिक कर रही थी। एक कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर और सामने दीवार पर दर्जनों फोटो। उन्होंने थाली खोली, धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगी। हर 2 कौर के बाद मेरी तरफ देख मुस्कुरा देती, फिर बोली, जानते हो बेटा, मैं रोज़ बाहर से खाना नहीं मंगाती, आज बस मन किया किसी इंसान की आवाज़ सुनने का। मैं चुप रहा। उन्होंने सामने लगी तस्वीर की ओर इशारा किया, ये मेरे पति हैं, रेलवे में रहे, 5 साल पहले चले गए। फिर दूसरी तस्वीर, ये बेटा है, कनाडा में रहता है, बहुत अच्छा है, हर महीने पैसे भेजता है। फिर थोड़ी चुप रही, मुस्कराई मगर इस बार आंखें भीग गई, बस समय नहीं भेज पाता। कमरे में अचानक घड़ी की टिक टिक टिक बहुत तेज सुनाई देने लगी। उन्होंने 1 कौर और खाया। ये बेटी है बंगलुरु में, अपनी दुनिया में खुश है, होना भी चाहिए। बच्चे अगर उड़े नहीं तो माँ बाप ने पाला ही का। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर्रा गई, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस खालीपन था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ है? मैंने कहा हाँ। फ़ोन करते हो रोज? मैं चुप हो गया। सच ये था कि मैं भी कई कई दिन घर फ़ोन नहीं करता था, थकान, काम, भाग दौड़, हर बार यही सोचकर टाल देता था कि कल कर लूँगा। उन्होंने मेरी चुप्पी पढ़ ली, हल्के से बोली, माँ बाप पैसे नहीं गिनते बेटा, आवाज़ गिनते हैं। मेरे भीतर कुछ चुपचाप टूट गया। खाना खत्म हुआ, उन्होंने पानी पिया, फिर पर्स से 500 रुपये निकाल कर मेरी ओर बढ़ाए। ये टिप नहीं है, ये उस आधे घंटे की कीमत है जिसमें तुमने मुझे अकेले नहीं खाने दिया। मैंने तुरंत मना किया, नहीं अम्मा, ये नहीं ले सकता। वे मुस्कराए, ले लो, तुमने खाना नहीं पहुंचाया, आज तुमने साथ पहुंचाया है। मैंने पैसे ले लिए लेकिन जेब में नहीं रखे, हाथ में ही पकड़े रहा। जाते जाते उन्होंने कहा, और हाँ, आज घर जाकर माँ को फ़ोन ज़रूर करना। उस रात मैंने बिल्डिंग के नीचे बाइक स्टार्ट नहीं की, पहले माँ को फ़ोन लगाया। उधर से आवाज़ आई, आज अचानक, सब ठीक है ना? बस इतना सुनते ही गला भर आया। मैंने कहा हाँ माँ, बस आपकी आवाज़ सुननी थी। उधर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर माँ बोली, खाना खाया? मैं सड़क किनारे खड़ा रो पड़ा। उस रात के बाद मैं रोज़ माँ को फ़ोन करने लगा, और सिर्फ माँ को नहीं, हर डिलीवरी अब मेरे लिए सिर्फ ऑर्डर नहीं रही, किसी घर में दवा जाती है,
किसी घर में अकेलापन, किसी घर में इंतजार, किसी घर में बस एक आवाज की जरूरत होती है। मैं अब दरवाजा खुलने पर जल्दी नहीं करता, चेहरा देखता हूँ, आवाज सुनता हूँ, कभी पूछ लेता हूँ और सब ठीक। और ज्यादातर लोग बस हाँ कहते हैं। कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं और कुछ के चेहरे बता देते हैं कि उन्होंने पूरे दिन किसी से बात नहीं की। 2 महीने बाद उसी पते पर फिर ऑर्डर आया। मैं भाग कर गया, दरवाज़ा किसी और ने खोला, पड़ोस वाली आंटी थी। धीरे से बोली, अम्मा पिछले हफ्ते चली गई। कुछ सेकंड तक मैं दरवाजे पर खड़ा रहा, हाथ खाली थे लेकिन भीतर कुछ भारी गिर चुका था। उन्होंने अंदर से एक छोटा लिफाफा लाकर दिया, तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। हाथ कांपते हुए खोला, अंदर 500 रुपये थे और एक छोटी सी पर्ची। उस पर लिखा था, बेटा अगर ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुकी हूँ, धन्यवाद उस रात मेरे साथ खाना खाने के लिए, तुमने मुझे खाना नहीं सम्मान दिया, और हाँ माँ को फ़ोन करते रहना, अम्मा। आज भी वो 500 रुपये मेरे बैग की अंदर वाली जेब में रखे हैं, खर्च नहीं किए, क्योंकि उस रात पहली बार समझ आया हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता, कभी एक माँ होती है, कभी एक इंतजार, कभी एक आखिरी बातचीत। हम सब अपनी अपनी भूख लेकर जी रहे हैं, किसी को रोटी चाहिए, किसी को दवा और किसी को बस 2 मिनट का साथ। इंसान को हमेशा पैसे की नहीं, कभी कभी बस मौजूदगी की डिलीवरी चाहिए। सही में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश में भी 70% बुज़ुर्ग बस यही चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए साथ कोई हमारा है। और आज हम जैसे देख रहे हैं, हर कोई आज़ाद, हर कोई उड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारे दादा दादी, जिन्होंने हमें बड़ा किया, पाला पोसा, इस लायक बनाया, उनको भी हमारी ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज ही अपनी माँ को, नानी को, दादी को, पिताजी को, जो बुजुर्ग घर के हैं उनको फ़ोन नहीं करते, एक बार 24 घंटे में ज़रूर करिएगा। अनमोल विचार ये है कि अपने दिमाग में 2 चीज़ें हमेशा रखो। एक, जब आप अकेले हो तो अपने विचारों पर ध्यान रखो, और दूसरा, जब आप औरों के साथ हो तो अपने शब्दों पर हमेशा ध्यान रखो। गुलाब की सुरक्षा कांटों के बीच होती है, उसी तरह कठिन दुखमय परिस्थिति के बीच ईश्वर के याद आने से जीवन सुरक्षित होता है। जीवन में समस्या आने पर उसके समाधान की खोज करना ही आगे बढ़ने का साधन है। कुछ चीज़ों को थोड़ा धैर्य रखकर देखिए, इसमें बहुत आसानी से समाधान मिल जाएंगे। आज इंसान के पास सब कुछ है, धैर्यता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, थोड़ा ठहराव नहीं है, थोड़ी गंभीरता नहीं, हर चीज़ जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, हर चीज़ इंस्टेंट, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफ़ी, हर चीज़। लेकिन शांति इंस्टेंट नहीं मिलती, उसके लिए धैर्यता रखनी होती है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार, बाकी जो बचा वो तो दुनिया सिखा देगी। भगवान कभी गलत नहीं करते, उनकी हर परीक्षा के पीछे भलाई छुपी होती है। चलिए इस बात पर एक गीत और सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे बताएंगे। सुनिएगा ये मीठा सा गीतवा।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जब सब खत्म लगे तभी शुरू होता है असली साहस। एक समय की बात है, एक पराक्रमी राजा अपने न्याय और दया के लिए दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध रहा। एक दिन उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक संत ने उसे एक ताबीज भेंट किया। ताबीज देते हुए संत ने गंभीर स्वर में कहा, राजन इसे अपने गले में धारण करो, लेकिन इसे खोलना तभी जब जीवन में ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि अब सब समाप्त हो गया है, कोई आशा शेष नहीं है। राजा ने उस ताबीज को आदर पूर्वक स्वीकार किया और हमेशा अपने पास रखने लगा। समय बीतता गया और राजा अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। जंगल बहुत घना और खतरनाक रहा। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने साथियों से बिछड़ गया और अनजाने में दुश्मन राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। सांझ ढलने लगी थी, अंधेरा बढ़ रहा था और तभी उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। दुश्मन सैनिक उसकी ओर बढ़ रहे थे। घबरा कर राजे ने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया, परंतु थकान और भूख प्यास के कारण उसकी गति धीमी पड़ने लगी। भागते भागते उसे पेड़ों के बीच एक छोटी सी गुफा दिखाई दी और उसने तुरंत वहां शरण ली और खुद को छिपा लिया। उसका दिल बहुत तेजी से ठक टक टक टक तड़क रहा था, सांसें थम सी गई रही। दुश्मन सैनिकों की आवाजें पास आती जा रही थी। उस क्षण राजा को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। निराशा और भय ने उसको पूरी तरह घेर लिया। उसे अपनी हार और मृत्यु साफ दिखाई देने लगी। तभी अचानक उसका हाथ अपने गले में पड़ी ताबीज पर गया। उसे संत की बात याद आई। कांपते हाथों से उसने ताबीज खोला और उसमें रखा छोटा सा कागज निकाला। जब उसे पढ़ा तो उस पर लिखा था, ये भी कट जाएगा। इन चार शब्दों ने जैसे उसके भीतर नई ऊर्जा भर दी। उसके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगा और उसको लगा कि कठिन समय भी स्थायी नहीं ना है, ये भी बीत जाएगा। उसके भीतर एक अद्भुत शांति और विश्वास जाग उठा। वो स्थिर होकर बैठ गया और अपने मन को संभाल लिया। कुछ देर बाद घोड़ों की टापों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। दुश्मन सैनिक बिना उसे देखे आगे निकल गए। रात गहराने के बाद राजा गुफा से बाहर निकला और सावधानी पूर्वक रास्ता तय करते हुए अपने राज्य लौट आया। इस घटना ने उसके जीवन की सोच को बदल दिया। अब वो हर कठिन परिस्थिति में घबराए के बजाय धैर्य और विश्वास बनाए रखता था। एक कहानी केवल उस राजा की नहीं बल्कि हम सभी की है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब समस्याएं हमें चारों ओर से घेर लेती है। हमें लगता है कि अब कोनो रास्ता नहीं बचा, सब खत्म हो गवा। लेकिन सच ही है कि कोनी भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे दुख हो या सुख, हर दौर गुजर जाता है। जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए, बस कुछ पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये भी कट जाएगा। यही विचार आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और कठिन समय से बाहर निकालने की शक्ति देगा। याद रखिए, जो आज असंभव लगता है वही कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। हर चीज से, हर घटना से आप कुछ ना कुछ पाठ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मन में शांति है, धैर्यता है और आप भी ऐसे ही सोच लेंगे कि ये समय भी कट जाएगा, तो जरूर वो समय कट जाएगा। एक समझदार व्यक्ति को उम्र भर केवल एक ही बात से ठगा जाता है, तुम तो समझदार हो, तुम्हें समझना चाहिए। लोग कह देते ना, अरे तुम तो बड़े हो, तुम तो समझदार हो, तुम काहे को परेशान होते हो भाई। जिंदगी में सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हेलो हेलो हेलो, जिंदगी में सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी ना टूटे। कर्म करने पड़ते हैं दोस्त, यूँ रोज रोज देवताओं के स्टेटस लगाने से चरित्र साफ नहीं होता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे का बहस तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी बोलिए। नमस्कार, रेडियो मधुबन। हेलो, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।
2: क्या
1: जी, अब ठीक आ रही है आवाज?
2: क्या
1: तो कहा, खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने। आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। असली बात ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, असली बात ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने फैसलों पर कितना भरोसा करते हैं। कहे कि जिंदगी किसी घटना पर नहीं बल्कि उसके बाद हमारे अंदर मौजूद ऊर्जा पर निर्भर करती है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए और वो हर परिस्थिति में आपको सामना करने की शक्ति देगी। और आप तो सब जानते हैं कि अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ती है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, जब हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं। परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर फ्लो करने लगती है और हमारे अंदर की नकारात्मकता निकलती जाती है और हमारा आत्म मंथन कहिए, आत्मशक्ति कहिए, विल पावर कहिए, वो हमारा बढ़ते जाता है। तो आशा करते हैं आप अच्छी अच्छी बातें सुनने के साथ साथ परमात्मा को जरूर याद करते होंगे और वही एक ऐसा सहारा है जो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता। चलिए भाई, एक गीत और सुनते हैं, फिर आपसे बताते हैं। सुनिएगा मीठा सा गीत, तो बहन जी को निकवा सा गीत सुनवा दीजिए। तो

0: सच्ची मानवता। भाई, मैंने कल तुम्हें सुबह जो थैलियाँ दी थी वो, हाँ बाबा, सिलाई कर दी मैंने जैसे आपने कहा था, रुकिए देता हूँ, कहकर मोहन दर्जी जो सड़क किनारे एक खाली जगह पर छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर कपड़े सिलकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, बोला, वाह, बहुत सुंदर सिला है बेटा, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मोहन बोला, बाबूजी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछो बेटा, आप इतने बड़े घर में रहते हैं, मैं आपके बच्चों को भी जानता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप ये किस लिए सिलवाया है, ये थैलियाँ तो आटे की है, आपके कहने पर मैंने मजबूत भी सिल दी, मगर समझ नहीं आया आपके घर में इसका क्या उपयोग होगा। बेटा, वो जो वहाँ फुटपाथ पर वृद्ध बैठती है ना, ये उनके लिए है, मुझे उन्हें देनी है। दरअसल बेटा, बाहर इतनी गर्मी और धूप पड़ती है और उनका भी कोई नहीं है, वो वहाँ बैठकर मेहनत करते हुए किसी रेहड़ी वाले के फल आदि बेचती है ताकि उनके दिन रात खाने का प्रबंध हो सके। मैंने उन्हें कितनी ही बार कहा कि आप किसी आश्रम में चले जाओ, इस उम्र में ये सब। बेटा बड़ी खुददार है, बोली, अभी कमा कर पेट भर सकती हूँ तो क्यों आश्रम जाऊँ। आते जाते मैंने ध्यान किया कि वो गर्मी से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है, मैं और अधिक तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए घर आई ये आटे की थैलियों को इकट्ठा किया और एक चादर की तरह बनवा लिया, अब वहाँ चार बांस के सहारे लगवाने में मदद कर दूंगा ताकि वो बहन गर्मी से बच जाए। वृद्ध है तो वो बीमार भी नहीं पड़ेगी, कहते हुए उन वृद्ध ने मोहन की ओर सिलाई के पैसे बढ़ा दिए। पैसे पकड़ते वक्त मोहन की आंखें भीगी हुई थी, अचानक उसने जानबूझकर कुछ पैसे नीचे की ओर गिरा दिए। पैसे उठाते हुए उसने उन वृद्ध बाबा के चरणों को स्पर्श किया और मन ही मन बुदबुदाने लगा, लोग दिखावा करके मददगार बनने का ढोंग करते हैं बस, मगर जो दूसरों के दर्द को बिना कहे समझे और निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करे, ऐसे देवदूतों को मेरा प्रणाम। ईश्वर ऐसे ही व्यक्तियों में जानते हैं, आज बहुत गर्मी चल रही है, बहुत साल हम ये बात बोलते हैं, लेकिन बात बोलते हैं अच्छी मानता है, तो जरूरी नहीं कि मनुष्यों को, मनुष्य को भूख लगेगी तो भी बोल देगा, भूख प्यास लगेगी तो भी बोल देगा, प्यास लगेगी मुंह प्राणी तो कुछ नहीं बोल सकते, मुंह प्राणी इंसानी की भी मदद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम की बात है, पक्षियों के लिए दाना पानी तो जरूर हमारे अंदर उनके प्रति भी सम्मान, हमारे अंदर उनके प्रति भी सम्मान होना करते हैं, आप इस बात को मानिएगा। उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जे कि दिल में सबके लिए प्रेम स्नेह और सम्मान की भावना हो, चाहे वो इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। आंख एक ही भाषा समझती है, प्रेम की, मिले तो भी झलकती है ना मिले तो भी। बहुत कोई प्रेम करे तो आंख में आंसू आ जाते ना, और दुख में तो ऐबे करते हैं, तो एक आंख ही है जो समझती है प्रेम भी, और बाकी तो आप सब जानते हैं। श्रद्धा मस्तिष्क का विषय है, भक्ति हृदय का विषय है, और ध्यान दोनों को जोड़ता है। दिल और फूल दोनों खूबसूरत होते हैं, दिल और फूल दोनों खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल फूल से भी, कुछ लोगों के दिल फूल से भी खूबसूरत होते हैं, जैसे आप हमारे सभी श्रोता लोग। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही सबसे बड़ा धन है। बाकी सब तो जिसने चोंच दिया वो दाना देगा। इंसान कुछ ना कुछ करके तो पेट भर ही लेता है, लेकिन प्रेम और सम्मान हर कोई चाहता है। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए अच्छे विचार बो, अच्छे कर्म करो और अच्छे परिणाम पाओ। प्रकृति का नियम है, मेहनत हमेशा रंग लाती है, धैर्य और विश्वास से ही सफलता की राह बनती है। आशा करते हैं इन बातों को जीवन में आप उतारेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। क्या खूब लिखा है, परखो तो कोई अपना नहीं, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं, चेहरे की हंसी से गम को फुला दो, चेहरे की हंसी से गम को फुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो, जियो और जीना सिखा दो। अंत में यही कहेंगे, उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम स्नेह और सम्मान की भावना हो। चलिए भाई, 12 बजे वाले हैं, आप सबसे छुट्टी लेते हैं, कल 11 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
1: मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति।
1: मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी म्हारो गांव म्हारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, ढाणी ढाणी में जाते हैं, फली में जाते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलता है। कोई परिचय नहीं होता है, अचानक में जाते हैं तो हमारा भाई बंधु मिल जाते हैं, आई लोग भी मिल जाते, कभी बाप लोग भी मिल जाते हैं। तो आज खासकर हम धमसरा ग्राम पंचायत में पहुँचे, धमसरा के भाई बहन हम जो बात किए बहुत अच्छा लगा। कौन सी फली का नाम क्या है? भुमरिया फली। तो धमसरा का ग्राम पंचायत में भुमरिया फली में हम पहुँचे, यहाँ का जो निवासियों से मिले और खासकर भाई लोग यहाँ पर अपना खेती भी करते हैं। इसके साथ साथ बच्चे को जब हम बात किए तो बहुत पढ़े लिखे में बहुत होशियार है, सब पढ़ाई लिखाई किए हैं, कोई MA तो कोई BEd, आश्चर्य हो गया। मतलब ये शहर से भी कम नहीं है ग्रामांचल लोग। तो आज इस कार्यक्रम में जब भुमरिया फली में पहुँचे तो यहाँ का एक बुजुर्ग वृद्धजन जिसको हम सम्मान करते हैं, सलाम करते हैं, आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, तो उनको राम राम करते हैं। राम राम,
2: राम राम, राम
1: राम। तो हमारे हूँ नाम
2: बाबू।
1: अच्छा, और गाँव रो? गाँव रो फली रो हूँ नाम
2: बुगरिया फली।
1: बुगरिया फली, भुमरिया फली ना गुगरिया फली?
3: भुमरिया
1: फली। भुमरिया फली में हम पहुँचे। और तो बाबू जी आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, तो क्या क्या खेती करते हैं? खेती क्षेत्र क्षेत्र में
2: मक्की बापता था, मक्की और बाजरी, हमने सवला छोला बीड़े सब चीज रे, टमाटा अपने गुआर फली
1: ये सब खेती करते हैं।
2: हाँ,
1: उसमें हो जाता है। और घर में छोकरा छोकरी कितना है? लड़का लड़की?
2: छोकरा छोकरी कितना? तीन।
1: तीन लड़का? हाँ। और लड़की?
2: लड़की चार।
1: चार, सात लोग पूरे, सात लोग को पूरा पढ़ाई लिखा है सभी को?
2: तीन बढ़िया,
1: तीन बढ़िया। अरे वाह, इतना लोग को पढ़ाए, इतना बड़ा परिवार है, फिर भी सब मिलजुल कर रहते हैं, खेती करते हैं, और खुशी लगता है क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में बहुत सारा आता है, क्योंकि सबको लेकर चलना ये कम बात नहीं है, क्योंकि कॉलेज हो गए, सबका संस्कार अलग अलग होता है, कोई पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ है, और कोई करना चाहते हैं, कोई करना नहीं चाहते हैं। फिर भी एक जिम्मेदारी माँ बाप का होता है,
2: सही बात,
1: सबको संतुष्ट रखना होता है, सभी बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। फिर भी बहुत अच्छा जानकारी दिए, तो बच्चों को पढ़ाया, जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ाया, जो नहीं पढ़ना चाहे उसको खेती में खेती में लगे, खेती भी जरूरी,
2: खेती करी भी एक लागी भी खेती करी,
1: जी जी
2: लागी भी नौकरी, ये बात है।
1: तो बर्तन को देखते हुए, संसार को देखते हुए आपका जमाना में और आज का में क्या अंतर है?
2: हमारा जमाना में ये है, वो तो अपने कुआ था, हल होते, हल खेलता, काटी खेलता, तब आना जमाना मोड़िया भंडवार वाला आ जाएगा। आना जमाना में ट्रैक्टर आई, लाइट आई, हमारा माँ हमारा खेती करता के उन्होंने कुआ था, बड़ी कुआ और मारे वाला, वही कुआ करता था, बलद खेलता था,
1: बल्दों से पानी निकलता,
2: हाँ पानी बलता तो करता था।
1: अब किए सब काम?
2: बस वो काम करता था, वो मोड़िया बीजू राजा जो अपने बीजू आज राजे वाले राजा है नहीं थे, वो बूढ़ा पर अपने जा, बूढ़ा पर नहीं जा, आप बूढ़ा पर नहीं जा, अपने वो कोई तो मन ये वही मोड़ चार के पर हम दो खेती कर पे, एक दो ही कर पे आगे वही कर पे, ये आप क्या थम बजी के मैं क्या कर पाई कर पे, तो आप क्या नहीं नहीं थे ना करे मगे कर अपने तो नहीं डे इडे, ये बात है।
1: समय का खेती और आज के खेती में बहुत अंतर,
2: हाँ
1: रात दिन का फर्क है,
2: सही सही बात।
1: तो कहने का मतलब समय अनुसार बदलना पड़ता है, प्रकृति भी साथ नहीं देता, पहले तो प्रकृति पानी बारिश होता था, अभी तो बारिश कम हो रहा है, जमीन भी बंटवारा हो गया, पहले ज्यादा था,
2: उम्जा भी।
1: तो ये भी एक क्या बात है, लेकिन हम सबको मिलकर चलना होता है समय को देखते हुए। और वृद्ध जन जो होते हैं, वृद्ध मैंने जो हमारा ढोकरा हो जाते हैं ना, ढोकरी हो जाते हैं, तो उनका पास बहुत अनुभव रहता है, क्योंकि वो किए हुए जीवन में देखे हुए संसार को, जमीन को देखे हैं, उसी हिसाब से उनसे जब समय मिलता है उनका पास बैठने से, वो हमको बताएगा, अनुभव बताएगा, जिसका आधार से हम अपना जीवन को, अपना परिवार को भी, हमारा संसार को भी चला सकते हैं। क्योंकि वो तो चला जाएंगे, हमको जाना है, किंतु वो पहले चला जाएगा तो हम उनका पास जो शक्ति है, जो खजाना, जो अनुभव हम कैसे लेंगे? तो जब बैठेंगे तब हमारा वो काम निकल पाएगा। बहुत अच्छा जानकारी दिए और आज का बच्चों को देखते हैं, और कभी भी आप बच्चा था, आप भी छोकरा था कभी, कभी छोकरा था ना, उसमें पढ़ाई होता था। अभी जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं, आप भी जाते थे स्कूल में,
2: अब
1: ये लोग जा रहे, आप
2: आपने आप तो गतु किया ही नहीं, आप तो पूरे डोकरा आगे डोकरा दबेगे मैं ये ढूंढता ही नहीं
1: लेकिन
2: बहुत बहुत जी छोकरा मिल जाए ना आगे।
1: अभी तो बच्चे तो कितना सुंदर में पूरा ड्रेस पहन कर, पूरा जीन पैंट शर्ट पहन कर सब पढ़ रहे, लेकिन आपका समय तो वो नहीं था, लेकिन अंतर है।
2: अंतर हमारी होते थे, हमारा कोई खोद रहा नहीं, वो मकोम वाड़ी है, वो कोई भारी की दो वो ठीक बस दूसरों तो आगे डोकर रहे।
1: ठीक है, बस बहुत बहुत धन्यवाद इतना जानकारी दी। आपका समय में भजन कीर्तन करते थे, गीत गुब्बारा गाते थे, घर से गीत गाते थे?
2: गीत गाता था,
1: कभी गणगौर त्योहार हो,
2: मेला था,
1: मेला जाते थे उसमें गीत गुब्बारा गाते थे, शादी में गाते थे, है
2: ना। वो आगे डोकरा गीत गाए था, वो कोई गीत नहीं कोई थी, आगे डोकरी गाई थी गीत अपने मेला रहा, मेला में गाए थे गणगौर लेता।
1: ये जो बगरिया फली में, ये जो फली धामसरा में पहले सब कैसे था, आज तो पूरा घर द्वार दिखाई दे रहा है सभी लोग, तो उस समय कैसे था? आपका समय में जो आप जब इस तरह
3: पहले की
2: स्थिति होती है, ये स्थिति होती है जी दीवार ठीक भाई,
1: इसे रास्ता बड़ा अच्छा था, रास्ता जिसे जाने आने
2: ना ना रास्ता ही ना कोई नहीं, डोड़ी सीधी और रास्ता है बेस, ये डोड़ी होती है।
1: फिर इसमें खेत में ही रहते थे, जंगल में ही रहते थे आप लोग?
2: आपने कहा कि लो मैंने एक मौजू अब तो के तो ऊपर लेन जाता इस पे तड़े मुड़े लेन जाता है जोड़ी करें, जोड़ी में करें लेन जाने हाथ करता था। ये वो तो मैंने सोचो आज मुझे बा नीडो चलो बैठ क्यों हमारा जो उन्हें मैं खेती हम करता के उन्हीं बारे में कोई मजा नहीं होता, वो मोटियार अपने तो धीरे धीरे धीरे धीरे हमारा कुआ का बहुत करता मूड़ा का अपने माड़े बनता एरू धंधो तो कोई हम एतरू थोड़ू बापता था थोड़ू बापता था आगे खेतरों कोई कोई गिनती नहीं होती आज बे बे है कि तीन है एतरू बापता था खावा एतरू बस बीजू छूटू कौन बावे एतरू
1: जी जी बहुत अच्छा। तो बाबूराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते इतना जानकारी दिए, उनका पीरियड में जो समय था जब उनका बचपन का याद कर रहे हैं और बच्चों को आज सुना रहे हैं, अपने बच्चे भी सुन रहे हैं और रेडियो का माध्यम से भी जो जो माता पिता ऐसे बच्चों को अपना अनुभव आधार से बताएंगे तो वो लोग भी कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि जो इतिहास है गाँव का जो पृष्ठभूमि है पहले जैसे और आज बहुत फर्क है, समय बदल गया और हम सब अपने को भी बदल दिए, लेकिन शुरुआत में जो शुद्धता गांव का जो वातावरण गांव का जो एकता मिलता था अभी और देखने को बहुत अच्छा लगा। तो चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। अच्छा, राम राम, धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते। राम राम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है, क्योंकि गांव और अंचल में जब जाते हैं, गांव का आसपास में जो गतिविधि हो रही है, सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो हमेशा कोशिश करता है, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा ही परिचालित होता है, और सामुदाय का आवाज़ उनका पहचान हो, क्योंकि सबको एक मंच मिले, एक स्टेज मिले, जिसके माध्यम से अपना मन का बात को, दिल का बात को सरकार तक पहुंच पाए। सरकार जब सुनते हैं उसी हिसाब से स्कूल में हो चाहे पंचायत में हो, ऐसे स्कीम देते हैं, योजनाएं निकालते हैं, क्योंकि जमीन स्तर पे जो चीज़ हो रही, तकलीफ हो, पढ़ाई में जो असुविधा हो, कि आगे के लिए जो लक्ष्य रखें उसको लेने में भी दिक्कत हो रहा है, तो इस माध्यम से वो सरकार तक पहुँचाएगा, और सरकार इस बात को जब सुनेगा तो उसी हिसाब से योजनाएँ इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, तो बहुत खुशी मिलता है। गांव और अंचल में हम जाते हैं, जब चाहे किसान वर्ग हो, चाहे प्रशासन वर्ग हो, चाहे किशोरियाँ हो, चाहे हमारा आई लोग हो, सभी वर्ग से मिलते हैं, समाज सेवी हो, रोजगार

0: राजधानी के लिए उपस्थित थे। सुनीता कहाँ तक पढ़ाई किए?
1: दसवीं
0: अभी इस साल टेंथ क्लास में पढ़ रहे। अच्छा, कौन सा स्कूल का नाम बताओ? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगथला। प्रिंसिपल कौन है? सत्येंद्र गोल गुजार। वहाँ पर भी सुनीता मैडम भी है के हैं? तुम तो सुनीता है और एक सुनीता मैडम भी है ना? सुनीता मैडम को देखे है ना? क्या पढ़ाती है सुनीता मैडम?
1: इतिहास।
0: इतिहास जी। कितने मैडम है तुम्हारे स्कूल में? सुनीता मैडम तो एक हो गई, और कोई मैडम?
1: प्रेमलता मैडम, विनीता मैडम और
0: प्रेमलता मैडम, नीता मैडम मैडम और सुनीता मैडम, और बाकी सब सार। अच्छा, सबसे आपका पूरा फेवरेट प्यारा शिक्षक व शिक्षयित्री कौन है? आपको बहुत आकर्षण होता है वो टीचर का व्यवहार, उनका पढ़ाई करने का शैली और बातचीत, कौन आपको अच्छा लगता है? विनीता मैडम। ताली बजा भाई विनीता मैडम के लिए, जहाँ भी सुन रहे हैं हमारा विनीता मैडम जैसे सभी बने और हमारा सुनीता को अच्छा जैसे लग रहा है, सबको अच्छा लगे। और सुनीता बढ़ेकर तुम क्या बनेगी? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, कार्यकर्ता और
1: मैडम।
0: घर में और कौन कौन है?
1: भाई बहन।
0: बड़ी बहन है? बड़ी बहन, और आप दो बहन हैं? अच्छा, बढ़िया से पढ़ाई करो, है ना? और कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा, कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है, जैसे कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है? आप तो विनीता मैडम बता दिए, और कौन सा सब्जेक्ट विषय, इतिहास, गणित, इंग्लिश, कौन सा विषय आपको अच्छा लगती है?
1: सभी लगती
0: है। लगती, वेरी गुड। स्कूल में गीत वगैरह गाते हैं आप?
1: नहीं।
0: अपना लोकगीत, घराशा गीत
1: नहीं क्या
0: गाते? कौन सा त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं सब लोग मिलकर?
1: होली।
0: होली, अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। और स्कूल में क्या मिलता है? साइकिल
1: मिलती है।
0: साइकिल, अरे वाह, चलाती साइकिल? चलाती
1: जी।
0: अरे कितना साल हुआ साइकिल मिलते हुए?
1: एक
0: साल।
1: नाइन।
0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनीता को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और कुछ जानकारी लेंगे जो लास्ट में आएंगे, लेकिन अच्छा प्रस्तुत देंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वो आएंगे। उनका परिवार है बाबूराम का, बहू है, बेटा है, सब पढ़े लिखे, लेकिन उनसे भी बात करेंगे, उनका दिल का बात, मन का बात। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है, एक परिवार का जो भाषण सही में देखने को मिलता है और होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि माँ बाप बेटा बेटी बहू पोता पोती सब रहते हैं। एक जॉइंट फैमिली में एक समूह रूप में देखना हो तो गारा से समाज में देखो, बहुत अच्छा से रहते हैं। जो भी दाल रोटी मिलता है, रोटा मिलता है, उसमें खाकर जीवन गुजारा करते हैं। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपना देह अभिमान नहीं रहता है, एक परिवार का भावना दिलाते हैं और चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति देव हो, सबको सम्मान देकर घर को चलाना ये एक कला बहनों से सीखना पड़ता है, क्योंकि बहनों का पास इस तरह कला रहता है, भाई लोगों के पास इतना कला नहीं रहता, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड भगवान का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ है बहनों को, किंतु भाई का पास तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, भाई इधर उधर काम दम करने, घर का जो संभालने का काम, जो लक्ष्मी कहते हैं ना, घर का लक्ष्मी बहू होते हैं, बेटी होते हैं, वो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उनको भी स्वागत करते हैं। बाबूराम जी का बहू है और हमें खुशी है, इस तरह बहू जो बढ़ चढ़ कर हमारे कार्यक्रम को सजाएंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगा। चलिए अभी सुनते हैं, बाबूराम जी का जो बहू है तो वो भी पढ़ी लिखी है, वो अपना बात खुद बताएंगे, हम कम जानते उनका बारे में, मैं बताऊँगा तो कम बता पाऊँगा, लेकिन वो खुद जो बताएगी तो बहुत कुछ बता पाएगी।
2: मेरा नाम अंजा कुमारी, गांव का नाम दामसरा है, उमरेवली, और मैं एमए की है फाइनल।
1: ओ, ओपन से किया?
2: हाँ, प्राइवेट है।
1: प्राइवेट में किया। और बीए कहाँ पर किए थे? बीए
2: मोहनलाल सुखड़िया गुरु।
1: बीए काम कंप्लीट किए थे?
2: पीयर में बीए थे, कर लिए
1: पीयर में जो थे। शादी का कितना साल हो गया?
2: पाँच साल
1: हो गया। हाँ। पढ़ाई में इतना रुचि क्यों आपका?
2: क्योंकि सर आगे सीखने को कुछ न कुछ मिलेगा और नौकरी मिलेगी, पढ़ाई करेंगे तो परिवार सुधरेगा पूरा।
1: अरे वाह, आपका प्यार घर?
2: चौहानों की फली छनर।
1: चौहान की फली, वो भी बहुत अच्छा गांव है और आप उसी गांव से आए हैं तो अच्छे ही होंगे, क्योंकि गांव के जो व्यक्ति जो जन योग्य जन का चलते गांव का नाम रोशन होता है। आपका बचपन, पढ़ाई और शादी, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आया होगा।
2: हाँ।
1: बहुत मेहनत किए होंगे, सबको सम्मान देकर खुश, अभी भी आप इतना खुशी से बोल पा रहे, कोई इतना बोल नहीं पाते आजकल जो छोकरी हैं, लेकिन आप इतना पढ़ी लिखी होने के बाद करते हुए आपका चेहरा में बहुत खुशी मिल रही है। इतना खुशी रहना सबसे बड़ी खजाना है, सबसे ज़्यादा संपत्ति धन जो है खुशी नहीं है, आप कितना भी रोजगार करें कोई फायदा नहीं। तो आपको देखकर, आपका उमंग उत्सव देखकर जो भी छोकरियाँ सुन रहे, जो भी बहू सुन रहे, तो उनको एक प्रेरणा मिले। आपका जैसे उमंग उत्सव हौसला है, आपका भाभी से भी कुछ प्रेरणा लिए, परिवार से भी लिए, सास ससुर से भी लिए, पतिदेव से भी लिए, तो इस बीच में आप क्या सीखें और क्या त्याग किए, क्या छोड़े, क्या खोए और क्या पाए, क्या छोड़ दिए और क्या मिला आपको? क्या मिला? पतिदेव मिला है। क्या छोड़ दिए? माँ बाप को दूर हो गए ना। और क्या मिला? कुछ त्याग किए? त्याग बिना तो भाग्य बनेगा नहीं, त्याग बिना मैं जब हम यहाँ त्याग करके यहाँ पर नहीं आएंगे तो मिलेगा क्या? आए तब तो बड़ समय दिए, तब तो कुछ मिल रहा है ना, घर बैठ कर आप लोग हमारे पास आएंगे क्या?
2: नहीं,
1: इसलिए करना पड़ेगा। कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, वो भी श्रीमद आधार में होना चाहिए, हमारा कर्म किसको दुख न दे।
2: मैं पहले जाती थी स्कूल 8वीं तक थी मेखेड़ा में, तो उस समय, अभी तो 10वीं तक बनी है, तो पहले हम जाते थे ना, हमारे दोस्त तो छोटे छोटे बच्चे लड़कियाँ सब मिल के जाते थे, एक दूसरे को जाते न, तो रास्ते में भी एक दूसरे के इंतजार करते थे, वो आएगी तो मैं भी जाऊँगी, साथ साथ में यूँ साथ जाने का, एक पास पास में रहते थे न, तो एक साथ साथ में जाते थे, साथ साथ में आ रहे थे, खेलते थे, खेल में भी मैं भाग ले रही थी, और कोई भी उत्सव होता था उसमें गाना गीत वगैरह नाचना सब में भाग लेती थी आगे होके, साथ साथ में सभी लड़कियाँ मिलकर। और जैसे जैसे आगे गई, जैसे जैसे मैंने पढ़ाई छोड़ने का, तो ऐसे नहीं लगा कि पढ़ाई छोड़ूँ, मैंने मुझे लगा कि आगे आगे मैं पढ़ाई करती रहूँ, आगे पढ़ के कुछ बनना चाहती थी अभी, लेकिन मैं पढ़ाई अभी भी मेरी जारी है, अभी छोड़ी नहीं है। इधर आई तो इधर भी ससुराल वाले अच्छे मिले, तो इन्होंने अभी भी पढ़ाई मेरी चालू करी है, अभी मेरी पढ़ाई के पर कोई अभी रोक टोक नहीं हो रहा है। और उधर भी मैं जब पढ़ने के लिए तो कभी मना नहीं कर रहे थे, माँ बाप ने नहीं किया, और इधर आई तो इधर भी नहीं किया, घर का भी काम कर रही हूँ और पढ़ाई भी जा रही है और बच्चे भी है, बच्चों का भी पालन पोषण कर रही हूँ।
3: सही होना चाहिए। और आपको मैं जब सुन रहा था, हमारा श्रोता मित्र भी सुन रहे हैं अभी, सबसे मेन चीज बहनों को व छोकरियों को सपोर्टिंग मिलना जरूरी है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगी।
2: हाँ।
3: जैसे आपने बोला हमारा पति देव बा ससुराल हमको फ्री दिए, मैंने आप पढ़ाई करना चाहो तो करो, जितना करना चाहो करो, हमारा तरफ से जो भी सहयोग होगा हम देंगे।
2: हाँ।
3: इस तरह सभी सास ससुर हो चाहे पति देव जब देंगे तो बहुत आगे चला जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा तो कुछ तो आपने जानकारी उनको मिल पाएगा। जैसे आज रेडियो में जितना अभी हम लिए सबका रिकॉर्डिंग, लेकिन आपका रिकॉर्डिंग टॉप हो रहा है, क्यों ना, आपको फ्रीडम है बोलने के लिए, बोलो कुछ, पतिदेव बोला भाई तुम्हारा आवाज को सब तक पहुंचे।
2: हाँ।
3: एक पहचान मिले, आपका आवाज ही पहचान हो, सरपंच कभी खड़े होंगे तो आपका गांव वाले भी तो आपको बोलना पड़ेगा ना उनको भी, अभी तो माइक में बोल रहे।
2: हाँ।
3: जब आपको कभी मौका मिल जाएगा, सरपंच बनेगी कि ना?
2: हाँ।
3: चांस मिलेगा तो छोड़ेंगे क्या?
2: बनेंगे।
3: सरपंच बनेंगे तो क्या होगा ना, गाँव का विकास करेंगे।
2: हाँ।
3: जो योग्य जन है उसको निखारने के लिए आपको एक चांस मिलेगा। अभी जो पीरियड है, अभी एक बहू, बहू का क्या रोल होता है, बहू मतलब घर में किस तरह रहना चाहिए बहू को? आप तो रह रहे, आप अपना अनुभव से बताइए बहू का भूमिका सबका साथ कैसे होना चाहिए। आप एक बहू है, सबको खुशी रखना है, सबका आवश्यकता जो है उसको देना है।
2: हाँ।
3: और खुद का भी ध्यान देना पड़ेगा।
2: हाँ।
3: आप खुद का पर कैसे, जैसे आप अटेंशन रखते हैं स्वास्थ्य को लेकर हो, अपना मनन चिंतन को लेकर हो, भविष्य भी देखते हैं भाई आगे में बढ़कर बच्चों के लिए थोड़ा पढ़ाई लिखाई अच्छा कराऊंगा, ऐसे सोचते हैं ना, तो क्या सोचते हैं आप बच्चों के लिए?
2: बच्चों के लिए कि पहले वे खुद पढ़ेंगे तो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, खुद तो पढ़े लिखे है ही है, तो अब खुद पढ़े लिखे है तो बच्चों को भी चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में जाके अच्छी पढ़ाई करें, और बच्चों का भविष्य भी आगे हमारे जैसे पढ़े लिखे आगे हो जाएंगे तो उनके बच्चों को भी वो अच्छे पढ़ाई करवाएंगे, और घर का काम भी साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा, और परिवार के भी साथ में मिल के काम करना पड़ेगा, कोई भी काम है तो मिल बांट के करते हैं।
3: जी जी, बहुत अच्छा। हाँ। ये एक बहू का रोल होना चाहिए।
2: हाँ।
3: भूमिका होना चाहिए।
2: हाँ।
3: बच्चों का भविष्य को भी सामने रख के कर्म करना है, और बच्चों को जहाँ भी जरूरत पड़ा प्रेरणा देना चाहिए।
2: पहले वो अबरोड में बौद्ध संस्था करके नाम थी, संस्था आई थी, उसमें भी मैं काम कर रही थी पहले आंगनवाड़ी में।
3: ओ,
2: तो मैं जहाँ जाती थी तो मैं रास्ते पर जाती थी पैदल पैदल, तो मुझे देख के बच्चे आगे आ रही, मैडम आई चलो आंगनवाड़ी चलो, तो माँ बाप भी देख के भेजते थे कि मैडम आई है चलो आज तो आंगनवाड़ी जाएंगे, तो बच्चे देख के आंगनवाड़ी आ जाते थे, बुलाने नहीं जाते तो भी देख के आ जाते थे। जैसे कोई भी एक्टिव गतिविधियाँ करवाते थे तो आंगनवाड़ी में तो पहले होती थी लेकिन कम होती थी, तो जैसे बौद्ध संस्था उस समय से तो इतना टाइट हुआ कि बच्चे देख के भागते थे, आ जाते थे आंगनवाड़ी में भी, और पहले तो आते थे लेकिन तो भी थोड़ा कम होते थे।
3: तो राज हंजा जी का भी पता चला बोलते बोलते, क्योंकि ये पहले भी काम कर चुके हैं समाज सेवा में, जिसे बौद्ध शिक्षा समिति जो
4: पाँच, है पाँच वर्ष,
3: हाँ 5 वर्ष तो काम किए, वो एक्सपीरियंस है, अनुभव ही है, इसलिए बोलने में कोई झिझक नहीं, क्योंकि उनका काम ही था भाषा ज्ञान हो, बुद्धि को तेज करने के लिए उनको एक दायित्व मिला था जो बौद्ध शिक्षा समिति में, जिसका चलते 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, जिसका चलते आज अपना चुप्पी तोड़ के आगे होना चाहिए। इस तरह सभी हमारा जो बहू हो चाहे बेटियाँ आएंगे तो क्यों नहीं हमारा भारत, हमारा गांव आदर्श बनेगा, और हमारा घर आदर्श बन पाएगा, और खुद जब आदर्श बनेंगे हमारा घर आदर्श बनने में कोई देर नहीं लगेगा। देखो शिक्षित होने के नाते ये फायदा होता है, सबका सामने बात करने के लिए देखो कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, नहीं अपना हक को साबित कर पाते हैं। तो
2: मैं बौद्ध में काम कर रही थी उस समय से, अब मैं किसी के सामने बोलती हूँ तो भी इतनी झिझक नहीं होती, पहले तो मुझे डर लगता था मैं क्या बोलूँगी, सही बोलूँगी कि गलत बोलूँगी कि क्या बोलूँगी, ऐसे डर लगता था, अब तो मुझे डर इतना नहीं लगता है। पहले मीटिंग करवाई थी पहले तो मुझे डर लगता था मैं क्या बोलूँगी, उतने महिलाएँ आएगी वो आदमी आएंगे तो उनके सामने मैं क्या बोलूँगी, तो जैसे जैसे वो आती थी ना आंगनवाड़ी में, पूछताछ हो रही थी उनसे, मेरी बात हुई, इसमें काम कर रही हूँ, ऐसे बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाती थी तो उनके माँ बाप देखने के लिए भी आते थे, उनको मैं प्रोजेक्ट जैसे ले बच्चों ने काम किया ना उनके, तो उनके बच्चों का काम भी बता रही थी, आपने बच्चे ने ये किया, ये लिखा है, ये ऐसे गाता है गीत, ऐसे ये करता है, घर जाके भी वो हाव भाव के साथ में करता था एक्शन, तो वो बोलते थे पहले तो ऐसे नहीं हो रहा था, अब तो ये बच्चे बहुत होशियार हो रहे हैं, ऐसे करके बच्चे ही भेजते थे आंगनवाड़ी में। मीटिंग भी मैं करवा रही थी महिलाओं की पुरुषों की।
3: चलिए उनका छुकरा
2: अभिमन्यु। गांव का नाम क्या है? फली का नाम
4: नाम
2: दामिश्रा। कौन से जिले में रहते हो? जिला
4: चिरोई
3: जिला।
2: ने तहसील
4: अबूर।
2: अबूर मम्मी रहूँ ना मैं
4: अंजा देवी।
2: अंजा देवी। पप्पा रो
4: बदराम
2: जी।
3: ये था कुछ छोटी आवाज में, क्योंकि बौद्ध शिक्षा समिति में जो उसको याद आई अंजा जी उसका लड़का को भी कैसे छोकरा को भी कैसे पढ़ाता है और बहुत सारे प्रश्न उनको भी रखा है। भले मुझे देख रहा था और लड़का थोड़ा झिझक कर रहा है, डर रहा, पहला बात हमको ही देख रहा है इसलिए थोड़ा सा नर्वस है, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तो सब चीज़ का उत्तर देगा, मेरा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जब उनका मम्मी इतना पढ़ी लिखी है तो उनका बेटा बेटी को तो होशियार करा देगी। अभिमन्यु को भी धन्यवाद, बच्चा है लेकिन अभिमन्यु जब सुनते तो अर्जुन का मुझे याद आ रहा मातृ गर्भ से ही अभिमन्यु सब सीख गए थे। तो सही में नाम जैसे वो काम भी ऐसे करेगा, क्योंकि अभिमन्यु जो था पूरा महारथियों को भी हरा दिया था। जैसे पूछा आपका जिला का नाम क्या है तो बोला सिरोही, भाई आपका तहसील का नाम क्या है तो आबू रोड, तो आपका गांव का नाम क्या है तो भुबरिया फल्ली, आपका ग्राम पंचायत का नाम क्या है तो बोल रहा है धमसरा। क्या ग्राम पंचायत? धमसरा। बोलो जोर से।
4: हाँ
3: ये धमसरा है ना। सभी तो पूरा अच्छा बात बता रहे। बड़ा होकर क्या बनेगा तुम?
2: मार्शल
3: बनेगा। अरे वाह ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु के लिए। पहले इस तरह तोतल तोतले आवाज में जी बच्चों को मिलता है तो आगे बहुत नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आज रेडियो पे आ रहे हैं, कल स्टेज में बड़ा बड़ा स्टेज में जाकर अपना भाषण करेगा, अभी से प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो श्री अंजा देवी को और बाबूलाल जी को जाता होगा, क्योंकि बाबूलाल का पोता है और अंजा का बेटा है।
2: अभी 4 साल ही है।
3: 4 साल है वो भी उनका मम्मी बता रही है 4 साल की।
2: नोज टीथ हेयर ये सब बता रहा है शरीर के नाम इंग्लिश में
3: बता रहा हूँ। शिक्षा जैसे हमारा संस्कार है उसके ऊपर हम डालेंगे। छोटा परिवार सुखी परिवार जो कहते हैं ना, पढ़ा लिखा होने के बाद उसको जो प्रेरणा मिलता है, क्योंकि माँ बाप शिक्षित हैं इसलिए उसका असर परिवार बच्चों का ऊपर पड़ता है और उनसे ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। जैसे हंजा का ससुर मैंने उनका पति का जो बाप है वो कम पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो बेटा बीए पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, बहू एमए किया, लेकिन उनका बेटा जो थर्ड परिवार आएंगे, एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी तीसरे पीढ़ी जो आएंगे वो तो इससे और होशियार होंगे। हाँ। उनका माँ बाप से ज़्यादा होशियार है, तो मोटरसाइकिल चला देगा 2 साल में। क्योंकि साइंस का कमाल है और वर्तमान मॉडर्न युग है, तो कॉलेज युग में तो आज बच्चे तुरंत फटाफट सीख जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट मीडिया इतना सुंदर मिला। आज तो माइक देखो कभी सोचे नहीं उनका परिवार वाले, ये आज रेडियो पे उनका आवाज़ जा रहा है, ये तो कमाल है समय की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंजा देवी के साथ साथ उनका पतिदेव भी उपस्थित है तो उनको भी स्वागत करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन पर।

उसको सौगाते उतनी मिलेगी।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहला मैं हंजा देवी से सुन रहे थे। खासकर एक शिक्षित होने के नाते जो झिझक जो डर और एक अपना बात को रखने के लिए जो साहस सही में शिक्षा में ही रहता है। शिक्षित और अशिक्षित में यही अंतर है, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो चाहे जो भी है, लेकिन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पढ़ा लिखा होने से थोड़ा होशियार होते हैं और समझ में आता है हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको एक बल मिलता है। तो चलिए, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जो परिवार में बात करें तो पिताजी बहू पोता अभी बेटा से बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम बताइए, आपका परिचय।
2: माय नेम इज बदाराम।
1: और कहाँ तो पढ़ाई किए?
2: मैंने एमए और बीएड दोनों किए।
1: अच्छा, वाह, बहुत क्वालिफाइड है। तो श्रोता मित्र ग्रामवासी, हम वो कह रहे थे ना, एक परिवार में ऐसे भी कभी कभी परिवार मिलता है जिसमें पढ़े लिखे बहुत होते हैं, जैसे आज बाजाराम ने अपना बात को रख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है और कार्यक्रम को सजा रहे हैं तो सुंदर लगेगा ही। हंजा जी, वो भी पढ़ी लिखी है और ये भी इतना पढ़ा लिखा किए, आप क्या लक्ष्य रखे, इतना पढ़ाई लिखाई किए परिवार में, इतना पढ़ाई लिखे में आपका रुचि कैसे आया?

0: पहली बार ही
1: पास कैसे सिलेक्शन होता है बीएड का?
0: मेरे प्री एग्जाम होता है
1: ग्रेजुएशन
0: बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद प्री एग्जाम होता है, तो उसमें जैसे मतलब दो तीन लिस्ट निकलती है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और राउंड होते हैं। तो हमारा पहले लिस्ट में ही निकले, ये जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं ना उन्हीं को ही, ये तेजेंद्र प्रसाद कॉलेज है ना उनको, उन्हीं को ही मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है आज भी।
1: तो उसमें आप सिलेक्शन?
0: हाँ, तो उसमें हाँ, फिर वो उस टाइम में मेडिसिन में बहुत करता था, पहले मैं इधर लगी थी कि छोटी थोड़ी उस टाइम में, फिर वो ओम का उच्चारण ऐसे करते करते मैं मेंटल फिर थोड़ा सही हो गया कहने करते।
1: अच्छा,
0: फिर ये पहले कोई भी मैं कॉलेज जाता था उस टाइम में मुझे लगी थी, तो मैं पढ़ता था ना बहुत, मुझे याद नहीं होता, टीचर पढ़ाते थे ना बहुत सारा याद हो जाता था।
1: ओ
0: हाँ, खुद पढ़ता वो बिल्कुल याद ही नहीं होता, टाइपर निकला था उस टाइम में, हॉस्टल में रहता था उस टाइम में, तो मैं एकदम से खड़ा हो गया, तो मुझे चक्कर आ गया, तो दीवार था ना, दीवार का कोना होता ना
1: जी,
0: तो वो टच हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, तो माइंड तो एकदम गर्म हो गया, बहुत जाम हो गया ऐसे करते करते। फिर मैं कॉलेज जाता था, डेली जाता था, रेगुलर कॉलेज थी मेरी, क्योंकि वो पढ़ाते वो मुझे याद रहता था ना, मैं खुद पढ़ता वो बिल्कुल याद ही नहीं रहता। ऐसे करते करते फिर मैं प्री एग्ज़ाम में वो बी करने के बाद फिर प्री एग्ज़ाम में मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया।
1: अच्छा।
0: फिर मेरे ये है ना, फिर मुझे याद भी तेज होने लगा, और कॉलेज में तेजेंद्र प्रसाद कॉलेज था ना, उसमें भी मैं सब ये जीके की करवाना ये सब मैं करवाता था उस टाइम में।
1: ओके,
0: पांच पाकिस्तान था मेरा।
1: ओके, वेरी गुड। अरे
0: वाह। फिर मेडिसिन करने लगा तो मेरा अब मैं खुद पढ़ता वो भी याद होता है, और दूसरा वो भी याद हो जाता है। मेडिसिन दो तीन साल तक मैंने रेगुलर करता था मैं, एक मेरा एक घंटा तो परफेक्ट था उस टाइम,
1: जैसे अभी कुछ
0: ध्यान करने भी एक घंटा आधा घंटा ऐसे में ऊपर जाता था कि पहाड़ पर चट्टान है तो भाई बेटा रहता था।
1: अच्छा।
0: फिर क्या कि एकाग्रता शक्ति रहती है कि हाँ, तो उससे मेरे पढ़ाई में क्या बहुत मतलब सहयोग मिला, उससे योगा से मतलब बहुत सहयोग मिला मुझे।
1: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बात बताया, ये तो यादगार बचपन का सुनाए और पढ़ा लिखा इतना है। और सभी जो हमारा यूथ सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं, तो एक करियर के लिए अपना
0: योगा भी जरूरी है।
1: जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन मन को शांत देता है और एकाग्रता में वृद्धि होता है, आत्मा में एक बल आता है, मन और बुद्धि संस्कार पूरा तेज होता है। मन बुद्धि जिसका तेज है, बुद्धि जिसका तेज है, बौद्धिक शिक्षा जब होता है बुद्धिमान, बुद्धि का बल से ही काम होता है, बाहुबल से काम नहीं हो पाएगा, बाहुबल अल्प दिन के लिए, किंतु बुद्धि बल कहीं भी रहो, बुद्धि से काम करो तो आराम से काम निकल जाएगा। बहुत अच्छा बात बताया बाजाराम जी। तो
0: उसके बाद सर वो आपके वो ब्रह्मा कुमार वाले आए थे, हमारा ट्रेनिंग चल रहा था मई खेड़ा में उस टाइम में, तो वहाँ से मैंने और थोड़ा वो सीखा उस टाइम आम शांति वाले कि मतलब वो चिंता कोई भी अपन टेंशन होता है तो उसे कैसे दूर किया जाता है। तो फिर वो वहाँ बताया था कि वहाँ आए थे आपके ब्रह्मा कुमार वाले, तो वहाँ से कोई भी चिंता टेंशन हो जाता तो फिर तो बस सांस अंदर वो ऐसे करता था मैं उस टाइम, माँ से सिखाया था उस टाइम, टेंशन ऑटोमेटिक दूर हो जाता था इसे।
1: तो राज्य को इस पर विश्वविद्यालय ओम शांति में राज्यों को सिखाते हैं, जो कि खुद का बारे में, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन हूँ, हु एम आई, और व्हिच गॉड, परमात्मा कौन है, आत्मा का पिता परमात्मा कौन है, जब वो ज्ञान आ जाता है, समझ आता है, तो उसी हिसाब से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। जीवन जीने की कला, जो भी हम कर्म करते हैं कर्मेंद्रिय द्वारा, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, मुख से बोलने, बोलने वाला, देखने वाला, करने वाला आत्मा है,
0: आत्मा
1: जो ड्राइवर है, जब वो बाबूराम जी काम करेगा तब ये काम में आएगा। तो ये आत्मा जैसे देखे देखना चाहेगी उस तरह स्थिति बनेगा, इस चक्षु से आत्मा देखती है, आत्मा निकल जाएगा ये चक्षु काम करेगा, आँख कोई काम का
0: नहीं,
1: आँख का रोशनी भी कुछ काम नहीं करेगा, आँख है ही नहीं रोशनी करने वाला, बैटरी जैसे मोबाइल से बैटरी निकाल देंगे
0: तो फिर मोबाइल
1: चलेगा नहीं, या शरीर से जब आत्मा मैंने मन बुद्धि को निकाल देंगे तो काम करेगा नहीं। तो मेडिटेशन राजयोग, जो ध्यान केंद्रित करने का शक्ति राजयोग से हम प्राप्त करते हैं। अच्छा बात बताए आपने, राजयोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं, हठयोग भी जानते हैं, और आपका बौद्धिक विकास के लिए ये सब काम में आता है। तो श्रोता मित्र सब सुन रहे, जो सुन रहे, जब भी समय मिले वो ध्यान लगाए, अपना मन बुद्धि को भ्रुकुटी में एकाग्रता करने के लिए देखिए, खुद को देखने के लिए अभ्यास करें, खुद का और खुद, तो आत्मा अलग।

0: और शरीर
1: चलो
0: अलग।
1: बिल्कुल
0: ये चीज जब जान लेंगे तो आप कोई भी काम करेंगे तो सक्सेस हो पाएंगे, और नहीं मिलेगा तब भी खुशी होगा, क्योंकि कर्म का गुह्य गति को मालूम पड़ता है। जैसे शिक्षा को लेकर इतना पढ़ा लिखा किए आपका समाज में, गारा से समाज में बहुत कम लोग पढ़ते, लेकिन आप इतना पढ़ाई किए, इसका पीछे इतना पैसा आपका उमंग उत्साह को आगे बढ़ाने के लिए कौन साहय किया?
1: हमारा मकसद यही है कि मैं ये सोचता हूँ कि मतलब ये जो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे देख देख कर मेरे गांव के मतलब जो है ना लोग, वो भी मतलब मेरे जैसे ही बने के कहने करते पढ़ाई करे, और मैं तो ये सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर बल देता हूँ।
0: कभी अफसोस नहीं होता अभी तक नौकरी नहीं मिला बा हम ट्राई कर रहे हैं अभी तक सक्सेस नहीं है इसको भी?
1: अफसोस तो अभी क्या कि हार मानने से कोई नहीं होता, हम सोचते कि लगेंगे, मेरा लक्ष्य है कि मैं टीचर बनूंगा तो बनूंगा,
0: उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए क्या मेहनत करते हैं, क्योंकि ऐसे हरास कभी नहीं होना चाहिए। जब तक आपका उम्मीद है, जब तक प्राण है, जब तक आपका एज का सीमा है, तब तक आप कोशिश और लगाइए। 20 नाखून लगा कर आप थोड़ा सब त्याग किए और थोड़ा हुआ नहीं तो और त्याग करो और पढ़ाई करो तो ज़रूर कामयाबी होगा, और ऊपर वाला तो बैठा है। तो इसके लिए आप क्या क्या मेहनत करते हैं बादाराम जी, पढ़ाई के लिए जो आप लक्ष्य टीचर बनूंगा ही, तो बनने के लिए आपका प्रयास जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे जो वैकेंसी निकलता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रयास?
1: प्रयास तो ऐसे में कोचिंग के लिए गया था जोधपुर में, जोधपुर भी रहा था मैं, दो बार गया जोधपुर, फिर एग्जाम से पहले दो ये कोरोना काल आ गया, तो फिर वो घर आते पढ़ाई थोड़ा सपोर्ट हो गया यहाँ से, फिर वापिस चले गए कोचिंग के लिए, वापिस कोरोना आया तो वापिस घर आते, घर पे इतनी पढ़ाई नहीं होती है।
0: 2-3 साल जब गया कभी अफसोस नहीं हो रहा भाई हमारा तो एज जो लिमिट है वो तो माइनस हो रहा है, तो क्या सरकार बढ़ाएगा 2-3 साल देगा आपको?
1: एज तो नहीं देगा, लेकिन सर क्या है कि हमारा वो एग्जाम ही था, 6 बार तो से खिसक गया उस टाइम में, तो फिर क्या लो जाते, फिर क्या कि इतना पैसा और कहाँ से करे बार बार, तो फिर वो एग्जाम भी दिया था वो भी रद्द हो गया, तो वापस अब वही एग्जाम है, 2 साल उसमें खर्च किए तो वही एग्जाम अभी जुलाई में हमारा। मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत रुचि है, इंटरेस्ट, यहाँ पहले ये घर पे ही मैं पढ़ाता था इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे बहुत आते थे हमारे गाँव के।
0: अच्छा, इस फल में कितने बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे?
1: बच्चे तो
0: 3 साल से 8 साल के अंदर में
1: बहुत हैं,
0: बहुत।
1: ये फलियाँ ना हमारी, ये और ऊपर वाले बांधन है वहाँ, ये ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे ही आप, ये फल बुमरिया फली ये नीचे की साइड जान मिलेंगे लेकिन कम, ये यहाँ से सीमा है डामर फली बिल्कुल मतलब इतना कम है, मतलब शिक्षित कम है क्या यहाँ के, हमारे यहाँ के बुमरिया फली पूरी पढ़ी लिखी ही है, थोड़े बहुत कोई मिलेंगे।
0: आपका अभी उम्र क्या है?
1: मेरी उम्र 31 साल।
0: और कितने साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं?
1: 40 तक।
0: और 9 साल है तो है, कर सकते हैं और हो जाएगा, लेकिन थोड़ा और थोड़ा मेहनत करो। और
1: नहीं तो हमारे पीछे भी लड़के हैं, इनको भी डांटता हूँ मैं, क्यों फालतू का घूमना नहीं, फालतू ये टाइम चला जाएगा, अभी तुम्हारे अभी हम पढ़े लिखे हैं तो आपको कुछ राय देंगे तो उस पर चलोगे तो जल्दी लग जाओगे, हमसे पहले लग जाओगे। हमारे क्या कि अनुभव बताने वाले उस टाइम में मिले नहीं थे उस टाइम में, कि कौन से लाइन पकड़ने से कौन सा सही रहेगा।
0: जी जी जी।
1: अब तो क्या कि 12वीं तक पढ़ता लड़के डायरेक्ट बता देते कि यार ये BST का प्री एग्जाम दिए तो ये मास्टर के लिए सही रहेगा कहने, तो पहले से तैयारी बच्चे को बता देते तो पहले से तैयारी प्री में निकल जाता, तो फिर वो क्या 2-4 ट्रेनिंग होती है।
0: अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बादाराम जी को, इतना सुंदर प्रस्तुति दी और अपना अनुभव बता रहे जो भाई हम तो समाज सेवा के लिए उपस्थित हैं, हम करेंगे तो जरूर हमारा लक्ष्य रखें जो बच्चों को पढ़ाना, और हम उसी लाइन में जा रहे हैं, अभी पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई के बाद जरूर कामयाब होंगे, कहेंगे अभी एग्जाम बाकी है ना, तो बाकी होने के बाद फिर वो सफलता ही सफलता मिलेगी, जब हम नेक्स्ट बार आएंगे तो जरूर वो कामयाब हो जाएंगे, एक ही परीक्षा होगा ना, इसमें रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद आप इंटर हो जाएंगे, आपका फिर नंबर मिलेगा।
1: अब की बार 2 एग्जाम किए, प्री देना और इसके बाद मेन है।
0: हाँ, मेन भी आएगा।
1: हाँ, इस साल किया है, नहीं तो एक ही था।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ गुनगुनाएंगे, कुछ गीत बड़ा गाते हैं गीत आपको अच्छा लगता सुनने में, आपका गला सा गीत अच्छा लगता। समाज सेवा के लिए क्या करना चाहिए, एक यूथ समाज सेवा क्या कर सकता है, आपका गाँव को एक आदर्श गाँव बनाने के लिए क्या करना चाहेंगे, आपका की मैसेज, व्हाट इज योर की मैसेज टू द ऑडियंस?
1: गांव को आदर्श बनाने के लिए सबसे पहले क्या है कि मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई पढ़ पढ़ने स्कूल नहीं जाता है तो उसे स्कूल से जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे होंगे तो गांव का विकास भी होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ये के मैसेज जो भी हमारा श्रोता सुन रहे हैं, और खासकर जो यूथ, मान लीजिए नौकरी मिलेगा तो दी बेस्ट, यदि नौकरी नहीं मिलेगा तब भी खुद का पैर पे खड़े होकर दूसरों को भी खड़ा करना ये एक जिम्मेदारी रहेगा। और कितना दुआएं मिलेगा, आप तो रोजगार कर रहे हैं उसके साथ पाँच लोग को रोजगार दिला रहे है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में, एक परिवार में जो बाप बेटा और बहू और पोता सबका आवाज,
1: अंकल जी
0: जो भी आते हैं तो उनको भी बोलता है भाई उनको भी माइक दो, वो भी कुछ बोले। क्या करते हैं आप,
2: खेती कर, खेती अंडा बिरयानी गौ।
0: अभी गर्मी के टाइम में आप खेत को कैसे बना कर रखें, अभी आप खेत को कैसे रखें,
2: सफाई
0: सफाई क्या क्या सफाई किए,
2: और साला बीजा काटे खेर बीज करें।
0: अच्छा
2: बोना रू
0: आषाढ़ महीना में,
2: आषाढ़ महीना दूसरा मक्की रो बिरयानी सो अपना अंडा हुआ है गौ तो आपने सियाड़ी में सियाड़ी नहीं आते सियाड़ी में।
0: और घर में कौन कौन है बच्चे छोकरा छोकरी
2: हैं,
0: क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई क्या रहा है सबको,
2: पढ़ाई क्या रही है का, कोई कारीगर काम करे कोई दुकान माता है
0: उन्हें हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये था बादाराम का चाचा जी है काका जी है, और बहुत बहुत धन्यवाद देते आज का कार्यक्रम को जिन्होंने सजाए सुंदर रूप में, सबको धन्यवाद। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन राचा, धन्यवाद आभार राम राम
2: राम राम।

माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा. और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है.

0: राम राम भाई, राम राम।
1: अरे राम राम, राम राम भाई। कंचन आओ भाई, आओ।
0: हाँ भाई रतन, काई रोंगटा खड़ा कर देने वाली गीत सुन रही आज तू।
1: अरे भाई कंचन, यो भी को राज है।
0: हाँ।
1: जो जरूर बताऊ मैं थाने।
0: हाँ।
1: पर आपा स्वागत करा हाँ अपना श्रोता बंधुओं रो गांव री बातें कार्यक्रम में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो गावरी बात कार्यक्रम में अपना संगला श्रोता बंधु जुड़ गया है। और कंचन मैं अबे थाने बताऊं कि मैं यो गीत क्यों सुन रही हूँ।
0: वो गीत भी भाई काई गीत है, पर चल तू बता।
1: देख मैं एक बेनू के को बात कर रही हूँ, तू जाने ही अपने रेडियो मधुबन री टीम तो गाँव गाँव में जाती।
0: गाँव गाँव में जावे। हाँ।
1: तो एक गाँव में कटी गया हाँ वटे वह बेन जी वाकर टाबर का साथ में अकेली रह रही।
0: टाबर के साथ?
1: हाँ, हाँ। पति हूँ अलग, ससुराल वालों अलग।
0: ओ
1: तो वहां ने पूछो भाई कई व्यो कई नहीं व्यो, तो वे बता रहे हाँ वहां की 14 साल की उम्र में ब्याह हो गयो।
0: 14 साल की उम्र में पढ़ना दी।
1: हाँ, और घर वालों हो 17 साल को।
0: ओ हो,
1: तो दो ही टाबर
0: तो समझ भी नहीं हो है।
1: समझ ही नहीं हो। 17 साल का छोरा ने कई ठा पड़े और 14 साल की छोरी ने कई ठा पड़े।
0: सही बात
1: भाई, बचपन रा दिन है, खावा खेलवा का और पढ़वा की उम्र है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अनी उम्र में गृहस्थी को बोझ दे दो तो वो तो संभालता संभालता वो कहे परिपक्व उम्र में जदी अक्कल आवे।
0: जदी अक्कल आवे, अनुभव ही तो सिखावा।
1: हाँ, अनुभव सिखावे। अबे माँ बाप तो अच्छी शिक्षा ही देवे पर एक उम्र भी गणो मायनो रखे।
0: सही बात है ना। तो टाबर शारीरिक रूप से पूरा विकसित हुआ है और ना ही मानसिक रूप से।
1: बिल्कुल। तो कंचन वे बता रहे हाँ कि 14 साल की उम्र में परणन आया। सासू ससरा थोड़ा समझदार होना चाहिए वही टाइम पे, पर वे कहिए कि बस घर को काम को बहुत सब बाका ऊपर सौंप दी दो।
0: ओहो,
1: यो भी करनो वो भी करनो, सुबह भेगो उठनो रात मोड़ो सुनो, दिन में रेस्ट कोनी करनी और घर को काम करनो,
0: यानी पूरी की पूरी गृहस्थी को बाहर ई उम्र में।
1: हाँ, और पियर में तो काम की दो कोनी।
0: सही बात है।
1: तो भाई कभी भी बनाई तो एकदम परफेक्ट तो कोनी बनी।
0: हाँ, वो तो अनुभव से धीरे धीरे देख ज्ञान मान कि आपा भी तो अबे तक सीख रहा है।
1: वो सीखो कह के जन्म लेवे वदियू इंसान अनी
0: मृत्यु तक।
1: हाँ,
0: सीखे
1: मृत्यु तक वो सीखे ही करे।
0: हाँ,
1: सीखे ही करे तो भी यू नहीं कह सका मैं परफेक्ट हूँ।
0: मैं परफेक्ट हूँ क्योंकि कही है लर्निंग इज टोटल लाइफ ऑफ ए अपा।
1: हाँ, एक आरती बता दे अपना श्रोता बंधु। हाँ,
0: भाई ये वही है, जीवन को एक पर्याय है।
1: बिल्कुल। तो कंचन अबे भाई सब काम वकापू कराता।
0: हाँ।
1: अबे भाई टाबरी जी तो काम आछो कोनी हो तो सासू जी लड़ लड़ करता, ससुरा जी गालियां देता, पाचे नाना अंदर देवर ये है वे भी माँ बाप का लारे लागन माने भाभी ने सुनाता कई
0: बता
1: का कई।
0: बता, यानी ज्ञान मान ले कि भी पुराना जमाना में लगभग ज्यादातर ज्ञान की तो केस होता।
1: हाँ, ये केस ज्यादा ही होता।
0: हाँ।
1: बाकी भावना नहीं समझता। आज अपना ही बच्चा अनी उम्र में वे तो आपा माने कतरो काम भरावा, प्यार तो देवा कि नहीं देवा।
0: प्यार तो देवा
1: कि कोई प्यार नहीं मिलतो। और पति देव 17 साल की उम्र में।
0: तो देख भाई दूसरो परिवेश, दूसरो गांव, दूसरे
1: हाँ?
0: लोग, या मैं बेचारी ने ज्ञान देख ले कि भी कतरो
1: एक एडजस्ट बेता भी टाइम लागे।
0: टाइम लाग गए
1: और 17 साल का पति की उम्र अब वो भी कहीं समझते को नहीं।
0: हाँ,
1: वो तो पढ़ते हो।
0: सही है।
1: तो बाहर भी पढ़ रहे हो, पचे बेटा ने तो भेज दी दो कॉलेज में पढ़वा का लिए बाने।
0: हाँ।
1: पियर वाला क्यों कि भाई माई माँ की बेटी ने ले जावा।
0: हाँ।
1: आके जदी बेटा होशियार वेन आ जाए।
0: हाँ,
1: जत्र माँ की छोरी मोटी हो जाए पचे भेजा। लोग नहीं इन्हें कटे ले जाओ।
0: अच्छा।
1: इन्हें तो कोनी भेजा। इन्हें भेजे कोनी क्योंकि भाई अबे बिना पैसा की नौकरानी मिल गई।
0: हाँ,
1: तो सब काम करा था विकापो
0: सब भाई कदे कदे तो घणो ही शोषण होते। और पुराना जमाना की तो बात ही अलग होती है।
1: सही बात
0: एक
1: है।
0: तो देख कम उम्र में पढ़ना देता है, कम उम्र में पढ़ना देता और वही वाली बात की आप कहता तो चोखा को नहीं लागे कि भाई यहाँ बिना पिया की नौकरानी मिल गई। पर कहिए कि एक मानसिकता तो ज्ञान की होती गणा लोग।
1: मानसिकता होती कि चलो यार रही घर में तो काम करी
0: तो काम करी।
1: हाँ, तो वो कहे जत्र आपा काम ने छोड़ता जावा आलस से अपना ऊपर चढ़तो जावे।
0: हाँ,
1: और पचे अपना लिए पानी के गिलास भरता भी जोरावा लाग
0: जोरा
1: जावे।
0: लाग जाए तो बैठे तो कही है सास तो भाई ज्ञान आराम सु कि भाई चल अब तो बहू आ गई।
1: हाँ,
0: मैं कई काम करूं, मैं काम करती चौकी को नहीं लागू। तरह तरह की मानसिकता हुआ,
1: तरह तरह की मानसिकता हो तो आसान सब काम करा था। और चे भी चे जदी छुट्टी वेती जो हस्बैंड भी आते हो।
0: हाँ।
1: तो भी के 16 साल की उम्र में तो एक टाबरी होगी। अच्छा हर प्रकार को शोषण विकास तो ही हो पचे तो मारपीट भी करवा लाग गई
0: यान मान ले भी आपा फिजिकली मानसिक और इमोशनली सभी तरह से
1: इमोशनली शारीरिक हर ऋतु शोषण
0: तो
1: और हस्बैंड तो उम्र परिपक्व नहीं ही तो वो भी नहीं सुनते
0: वो भी ना समझी हो
1: ना समझ हो और पचे माँ बाप भाई कहीं भी कहता है या ऐसी है थू परो जावे कॉलेज या ऐसी है या वसी है
0: याने तो, के मान ले की रोज को कलह को वातावरण ही बन जाता
1: हाँ
0: और पूरी गृहस्थी खराब भाई यान देख ले ई वास्ते ही तो ई दर्द ने वो कही है की टाबर अपने घर में अपनी माँ के लारे होते देखा है तो टाबर भी चोखो को नहीं हुआ बाबे भी इफेक्ट पड़े
1: अरे बच्चों भी हर पल दरब तो रहे भाई भीत रहे
0: भयभीत रहे
1: वे नहीं यू डर लागे मारी माँ ने कट्टी मारी नहीं और फिर बेटी होगी तो
0: और सब नाराज
1: अगर है तो बेटी ने जन्म दी दो
0: सही बात है
1: दो साल की बेटी हुई पाछो दूसरो बेटो हो गयो और विकास साथ में व्यवहार बच्चों को बच्चों बनो रियो
0: ई वास्ते तू कही है आज यान को गीत लगान सुन रही है मैंने अब समझ में आयो है
1: अबे मैं काले ही विकी बात सुनी तो बच्चे मने तो कई पतो यो गीत भी थोड़ो मार्मिक है
0: भाई बिल्कुल सही कहे हो
1: तो कदी कदी कही मन उदास हो है ना सुनीता ये बाता सुनो मारो मन तो उदास हो गया
0: देखो आपा ज्ञान मान ले कि भाई आपा मोक्ष धामू आवा लोटा जद ज्ञान की विरक्ति छा जावा पा
1: हाँ बिल्कुल
0: ज्ञान के माहौल में आपा रवाना थोड़ी देर तो वहां कोई इफेक्ट है तो आप अपने मानस पे और हृदय पे पड़े ही पड़े
1: अरे बिल्कुल कंचन तो मैंने वही बात याद आ रही विकी को विक कई जिंदगी है घनी मुश्किल हुआ 9 साल तो सेन की दो पछे वा डिसीजन ले ली तो मैंने पियर भी कोनी जावा देता माँ बाप कहता माँ की छोरी आल तक नानी है तेरी उम्र कोई नहीं कदिक तो भेजो ही ना
0: कदिक तो भेजो
1: भेजे 2 दिन में पाचा बुला लेता
0: अरे घना जना तो कपड़ा भी कोनी देवे
1: हाँ
0: देखो खुद तो देवे नहीं पैरवा के वास्ते एक उम्र हुआ भी पहनवा करवा को चाव होवे
1: यही उम्र होवे जो खावा पीवा की पेरवा ओढ़वा की
0: हाँ और जचे भी
1: सही बात है
0: और भाई देखो रवे तो टाबर भी कही है सोसाइटी में ई वास्ते वा की इच्छा भी वो एक दूसरे ने देख
1: बिल्कुल तो भी नहीं देता कोनी
0: देवे कोनी और पियर जावा को नहीं देवे
1: अनपियर भी नहीं जावा देवे तो बच्चे कई करे 2 दिन जावा दे नहीं भाई बस घरे काम है अबे नहीं रेवा दाका की अबे बने तो सबने आलस आ गयो अबे काम कौन करे
0: काम कौन
1: या है जो कर रही है सीधो काम मल रो है और इंसान ढलतो ढल जावे और काम भी सीख जावे
0: हाँ।
1: पर एक टाइम तो लागे हर घर को सिस्टम अलग है
0: बस
1: तो 9 साल वा सेन की दो पछे भी के कोई सखी सहेलिया वे का पियर का रिश्तेदार विने सपोर्ट की दो के तू कतराक दन सेन करी
0: हाँ भी मरो तो नहीं जावे नहीं
1: हाँ।
0: सेन तो करनो आछो है थोड़ो सहन करो थोड़ो सो एडजस्ट करो वो सब तो ठीक है पर कई अति तो बुरी हुआ है
1: अति हो जावे विको अंत होवे होवे अब 2 टाबर हो गया 2 टाबर के खावा पिया का ठिकाना नहीं विके कपड़ा का ठिकाना नहीं आदमी ने वैसे मुट्ठी में कर दी दो तो वो वकी सुनी कोई नहीं
0: सुनी
1: बच्चा पे भी जीव को नहीं तो बच्चे सबके ऊपर यूं थोड़ी जिंदगी चाले और दिखवा में खूब रूपाली
0: और ज्ञान की भी होवे भाई और रंग रूप का ही है भगवान बनाए डो है
1: वो सही है अब 14 साल की उम्र में विके शादी वेगी तो वह 5वीं 6वीं भाणन बस
0: सही बात है
1: ज्यादा पढ़े भी कोई नहीं क्योंकि माँ बाप की परिस्थिति एड़ी ही कोनी, और आछो घर मल रहे हो पैसा वालो तो पढ़ना दीदी
0: बस कदे कदे वो भी तो लालच मार जावे कि आछो घर है पर आछो घर पाछे कई नाच न चावे वो तो पाछे पत्तो लाग गए
1: पाछे खबर पड़े तो भी तो भाई कई होशियार हो गयो भाई अच्छी नौकरी लाग गयो भाई डिसीजन ली दो क्योंकि कतरी बार भाई देखो विकास सामने भी बेन ने अशांति ससुराल में मारनो कुटनो भाई की भी वे शर्म नहीं राखी यदि पचे भाई क्यों माँ बाप ने भैया बेन ने आपने नहीं भेजने नहीं तो ये पाचे भाणेजी की जिंदगी खराब हो जाए याने भी नहीं पढ़ाई या का ऊपर खर्चो नहीं और वह भी सोचो कि आदमी भी आपनो नहीं है तो अपनी घर में रेवा को कोई
0: रेवा
1: मतलब
0: को
1: नहीं है।
0: मतलब
1: तो पाचे बात छोड़ दी दो और बड़ी मुश्किल हुई छोड़ो भी सरल नहीं हो वे
0: हाँ भाई कतो इमोशनली अटैचमेंट हो जाए
1: अटैचमेंट हो और ससुराल वाला ऐसे छोड़े थोड़
0: यहाँ छोड़े नहीं और देख एक महिला ने तो कतरी इज्जत बेइज्जती को कतरो सोचा है
1: घनो सोचनो पड़े
0: कि भी लोग यहाँ कही वो तो आपने ऊपर लेन देखा बेचारी
1: हाँ
0: कि भी लोग मने ही ओछी नीची बोली है हमारे लिए यहाँ की खबर दे ही
1: हमारा छोटा भाई बहन का कई हो या कई कोई बेटी दे ही नहीं गई मारे बहन को ब्याह वेक नहीं वेक कतरो ही सोचे
0: पियर को ससुराल को अड़ोस पड़ोस को समाज को नारी की तो मैं यान कहूं कि धन्य जो एडजस्ट कर जावे।
1: सही बात है। तो भाई भी परण गयो, बहन भी परण गई, दो बहना ने एक भाई है। पछे डिसीजन ले दो, पछे सब क्यों अबे तू घबरा मत, माँ थारो सपोर्ट करा और तू छोड़ दे। तो चल कंचन, टाइम हो गयो है एक गीत सुनवा को, पछे आप बात करा पछे आगे कई हुए।
0: हाँ भाई बिल्कुल सही है।
1: तो यो ही गीत सुना था, छोटी सी उम्र परना यो बाबू सा।
0: बहुत अच्छो गीत है, सही।
1: तो सुनता रहो,
0: मुस्कुराता रहो।
1: रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: वीरा लाड़ लड़ाई बाली उम्र में परनाई मने दूर परनाई ओ वीरा लाड़ कला वीरा लाड़ लड़ाई बाली उम्र में परनाई।

0: भाई वाह वाह, बिल्कुल सही बात है। साथ है साथ है, लारे लारे बहन भाई, देखो क्या खेले हैं टाबरे, और पछे पढ़ना देवे दूर।
1: सही बात है,
0: तो
1: दूर पढ़ना देवे, फिर बाली उम्र में पढ़ना में, छोटी
0: बाली
1: उम्र में
0: उम्र,
1: पढ़ना में।
0: हाँ बाली उम्र तो ज्ञान की होवे। चल एक खेल खिलौना ज्ञान के
1: हाँ,
0: लागे,
1: गुड्डा गुड्डी को खेल वे जो वनी टाइम
0: और
1: पे तो यूं ही लागे,
0: बस है, और वो आकर्षण कतरे दिन रवे। हाँ
1: वो तो जदी जमीन पे उतरा एक वो क्या 4 दिन की चांदनी पछे अंधारी रात।
0: हाँ तो पच्छा पता लाग गए कि भाई, और देखो ससुराल वाला या भी तो सुनवा के लिए तैयार नहीं हुआ है कि मैंने याद आ रही है।
1: हाँ अरे भाई क्यों अटे, काम करना पड़ रहा जो पियर की याद आ रही।
0: कई बात बताऊं कि भी निजी भी अनुभव बताऊं तो मैं देखे, वो बात तो बिल्कुल सही है कि ससुराल वाला कोई भी यो नहीं मानना चाहे कि भी मने आज याद आ रही,
1: हाँ
0: या
1: सही
0: पियर
1: बात है,
0: की याद आ रही है, या हमारे कतरी बार तो ज्ञान को हुआ है कि पियर को नाम लेते भड़क जावे।
1: हाँ, सही क्यों कंचन, बिल्कुल एड़ो ही होवे है पियर को नाम तो। भाई जानी घर में जन्म लिदो जटा मोटा हुआ बटा की याद नहीं आई।
0: बैठे की याद नहीं आई, और वो अनुभव मैं एक मारी टीचर को भी बता रही हूँ कि भी हाँ वो बतावा है कि भी मारे तो ससुराल में काई है, एक दो बार की भी पियर को नाम ले दी दो तो बस मारे सास ससुर तो बात को तिल को ताड़ बना लियो, और जदे पाछे मैं भी कसम खाली सोगंद खाली कि कद्दे भी जाके आगे ना तो मैं बात करूं और ना ही कोई वाको नाम लू
1: चर्चा ले,
0: चर्चा करूं।
1: सही बात
0: देखो
1: है,
0: भाई कतरो मन मारनो पड़े,
1: घणो मन मारनो पड़े भाई
0: और
1: यो
0: वो
1: तो।
0: तो शिक्षित नारी कह रही है,
1: हाँ जो शिक्षित नारी तो अनपढ़ को बच्चे कई
0: तो
1: कहना,
0: अनपढ़ को तो
1: तो
0: काई
1: वाणी
0: हाल।
1: बेन का तो मना आश्चर्य होवे केड़े कम पड़ोड़ी है तो विकल आ रहे, हालत खराब ही और
0: हाँ
1: विक भी पियर थोड़ो दूरी हो।
0: हाँ
1: हाँ पढ़ना
0: हाँ
1: ही छेटी ही पैसा
0: हाँ
1: वाला देखन पढ़ना दीदी छोरी आराम करी भड़े वो दूर वो भाई छेटी वेन छोरी सुखी वेती वे तो आपने कही है तो छेटी भी दे
0: हाँ
1: दी दो तो घड़ी घड़ी कोई आ नहीं सके,
0: आ नहीं
1: पर
0: सका
1: अड़ोस पड़ोस का द्वारा रिश्तेदारी का द्वारा ठा पड़ जावे कि माँ की छोरी सुखी कोनी
0: सुखी को नहीं
1: तो पहली तो वह केती भी कोनी पछे केवा लागी वे घणो ही होवे तो केणो ही पड़े,
0: सही बात
1: और
0: है।
1: जदी भाई की माँ बाप की वे लोग शरम भूल गया
0: हाँ
1: पछे माँ बाप की क्योंकि अपनी शरम नहीं है तो अबे आपने छोड़ो तो घनी मुश्किल वाणी बेटी ने तलाक दी दो क्योंकि वे देवाई तैयार नहीं भरण पोषण को कहीं भी कोनी दी दो,
0: बताओ।
1: भरण पोषण को कहीं नहीं दी दो, जदी विने जावा दी दो, दो टाबर ने के ले जाओ अटे नहीं राखनो,
0: हाँ
1: वे तो वहां के छोरा ने यूं है एक दूसरी पढ़ना देवा पर या छोरी नटगी मारे कटी नहीं परन्नो, और भैया बे ज्यादा पढ़ोड़ी कोई ना, पचे विने पियर लाया विने पार्लर को काम सिखायो और सिलाई सिखाई
0: सिलाई
1: का तू
0: सिखाई
1: 6 महीना भूल जा कहीं नहीं माँ कह रहा खर्चो, तू
0: हाँ
1: 6 महीना थारा काम पे ध्यान दे।
0: हाँ
1: टाबर ही थोड़ा थोड़ा मोटा हो गया और वे क्यों टाबर पे भी माँ ध्यान देवा, तू
0: हाँ
1: आछो पार्लर को कोर्स कर ले और सिलाई सीख ले,
0: सिलाई सीख ले,
1: जो थाना आछो आ जाए वही करवा लाग जा जे,
0: बहुत
1: और पार्लर
0: बढ़िया।
1: को काम सीखो तो पचे कंचन पार्लर में तो चांदी चांदी
0: हाँ
1: आपने काम
0: आजकल
1: अजमल
0: तो घणो ही
1: छाड़े।
0: चल रही हो।
1: हाँ और ज्यादा पड़ोड़ी कोने पर देखो नाम हाम सब आवे और वह तो पार्लर को करे
0: हाँ
1: तो पार्लर विके
0: देखो
1: बढ़िया चलवा लागू धीरे धीरे धीरे, पहले आईब्रो चालू की दी, आईब्रो तो आजकल हर कोई करावे है,
0: हाँ
1: 20-20, 30-30 रुपया
0: गांव-गांव में
1: लेवे।
0: कूना कूना पे
1: हाँ
0: खुल गया।
1: और
0: हाँ
1: पचे विने बाने भी जावा की छूट दे दी थी, थाने जटू
0: हाँ
1: ऑर्डर आवे बटे जाओ और काम
0: बैठे
1: करो,
0: सही,
1: तो अबे वाह विके पार्लर को काम बढ़िया विके
0: यानी
1: चालग्यो
0: अपने पैर पे खड़ी होगी।
1: खड़ी होगी।
0: देखो भाई नहीं तो अतरी कम उम्र के मायने पढ़ना देवे तो कतरो को टाबर को अभी तो इमोशंस कतरे हुआ अपने परिवार के प्रति और वाके प्रति, और ससुराल वाला सुने नहीं ज्ञान का अत्याचार हुआ है तो कतरो मुश्किल हुआ है।
1: खतरों मुश्किल
0: पण
1: हुए
0: देख भाई अबे तो कहिए बाल विवाह हो गया पूरी तरह से लगभग खत्म।
1: आज भी कंचन कटे कटे छाने छाने वेरिया।
0: हाँ वो तो हो रहा है।
1: हाँ अबे इको भी किदो बाल विवाह तो ठानी पड़वा दीदी, यह भी घणी
0: अच्छा
1: मोटी कोई ने उम्र में आज 50-55 साल की है। हाँ
0: हाँ
1: तो खानगी में किदो
0: सही
1: क्योंकि कटे
0: बात
1: सरकार ने खबर पड़ जाए तो
0: हाँ
1: माँ बाप अनि लालचू कर दी दो छोरी अच्छा घर में जा रही, और ये भी खूब प्रलोभन दी दो ताकि छोरी ने यूं रहा का
0: न्यू
1: ताकि
0: रखा
1: छोरी ने
0: न्यू
1: यूं
0: रखा
1: रहा का,
0: हाँ, कबा में तो
1: तो
0: काई है।
1: हाँ तो असान ब्याह भी हो तो वे बेन जी रोता जा रहे कई भी देखो आज सुखी वे जाओ पर पहला दुख का दिन कदी कोई भूले को नहीं,
0: कोई भूले को नहीं सही बात है।
1: तो वे रोता जा रहे सब बात बताई मारे साथ में एडो एडो हुआ। अब आज ये मस्त है पूरी रीतु तलाक हो गयो के भरण पोषण के 1 रुपये नहीं दी दो तो मान गया भाई मत दो शांति छावे
0: आपनी मतलब मेहनत बहुत रंग लावे।
1: रंग लावे, तो पचे भी ने लाग्यो कि मैं पार्लर को कैच कर सकू तो महीना 2 महीना सिलाई सीखन बंद कर दी दो, पूरो
0: अच्छा
1: फोकस पार्लर पे ध्यान दी दो और आछो सीख गई और विके बढ़िया चालवा भी लाग्यो और थोड़े है होशियारी है तो बोलता करता सब आ गयो।
0: सब आ गयो।
1: क्योंकि पैसा वाला घर में ब्याह व्यो तो वाके थोड़ी लैंग्वेज तो हाउज वे बहू ने भले गाली के लोच करी लोगा का सामने तो अच्छा बोली।
0: सही बात है, ओ बिल्कुल सही कही तू कि वाको कही है कि जो पिया वाला है वाको रहन सहन माँ बाप ही कई देखे रहन सहन देख ले वे और तो कही है कि भैया रहन सहन तो बनावटी आजकल सभी कन ऊंचाई रखने की कोशिश कर
1: बस वो दिखावो ज्यादा हो
0: दिखावो ज्यादा हो तो वास्ते कही है कि घनी बार तो पहचान में भी नहीं आवे कि मनक के मायने का ही है।
1: हाँ, सही है।
0: पहले तो कम से कम है जो यान मान ले कि भी छोटा तबका का मान लो कि ये होता तो कम से कम वो दिखता कि भी हाँ एक करेक्टर का भी ज्ञान हुई।
1: हाँ हाँ, जो इंसान पहले कही है कि जो महीने हो वही बाने हो, आज तो महीने कही अलग बाने कही अलग
0: माने कुछ अलग। हाँ,
1: तो अब वहाँ कह रही मैं अब आराम में हूँ और पियर का बड़े घर ले ली दो किराया पे।
0: हाँ,
1: कनी पाचे भाई भाभी है भतीजा भतीजी है काले मन मुटा हुए रिश्तों टूटे इका पेली वो कह पानी आवा का पेली पाल बांध दो बढ़िया
0: पाल बांध दो।
1: हाँ,
0: बिल्कुल सही करो
1: भैया। तो समझदारी उचाली।
0: हाँ हाँ, तो ये बात से निभी गई
1: निभी गई और आज माँ बाप भाई बहन आवे सब राजी है। बहन कछोरी मेहनत की दी और मेहनत ऊंची आ रही है और स्वाभिमानु जीवन जी रही है।
0: स्वाभिमानु जीवन। हाँ,
1: टाबर को खर्चो गामड़ा में रहवे अनिवास से ज्यादा खर्चो कोई नहीं। पास पास में ऑर्डर आवे बाने परी जावे आ जावे छोरा छोरी ने तो माँ बाप ही हाचव लेवे। भाई सपोर्ट तो करे जदी बच्ची कही भी कर सके
0: बस
1: ना?
0: वो तो है ही भाई, माँ बाप जान की कोई चीज नहीं हुआ।
1: हाँ,
0: तो जो दुख दर्द वाने महसूस हुए नहीं वो कितनी सख्त हो कुछ भी हो पर माँ की ममता तो हो ही हुए।
1: अरे हो गई है नारियल की नियान वे
0: वास्ते।
1: हाँ, नारियल की नियान वे ऊपर कड़क वे पर अंदर सॉफ्ट वे
0: सॉफ्ट हो।
1: तो वहां कह रही अभी अच्छो कमा भी लू बानू भी ऑर्डर ले लू और टाबर ने भी अच्छो पढ़ा रही हूँ। तो देखो भाई जीवन में कई भी तकलीफ आवे मान लो ये तो कम उम्र में पढ़ना ही और तकलीफ आई घना जना ने परिपक्व उम्र में पढ़ना आवे तो भी तकलीफ आवे।
0: घनी बार आवे अठे तो और थोड़ी सी एक यो समस्या है कि छोटो पौधो लगावा आपा तो कहिए कि जमीन में थोड़ो सो एडजस्ट हो जावे बढ़ जावे।
1: हाँ,
0: एक यानी मैं बाल विवाह की बात को नहीं कर रही अठे।
1: हाँ, हाँ,
0: पर एक लगभग होती भी उम्र पढ़ना में तो है ना।
1: हाँ,
0: पर कही आजकल और ट्रेंड चाल गयो भाई कोई 30 की होगी कोई 32 की होगी
1: ओवर एज वेगी
0: वो ओवर एज होगी और वठे एडजस्टमेंट को कही है कि बड़ो वृक्ष ले जान कठे प्रत्यारोपित करे नहीं लगावा आपा तो भूमि में एडजस्ट हुआ में थोड़ी सी मुश्किल हो जावे।
1: हाँ, सही तो
0: बात है। कि वाको नेचर वाको स्वभाव वाका विचार वो मुख्य हो जावे।
1: वो कहवे काचा हांडा पे घर छेटे पाका पे नहीं छेटे। एक और... परिपक्व उम्र हो जावे तो वह वणी माहौल में ढल जाओ तो पछे वह एडजस्ट और खुद में बदलाव करवा को बेबी नहीं भी मैं
0: मतलब अति परिपक्व भी नहीं होने आप। हाँ, यानि के ना कि बाल विवाह को मतलब भाई वो ही है कि भी हाँ आप 20-22 ने भी बाल विवाह कह रहे वो नहीं है।
1: हाँ,
0: बाल विवाह की जो आयु है वहां से नीचे नहीं होनी चाहिए।
1: हाँ, नीचे नहीं होनी चाहिए और घनी ओवर एज भी नहीं होनी चाहिए। 24-25 साल की उम्र में छोरिया ने पढ़ना दो जत्र छोरिया भण भी काटे और नौकरी भी लाग जाए।
0: सही बात है। और
1: जो
0: वो
1: भी
0: तो...
1: कर वो छावे वो कर सके।
0: हाँ,
1: तो चाल भाई कंचन अनिवास्ते में गीत सुन रही ही मार्मिक गीत पर अभी जावा को टाइम हो गया है।
0: तो गीत घणो चोखो लाग्यो भाई। वो ही मैं भी सोची कि पहले इन्हें सुन लियो इको आनंद ले लूं पण कहिए मैं तो धूजनी चढ़ गई आज वो गीत
1: गीत एड़ो है ना। पर चलो कंचन क्योंकि आपने लड़वा वाला कोई को नहीं पर जिम्मेदारी आपने आपा समझ सका।
0: सही बात है, जिम्मेदारी समझा जद ही तो मैं आठा आ सका।
1: हाँ, तो टाइम पे आवा और टाइम पे जावा ताकि घर वाला ही राजी और सब राजी
0: सब
1: श्रोता बंधु भी राजी
0: बिल्कुल ताकि आपा मिलता रहो
1: मिलता रहा। तो आप जे भाई राम राम
0: राम राम भाई राम राम।
1: आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।

0: दोस्तों ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्ची की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य

0: बाय बाय पंकज।
1: क्यों भाई, तू कहाँ जा रहा है?
0: भाई मैं गांव जा रहा हूँ यार।
1: और मुझे छोड़ के? मैं यहाँ किसके साथ रहूंगा? मैं तुझे कितना मिस करूंगा यार, तू मुझे छोड़ के क्यों जा रहा?
0: तो मैं भी करूंगा बहुत तुझे मिस, पर यार नाना से मिले मुझे 6 साल हो गए।
1: अच्छा, नाना से मिले 6 साल हो गए, ठीक है, पर अपना ध्यान रखना।
0: हाँ तू भी अपना ध्यान रखना।
2: अरे पंकज तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब भी तो तुम्हारी फैमिली है ना।
1: हाँ दीदी वो तो है, लेकिन मेरे भाई की कमी शायद कोई पूरी नहीं कर सकता।
2: बिल्कुल, लेकिन सैंडी अपने नाना से मिलने जा रहा है, वो भी 6 साल बाद। ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी।
0: हाँ दीदी,
2: क्योंकि नाना नानी दादा दादी ये सब जो होते हैं, ये हमारी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, है कि नहीं बच्चों?
3: हाँ दीदी।
2: तो चलो आज हम सब अपनी फैमिली के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है?
0: ओके,
2: ठीक है। पहले आकाश तुम बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है?
4: मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, मैं, मम्मी, डैडी, दादा और दादी। पहले बुआ भी थी, लेकिन अभी उनकी डेथ हो गई है, इसीलिए वो अब हमारे साथ नहीं है।
2: और दादा दादी मम्मी पापा के बारे में हमें कुछ बताओगे? नहीं,
4: हाँ बताऊंगा ना। मेरे पापा मॉडल इंसुलेटर में सर्विस कर, मेरे दादा यहाँ लिटरेचर डिपार्टमेंट में सेवा देते हैं, और मेरी मम्मी और दादी दोनों हाउसवाइफ हैं।
2: अरे वाह, और हाउसवाइफ होम मेकर्स हो रहे हैं, जो कि पूरे घर को चलाने का जॉब बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं।
0: हाँ दीदी,
4: हाँ दीदी,
2: है ना। और भुवना तुम्हारे घर में कौन कौन है?
5: 5 लोग।
2: 5 लोग कौन कौन?
5: मेरे घर में माँ पापा दादी दादा और मैं।
2: दादी दादा मम्मी पापा और आप हो?
5: हाँ।
2: अच्छा, तो आपका सबसे फेवरेट फैमिली मेंबर कौन है?
5: मेरे मम्मी पापा।
2: मम्मी पापा दोनों? और दादा दादी?
5: भी पसंद है।
2: मतलब कि पूरी फैमिली ही भुवना की फेवरेट है,
5: हाँ,
2: है ना
5: दीदी। मेरे साथ ही बुआ रहते थे, एक शादी हो गई चली गई, वो भी ओमान, दो शादी हो गई चली गई अमेरिका, तीसरी बुआ मेरी शांतिवन में रहती है।
2: अरे वाह, मतलब आपके पास तो घूमने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कभी ओमान, कभी अमेरिका और कभी राजस्थान जहाँ पे आप अभी हो।
5: हाँ दीदी,
2: है ना। देखा फैमिली होने के कितने फायदे होते हैं।
0: हाँ दीदी,
4: हाँ दीदी।
2: और सैंडी तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है?
0: मेरे फैमिली में 4 लोग हैं।
2: 4 लोग कौन कौन?
0: मैं, पापा, मम्मी और भैया।
2: अच्छा, तो और तुम्हारी फैमिली मेंबर्स के बारे में हमें और बताओ।
0: मम्मी हाउसवाइफ है, भैया शांतिवन में सेवा देते हैं, और पापा मोड़ इंसुलेटर में।
2: अरे वाह, और भुवना तुमने तो अपनी फैमिली के बारे में हमें बताया ही नहीं।
5: मेरी माँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, HSBC में काम करती है, और मेरे पापा लॉयर है, और मेरे पापा स्टील कंपनी में सीनियर मैनेजर है।
2: अरे वाह, और पंकज अपनी फैमिली के बारे में हमें बताओ।
1: दीदी मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स है, मैं, पापा, मम्मी और 2 मेरी सिस्टर है।
2: अच्छा, तो आपकी सिस्टर्स क्या करते हैं?
1: मेरी दोनों सिस्टर्स मैरिड है, मुझसे बड़ी हैं।
2: और वो राजस्थान में ही रहते हैं?
1: नहीं दीदी, मेरी छोटी सिस्टर दिल्ली में रहती है और बड़ी सिस्टर पुणे में रहती है।
2: अरे वाह, ये तो दोनों ही बहुत अच्छी जगह है।
1: हाँ दीदी।
2: और आपके पापा क्या करते हैं?
1: मेरे पापा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है।
2: अच्छा, और आपके घर में आपका सबसे फेवरेट कौन है?
1: मेरा सबसे फेवरेट है मेरी मम्मी और मेरी छोटी दीदी।
2: मेरी मम्मी? और मम्मी आपकी फेवरेट क्यों है पंकज?
1: क्योंकि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है।
2: हाँ, अब भाई बेटे तो मम्मी के लाडले होते हैं।
1: हाँ दीदी,
2: है ना। और सैंडी आपकी फेवरेट कौन है?
0: दोनों जने,
2: मम्मी और पापा।
0: हाँ।
2: और आकाश?
4: हाँ?
2: आपका फेवरेट फैमिली मेंबर कौन है?
4: मेरे फेवरेट फैमिली मेंबर सारे हैं,
2: सबके सब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भुवना का तो फेवरेट मम्मी और पापा है, और दादा और दादी भी है।
5: हाँ दीदी।
2: अच्छा ये बताओ भुवना, जब तुम्हारा मूड खराब होता है या किसी बात पे तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो सबसे पहले किसके पास जाती हो? मान लो स्कूल में कोई बात हुई और आपका मूड खराब हो गया, किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ, तो सबसे पहले किसको जाके बताते हो?
5: पापा।
2: पापा को? और फिर पापा क्या कहते हैं आपसे?
5: मम्मी को कहने के लिए।
2: तो फिर मम्मी से क्या बात करते हो आप?
5: मम्मी मुझे कंसोल करती है और मुझे सपोर्ट देती है और सजेशन देती है।
2: मम्मी आपको सजेशन देती है कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए?
5: हाँ दीदी।
2: अच्छा, और आकाश जब आपका मूड अच्छा नहीं होता या किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, तो घर में किसके पास जाते हो?
4: दीदी मैं किसी के पास नहीं जाती।
2: किसी को बताते नहीं हो घर पे?
4: और अगर मुझे पता है कि अगर जैसे आज मेरे इस फ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, दूसरे दिन वो वापस मेरा फ्रेंड बन जाएगा।
2: बात तो बिल्कुल सही है,
4: इसलिए बता के क्यों झगड़े मोल देना।
2: अच्छा मान लो आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो सबसे पहले घर में किसको बताओगे?
4: मम्मी को।
2: मम्मी को? और मम्मी को क्यों?
4: क्योंकि मम्मी को अगर बताऊंगा ना तो मम्मी अच्छे सजेशन देगी, उस प्रॉब्लम को हल करने की नुस्खे बताएगी।
2: मम्मी अच्छे सजेशन देती है सभी को।
5: हाँ दीदी।
2: और पंकज, आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी बात होती है जो आपको शेयर करनी होती है, तो घर में किससे शेयर करते हो?
1: मैं अपनी फैमिली में किसी से शेयर नहीं करता।
2: किसी को भी नहीं बताते?
1: नहीं, अगर फैमिली की बात है तो फैमिली से।
2: अच्छा, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी चीज़ का आपको स्ट्रेस होता है?
1: मैं अपनी मम्मी से ही शेयर करता हूँ।
2: और मम्मी उस सिचुएशन में आपसे क्या बोलती है?
1: वैसे मुझे जरूरत पड़ती नहीं कभी किसी से शेयर करने।
2: आज तक कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी?
1: नहीं, मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेता हूँ।
2: खुद सॉल्व कर लेते हो?
1: हाँ दीदी।
2: टेंशन में तो नहीं आते?
1: नहीं, टेंशन में आता हूँ पर फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है।
2: मतलब आप टेंशन में आते हो लेकिन सोच समझ के उसका रास्ता निकाल लेते हो?
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा, और सैंडी आप क्या करते हो?
0: मैं मम्मी पापा दोनों से शेयर करता हूँ। जब रात खाना खाने बैठते हैं तो मम्मी पापा दोनों को साथ में, सब फैमिली साथ में, तो उस टाइम बता देता हूँ।
2: मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो रात को आप दोनों से शेयर करते हो?
0: हाँ दीदी।
2: और फिर मम्मी पापा क्या कहते हैं आपको?
0: फिर वो जो सॉल्यूशन होता है वो मुझे बता देते हैं।
2: अच्छा, अरे बाप, ऐसे मम्मी पापा तो दुनिया में एक्सपीरियंस्ड हैं, हमसे और ज़्यादा पहले आए हैं ना। हाँ। तो उनको सब चीज़ें पता होती हैं, हमारी एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी उन्हें पता होती हैं, और उसके क्या सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस हैं वो भी उन्हें पता होते हैं। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जो हम सॉल्व ना कर पाए तो हमें तुरंत अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। अच्छा ये बताओ आकाश, कि घर में कोई डांटता है क्या?
4: हाँ।
2: अच्छा, मतलब आप शैतानी करते हो?
4: शैतानी? हाँ करता हूँ।
2: अच्छा, जब शैतानी करते हो या कोई ऐसी बात होती है तो किससे डांट पड़ती है?
4: अगर दोपहर में टैब पे गेम खेलता हूँ तो दादी डांटती है, अगर रात को जल्दी नहीं सोता हूँ तो मम्मी डांटती है, अगर पढ़ाई नहीं करता हूँ तो पापा डांटते हैं, और अगर ज्यादा टीवी देखता हूँ तो दादा डांटते हैं।
5: एक एक डांट के लिए एक एक लीडर हो गए,
0: बटा हुआ है।
2: अच्छा, क्योंकि अलग अलग शैतानी पे अलग अलग लोगों से डांट पड़ती है, लेकिन वो डांट से कभी आपको बुरा तो नहीं लगता?
4: नहीं नहीं,
0: मजा आता होगा।
4: नहीं, डांट से मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन अच्छा लगता है कि कम से कम मुझे कोई डांटने वाला तो है, कम से कम कोई तो मेरी केयर करता है। वरना कुछ बच्चों के मम्मी पापा ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा ही नहीं होते, वो तरसते एक डांट के लिए ताकि कोई मेरी केयर करे, कोई मुझे डांटे। और जैसी ये बात तो सही है कि अगर कोई हमें डांटता इसीलिए है क्योंकि वो हमारी केयर करता है, वो हमारा अच्छा चाहता है इसलिए हमको डांटता है।
2: ये बात तो आकाश आपने बहुत ही अच्छी कही और बहुत ही समझदारी की कि मम्मी पापा या बड़े हमें तभी डांटते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी केयर करते हैं, है ना?
0: हाँ दीदी।
2: इसीलिए उस डांट का बुरा हमें नहीं मानना चाहिए। भुवना, आपको कभी डांट पड़ती है घर में?
5: बहुत कम पड़ती दीदी, और बहुत ज्यादा दादा डांटते हैं, और जब मम्मी बहुत कम डांटती है फिर भी मुझे कभी रोना नहीं आती, लेकिन मेरे पापा डांटते तो ऐसे ही आंसू नदी जैसे बहते।
2: पापा डांटते हैं कभी कभी, लेकिन जब पापा डांटते हैं तो आंसू आ जाते हैं, ऐसा क्यों?
5: क्योंकि जब पापा डांटते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं क्यों की ऐसा, मेरे पापा डांटने तक इतना ऊपर गई, मैं मुझे बुरा लगता है।
2: आपको बुरा लगता है कि आपने ऐसी गलती क्यों की कि पापा ने डांटा?
5: हाँ दीदी।
2: लेकिन कभी हमसे ऐसी कोई गलती हो जाए तो हमें उसे छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए, डांट पड़ेगी तो हम उसे सुधार सकते हैं, है ना?
5: हाँ,
2: और पापा भी तो इसीलिए डांटते हैं। और पंकज, आपकी डांट पड़ती है घर पे कि नहीं?
1: दीदी डांट तो हमेशा पड़ती रहती है।
2: डांट हमेशा पड़ती रहती है, और घर में कौन डांटता है आपको?
1: मम्मी पापा दोनों।
2: दोनों क्यों डांटते हैं मम्मी पापा?
1: पापा इसलिए डांटते हैं क्योंकि कभी कभी मैं उनकी हेल्प कराने के लिए साइड पे नहीं जाता, और मम्मी इसलिए डांटती है क्योंकि घर पे कोई छोटा मोटा काम होता तो वो मैं नहीं करता।
2: और आप छोटा मोटा काम जो मम्मी बताती है वो क्यों नहीं करते हो?
1: अच्छा नहीं लगता मुझे करना, क्योंकि मैं कभी खेलने चले जाता हूँ और कभी कहीं बिजी होता हूँ, तो इसलिए घर का काम नहीं।
2: लेकिन मम्मी के पास हेल्प कराने के लिए अभी तो और कोई भी नहीं है।
1: हाँ दीदी
2: है ना, तो उनकी मदद तो आपको ही करनी पड़ेगी।
1: हाँ मुझे पता है, मुझे ही मदद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कभी बुरा भी नहीं मानता।
2: सही बात है भाई, अगर मम्मी को हेल्प चाहिए तो हम बच्चे ही तो हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि पापा तो ऑफिस जाते हैं और हर वक्त नहीं होते, तो बच्चे ही हैं जो मम्मी लोगों की हमेशा घर पे मदद कर सकते हैं और करनी भी चाहिए।
5: मैं मेरी नानी की हेल्प करती हूँ दीदी।
2: अपनी नानी की क्या हेल्प करते हो भुवना?
5: बर्तन अंदर रखना धुलाई के बाद, क्योंकि मेरी मम्मी रोज मॉर्निंग 8:30 पापा और मम्मी निकलते हैं, रात 8:30 को आते हैं।
2: अच्छा, तो फिर आप अपनी नानी की घर संभालने में मदद करते हो?
5: हाँ दीदी।
2: और सैंडी?
0: मुझे तो मम्मी ज़्यादा डांटती है।
2: मम्मी ज़्यादा डांटती है, क्यों?
0: और मम्मी से तो कभी टाइम पे खाना नहीं खाया, कभी कुछ ही।
2: लेकिन पापा तभी डांटते हैं जब उन्हें लगता है भाई लाइफ में कोई बड़ी सी गलती हो रही है, और मम्मी हमारी फिक्र करती है, तो अगर हम खाना नहीं खाते या फिर टाइम से कुछ नहीं करते तो इसलिए डांट पड़ती है मम्मी से।
0: हाँ दीदी।
2: जिसका किसी को भी बुरा नहीं लगता यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो मुझे ये बताओ भुवना, आपको पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है?
5: पापा बहुत अच्छे से बात करते हैं। किसके साथ कैसे बात करना, वो इतने अच्छे से बात करते हैं कि दूसरों को बुरा ना लगे और समझ भी जाए।
2: अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और आपको क्या अच्छा लगता है आकाश अपने पापा के बारे में?
4: ये मेरे पापा के बारे में यही अच्छा लगता है कि जब भी किसी के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है ना, तो उससे मेरे को पापा बचा लेते हैं।
2: मतलब पापा एक तरह से हमारी प्रोटेक्शन है।
4: हाँ
2: है ना। और पंकज, आपको अपने पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है?
1: मुझे मेरे पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है वो बहुत ऑनेस्ट है।
2: ऑनेस्ट है?
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा, मतलब कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो ऑनेस्टी को नहीं छोड़ते।
1: हाँ दीदी।
2: ये तो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसे तो हम सबको सीखना चाहिए। और सैंडी, आपको?
0: मेरे पापा मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो कभी टेंशन नहीं लेते और फैमिली को टेंशन में आने नहीं देते, खुद सॉल्व कर लेते, मतलब फैमिली को हैप्पी रखते हैं। कूल पापा।
2: मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो पापा सब संभाल लेते हैं।
0: हाँ।
2: और मम्मी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है भुवना?
5: मम्मी बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट
2: मतलब अपना ऑफिस भी संभालती है, घर भी और आपको भी।
5: हाँ दीदी।
2: अरे वाह। और आकाश?
4: मुझे मम्मी के अंदर ये अच्छी क्वालिटी लगती है क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए मम्मी हर मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करती है।
2: मम्मी हर ख्वाहिशें पूरी करती है जो भी वो कर सकती है। और पंकज?
1: मुझे मेरी मम्मी की तो सारी क्वालिटी पसंद है, मेरी मम्मी में हर तरह की क्वालिटी।
2: जैसे
1: खाना बनाना, पापा के लिए नाश्ता बनाना, खुद के लिए अलग से नाश्ता बनाना, और टाइम का मैनेज वो अच्छे से कर लेती है।
2: मम्मी सबके पसंद का खाना भी बनाती है और टाइम मैनेज भी करती है। और सैंडी?
0: मेरी मम्मी मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मेरी मम्मी ना घर का जो बजट बनाती है ना वो सबसे बेस्ट है।
2: मम्मी इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करती है।
0: हाँ, और मम्मी सुबह सबसे पहले उठना, फिर पापा का नाश्ता बनाना, फिर भैया का, फिर मेरा, फिर खुद का, फिर घर का सब काम करना, इसलिए मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है।
2: सही बात है, मम्मी लोग सुबह से जब काम करना शुरू करते हैं तो शाम तक करते रहते हैं।
0: और सबसे लेट सोना।
2: अच्छा मुझे ये बताओ, अब तुम लोग के घर में सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं?
5: हाँ दीदी।
2: तो ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सबसे अच्छी क्वालिटी भुवना, ग्रैंड पेरेंट्स आपको क्यों अच्छे लगते हैं बताओ?
5: मेरी ग्रैंड माँ इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाती है, और मेरे ग्रैंडपा बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं मुझे, साइंस में बहुत हेल्प करते हैं, जब भी वो मुझे मैथ्स में हेल्प करते हैं मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं।
2: और वो बहुत प्यार से आपको पढ़ाते होंगे है ना? और
5: स्ट्रिक्ट है दीदी वो,
2: थोड़े स्ट्रिक्ट है। आकाश, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको क्यों अच्छे लगते हैं?
4: मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इसीलिए अच्छे लगते हैं, जो मेरी दादी है ना वो हमारे पूरे परिवार में सबसे अच्छे स्वीट्स बना लेती है, और दादा की ये खासियत है कि उनका मैथ्स इतना अच्छा है ना, कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर भी सामने फेल हो जाएगा लेकिन उनका मैथ आगे रहेगा।
2: अरे वाह क्या बात है। और सैंडी आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं?
0: वो अभी इस दुनिया में नहीं है।
2: और आपके नाना नानी?
0: नानी नहीं है नाना है।
2: जिनसे आप मिलने जाने वाले हो?
0: हाँ।
2: तो वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं?
0: क्योंकि नाना मुझे बहुत प्यार करते हैं।
2: नाना आपको बहुत प्यार करते हैं?
0: हाँ।
2: हमारे जो नाना नानी दादा दादी होते हैं वो हमें अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा प्यार करते हैं।
5: हाँ दीदी
2: है ना?
0: क्यों? हाँ दीदी।
2: और पंकज आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते
1: हैं? मेरी नानी है।
2: नानी कहाँ रहती है आपकी?
1: मेरी नानी अपने गाँव में बिहार में रहती है।
2: अच्छा तो नानी से मिलने जब जाते हो तो नानी की कौन सी ऐसी बात है आपको सबसे अच्छी लगती है?
1: मैं जब अपनी नानी से मिलने जाता हूँ और जब वापस लौटता हूँ तो मेरी नानी मुझे अभी भी 10 रुपए देती है।
2: हमारे नाना नानी दादा दादी जो भी हमें दे सकते हैं जितना भी दे सकते हैं वो हमेशा दिल से देते हैं इसलिए वो 10 रुपए की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अच्छा मुझे ये बताओ अपनी फैमिली के साथ जब आप लोग टाइम स्पेंड करते हो तो मम्मी के साथ या पापा के साथ बीता हुआ ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है जो अभी तक आपको बहुत अच्छा लगता है सोच के? कोई भी ऐसा पल याद हो जब आपका रिजल्ट आया हो या फिर घर में कुछ हुआ हो और मम्मी पापा के साथ वो एक मेमोरी बन गया हो?
1: मुझे याद है दीदी।
2: हाँ पंकज बताओ।
1: मेरे लास्ट बर्थडे पे मेरे मम्मी और पापा पहली बार साथ में उन्होंने फोटो क्लिक कराई थी।
2: पहली बार?
1: हाँ दीदी।
2: अरे वाह और आपका बर्थडे तो स्पेशल हो गया।
1: हाँ बहुत स्पेशल बर्थडे था। हमने बहुत एंजॉय भी करा और मम्मी पापा ने डांस भी किया था।
2: अरे वाह। और भुवना आपको कुछ याद है ऐसा?
5: हाँ दीदी मैं मम्मी पापा और मेरे अंकल जब हम कूल कहना वो बहुत अच्छा मूवमेंट।
2: कहाँ गए?
5: कूल।
2: अच्छा जब आप फैमिली के साथ ट्रिप पे गए तो वो बहुत अच्छा मूवमेंट। अच्छा अब मुझे एक ऐसी बात बताओ जो आप अपने मम्मी पापा या किसी भी फैमिली मेंबर से कहना चाहते तो हो लेकिन कभी कह नहीं पाते। क्या कोई ऐसी बात है किसी चीज का डर हो या कभी ऐसा लगे कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते चाहे वो प्यार हो चाहे वो कोई और बात हो लेकिन हम अपने फैमिली मेंबर से वो नहीं करते? भुवना
5: मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ पापा

0: बताते ही नहीं हो, क्यों?
1: क्योंकि मुझे पता है कि अगर जो मेरे साथ कोई गलती हुई है तो वो अगले आने वाले दिन में अपने आप सॉल्व हो जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं।
0: लेकिन अगर कोई बड़ी गलती आपसे हो जाए तो मम्मी पापा को इन्फॉर्म रखना बहुत जरूरी
1: होता है। ऐसे तो इन्फॉर्म रखता हूँ लेकिन वैसे नहीं रखता हूँ,
0: क्योंकि वही हमें समय पर मदद कर सकते हैं, है ना?
2: हाँ दीदी।
0: अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग अपने मम्मी पापा और नाना नानी सबसे प्यार तो बहुत करते हो, उन्हें बताते हो कि नहीं?
2: हाँ दीदी।
0: बताते हो? क्या बताती हो भवना?
2: मेरी मम्मी पापा एनिवर्सरी में मैंने एक एक्सप्लोडिंग बॉक्स बनाई, जिसमें मैंने क्या किया, मेरी सारी फ़ोटोज़, मेरी मम्मी और पापा की मैरिज फ़ोटोज़ और मेरे पापा के बचपन की फ़ोटोज़, मेरी मम्मी की बचपन की फ़ोटोज़ उनके फ्रेंड्स के साथ, वो सब मैंने जेरोक्स ले ली। तो मैंने सारी फ़ोटोज़ का जेरोक्स लिया और बहुत अच्छे से एक बॉक्स बनाई, एक गिफ्ट बॉक्स जैसा, जिसको खोलते ऐसा एक्सप्लोडिंग बॉक्स जैसा बाहर आ जाएगा और हम बचपन की फ़ोटोज़ देख सकते हैं और बलून्स सब कुछ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मेमोरेबल गिफ्ट था।
2: और मैंने एक पीपीटी बनाई दी थी
0: पीपीटी
2: एनिवर्सरी में।
0: और पापा की बर्थडे पे भी आपने कुछ स्पेशल किया था ना?
2: हाँ, मेरी बुआ ने इसमें हेल्प की, हमने डांस की जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे भैया एक म्यूज़िक की जिसमें मेरी बुआ आती है और हम डांस करते हैं, और पापा के पापा म्यूज़िक के लिए मैं डांस करती हूँ, ऐसा एक एक रिश्तेदार के रिलेशनशिप को एक एक डांस। मैंने एक बहुत सारे पोएम्स भी लिखती हूँ मेरे पापा के लिए।
0: आप बहुत सारी पोएम्स लिखते हो अपने पापा के लिए? अरे वाह। और आकार?
1: हाँ दीदी।
0: आप अपने घर पे सबको बताते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो?
1: दीदी वो एक्सप्रेस करने की चीज नहीं होती, उनको खुद ही पता चल जाता है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। जब हम किसी की केयर करेंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि ये मुझसे कितना प्यार करता है।
0: बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्यार बताने से ज्यादा जताने की चीज है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमें अपने मम्मी पापा और सबको बताना चाहिए कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना?
1: करता तो हूँ लेकिन पापा को बताने की हिम्मत नहीं होती।
3: तुम्हारे पापा भी गब्बर सिंह हैं।
1: और क्या?
2: गब्बर सिंह टू।
3: आतंक के दूसरे नाम।
0: पापा की बर्थडे हो या ऐसा कोई ओकेशन हो तो आप उन्हें छोटा सा कार्ड बना के दे सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो जो उन्हें स्पेशल फील हो।
1: हाँ ये भी बात दी थी आपने, सही बोली
0: है ना? और कभी कभी बोल नहीं पाओ तो उन्हें लिख के भी दे सकते हो।
1: हाँ दीदी, जैसे मैंने अपने पापा मम्मी की एनिवर्सरी पे उनको एक कार्ड बना के दिया था। उस दिन जब मैं स्कूल से आया तो घर पे पापा मम्मी थे नहीं, मतलब मैं बहुत परेशान हो गया कि पापा मम्मी कहाँ गए, और दादी भी कुछ बोल नहीं रही है मेरे को। जब शाम को 7 बजे आए पापा मम्मी घूम के, तब मेरा ऐसे ही मन हुआ, सुबह मम्मी को मैंने बोला ही था, हैप्पी एनिवर्सरी बोल दिया था, तो मेरा मन किया चलो कार्ड बनाते हैं। तो मैंने कार्ड बनाना स्टार्ट किया, टाइम भी कम था लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद की कार्ड्स बनाने में, और मतलब मैंने करीब 3 कार्ड्स बनाए थे मम्मी और पापा के लिए। एक में मैंने पापा के लिए पोएम लिखी थी, एक में मम्मी के लिए, और एक में पापा मम्मी और मेरी फीलिंग्स लिखी थी कार्ड में।
0: अरे वाह, और ये तो सबसे अच्छा तोहफा होता है जब हम अपनी फीलिंग्स लिख के मम्मी पापा को देते हैं। और सैंडी?
3: नहीं दीदी, मैं नहीं बताता हूँ।
0: नहीं बताते? क्यों नहीं बताते?
3: क्योंकि मैं डेली ना जब मम्मी पापा शाम को बैठते हैं तो मैं उनसे बातें करता हूँ आधे घंटे तक, तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ मैं उनकी कितनी केयर करता हूँ।
0: आप उनसे बातें करते हो? हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है, हम डेली मम्मी पापा से बातें करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। और पंकज आप?
4: हाँ दीदी, मैं अपने मम्मी पापा को सीधे सीधे बता देता हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मम्मी जब भी मुझे कहती है कि आजकल के बच्चों के एग्जाम्पल्स देती हूँ मेरी मम्मी की, उसके बेटे ने ऐसा किया, तो मैं उन्हें साफ साफ बता देता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
3: और हाँ दीदी, ऐसा कुछ कभी मेरे साथ भी होता है तो मैं मम्मी को गले लगा लेता हूँ और बोलता हूँ मम्मी मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा।
2: और दीदी आपको पता है मेरी मम्मी को जब भी वो काम करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है, तो मैं उनके लिए नींबू पानी बनाती हूँ और उनको बहुत पसंद है, और 2 ग्लास भी।
0: अरे बात, आज हम बात कर रहे थे फैमिली यानी परिवार के बारे में। तो लास्ट में ये स्पेशल वाला एपिसोड खत्म करने

0: से पहले क्या कोई एक मैसेज है जो आप अपने फैमिली मेंबर्स को देना चाहते हो?
1: थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल एंड आई लव यू ऑल।
2: अगर मेरे पापा अभी मेरे को सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, पापा इतने साल हो गए आप मेरे को कहीं घुमाने नहीं लेके गए, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ इस बार मेरे को हाजी अली लेके जाओ।
0: और पंकज आप कुछ कहना चाहते हो?
3: मैं अपने मम्मी पापा से ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें कभी भी अलग नहीं देखना चाहता। मैं अपने मम्मी पापा और मुझे हमेशा एक साथ तीनों को देखना चाहता हूँ।
0: और सैंडी?
4: मैं अपने मम्मी पापा से कहना चाहूँगा कि मम्मी पापा आप लोग और जितना दिन जी सकते हो मुझसे बहुत ज़्यादा दिन जियो, मेरी उम्र आप लोगों को लग जाए क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत उम्र तक देखना चाहता हूँ।
0: ये बहुत प्यारी प्यारी बातें आप लोगों ने की जो आप लोग अपने मम्मी पापा से कहना चाहते हैं। आज की ये बातचीत हम यही खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर से कुछ नई बातों के साथ और नई बातों का पिटारा खोलने के लिए बच्चों की दुनिया रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: I am life.

ओम शांति। आज 10 मई 2026 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 जनवरी 2010 को सुनाए थे। आज की मुरली में बाबा क्या चाहते हैं? बाबा कहते हैं, हर एक बच्चे को जब देखते हैं, हर एक ब्राह्मण सारे संसार में जैसे विशेष आत्मा है। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा। तो बाबा कहते, आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है। क्या चैलेंज है? कि हम योगी जीवन वाले हैं, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो? बाबा कहते, मेरा हर बच्चा स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? इतना नाज है भगवान को भी कि मेरा हर बच्चा स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहां स्वमान है वहां देह भान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान की माला फेरते जाए तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाए। बाप दादा को एक बात, बाप दादा को बच्चों की एक बात अभी तक भी अच्छी नहीं लगती है। कौन सी बात होगी जो बाप दादा को अच्छी नहीं लगती है? बाबा कहते, जानते हो, जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिमान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता है। क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। बाबा ने आज विशेष अमृत वेले चारों ओर के ब्राह्मण चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं। सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी बाबा को। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, ज्ञान की अथॉरिटी है और बातों की अथॉरिटी है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। ये बाबा ने विशेष आज अमृत वेले चक्कर लगाते हुए देखा। तो बाबा कहते, तो अनुभवी स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना। क्यों? क्योंकि अनुभवी को माया कभी भी हिला नहीं सकती है। और जहां स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहां देह अभिमान आ नहीं सकता। मिसाल देते बाबा, जैसे अंधकार है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे ही बाबा कहते, आप जब स्वमान की सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है तो किसी भी प्रकार का देह अभिमान गायब हो जाता है। फिर बाबा कहते, स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, इसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है।
अब समय प्रमाण, बाप समान बनने का लक्ष्य, संपन्न करने का समय, ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है, बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे अनुभवी स्वरूप बनो जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न हो। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उसी स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो। बाबा कहते स्मृति स्वरूप है या नहीं है उसका प्रमाण यह है कि जहां स्मृति के अनुभवी स्वरूप है वहां अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। फिर आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है, बच्चों को मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा, बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत नहीं देखी जाती है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी है। एक सेकंड में चारों ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है, अनुभव को हजारों लोग बदलना चाहे तो भी नहीं बदल सकते। जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि आप सबने चीनी का अनुभव किया, कितनी मीठी है, अगर हजार लोग कहे आपको बदलना चाहे तो क्या बदल सकते हैं, अनुभव है मीठा है। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की, चारों में से एक में भी मेहनत लगती है तो जरूर है अनुभव की कमी है। तो इसका अर्थ है कि उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त अभी तक नहीं बने हैं। आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, ऐसे समय में बाबा कहे आप एवर रेडी हो। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना, किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। बाबा कहते बनना ही पड़ेगा, बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद करेगा। अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है, कोई साधारण इंसान से नहीं मिली है। जैसे देह भान के अनुभवी है तो क्या देह का भान याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं। जन्म लेते जो नाम पड़ा वह देह भान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई औरों को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपके नामधारी को बुला रहे हैं, मानो आपके जैसा ही नाम किसी और का है उसको बुला रहे हैं, तो आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा। ऐसे देही अभिमानी स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। बाबा कहते आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया, बेभान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने, यही परिवर्तन हुआ। चेक करो ज्ञान स्वरूप बना हूं, चारों सब्जेक्ट में चेक करना है ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है, नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। फिर योग स्वरूप, योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रिय जीत बनना, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्यधारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी,
सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी, समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे संबंध संपर्क में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। मानो कोई भी आपका भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा भी मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, ये भी तो सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना ये सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। फिर बाबा कहते सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं उठाना है, सहयोग देना है, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी पुण्यात्मा। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं, अनुभवी मूरत बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, यज्ञ के अंदर बहुत कुछ देखा, जिम्मेवार होते हुए फिर भी अंत में शुभ भावना शुभ कामना के तीन शब्द सभी को शिक्षा दे के गए, याद है ना तीन शब्द। स्वयं भी निराकारी निरहंकारी निर्विकारी इसी स्थिति में अव्यक्त बने, ये तीन स्थिति के आधार से ही अव्यक्त बने। तो सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है, हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। कोटों में कोई है क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। हर ब्राह्मण कोटों में कोई है क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप दादा को भी पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। जिन्होंने भी अपने दिल में बाबा को समाया है तो बाबा भी उनको दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। पूछते बाबा कि हर एक बच्चे अपने को ऐसे बाप का प्यारा दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा सर्व का प्यारा है। बाप का भी अति प्यारा है और सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है। क्या चैलेंज है? कि हम योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं है लेकिन योगी जीवन वाले हैं। और जीवन दो चार घंटे की नहीं होती है, जीवन सदाकाल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी है। ऐसी बाबा कहे आप सबने चैलेंज दी है। चाहे योग में बैठते चाहे कोई भी कर्म करते कर्म योगी है। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। जीवन का लक्ष्य है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन नेचुरल जीवन अनुभव करते हो? पूछते बाबा ऐसी नेचुरल योगी जीवन अपनी अनुभव करते हो? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देख
देखते हैं? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में क्या देखते हैं? चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? पूछते बाबा, क्या देखते हैं? बाबा देखते हैं मेरा हर बच्चा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहां स्वमान है वहां देह भान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। बाबा कहते एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती है। कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है? बाबा कहते वह जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है। स्वमान में स्थित होना चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है। तो सर्वशक्तिमान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि

हैं। कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं, सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी बाबा ने? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी, क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। अथॉरिटी तो बहुत है, ज्ञान की अथॉरिटी, योग की अथॉरिटी, लेकिन बाबा कहे सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। और यह स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है, और ये कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं दिया है। बाबा कहे स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है, तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। मेहनत कर रहे हैं लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं, सोचते भी है, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। अनुभव में बाबा ने देखा किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। अनुभव में मस्त है, तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। कर्म करते कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना, अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। क्यों बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी बन जाओ? क्योंकि अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहना चाहे, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाओ। जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहना चाहे, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देहभान दोनों साथ साथ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वमान और देहभान, जहां स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहां देहभान आ नहीं सकता। जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्विच ऑन करो और रोशनी हो जाएगी, अंधकार गायब हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते, ऐसे ही जब स्वमान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है, तो किसी भी प्रकार का देहभान, देहभान भी कितने प्रकार का है, तो बाबा कहते भिन्न भिन्न प्रकार के देहभान भी है,
और भिन्न भिन्न प्रकार के

अपने स्वमान भी दिए हैं। स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, इसमें अंतर है। अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, इसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। एक है पुरुषार्थ करना और एक है अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाना। तो इसीलिए बाबा कहते मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा को अभी समय के प्रमाण जो हरेक ने लक्ष्य लिया है बाप समान बनने का, तो ऐसे समय पर मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूं। जीवन नेचुरल और सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसे अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, यह लक्ष्य संपन्न हो। बाबा कहे जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उसी स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो। स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। स्मृति सोचने वाला नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण यह है कि जहां स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, वहां अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। हर कार्य करते हुए भी समर्थी अनुभव होगी। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाबा देख रहे थे कि बच्चों को मेहनत क्यों करनी पड़ती है, तो अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती है। जिससे प्यार है, जिगरी प्यार है, उसकी मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने में कमी है। पुरुषार्थी है लेकिन स्वरूप नहीं बने। पुरुषार्थी है लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकंड में चार ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। एक सेकंड में चारों ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। जो देह अभिमान नजदीक आ नहीं सके, जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। निकालना नहीं पड़ता है अंधकार को, निकालना नहीं पड़ता है। नेचुरल जहां अंधकार है, वहां रोशनी कम है या नहीं है। तो सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहे, बदल नहीं सकते। मिसाल बहुत अच्छा बाबा ने दिया। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा, ये मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहे, बदल सकते हैं। अनुभव कर लिया कि इसका स्वाद एकदम मीठा है, तो कोई बदल नहीं सकते।
तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी चारों में से एक में भी मेहनत लगती है, चारों सब्जेक्ट में से किसी एक में भी मेहनत लगती है, तो जरूर अनुभव की कमी है। सेवा की सफलता में, धारणा में स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, धारणा में स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहां मेहनत है, या कभी कभी कहते हैं तो इसका अर्थ है कि उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूरत नहीं बने हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, अनुभव कभी कभी नहीं होता है, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या है, पूछते बाबा कि अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या है, अनुभवी मूरत कम है। आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है। बाबा कहते अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, 2010 जनवरी 26 तारीख को बहुत बड़ा भूकंप गुजरात में आया था, तो उसी संदर्भ में बाबा कहते हैं कि जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है अभी, नई नई बातें अचानक हो रही है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, बाबा कहते हैं जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। अर्थक्वेक हुआ, इतनी बिल्डिंगें गिरी, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उनको पता था कि कल हम होंगे या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है, इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकटें कट रही है। बाबा कहते हैं इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है, तो ऐसे समय में आप एवर रेडी है, पूछते बाबा, ऐसे समय अचानक का जो है, ऐसे समय में आप एवर रेडी है? ये तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात किसको कहा बाबा ने एवर रेडी? एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना, संकल्प किया और जैसे उसका स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा। किसी भी वरदान या स्वमान के अनुभवी स्वरूप बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं, अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्यों? क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद करेगा, बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं अनुभवी, पुरुषार्थी नहीं बाबा कहते हैं अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको अल्माइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देह भान के अनुभवी है, तो क्या देह भान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं? मानो आपका नाम देह पर पड़ा। एग्जाम्पल बाबा के इतने सटीक होते हैं,
मानो आपका नाम दे